की झलक भी दिखाई दे। आज का स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। आज का व्यक्ति इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। अच्छा, ओम।

ओम शांति। बाबा ने आकर हम सभी को अपनेपन की बहुत भावना दी। आज तक जिसे हम भगवान कहते थे, जिससे मिलने के लिए तरसते थे, जिसके दर्शनों के लिए हमारे नैन प्यासे थे, वो जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। बहुत अपनेपन की फीलिंग दी है बाबा ने। ये केवल कहने के लिए नहीं रह गया कि वो हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है, मात पिता है, लेकिन उसने आकर मात पिता की फीलिंग दी, पालना दी, टीचर रूप में बड़े प्यार से पढ़ाया, संपूर्ण ज्ञान दिया, और सदगुरु रूप में हमें गाइड किया, हमें संपूर्ण बनाने का काम किया, हमें वरदानों से सजाया, सदा अपना हाथ हमारे सिर पर रखा। तो इस अपनेपन को हम बढ़ाते चलें। योग युक्त स्थिति में एक अभ्यास ये भी बहुत सुंदर है कि बाबा मेरा है, उससे अपनापन बढ़ता चले। केवल कहें नहीं मेरा है, केवल ये शब्द न रह जाएं, लेकिन जैसे लौकिक में एक माँ अपने बच्चे को देखती है, मेरा बच्चा, भले ही वो सोचती नहीं है ये मेरा है, लेकिन उसके दिल में कैसे सी भावनाएं रहती हैं सब जानते हैं। अपनों के लिए हमारे अंदर क्या फीलिंग्स है, इससे हम सब अनुभवी हैं। भगवान भी हमारा है, जब हम उसे देखें, जब हम उसे याद करें, तो इस फीलिंग से कि वो हमारा है, और जो हमारा होता है उस पर हमारा अधिकार होता है। तो बाबा कहते आए, अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बाप को बांध सकते हो। अधिकार भी है, अपनों पर अधिकार भी होता है, और अधिकार से हम उसे यूज भी कर सकते हैं। बाबा हमेशा कहते आए हैं, बाप तुम्हारा है, यूज करो। हम यूज करेंगे, बाबा को बहुत अधिकार से कुछ भी कहेंगे तो बाबा हमारे सब कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा। एक ही तो समय आया है जब उस पर हमारा अधिकार हो गया है। भक्ति में भी जब वो हमारी सुनता रहा, तब तो हम रिक्वेस्ट करते थे हाथ जोड़कर, बड़े दीन भाव से उसे कहते थे, हे प्रभु हमारा ये काम कर दो, तो भी वो मदद करता आया। और संगम पर तो देखो, वो हमारा है, हमारा उस पर अधिकार है, तो इस अधिकार को फील करें और बाबा को बहुत अच्छी तरह यूज करने की कला सीख लें। वो मेरा खुदा दोस्त भी है, उसका वरदानी हाथ भी सिर पर है। उसे यूज करने का एक ये भी सिंपल तरीका है कि हम इस स्मृति में रहें, इस नशे में रहें कि बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उसकी शक्तियां हमारे साथ काम करती रहेंगी और हमें फील होगा कि हमारे बहुत सारे काम बाबा कर रहे हैं, उनकी शक्तियों के द्वारा हो रहा है। अब हम उन पर इतना बलिहार हो जाएं, समर्पित हो जाएं, और उनसे इतना अपनापन बढ़ा लें कि याद करने की बात भी न रह जाए। जो अपने हैं वो तो अंदर समाये रहते हैं, उनके प्यार में तो हम खोए रहते हैं, याद करने की बात भी कहाँ होती है। और यही फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग हमें मस्त फकीर बना देगी, हमें बेफिकर बादशाह बना देगी, हमारे चित्त को शांत रखेगी और हमें बीज रूप स्थिति में भी सहज ले जाएगी। तो आज सारा दिन हम बाप दादा का आह्वान करेंगे, परमधाम से बाबा को निमंत्रण देंगे और विजुअलाइज करेंगे, बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं, सूक्ष्म लोक में आ गए, ब्रह्मातन में प्रवेश किया, अब दोनों नीचे आ रहे हैं, आ गए हमारे सम्मुख, दृष्टि दे रहे हैं,
और बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया है और बोले, बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे कंबाइंड रहता हूँ, मुझे अपने से अलग न करो। केवल ये स्मृति कि स्वयं भगवान हमारे साथ है, हमारे कंबाइंड स्वरूप का बल हमें प्रदान करेगी। आज सारा दिन हर घंटे में ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। किसी चीज के पीछे छिपी भावना को पहचान लेने से वह चीज उपहार बन जाती है, और उस भावना को न पहचानने से उपहार भी केवल एक चीज बनकर रह जाता है। एक कलम तब उपहार बन जाती है जब आप उस भावना को पहचान लेते हैं जिस भावना से वह आपको दी गई है। जब आप अपने लालन पालन में रचे बसी अपने माता पिता की भावना को पहचान लेते हैं, तब आपको अपना बचपन उपहार जैसा लगने लगता है। शिक्षा तब उपहार बन जाती है जब आप उस शिक्षक की भावना को पहचान लेते हैं जिसने अपना ज्ञान आप में उड़ेल दिया है। आपका जीवन स्तर तब उपहार बन जाता है जब उसके उत्थान के पीछे आप अपने नियोक्ता की भावना को पहचान लेते हैं, और संस्थान में हो रहा विकास और वृद्धि तब उपहार बन जाते हैं जब अपने कर्मचारियों द्वारा की गई मेहनत में आप उनकी भावना को पहचान लेते हैं। कोई चीज उपहार नहीं होती, बल्कि उपहार तो एक दृष्टिकोण है, उस चीज के पीछे छिपी भावना पर ध्यान देने का दृष्टिकोण। इस अर्थ में आज एक उपहार ही है। जिस तरह हर उपहार किसी न किसी स्रोत से आता है, उसी तरह आज रूपी बहुमूल्य उपहार भी आपको या तो ईश्वर की तरफ से भेंट मिला है, या इसका अर्थ यह है कि आप अपना पिछला दिन जी चुके हैं। कल रात जो सोए थे उनमें से हर व्यक्ति आज सुबह जाग नहीं सका है, लेकिन आप तो सचमुच जागे हैं, यानी ऊपर विराजमान कोई शक्ति अभी आपको इस योग्य मानती है कि आपको एक और आज दिया जाए। आपको ये 24 घंटे दिए जाने के पीछे उस दैवीय भावना को पहचाने, यह जान लें कि आपका आज ईश्वर की ओर से आपको दिया गया एक उपहार है।

हमारा यह आज ईश्वर की तरफ से मिला हुआ एक बहुत ही बहुमूल्य उपहार है हमारे लिए। यह समझ लें कि उपहार के साथ किया गया दुर्व्यवहार उसके दाता के प्रति किया गया दुर्व्यवहार होगा। अपने जीवन का बर्बाद किया गया एक भी दिन उस उपहार दाता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, विश्वासघात है। जब आप किसी उपहार का महत्व जान लेते हैं, केवल तभी आप उसका मूल्य समझ सकते हैं। आज को महत्व दें और इसे मूल्यवान बनाएं। आज आप

अपने जीवन के एक दिन का सौदा करेंगे कि इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। इसीलिए अपने आज को जितना हो सके उतना उत्पादक बनाएं। आज आपके शेष जीवन का पहला दिन है, इसीलिए अपने अतीत को लक्ष्मण रेखा के पीछे बांध दें। विश्वास करें कि बीता हुआ कल तो कल के साथ ही खत्म हो गया है, इसलिए भविष्य में जाने के लिए अपने स्पीड बटन को दबा दें। आज न तो आपके अतीत के दोषों में रुचि रखता है और न ही भविष्य की अनिश्चितताओं से विचलित होता है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र दिन है, अपने आप में एक अवसर है और अपने आप में जीवन का एक अंश भी। इसलिए आप अपने प्रत्येक आज का ख्याल रखें, इसी से आप अपने पूरे जीवन का भी ख्याल रख सकेंगे। बुद्ध ने कहा है, उठो और आभार प्रकट करो, क्योंकि यदि आज हमने बहुत अधिक नहीं सीखा है तो थोड़ा बहुत तो सीखा ही है, और यदि हमने थोड़ा बहुत भी नहीं सीखा है तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े हैं, और यदि हम बीमार पड़ भी गए हैं तो भी कम से कम हम जीवित तो हैं। इसलिए हम सबको आभारी होना चाहिए। प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरा यह दिन मुझे आपकी ओर से मिला उपहार है, और इस दिन को मैं जिस तरह जीऊंगा वह मेरे तरफ से आपको एक उपहार होगा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, wherever and for however long I want. So then it's my choice. So now it's your choice. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, create it.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जब आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक जाम तो झेलना ही पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको स्वाद का लालच तो छोड़ना ही पड़ेगा। आय होगी तो आयकर भी चुकाना ही पड़ेगा। जीवन में आप जो कुछ भी चुनते हैं उसके साथ जुड़ी सुविधा और दुविधा, उसके फायदे और नुकसान, उसके सुख और दुख भी साथ चले आते हैं। बिना कांटों वाली गुलाब की झाड़ी ढूंढने में आप अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करेंगे। जब आप सिक्के का एक पहलू चुनते हैं तो उसका दूसरा पहलू भी आप स्वतः ही चुन चुके होते हैं। एक कष्ट रहित दुख रहित जीवन की इच्छा न करें। महात्माओं को भी कष्ट और दुख से रहित सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कोई जीवन होता ही नहीं है। इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी समस्याएं उनसे भी बड़ी होंगी। जब आप चहलकदमी करना चाहते हैं तो शायद ही कोई समस्या हो, लेकिन जब आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं तो स्पष्ट है कि आपके सामने ऐसे कई मुद्दे आ खड़े होंगे जिनसे आपको निपटना पड़ेगा। जब आप केवल अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ छोटे मोटे मुद्दे ही आएंगे, लेकिन जब आप अपनी भीतरी शक्ति के उच्च स्तर पर जीना चाहते हैं तब आपको बड़े मुद्दों से दो चार होना पड़ेगा। किसी छड़ी का एक सिरा उठा लेने से उसका दूसरा सिरा भी आप उठा चुके होते हैं। यदि आप तराशे जाने के लिए तैयार हैं तभी आप पूजनीय मूर्ति बन सकते हैं। शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है, और जो शिखर पर पहुंचे हैं वे आसानी से नहीं पहुंचे हैं। आखिर इतिहास पढ़ने वालों और इतिहास रचने वालों में फर्क तो होता ही है ना।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

बाइबल का अध्ययन करने वाले एक समूह में मैकलाई पढ़ा गया। वह ईश्वर चांदी को परिष्कृत व शुद्ध करने वाले की तरह विराजमान होगा। ईश्वर के लक्षण व स्वभाव के बारे में इस बात का क्या अर्थ निकलता है? उसी सप्ताह उस समूह की एक महिला ने सुनार से इस बात की अनुमति ली कि वह उसे काम करते हुए देखना चाहती है। उस महिला ने देखा कि सुनार ने चांदी को तपाने के लिए उसे आग के लपटों के ऊपर रखा। सुनार ने बताया कि चांदी को लपटों के बीचों बीच ठीक उस जगह पर थाम कर रखना पड़ता है जहां आग की लौ सबसे गर्म होती है, ताकि चांदी का सारा खोट, उसकी सारी अशुद्धता जलकर राख हो जाए। उस महिला ने सुनार से पूछा कि क्या यह सच है कि उसे इस दौरान पूरे समय आग के सामने बैठे रहना पड़ता है। सुनार ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि उसे न केवल चांदी को थामे हुए आग के सामने बैठे रहना पड़ता है, बल्कि पूरे समय चांदी पर भी नजर रखनी पड़ती है। यदि चांदी ज्यादा समय तक आग के लपटों के बीच रही तो नष्ट हो जाएगी। तब उस महिला ने पूछा, आपको कैसे पता चल जाता है कि चांदी पूरी तरह से शुद्ध व परिष्कृत हो गई है? वह मुस्कुराया और जवाब में बोला, ओह, यह तो बहुत आसान है, जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे। आप यदि जीवन की गर्माहट महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि ईश्वर आप पर नजर रखे हुए हैं, और वह तब तक आप पर नजर रखेगा जब तक कि वह आप में अपनी खुद की छवि नहीं देख लेता। जीवन कोई ऐसी भट्ठी नहीं है जो आपको जलाए डाल रही हो, बल्कि यह तो आपको तपाकर चमकती दमकती चांदी में रूपांतरित कर रही है। अगर हम इसी भावना से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन अगर हम उसे सकारात्मक रूप से अपने जीवन में लेते हैं, उसका सामना करते हैं, तो निश्चित रूप से वह परिस्थितियां हमें कुछ न कुछ सिखाकर एक कदम और आगे बढ़ा के जाती है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: मैं काल चक्र का पहिया। आज आपको ब्रह्मा बाबा की एक मुख्य विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूं कि वे कितने स्वरूप निष्ठ थे। उन्हें शिव बाबा के अंग संग रहने का इतना अभ्यास था कि दोनों शायद ही अलग होते थे। साथ में भोजन एवं दूसरे स्थूल दैनिक कार्य करते। उन्हें स्वयं अपनी देह की सुध नहीं रहती थी। इसके अलावा वो देह से संबंधित कर्मों में शिव बाबा को कभी भी भूलते नहीं थे। कह सकते हैं कि बाबा का शिव बाबा से ऐसा ज्ञान युक्त प्यार था कि वे हर परिस्थिति को निमित्त बनाकर उनकी याद में रहते।
1: अब आप सुनेंगे नवसृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य।

0: सर्दियों के मौसम की एक घटना थी। बाबा यज्ञवत्सों सहित पहाड़ी पर घूमने गए थे। लौटते वक्त धुंध थोड़ी बढ़ गई और आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई देना बंद हो गया। सभी धुंध छटने का इंतजार करने लगे, लेकिन धुंध और कोहरा कम होने की बजाय बढ़ते ही गए। तब बाबा ने साथ मौजूद संदेशी को कहा,
1: बच्चे ध्यानावस्था में जाकर शिव बाबा से कहो कि वापस जाना है। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा।
0: संदेशी बहन अव्यक्त स्थिति में ध्यान अवस्था में गई और वापस लौटकर बाबा को शिव बाबा का उत्तर सुनाया, जिसके पश्चात सभी नीचे उतर सके। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि लौकिक स्थूल परिस्थितियों को भी बाबा शिव बाबा की याद के निमित्त बना लेते थे। जैसे रात्रि को दो घनिष्ठ मित्र छोटे बालक सोने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं और सुबह होते ही फिर एक दूसरे को उसके घर से बुलाकर पढ़ाना खेलना आदि शुरू कर देते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बिना रह नहीं सकते थे।

0: शिव बाबा को भोग लगाने के एक रात पहले भी ब्रह्मा बाबा संदेशियों के माध्यम से उन्हें बकायदा निमंत्रण भिजवाया करते थे। जब भोग लगता था तब बाबा कहते थे,
1: देखो ये संगम का समय कितना सुहावना है, डायरेक्ट शिव बाबा के यज्ञ से ये भोग प्राप्त करने वाले आप बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। भले ही देवताओं को सब पदार्थ प्राप्त होंगे, परंतु शिव बाबा का ये भोग तो उन्हें भी नसीब नहीं होगा। शिव बाबा का भोग और बाबा के साथ भोजन करने का अवसर कोई कम बात थोड़ी ही है।
0: ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच प्यार इतना गहरा था कि वे दोनों अंग संग ही रहते थे। भोजन करते समय ब्रह्मा बाबा के हाथों की गति इस प्रकार लगती जैसे कि वे अनुभव कर रहे हो कि शिव बाबा ही उन्हें एक बालक की भांति खिला रहे हो। स्नान करते समय भी ब्रह्मा बाबा एक अलग ही अनुभूति करते, जैसे कि शिव बाबा ही उन्हें लोटे भर के स्नान करा रहे हो। संसार में वैसे तो कई प्रसिद्ध प्रेम कहानियां सुनी गई हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा एवं शिव बाबा का ऐसा अटूट एक रस, निर्मल, सर्वांगीण एवं सर्वोच्च प्यार न कभी सुनने को, न पढ़ने को और न कल्पना करने को मिला है और न मिलेगा। बाबा की अलौकिक जीवन कहानी ही एक सर्वोच्च प्रेम कहानी है।

0: संसार में हम मीरा के गीत सुनते हैं कि वो प्रेम दीवानी हुई, उसने लोक लाज खोई, परंतु बाबा की जीवन गाथा में तो प्रेम का रूप सर्वांगीण रूप में पनपा। बाबा ने प्रभु प्रेम में न केवल लोक लाज खोई, बल्कि संसार में जितने भी रूपों अथवा संबंधों में प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, उन सभी संबंधों में शुद्ध प्रेम की एक तीव्र धारा बाबा के जीवन में देखने को मिलती है। बाबा का प्रेम एक ऐसे प्रभु के प्रति प्रेम नहीं था जिसका कोई दैहिक रूप हो और जिनके बारे में आत्मा को केवल धुंधली पहचान हो। उनके प्यार में माधुर्य, लालित्य और आत्मीयता का परम उत्कर्ष था। वे सारा दिन अशरीरी शिव बाबा का मनन, चिंतन, स्मरण, गुणानुवाद, गायन आदि करते रहते थे। इस तरह वे काया के अभ्यास और माया के प्रहार से परे होते गए थे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे देह में होते हुए भी वे उसमें न हो, उनकी निद्रा भी नहीं रही थी, बल्कि उसमें सुषुप्ति का अंश आटे में नमक के समान रह गया था। उसमें भी वे विश्व सेवा के स्वप्न देखते और शिव बाबा से बातें करते थे। बाबा की अवस्था के बारे में ब्रह्मा कुमार जगदीश जी बताते हैं।
1: बाबा की योग आरूढ़ सदा जागती ज्योति के समान अवस्था का सुफल यह था कि जब भी कोई उनके निकट आकर बैठता तो उनकी योग दीपशिका उस व्यक्ति की ज्योति को भी जगा देती। कोई उनकी आंखों में देख लेता तो वह इस दुनिया से कहीं दूर एक सूक्ष्म सुखमय लोक में पहुंच जाता। कोई भी पुरुषार्थ किए बिना वह किसी पंख के समान हल्कापन का अनुभव करता। कम से कम उतने समय के लिए उसमें देह और संदेह का भाव मिट जाता, पुराने से पुराना मनोविकार शांत हो जाता, उसे किसी अचिंत्य अवर्णनीय शक्ति का अनुभव होता। किसी को तो बाबा के मुखमंडल और उसके आसपास प्रभामंडल दिखाई देता, जिसे वह देखता ही रहता। गोया बाबा की निकटता मात्र से बिना बताए मूक स्थिति में भी यह परिचय मिल जाता कि बाबा क्या कर्तव्य करते हैं और कैसी सृष्टि स्थापन कर रहे हैं।
0: बाबा के जीवन में जैसे ज्ञान एवं प्रेम का अद्भुत तालमेल था, वैसे ही जीवन में हर प्रकार का संतुलन भी रखते थे। वे देही अभिमानी बनने पर तो पूरा जोर देते थे, परंतु देह के स्वास्थ्य एवं उसकी संभाल की अवहेलना करने को नहीं कहते थे। उनका कहना था कि जबकि प्रकृति तमोप्रधान है और मनुष्यों ने अज्ञान काल में विकर्म किए हैं, तो रोग एवं व्याधियां आएंगी ही, वे शिव बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे युक्ति बताते थे।
2: बच्चे, दवा और दुआ दोनों से काम लो, रोग की अवस्था में भी योग को न भूलो, वरना देह अभिमान का संस्कार पक्का हो जाएगा। ये शरीर भी कम मूल्यवान नहीं, इसलिए कोशिश करके इसे ठीक रखो ताकि इस द्वारा ईश्वरीय सेवा कर सको और आपके योग रूप पुरुषार्थ में विघ्न भी न पड़े।
0: बाबा किस प्रकार शिव बाबा द्वारा रचे गए

0: यज्ञ एवं वत्सों की संभाल करते थे, उससे जुड़ा एक प्रेरणादायी प्रसंग है। एक बार बाबा वत्सों के समक्ष ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बाबा के एक पांव के अंगूठे में छोटी सी पट्टी बंधी हुई है और वे पूछ बैठे,
1: बाबा यह क्या हुआ आपके पांव को?
2: बच्चे, रात्रि को जब सोया हुआ था तो स्वप्न में देखा कि कमरे के सामने वाली पहाड़ी पर वत्सों के वस्त्र सूख रहे हैं। देखा कि कुछ पशु अंदर घुस आए हैं और वे कपड़ों को उठाकर चबाना चाहते हैं। बाबा ने सोचा कि उठकर उन्हें उठाना चाहिए, शिव बाबा के यज्ञ की चीजों की हानि होने से बचाना चाहिए। मैंने जल्दी से जाने की कोशिश की तो स्वप्न अवस्था में ही जैसे ही पांव को आगे बढ़ाया वैसे दरवाजा पांव से थोड़ा लग गया, मामूली सी खरोंच आ गई। थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब है वो तो सामने आता ही है और चुकता होता जाता है। हम ब्राह्मणों को इस यज्ञ की हर एक चीज की संभाल तो करनी ही है। बाबा हर बात का ध्यान रखता है कि कहीं बच्चों की गफलत से शिव बाबा के यज्ञ की कोई चीज को नुकसान ना हो।

काल चक्र का पहिया देख रहा हूं कि किस प्रकार ब्रह्मा बाबा न केवल प्रीति पूर्वक शिव बाबा को याद करते, ज्ञान में रमण करते, बल्कि अपने कर्तव्य करने में भी किसी से पीछे नहीं रहते। उन्हें सबसे अधिक सेवा का एवं शिव बाबा के यज्ञ कार्य का ख्याल रहता। गोया शिव बाबा के प्रति उनका जो घनिष्ठ प्यार था, वह उनके कर्म में भी प्रवृत्त करता था। इतना ही नहीं, बाबा की आत्मनिश्चय की जो स्थिति थी, उनका जो स्नेह था, वह उनके हर बोल एवं कर्म में झलकता था। यहां तक कि बाबा ने शरीर छोड़ने के समय का जो अनुभव अव्यक्त होने के बाद सुनाया था, उससे भी उनके जीवन में इसकी पराकाष्ठा स्पष्ट झलकती है। आगे की कड़ियों में मैं उनके उस अनुभव एवं स्नेह का उल्लेख जरूर करूंगा। तब तक के लिए सुनते रहिए ब्रह्मा बाबा के आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर बढ़ने की ये कहानी।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की जहां हम बात कर रहे हैं, खुद को समझा और किस तरह से खुद को मैनेज करने का प्रोसेस है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मेरे ही प्रति थी। आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज में जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद कौन सा आस्पेक्ट है जिंदगी का जिसको देखना जरूरी है जब हम सेल्फ को मैनेज करने की बात करते हैं। और हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हमने बात कर रहे थे, बड़ी अमेजिंग बात यह है, क्लैरिटी ये हुई कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी मेरे ही प्रति होती है, उसके बाद बाकी सारी जिम्मेदारियां अपने आप आती जाती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ें और जानें कि अगला पड़ाव क्या होगा।
1: जैसे हमने देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट, तो हम हर चीज़ अपने से जोड़कर कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले आए स्व के प्रति हमारी जिम्मेवारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, क्योंकि हमने पहले दिन ही देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट में चार एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है, द फोर आर्स दैट वी हैड सेड। सो दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रोल्स एंड रिसोर्सेज। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डायरेक्शन, कि जीवन में मेरी अपने प्रति जिम्मेवारियां और दूसरा मेरे जीवन का लक्ष्य, पर्पस ऑफ माय लाइफ, एंड वो पर्पस को अचीव करने में वैल्यूज ऑफ माय लाइफ। तो वो एक कंपस, क्योंकि एक कंपस नहीं होगा तो जैसे एक दिशाहीन जीवन हो जाता है। बट वंस यू हैव अ कंपस यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग। सो द कंपस इज द कंपस ऑफ माय वैल्यूज। तो जीवन में चलते चलते अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है मन में, कई बार डिसीशंस लेने में कॉन्फ्लिक्ट होता कि ऐसा करें या ऐसा करें, तो जब डायरेक्शन नहीं पता चल रहा तो अपना कंपस निकालना है। कंपस निकालें और कंपस पर ही डिपेंड करें कि कंपस विल शो मी द राइट डायरेक्शन, लेकिन वो कंपस पहले तैयार होना चाहिए। And that compass is the compass of my values. तो अपनी values पर अगर चल कर decision लेंगे तो हम जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे लिए at least हित में होगा, और जहाँ मेरे हित में होगा automatically उसमें सारा कल्याण ही समाया होगा। And it sometimes seems कि जब हम values पर चलते तो short term में benefit नहीं, in fact कुछ ना कुछ लगता कि मेरा तो नुकसान हो रहा है, लेकिन compass will always show me long term benefit. कि लॉन्ग टर्म ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम सेल्फ को नहीं पहचानते तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पर आता है, बिकॉज वी सॉ कि अगर हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं है तो अंदर से तो हम बहुत सारे जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, यू नो, हु एम आई, मैं ये हूँ कि मैं ये हूँ कि मैं ये हूँ, बिकॉज आई वॉज या ऑल द लेबल्स जो हमने देखे थे, तो हमें यही नहीं पता चलता कि आखिर मैं कौन हूँ। और अपने को न जानने के कारण सारा दिन में हम कोई ना कोई एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटी में रहते हैं, क्योंकि वन ऑफ द आईज जो अंदर है, वन ऑफ द लेबल्स इज अंडर थ्रेट, यू नो। तो कोई ना कोई इनसिक्योरिटी हमेशा अंदर एक बनी सी रहती है, एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे रिलेशनशिप्स पर आता है।
0: आई थिंक वेरी ट्रू। यू नो, जब हम ये कई सारी चीज़ों में होते हैं, हमें कई बार ये भी हो रहा होता है कि मैं किसको प्रायोरिटी दूँ, किस लेबल को प्रायोरिटी दूँ, मैं ये देखूँ मैं ये बनूँ या मैं ये बनूँ। इन फैक्ट देयर इज सो मच ऑफ कन्फ्यूजन एवरी टाइम गोइंग इनसाइड।
1: सो देन देयर इज एंग्जाइटी और देयर इज फियर और देयर इज इनसिक्योरिटी, एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट विल कम ऑन माई कनेक्शंस एंड माई रिलेशनशिप्स। ऑल माई रिलेशनशिप्स, इफ आई जस्ट यू नो रिवाइंड एंड सी ऑल माई रिलेशनशिप्स टुडे, तो अगर हमारे संबंधों में कहीं भी डिसकनेक्शन आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आज अगर हम देखें कि हमारे सभी जो संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कहें एक कनेक्टिविटी, यू नो, एक क्लोजनेस होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिखरते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने रिलेशनशिप्स में मशीन्स, गैजेट्स और इन सब को रिप्लेस कर दिया है, और ज़्यादातर हमारा रिलेशनशिप अब इनके आधार पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड कितना, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के साथ उतना अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वी रादर प्रेफर टू कनेक्ट टू ईच अदर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो, रादर देन कॉलिंग यू अप एंड सेइंग सॉरी, I would rather just send an SMS. It is so easy. I do not have to call up and say sorry. But the process of actually meeting you and saying sorry would have been what would have got me to do the inner work. Lekin wo phone uthaya, ek SMS banaya sorry aur bhej diya.
0: Acha, ek aur jo problem relationships mein dekhte hain, zyadatar log hum face kar rahe hain, sab kuch theek chal raha hota hai, lekin wo zyada der tak theek nahi chalta hai. वो 10 मिनट, एक घंटा ठीक रहेंगे हम, कोई ना कोई बात, मतलब ज़्यादातर हर रिश्ते में, चाहे वो माँ बेटे के रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई ना कोई बात ऐसी खटकेगी ज़रूर, जो आप अगर ओपनली नहीं भी बात करेंगे, इंटरनली आप उसको ज़रूर लेंगे।
1: तो इंटरनली वही हम देखेंगे आज, इंटरनली ही ज़्यादा वो चल रहा है। वो बात ज़्यादा दूसरे की नहीं है जो मुझे खटकती है, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, और आप जो कहते हैं वो उस डिस्टर्बेंस को ट्रिगर करता है। See, again, we will have to understand it's less about the other person and it's more about me.
0: But in relationships, too, actually, we are always thinking it's about the other person.
1: No, but then that's what we saw the whole series, even in situations. Humne socha it's always about the situation. The situation is also, a relationship is also a situation. Situation matlab vyakti bhi to na. To agar main kahun aapki wajah se like this, but then it's not aapki wajah se. It's meri apni sthiti kya hai. To isle when we are examining relationships also, it's less about other people and it's more about what I'm going through inside. So today, because I'm not connecting very easily with you, I connect to you through instruments, through email, through phone, through SMS, and you know, all these kind of, not that it's not good, not that, you know, hame ye gadgets nahi use karne hai, lekin kahin na kahin hum usi ke andar hi
0: ek, usse
1: hum वैसे ही थोड़ा सा कट रहे थे एक दूसरे से, और उनकी वजह से हम इतना ज़्यादा उनमें ही, यू नो, लाइक आज एक दूसरे से बात करने की बजाय वी रादर चैट ऑन द, यू नो, यहाँ तक कि हम एक स्ट्रेंजर से ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं। आजकल के यूथ, दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम जस्ट चैटिंग एंड दे डोंट इवन नो हु दे आर चैटिंग विद, बट कमिंग एंड टॉकिंग टू देयर ओन पेरेंट्स सीम्स टू बी अ चैलेंज। So somewhere I have to say that this is a reflection of my personality. ये कहीं ना कहीं मेरा एक issue है कि मैं अपने parents से या अपने जो close हैं उनसे मैं बात नहीं कर पा रही जाके, but I'd rather sit online and chat with a stranger. What does this say about me? It's not saying about them. But फिर हम generally कहेंगे उनके साथ ये, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, and completely put the blame on everyone else.
0: In fact, I know somebody, he says कि मैं इतना थक जाना चाहता हूँ घर जाते जाते तक कि मैं जाके सो जाऊँ, मुझे किसी को फेस ही ना करना पड़े। एंड दिस इज लाइक
1: अवॉइडिंग, हम अवॉइड कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को। बहुत सारे बच्चे भी आज यही कहते हैं कि वी रादर रीच होम जबकि हमारे पेरेंट्स सो चुके हैं, ताकि ना वो कॉन्टैक्ट हो, तो ना वो आर्ग्यूमेंट हो, ना मुझे उसको फेस करना पड़े, ना वो मुझे कुछ कहें, ना मुझे सुनना पड़े। तो ये क्या हो रहा है, हम एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं। देन रिलेशनशिप्स विद अदर्स, देन रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, इसमें भी तो कहीं उतनी हीलिंग नहीं है। आई डोंट नो, आज अगर हम किसी से कहें रिलेशनशिप विद सेल्फ, तो दे विल जस्ट लुक, अपने आप से कौन सा रिश्ता होता है? रिश्ता तो दूसरों से निभाया जाता है, अपने आप से रिश्ता इज समथिंग दैट वी हैड नॉट इवन थॉट ऑफ। के आई वॉज जस्ट टॉकिंग इन अ प्रोग्राम एंड आई सेड, What about spending some time talking to yourself? के सारा दिन में इतने लोगों को पूछते हो क्या हाल है, क्या हाल है, एक मिनट रुक के अपने आप से भी तो पूछ सकते हैं क्या हाल है। एंड देयर वर पीपल एंड दे सेड, अपने आप से कैसे पूछा जाता है, मतलब द कॉन्सेप्ट वॉज सो एलियन, लाइक ये औरों को पूछना तो बहुत ईजी है क्या हाल है,

0: ये अपने आप को कौन पूछता है, तो वो ज्यादा उनको लग रहा था कि ये कहीं मतलब पता नहीं कोई अजीब सी बात है.
1: मुझे तो ये रिलेशनशिप वर्क ऑन योर रिलेशनशिप शब्द से ही इतनी चिढ़ हो चुकी है, क्योंकि हर जगह यही बात किया जाता है. एंड हाउ टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, इफ रिलेशनशिप आर देयर तो आर देयर, उन पर वर्क क्या करना है, यू नो, लाइक पीपल आर बिकमिंग सो वेरी ऑफ इट कि हमें नहीं जानना उसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे जो मिलना चाहिए था वो खत्म होता जा रहा है शायद.
0: किससे मिलना चाहिए था?
1: जो रिलेशनशिप्स में हम ढूंढ रहे थे.
0: हाँ, तो फिर अगर हम गलत जगह पर ढूंढेंगे तो और वहां नहीं मिलेगा तो ये गलती किसकी है? अगेन लाइक यू सेड, रिलेशनशिप्स में जो मिलना चाहिए था, रिलेशनशिप्स में मिलना नहीं है कुछ भी.
1: या दिस इज, यू नो, लाइक
0: इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस. वी आर टेकिंग रिलेशनशिप्स ओनली फॉर रिसीविंग, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और फिर जहां जहां ढूंढ रहे हैं, इट्स लाइक अ हाइड एंड सीक गेम गोइंग ऑन.
1: फिर बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर रिलेशनशिप की जरूरत क्या है?
0: एग्जैक्टली. सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर रिलेशनशिप में मैं इतना एफर्ट क्यों करूँ, फिर इतना इनके साथ भी एडजस्ट करूँ, ये भी करूँ, टॉलरेट भी करूँ, अगर इनसे कुछ मिलना ही नहीं है मुझे, तो मैं इतना सब क्यों करूँ? तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन, कि मैं अकेले रहूँ and I do not come into contact with people.
1: नहीं, फिर मैं और लोगों को ढूंढता, अकेले तो मैं रह नहीं सकता.
0: तो फिर वो और लोग भी तो वैसे ही वाले होंगे आपके. So here the important realization is कि relationships हमारे लिए बहुत बहुत बहुत matter करते हैं. क्यों matter करते हैं? Relationships में हमें मिलना नहीं है कुछ भी, उस एंगल से नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन relationships इसलिए matter करते हैं क्योंकि एक relationship में ही मेरे पास जो है एनर्जी, चाहे वो प्यार की है, शांति की है, खुशी की है, वो एनर्जी मैं क्रिएट करता हूँ, और जब मैं आपकी तरफ उसको ट्रांसमिट करती हूँ तब वो पहले मुझे मिलता है.
1: तो मैं महसूस करता हूँ,
0: I feel it first.
1: You know, अच्छा, realization of my own inner value is through relationship.
0: Yes.
1: Oh yes.
0: So the experience, because everyone wants to experience peace, love and happiness. ये तीन चीजें तो I want to experience. Now I'm trying to look for them there. Give. मुझे खुशी चाहिए, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, देन आई एम नॉट गेटिंग. परमात्मा ने आकर सिर्फ फॉर्मूला चेंज किया, इट्स नॉट आस्क मुझे एक्सपीरियंस करना है, इट इज गिव, एंड व्हाइल यू आर गिविंग इट विल फ्लो थ्रू यू, एंड द फर्स्ट पर्सन टू गेट इट
1: इज मी.
0: इज मी. अगर मैं रिलेशनशिप्स में नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, कई बार ऐसे होता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अकेले बैठ जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जीवन कैसी हो जाएगी? क्योंकि जब तक मैं इंटरेक्शन में नहीं आती तो मुझे मौका नहीं मिलता वो एनर्जी क्रिएट करने का, वो एनर्जी एक्सप्रेस करने का, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एनर्जी एक्सपीरियंस करने का.
1: तो इसीलिए हम जो अब रिलेशनशिप से थके हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो सारी नेगेटिविटी कर रहे हैं.
0: तो वो सबसे पहले किसको मिल रही है?
1: मुझे ही मिल रही है. तो एक तो नेगेटिविटी ऑलरेडी है, दूसरा जैसे ही मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ वही नेगेटिविटी और क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम में से हर कोई अब ये चाह रहा है कि बस हम रिश्तों में और नहीं घुसना चाहते, नहीं फंसना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोझ लगने लग गए.
0: वो बोझ इसलिए लगने लग गया क्योंकि हम रॉन्ग एंगल से फॉर्मूला को यूज कर रहे थे. अच्छे से अच्छी चीज़ भी रॉन्ग डायरेक्शन से अगर यूज करनी जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो जो जनरल स्टेटमेंट अब है वो ये, रिलेशनशिप्स जस्ट डोंट वर्क, दे डोंट वर्क. अब व्हेन वी आर सेइंग रिलेशनशिप्स डोंट वर्क, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
1: कि आई एम नॉट गेटिंग, दे डोंट गिव एनीथिंग.
0: दे डोंट गिव एनीथिंग.
1: नो, बट पीपल आर ओपन अबाउट इट. आई डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम माय रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग इन दैट रिलेशनशिप.
0: सो आज से हमें सिर्फ उस फॉर्मूला को दूसरी तरह से यूज करना है कि रिलेशनशिप्स वॉज नेवर फॉर गेटिंग, इट वॉज नेवर फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग.
1: पर ये बिलीफ सिस्टम जो है ये चेंज होने में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो हमारा है, बिकॉज ऑल आर वर्ड्स, यू नो, अगर हम देखें स्टेटमेंट्स, खासकर रिलेशनशिप में, तो हम यही मानते आ रहे हैं कि इस रिश्ते में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है.
0: वो लेकिन जो मिल रहा होता है वो भी कैसे मिल रहा होता है? इफ आई कैन से कि व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी गुड, यू नो, आई वी से दैट फॉर सर्टेन पीपल, कि व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी नाइस, इट्स लेस अबाउट द अदर पर्सन, इट्स बिकॉज आई फील वेरी नाइस व्हाइल आई एम विद यू. तो इफ आई एम फीलिंग वेरी नाइस व्हाइल आई एम विद यू, इसका मतलब जब मैं आपके साथ हूँ सो आई एम क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी. And this right kind of energy, whether it's love or purity or whatever, this makes me feel good. बट मुझे ये एहसास नहीं आ रहा कि ये एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ. मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ बैठने से ये एनर्जी मुझे आ रही है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज आपके साथ बैठने से ये एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ.
1: लेकिन मैं बाकियों के साथ क्यों नहीं फिक्र
0: तो कर सकती हूँ ना, जिस दिन ये रियलाइज होगा कि मैं कर रही हूँ.
1: मतलब मैं आपके साथ बैठते हुए जैसा फील कर रही हूँ मैं हर एक के साथ कर सकती हूँ.
0: जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ आई परसीव देम. इट्स जस्ट दैट मैंने यहाँ पर एक लेबल बना दिया कि अनुप्रिया इज अ वेरी नाइस पर्सन, तो वो मेरा लेबल फिट है. अब कईयों के लिए मैंने लेबल फिट कर दिया कि
1: बहुत बुरा है.
0: क्या तो उनके साथ बैठकर आई डोंट क्रिएट द राइट एनर्जी. क्रिएशन सारी यहाँ हो रही है डिपेंडिंग ऑन हाउ आई सी यू एंड देन आई से बट देन वॉट हैपन्स इज बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर इट देयर तो मैं आपके ऊपर क्लिंग ऑन कर देती हूँ कि वेन कैन आई मीट यू, वेन कैन आई टॉक टू यू. क्यों? क्योंकि जब मैं आपसे बात करती हूँ या आपके साथ बैठती हूँ आई फील गुड. तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी क्या बन गई कि मुझे आपकी जरूरत है टू फील गुड. एंड दैट्स वेयर द होल थिंग विल स्टार्ट कोलैप्सिंग.
1: बट व्हेन दैट पर्सन इज नॉट देयर वी रियली डोंट फील गुड.
0: या सो वाई? बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दैट थॉट ना. जब मैंने एक थॉट क्रिएट कर दिया, दिस इज लाइक एनी अदर एडिक्शन. ये कोई भी एक एडिक्शन की तरह है. कॉफी पियेंगे आई विल फील गुड, चाय पीते हैं आई फील गुड, नहीं पी मुझे डिस्टर्बेंस होता है. चाय एंड कॉफी इज नॉट डूइंग एनीथिंग. इट्स माई अडिक्शन टू दैट पर्टिक्युलर स्टिम्युलेंट. सिमिलरली इट्स माई अडिक्शन और अटैचमेंट्स टू पर्टिक्युलर पीपल. So I am just being able to create that energy while I'm with you. But if I understand that main create kar rahi hu, samne wala nahi de raha hai. Main create kar rahi hu, wo create karke main transmit kar rahi hu, lekin transmit karte samay pehle kisko mil raha hai? Mujhe mil raha hai and I feel very good and I say yes, this is the person. I need this person. लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब मुझे ये realization नहीं रहती कि ये creation मेरी है, तो मेरी वो जो power to create है उसकी awareness नहीं होने के कारण I again start feeling that it is coming from here. And again now I start expecting from there. And फिर अभी suppose I'm not feeling, suppose I'm in pain and I go into my series of negative thoughts and all and I come to you. Or you say something which I don't like or fits in my, and then I start saying, अब तो मुझसे आपसे वो वाला प्यार नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था.
1: And then I feel that I don't get the love.
0: Yeah. And then I start saying, you have changed. And I'm not getting that anymore with you. पहले आप जो मुझे respect देते थे, पहले आप जो मुझे प्यार देते थे, पहले आपसे मिलकर जो मुझे खुशी मिलती थी,
1: feel होता था, हाँ,
0: it's not coming. What I am not realizing is, right now, I am going through a low phase. वो नहीं बदले हैं, वो वैसे ही हैं. I am going through a
1: low phase. पहले भी तो वो कुछ नहीं कर रहे थे.
0: Exactly.
1: Okay.
0: And जैसे अभी वो कर रहे हैं, we are not saying कि जो सामने वाला है, that person is always constant. He and she is going to go through their ups and downs and lows and highs. लेकिन the question is, who is creating the energy? I am creating the energy. तो अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन हम इस अवेयरनेस के साथ चलें कि रिलेशनशिप्स के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो ऐसे नहीं पहले ऐसे है, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज ऑटोमेटिकली कि व्हाट आई एम गिविंग यू पहले मुझे मिलेगा एंड देन व्हाट यू गेट फ्रॉम मी व्हाट यू सेंड बैक विल आल्सो बी
1: सिमिलर.
0: तो इसलिए फिर मुझे आपके साथ रहकर अच्छा लगता है, क्योंकि जब पहले मैं आपको देती हूँ एंड फिर ऑटोमेटिकली, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा तो है ही कि जो एनर्जी फ्लो होगी वही एनर्जी वापस मिलेगी. तो इट्स अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग. दिस इज द फॉर्मूला, गिव एंड रिसीव. बट वी थॉट टेक एंड गेट. कीप ऑन. मेरा कुछ रोल है उस रिलेशनशिप में? दैट आई डिडंट नो. इट वॉज ओनली टेक टेक टेक टेक. तो फिर वो क्या हो गया? आज किसी से हम पूछे व्हाट इज
1: टेक टेक, और उसके लिए मैं करती थी सी कर्म तो कर रही थी. सी अगर अगेन ये नहीं मुझे पता था कि कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जैसे ही जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, जो भी है, चाहे मेरा बेबी बच्चा है या कोई भी है, उनके होने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत सारी चीजें कर्म करूँगी उनके लिए.
0: वो तो आउटसाइड हो गया.
1: हाँ, पर मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट था, तो वो मैं कर्म करती रही, और उसके बाद अगर उन वहाँ से रिस्पांस नहीं आ रहा वो कर्म करने के बाद, तब मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ और फिर आप मेरे लिए नहीं कर
0: रहे. सो दैट विल बिकम एक्सपेक्टेशंस कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने इन रिटर्न क्या किया. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एटलीस्ट इन टुडेज टाइम, अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से मेंटेन करके चलना चाहते हैं एंड मोर इम्पोर्टेंट हम खुश रहना चाहते हैं, तो कितने लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए? How many people do you think?
1: I think expectations तो अब और
0: no one.
1: maximum लोग ये बोलते भी हैं कि हमारे zero expectations.
0: Zero expect वो बोलते हैं.
1: हमारी कोई expectation नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है. उसे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते.
0: Yeah. That's not in the negative sense. कि उससे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते. It's not like that. But no expectations means कि you give for the feeling of you're getting it while it's going. अब वहाँ से आता है या नहीं, don't think about it. हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देने में मुझे अच्छा लगता है. लेट्स पुट दैट एज आर बेंचमार्क कि आपको जो कुछ देने में अच्छा लगता है, अगर उसको हम फिजिकल रूप पर देखें,
1: हमें जो चाहिए वो हम देना शुरू कर दें, तो वो हमें तो मिलेगा.
0: एब्सोल्युटली. परमात्मा हमेशा कहते हमें कि तुम्हें जो चाहिए ना, पहले तुम दो. सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, respect though, because you will first be giving it to yourself. How do we work with zero expectations? It's agar physical roop se dekhe, hum kisi ko ek gift dete hain. Abhi aaj kya hota, maine aapko ye gift diya, aapne mujhe kya diya? Ya maine jo aapko gift diya wo to 2000 ka tha, aapne mujhe jo gift diya wo why did we give, were we giving with the intention that now in return, if I have given a gift of 2000, I should get a gift of 3000 in return? No. Same, jo ye gift ka flow hai, agar aapko gift dena hai, aap dijiye. Jitne ka dena hai, utne ka dijiye. Jitna dene se aapko comfortable lagta hai, utna dijiye, without expecting ki you are to get a gift in return. Agar wo dene mein, it makes you feel good. And that is the gift of energy. ये गिफ्ट तो ठीक है, इजी है.
1: नो, आई कैन मेक इट आउट, यू नो, आजकल बर्थडेज में देयर इज अ रिटर्न गिफ्ट थिंग.
0: वो तो ठीक है ना, दैट्स आई टुक एन एग्जांपल बिकॉज़ फिजिकल करने से इट बिकम्स इजीियर टू अंडरस्टैंड.
1: कि बच्चा पहले जहां पे भी अपने किसी भी फ्रेंड के पास जा रहा है, नो, इट हैज चेंज्ड सडनली, आई कैन मेक इट आउट, यू नो. उसके मन में पहले ये होता है कि रिटर्न गिफ्ट क्या होगा, यू नो. समवेयर वो जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक छोटी सी चीज भी कहीं ना कहीं हमने पूरे थॉट प्रोसेस में किया हुआ है.
0: सो वी नीड टू गिव. अब जो आप संबंधों में कल चलें, उतना दें जितना देते हुए इट्स योर कैपेसिटी. यू नो, आज हम क्या कहते हैं, मैंने इतना किया जितना मैं कर सकती थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा किया. क्यों किया? अगर आपसे नहीं हो रहा, आप मत करो. लेकिन इसलिए नहीं करो क्योंकि सामने वाले ने भी मुझे उतना देना है. We need to start working in our relationships with the process of giving. Utna dena hai, jitna I can give in terms of energy. Aapke paas jitni khushi hai, jitna pyar hai, jitni shanti hai, aap usko dete jaye. Jitna denge, utna aapke andar
1: woh badhta jaye. It's the other way around. In fact, ab mujhe jitna chahiye, main utna dena shuru karu.
0: Absolutely.
1: You know?
0: Not with the expectation ki aap mujhe in return kya denge.
1: Nahin, main ye maan ke hi chalu na phir ki jitna main de rahi hoon, woh mera sara mujhse hi ja raha hai.
0: Absolutely. Main ye samajh kar chalu ki jab main de rahi hoon, tabhi mujhe mil raha hai.
1: Haan.
0: Ab mujhe kab milega? किससे मिलेगा? नहीं, मिलने वाला पार्ट हो गया देते टाइम. दिस इज लाइक अ गिफ्ट के जब हम वो दे रहे हैं, वो गिफ्ट पहले मुझे मिल रहा है, फुल स्टॉप, मिल गया.
1: आई हैव एक्सपीरियंस दैट, आई हैव यूज्ड इट एंड देन आई हैव गिवन
0: इट, एंड बाय गिविंग इट, इट इंक्रीजेस इन मी. जितना हम खुशी से, हमने पहले भी देखा वही कर्म है, शोर मचा के भी हो सकता है, शांति से भी हो सकता है, गुस्से में भी हो सकता है, प्यार से भी हो सकता है. जितना उसको प्यार से, शांति से करेंगे, वो शांति की शक्ति हमारे अंदर
1: और
0: बढ़ती जाएगी. तो वो वहाँ से नहीं आ रही है, लेकिन वो मेरे अंदर क्रिएट करने से वो अपने आप बढ़ती जाएगी. सो रिलेशनशिप्स मीन्स गिविंग एंड गिविंग. रिसीविंग अपने आप हो रहा है.
1: रिसीविंग पहले, इनफैक्ट अगर हम ये थॉट प्रोसेस लें, अगर हम करके देखें, सो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट आउट.
0: इट इज लाइक दैट. वंस आई जस्ट, बिकॉज एनर्जी फ्लो तो ऐसे ही कर रही है. अब क्या हो रहा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. दिस इज अ नेगेटिव थॉट, इट्स अ पेनफुल थॉट. अब मैं आपको मुझे चाहिए के एंगल से जब रिश्ते में आती हूँ, तो मैं आपको कौन सी एनर्जी दे रही हूँ?
1: नेगेटिव
0: तो मतलब मुझे क्या मिला
1: कि ये मुझे देंगे कि नहीं देंगे,
0: तो
1: मुझे कैसे बात करेंगे, मुझसे कैसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे,
0: तो मुझे क्या मिला,
1: पूरा नेगेटिविटी।
0: मैंने सोचा किसने दिया मुझे,
1: उन्होंने दिया। ओह यस, इज अ फॉर्मूला विच वी नीड्स टू वर्क ऑन। वेरी गुड शिवानी, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आज जो रिश्तों को देखने का एक नया अंदाज हमारे सामने है कि कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है, और हर बार की तरह एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तर्क की कसौटी पे अगर हम देखते हैं, मैथमेटिक्स को देखते हैं, तो इट रियली वर्क्स, यू नो, एनर्जी का फ्लो अगर हम देखें, लेकिन यही है कि अपने अनुभव को, अपने अनुभव से बड़ी और कोई कसौटी नहीं हो सकती।
0: We'll explore this more now.
1: इसको हम अपने आने वाली कड़ियों में ज़रूर करेंगे। आज की इस बातचीत के लिए थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: देखना यही है कि क्या हमें चाहिए। अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें प्यार चाहिए, खासकर रिश्तों में तो हम प्यार तलाश रहे होते हैं, कई बार खुशी तलाश रहे होते हैं, कई बार शांति तलाश रहे होते हैं, ये फॉर्मूला आप अपना के देखें कि मुझे चाहिए। सपोज़ अगर अपने आप से हम बात करें और कहें कि इस रिश्ते में मुझे प्यार चाहिए, तो उतना ही प्यार देने की कोशिश करें, देना शुरू कर दें। ये अनुभव एक दिन के लिए करके देखें तो क्या मैं प्यार का अनुभव कर रही हूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि वो मुझे देंगे, या ये कहें कि उनसे ही प्यार मुझे मिलेगा। मैं जब प्यार अपने आप को देना, उनको देना शुरू करती हूँ, किसी को भी देती हूँ, वो मुझसे होकर गुजर रहा है। ये थॉट अगर हम अपने साथ रखें, ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर अपने अनुभव को आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करें। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी साहब का अपना प्रोग्राम है, हर रोज़ हमारे साथ कुछ नया हो रहा है, कुछ नया घट रहा है। नए अंदाज से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा था, अब रिश्तों को देख रहे हैं। इन्हें एक्सप्लोर ज़रूर करें। कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, कोई अनुभव है आपका, हमारे साथ शेयर करें, या तो फोन पर संपर्क करें, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि जो भी बात हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं, वो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, तो ज़रूर इन सभी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, ताकि वो खुशी, वो पीस, वो शांति, वो प्रेम जिसकी मैं अधिकारी हूँ, हम सब अधिकारी हैं, हम अनुभव कर पाएँ। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी, लेते हैं आपसे विदा। ओम शांति।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ आज सद्गुरुवार का दिन है, तो सद्गुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करूंगा कि आप पर गुरु के हाथ और ज्ञान की बरसात हमेशा बरसता रहे और आप हर मार्ग में परमात्म शक्ति का अनुभव करते रहें और हर मार्ग में एक नया रास्ता मिले, सुकून से आपका जीवन निकले, ऐसे शुभ आशा के साथ। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: राजू सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश जी बोलता हूँ जताना से, कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया सुरेश जी, स्वागत है आपका।
1: जी सर, आपका भी स्वागत है। स्टूडियो में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप आ गए, खुशी आ गई। तो बस आप आते हैं तो हमको भी एक बात करने का मौका आपसे मिल जाता है। हमारे जो मेहमान आते हैं कोई भी, तो भी हम अच्छी बात कुछ ना कुछ सीख पाते हैं, देख सुन पाते हैं, नई चीजें सुन पाते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात आती है सर। तो चलो सतगुरुवार है, बाबा का वार है आज, तो आज के दिन की गुरु सतगुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सबको गुरु की कृपा बनी रहे और सबको गुरु का ज्ञान मिलता रहे, ऐसी शुभकामना है हमारे तरफ से। तो बताओ तो आज मेरी धर्म पत्नी का भी जन्मदिन है, नाम है रेणुका। हेलो
0: जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं रेणुका बहन को भी और आपको भी। जी
1: जी जी, वो भी रेडियो सुनती है कभी कभी, अभी मैं घर होता हूँ तो बस सुन लेती है रेडियो, इसको भी अच्छा लगता है रेडियो सुनना क्योंकि हमारी परंपरा है रेडियो सुनने की।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: रेडियो तो हमारा कहता है ना कि एक साथी ही है, जन्म से ही पैदा हुआ तब से रेडियो से जुड़ा है हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो सतगुरुवार है, बाबा का वार है, तो गाना भी हम सुन लेते हैं। अच्छा बाबा का,
0: बिल्कुल
1: हमने धर्मपत्नी का तो प्यार पा लिया, लेकिन भगवान का ही प्यार पाना बिल्कुल जरूरी है। तो ऐसा एक गाना है कि पाकर प्यार प्रभु का हम भी

0: पाटर प्यार प्रभु का, हम भी प्यारे हो गए, हे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए, पाटर प्यार प्रभु का, हम भी प्यारे हो गए। यही गाना है सर
1: जी, जी जी।
0: और हमारे ब्रिलाल जी है, हमारा बुरा राम जी को भी हमारा राम राम सुबहता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जय राम जी है, कंचन भाई है, हमारा जागीरदार भाई है कोटड़ा से ओल्डी वर्ल्ड।
1: हाँ, वो पसंद
0: की। सभी को आपकी दी की बहुत शुभकामनाएं, सर खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, आपकी तरह हर दम
1: जी जी मुस्कुराते,
0: जैसे हमारे ब्रिलाल आप के लिए मुस्कुराते हैं, तो ऐसा ही
1: ओम शांति, ओम शांति सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और ये थे सुरेश जी जोटाना से, जो आप सभी को याद कर रहे थे, और आप सभी जो हमारे लिसनर्स हैं बड़े प्यारे हैं, और आप पर गुरु की बृहस्पति का जो है छाया बना रहे हैं, और आप हर दम सफलता पाए ऐसे शुभ आशा के साथ परमात्म प्यार में खो जाए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। चलिए, बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना, आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो आइए, आज सद्गुरुवार का दिन है और हमारे मित्र गुरीलाल जी ने भी आप सभी को याद किया। जब गीत चल रहा था तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने आप सभी को याद भी किया है। तो आइए 9 जुलाई की बात करें तो राष्ट्रीय शके 1948, शके 18, गते 25 आषाढ़ गुरुवार आज है, विक्रम संवत 2083 आषाढ़ कृष्ण पक्ष, नवमी दशमी गुरुवार अश्विनी आज है। इसके साथ ही चलिए गुरुदत्त जी का जन्मदिन है, इनके बारे में बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाते हैं। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कहानियों के सफर में। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश, लेकर आया हूं एक नई कहानी आपके लिए। साथियों, आज की कहानी है एक ऐसे ससुर की जिसकी बहू ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन उस ससुर ने बदले में कुछ ऐसा काम किया कि पूरे मोहल्ले वालों की आंखें नम हो गई। ये कहानी है ससुर जी की छोटी सी कोशिश। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, लखनऊ में रहने वाले राम स्वरूप जी 70 साल के थे। उनकी पत्नी का देहांत 10 साल पहले हो गया था। उनका एक ही बेटा था अशोक, जो मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अशोक की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन राम स्वरूप जी अकेले लखनऊ में रहते थे। बहू नीतू को शहर से बाहर रहना पसंद नहीं था, इसलिए वह अशोक को मना करती थी कि पापा को अपने साथ मत रखो। राम स्वरूप जी कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। वो रोज़ सुबह उठते, मंदिर जाते, पत्नी की तस्वीर से बातें करते और पूरे दिन अकेले बैठे रहते। बेटे से महीनों में एक बार फ़ोन आता, पापा कैसे हो, और वो कहते हैं ठीक हूँ बेटा, तुम अपना ध्यान रखो। तो इतनी सी बातें हो जाती थी, क्योंकि राम स्वरूप जी लखनऊ में बड़े घर में अकेले रहते थे, गाँव का जैसा बना घर होता है, और यहाँ पर नीतू और अशोक शहर में रहते थे। और अशोक का मन हमेशा रहता था कि पिताजी को यहाँ बुला ले, अकेले वहाँ पर पिताजी बोर होते होंगे या कैसे जीते होंगे। लेकिन नीतू कभी भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो पिताजी को बुलाने में असमर्थ थे। और एक दिन अशोक और नीतू छुट्टियों में लखनऊ यानी अपने गांव आने का मन बना लिया और वो आए। तो राम स्वरूप जी बहुत खुश थे कि मेरे बच्चे मेरे पास आ गए। उन्होंने बाजार से नीतू के लिए नई साड़ी खरीदी, अशोक के लिए मिठाई और पूरे 3 दिनों का खाना खुद बनाया। तीसरे दिन हुआ ऐसे कि रात को राम स्वरूप जी ने गलती से नीतू जी का महंगा मेकअप किट गलती से उनके हाथ लगने से गिर गया। वो बाथरूम साफ कर रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि वो किट यहाँ रखी है। किट को हाथ लगते ही वो गिर गया, टूट गया। नीतू ने आवाज़ सुनी और कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि उसका मेकअप किट स्पर्श पर टूटा पड़ा है। नीतू गुस्से से लाल हो गई, आग बबूला हो गई। उसने चीख कर कहा, मैं इस घर में नहीं रह सकती, आपने मेरा 20,000 का किट तोड़ दिया। आपको क्या पता कि ये कितना कीमती है? आप तो बूढ़े हो गए हो, आपसे कुछ नहीं होता, आपको तो अब ओल्ड एज होम में रहना चाहिए। अशोक ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन नीतू ने उसे रोक दिया, कहा तुम चुप रहो, या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगी। राम स्वरूप जी का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो अपने कमरे में गए। अपने कमरे में अपने बैग लेकर कपड़ों को पैक किया और बिना किसी को बताए रात 2 बजे घर से निकल गए। दूसरे दिन सुबह जब अशोक उठा तो उसने पिताजी से मिलने के लिए उनके कमरे में गए तो देखा पापा तो कमरे में नहीं है। नीतू से पूछा, पापा कहाँ है? नीतू ने कहा, कहीं चले गए होंगे, अरे इतने बड़े आदमी हैं, आ जाएंगे। लेकिन अशोक को कुछ अजीब सा लगा, कुछ हुआ है। राम स्वरूप जी मंदिर में रहने लगे, गांव के बड़े मंदिर में, और वो रोज़ सुबह मंदिर की सफाई करते, प्रसाद बांटते और भिक्षा मांगते। किसी को नहीं पता था कि ये बूढ़ा आदमी किसी बड़े शहर का संपन्न व्यक्ति था। वो किसी से कुछ नहीं कहते थे। एक दिन मंदिर में एक छोटी सी बच्ची आई। उसने राम स्वरूप जी को देखा और पूछा, दादाजी मैं देख रही हूँ 4-5 दिनों से आप अकेली ही हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं, आप अकेले क्यों रहते हैं?
राम स्वरूप जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी जिंदगी होती है, मैं उनका बोझ नहीं बनना चाहता। वो छोटी बच्ची उसी मोहल्ले में रहती थी और नेहा वो रोज मंदिर आती, राम स्वरूप जी से बातें करती, उनके लिए पानी लाती, उनको खाना खिलाती। उसे अपने दादा दादी से प्यार था। तो एक दिन नेहा ने अपनी माँ से पूछा, माँ दादाजी अकेले क्यों रहते हैं, क्यों उनका कोई नहीं है। नेहा की माँ सुमित्रा जी जो एक एनजीओ चलाती थी और मोहल्ले में एक समाज सेवी के रूप में उनका नाम भी था, उन्होंने सुना था कि राम स्वरूप जी बहू के साथ किसी झगड़े के बाद घर से निकल आए थे और उन्होंने राम स्वरूप जी से बात करने का फैसला किया। आखिरकार नेहा की माँ सुमित्रा राम स्वरूप जी से बात की तो उन्होंने सब कुछ बता दिया और मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं बोझ नहीं बनना चाहता था, बेटा मेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकता, वो अपनी पत्नी के बीच फंसा हुआ है, मैं चुपचाप रहता हूँ तो अच्छा है। सुमित्रा जी को सारी बात समझ में आ गई। सुमित्रा जी ने सोचा कि कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, हमें राम स्वरूप जी के बहू को समझाना होगा और बूढ़े माता पिता का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और ये हर बहू की जिम्मेवारी है। और उन्होंने सबसे राय सलाह की और सुमित्रा जी ने बोला कि मैं एक बार नीतू को फ़ोन करके पूछती हूँ। तो सभी ने हाँ भर दी। सुमित्रा जी ने उसी समय नीतू को कॉल किया और कहा, बेटी हमें तुमसे बात करनी है, क्या तुम लखनऊ आ सकती हो। नीतू को पता था कि उसकी गलती बड़ी थी। उसने अपने पति अशोक से कहा, मैंने पापा को गाली दी, मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। अशोक ने कहा, मुझे नहीं पता पापा कहाँ है, लेकिन सुमित्रा जी ने उन्हें बताया कि राम स्वरूप जी मंदिर में रहते हैं। अब नीतू और अशोक अगले ही दिन लखनऊ आए। सुमित्रा जी और पूरा मोहल्ला उनके साथ मंदिर पहुंचा। राम स्वरूप जी मंदिर की सफाई कर रहे थे। नीतू उनके पास गई, उनके पैरों में गिरी और रोने लगी। तो पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत थी, आप मेरे ससुर हो, आप मेरे पिता समान हो, मैंने आपको ठेस पहुंचाई। राम स्वरूप जी ने धीरे से नीतू को उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैंने तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी, मुझे पता है तू अच्छी है, बस गुस्से में कोई भी गलती कर देता है, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि तुम अपने घर में खुश रहो, मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। नीतू ने कहा, नहीं पापा आप बोझ नहीं हो, आप हमारी जिम्मेवारी हो, आप हमारे घर आओ, हम आपका ख्याल रखेंगे। राम स्वरूप जी ने कहा, बेटा तूने आज जो किया है वो बहुत बड़ी बात है, माफ़ी मांगने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, मुझे तुझ पर गर्व है। राम स्वरूप जी वापस अपने घर आए, पूरे मोहल्ले ने उनका स्वागत किया। नीतू ने उनके लिए खाना बनाया, उन्हें चाय दी और उनके पैरों को दबाया। राम स्वरूप जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। एक दिन नीतू ने राम स्वरूप जी से पूछा, पापा आपने मुझसे नाराज होकर भी मुझे माफ़ क्यों कर दिया। राम स्वरूप जी ने कहा, बेटा परिवार में गलतियां होती हैं लेकिन प्यार ख़त्म नहीं होता, तू मेरी बहू है, मेरी बेटी है, माँ बाप बच्चों को कभी सजा नहीं देते, वो तो बस प्यार करते हैं। साथियों ये कहानी हर उस बहू बेटी के लिए है जो अपने सास ससुर को बोझ समझती है, और ये कहानी हर उस सास ससुर के लिए है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए चुप रहता है। तो याद रखिए, ससुर सास भी माँ बाप होते हैं, उन्हें भी प्यार चाहिए। बुजुर्ग बोझ नहीं होते, वो विरासत होते हैं अनुभव की, प्यार की। अगर आपने किसी बुजुर्ग के साथ गलती की है तो आज माफ़ी मांगे, हो सकता है कल बहुत देर हो जाए। जब तक माँ बाप हैं इंसान अनाथ नहीं होता, जब तक सास ससुर हैं घर खाली नहीं होता। साथियों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आज उन्हें गले लगाएं और उन्हें कहें, आप हमारी जिम्मेवारी हो, बोझ नहीं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, कहानी जो दिशा दे जाए, कहानी जो दिल को छू जाए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM, चली कबीर भजन आप सुन रहे थे। बड़ा ही प्यारा सा भजन, आशा करूंगा आप सभी को ये भजन भी दिल के करीब बन गया होगा आपका, कि हमें हर मुश्किल में प्रभु का शुक्राना करना है तो मंजिल हमारी आसान हो जाएगी। जो मिला है वही बहुत है, यही जीवन अनमोल है, बस इससे हर पल धन्यवाद कहे, हर पल प्रभु का धन्यवाद करे, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची शक्ति है। आइए बात करते हैं, अब गुरुदत्त जी का जन्मदिन है आज 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में इनका जन्म हुआ। भारतीय सिनेमा में फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में इन्होंने काम किया। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, साथ ही में उनकी ऐतिहासिक और साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखाई देती है। जैसे कि वे एक अच्छे नर्तक भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने फिल्मी जीवन का आगाज किया था प्रभात फिल्म में एक कोरियोग्राफर के हैसियत से। अभिनय कभी उनकी पहली पसंद नहीं रही, मगर उनके सरल, संवेदनशील और नैसर्गिक अभिनय का लोहा सभी मानते थे। और उन्होंने प्यासा के लिए पहले दिलीप कुमार का चयन किया था। वे एक रचनात्मक लेखक भी थे और उन्होंने पहले इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में कहानियां भी लिखना शुरू किया था। तो आइए बात करते हैं ऐसे विशेष कलाकार के बारे में, गुरुदत्त जी की कहानी आप सबके लिए। उसके पहले हाँ, ये एक और सुंदर गीत आपको सुनाते हैं, और गुरुवार का दिन है तो सही वाले शिरडी बाबा को भी याद करते हैं। सुनते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM। 9:02 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। श्री मित्रों, आप सभी पर साही का जो है आशीष भी बना रहे हैं ऐसी शुभ आशा के साथ। चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ दिल्ली और सुनते

0: हैं आज का समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
3: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
5: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर

0: पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्ते
2: जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में आशा मम सब हार्दिक स्मरण कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए तब से मना जिंदगी को एक नयो दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूँगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।
3: बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, पीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, हाँ पीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, रसगुल्ला ले बोले लूचक मुंह में रखा गप से, रसगुल्ला ले बोले लूचक मुंह में रखा गप से, नरम नरम था बड़ा गरम था जीप जल गई लब से, नरम नरम था बड़ा गरम था जीप जल गई लब से, बंदर मामा फेंक पजामा आंसू भर भर रोए, हाँ बंदर मामा फेंक पजामा आंसू भर भर रोए, घर पर आए थे झल्लाए बिस्तर पर जसोए, हाँ बिस्तर पर जसोए, देखो बिस्तर पर

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। जी हाँ साथियों, 9:18 हो रहे हैं और अभी आप दिल्ली से समाचार सुन रहे थे। समाचारों के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और हम लोग बात कर रहे थे गुरुदत्त के बारे में, जिनका जन्मदिन है। तो 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ। उनकी माँ वासंती पादुकोण के अनुसार बचपन से ही गुरुदत्त बहुत नटखट और जिद्दी था। प्रश्न पूछ रहा उसका स्वभाव था। कभी कभी उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए वे पगला सी जाते थे। किसी की बात नहीं मानता था और अपने दिल में अगर ठीक लगा तो वो मानता था। और गुस्से वाला बहुत था, मन में आया तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये थी कुछ खास बातें बचपन की गुरुदत्त की, उनकी माँ के द्वारा बताई गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताने में मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमारे साथ विशेष जालंधर पंजाब से बीके परमिंदर जी आए हुए हैं। उनसे बातें करेंगे और उनका जो आध्यात्मिक अनुभव है, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, वो हम लोग सुनने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम
0: शांति, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया जी।
0: जी जी जी, बी के परमिंदर जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे सभी श्रोताओं को ज़रूर बताइए कि आपका ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ, क्या स्टोरी बनी और उसके बाद क्या अनुभव हुआ जो आप इस मार्ग पे आगे चलते हैं।
1: भाई साहब, पहले तो ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: मैं सन 2000 में डिप्रेशन में आ गया था कुछ परिस्थितियों के कारण।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो 2000 से लेके 2015 तक मैं डिप्रेशन में रहा। 15 साल में से 8 साल तो मैं घर पे ही रहा।
0: अच्छा।
1: सुबह का खाना खाया सो गए।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: दोपहर का खाया सो गए, रात का खाया सो गए। तो ऐसे मेरी जिंदगी बीती। फिर इधर अस्पताल में जाओ, उधर जाओ। तो एक बार मेरे तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई 2015 में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो मैंने बेटे को बोला कि आज हमने रात हॉस्पिटल जाना है CMC। तो CMC कहता बेटा, कहता पापा अगर तो रात निकलती है तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटे का रास्ता हम निकल जाएंगे। तो मैंने पैकिंग कर ली, एडमिट होना था। तो शनिवार का दिन था
0: जी जी।
1: तो हम शुक्रवार का दिन था तो हम रात को तो सो गए, तो मेरी रात निकल गई। तो फिर दिन को मैंने उसको कहा कि चलो अब बच्चा है, तैयार होते थोड़ा टाइम लग गया। जब हम डॉक्टर पास एंटर हुए तो डॉक्टर साहब बाहर आ गए। तो कहते आज तो मैं एडमिट कर नहीं पाऊंगा, नहीं तो जूनियर डॉक्टर हैं उनसे हो जाओ। तो डिप्रेशन वाले की अपनी मर्जी होती है। मैंने कहा जी मैं जूनियर से तो एडमिट नहीं होऊंगा, तो मैं तो आपसे ही होना। मैंने कहते फिर सोमवार को आ जाना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो लुधियाना में BRS नगर, भाई रणधीर सिंह नगर, मेरी सिस्टर रहते बड़े।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मैं तो सारा परिवार 4 मेंबर हम उनके घर चले गए। उनके घर गए तो मैं तो दोपहर का खाना खाया सो गया, वो बते बुते करते रहे। तो जब मैं उठा तो चाय आए पी, तो मेरी बहन कहती मेरे को बिट्टू दवाइयाँ ही खाई जानी सारी उम्र। मैंने कहा दीदी आप बता दो। कहते यहाँ ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर है, वहाँ पर मैंने बहुत बहुत ठीक होते देखे हैं।
0: जी जी जी।
1: मैं कहा ठीक है फिर मैं तो ब्रह्मा कुमारियों के चला जाऊँगा।
0: ठीक होने से मतलब है?
1: हाँ ठीक होने से मतलब, मेरा इधर राजस्थान में बिजनेस था।
0: अच्छा अच्छा।
1: गुजरात में और राजस्थान में, तो मैं तो पहले ही आना चाहता था यहाँ। तो मैं सोचता था कि 40-50 महीने होगी, पता नहीं मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे। ऐसे पूछता रहता था व्यापारियों को। तो एक बार शिवानी सिस्टर का मैंने देखा आस्था चैनल पे, 1 मिनट का प्रोग्राम
0: जी।
1: तो शिवानी सिस्टर कह रहे थे कि उन्होंने आपको जख्म दिया, आपने खरोच खरोच के नसूर बना दिया। तो वो साड़ी वाली बहन मेरे को बहुत अच्छी लगती थी
0: जी जी जी।
1: तो उधर मेरे दीदी मेरे को फिर ले गए वहाँ सेंटर में, फ़ोन पे पहले बात कर ली। वो तो आपको पता ही है भाई, सब लेने के लिए पहले बैठे होते हैं। तो वहाँ गुरबख्श माता जी थे, उम्र उनकी होगी 75-80 साल की।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो जब हम गए तो मेरे को वहाँ वाइब्रेशन बहुत अच्छे मिले। मैंने ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो की तरफ देखा। तो मैंने सोचा कि आ तो सही जगह पर गए हैं। दूसरे दिन मेरा लेसन हो गया, तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन ग्लोबल हॉस्पिटल से दो बहनें आई, हरियाणे की बहनें थी वो। वो साड़ी वाली बहनें देख के मैं खुश हो गया। मैंने कहा इन्हीं को मिलना था मैंने। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने कहा मैंने इनको मिलना है। डिप्रेशन में तो था ही मैं।
0: जी जी जी जी।
1: तो दीदी कहते कि ये तो मिलने के लिए आए इतनी दूर से, तो आप भी चाय पियो, उनसे बैठ के बातचीत करो। चाय आ गई, मैंने पी। तो दीदी कहते भाई सब कब से चल रहे हो ज्ञान में? मैंने कहा दीदी अभी तो तीन दिन हुए। उन्होंने प्रसाद उठाया, मेरे को दिया, तो वरदान दिया विजय भव।
0: अरे वाह।
1: अच्छा वरदान दिया, मेरे को तो पता ही नहीं वरदान क्या होते हैं। मैं मार्केट में चला गया, परिवार वाले जलंधर चले गए वापस। ये इतवार का दिन था, तो मैं इजी डे में गया थोड़ा सामान खरीदने के लिए। तो जब मैं खरीद के बाहर निकला, तो मैं एक बात भाई साहब आपको बता दूं
0: जी जी,
1: कि 30 साल मैंने ड्रिंक की है, 45 साल मैंने नॉन वेज खाया है। पांच काल साल के थे तो मेरे को इतना होश था कि ये हमें घर वाले खिलाते हैं, वही फिर चलता रहा ऐसे ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इजी डे से जैसे मैं बाहर निकला, तो नॉन वेज की दुकान थी सामने। उस दिन मैंने खाना था। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि 10-15 सेकंड कि तेरे को तो वरदान मिला है विजय भव का। विजय भव का मतलब तो ये है कि आपकी सदा जीत ही होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भाई साहब आज 11 साल हो गए हैं।
0: क्या बात है।
1: मैंने वहीं खड़े छोड़ दिया।
0: बहुत बढ़िया।
1: 7 days कोर्स किया, फिर जलंधर सेंटर आ गए। तो 3 घंटे सुबह तो 3 घंटे शाम को मैं सेंटर पे रहता था। मेरे घर वाले भी खुश हो गए कि ये क्या प्राप्ति होगी इनको। तो हमारे जो दीदी हैं कृष्णा दीदी, शरीर छोड़ दिया अब उन्होंने, ये बैच उन्होंने 3 महीने में लगा दिया मेरे को।
0: अरे वाह।
1: मैं कहा दीदी आप तो 1 साल के बाद बैच लगाते हो, तो आपने 3 महीने में लगा दिया। कहते भाई साहब आप 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को यहाँ रहते हो, 3 महीने हो गए अब आप कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए मैं आपको बैच लगा रही हूँ। वो बैच मैंने लेके रख लिया फिर। तो शिवरात्रि वाले दिन बड़े दीदी संदली पर जब बैठे
0: जी जी,
1: तो मैंने उनको बैच दिया, तो उन्होंने मेरे लगा दिया।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: तो डिप्रेशन भी ठीक हो गया। तो ये अपनी कहानी है। तो बाकी इधर क्या कहते हैं कि योग करो, परमात्मा को याद करो। तो भाई साहब तो ऐसे तो गुरु नानक देव जी ने भी सुल्तानपुर लोधी में 14 साल कुछ महीने कुछ दिन तप किया है। वहाँ मेडिटेशन हॉल लिखा हुआ है, छोटा सा रूम है नीचे गुरुद्वारा साहब के। तो तप स्थान लिखा है वहाँ पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मैंने कहा तप तो गुरु नानक देव जी को भी जरूरत थी, परमात्मा की। तो हमें तो तप करने के लिए बोलते हैं, और तो कोई है ही नहीं बात यहाँ।
0: जी जी जी। अच्छा बी के परमिंदर जी, यहाँ पर कोई हमारे कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार।
2: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओम शांति सुरेश जी।
0: ओम शांति सुरेश जी, बोलिए बोलिए।
2: बस अच्छे हैं, और हमारे जो भाई साहब आए हैं जर्नल से, तो हमारे तरफ से उसको भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है।
0: जी धन्यवाद।
2: और जी सर की आज जो बता रहे हैं बाबा की बात है, बिल्कुल सही है कि जो कोई एक बार वहाँ जो ब्रह्मा कुमारी में जाता है, तो उसको विचारों का भी परिवर्तन हो जाता है, और
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: समझ के लिए एक नई सोच ऊर्जा करते हैं सर। तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं हमारे परविंदर जी। तो हमारे तरफ से साहब आपको नमस्ते सर। हेलो
0: बोलिए। ओम शांति।
1: ओम शांति भाई साहब।
2: शांति सर कैसे हो?
1: बस बहुत बढ़िया जी, एकदम मजे में है सब। सब मजे में है, बस
2: बस हम भी मजे में हैं, और आप जो बातें बता रहे हैं बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं सर। तो आप आए तो हमको भी खुशी रहते हैं कि हमारे जो रमेश भाई हैं, जो अक्सर हमारे कोई भी मेहमान आते हैं तो हमारे से मुलाकात करवाए देते हैं, और हमको भी खुशी रहते हैं कि जो आपका अनुभव है आपकी जो बातें हैं सर हमको बहुत लुभावनी करती है, और वो बातें जो हमारी दिल में सो जाती है, और हम भी कई 5-7 साल से जानने भी हैं, और बाबा के घर जाते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, हर रोज बाबा के पाठशाला में हम जाते हैं, तो एक नवीन हर रोज नया नया हमारा उनको विचारों का परिवर्तन होता है सर। जैसे आप बता रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें
0: जी,
2: बता रहे
0: जी।
2: तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाबा आपको खुश रखे और हमने इसके लिए बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे हैं सर, ऐसी भी हम दुआ करते हैं बाबा से।
0: जी जी जी जी
2: नमस्ते सर।
0: नमस्ते श्रीजी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने अनुभव और अपने अनुभव के साथ साथ आपने परविंदर जी को सुनकर अच्छा लगा, आपको भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आज जैसे कि मैंने बताया गुरुदत्त जी का जन्मदिन है, तो उनकी जीवन कहानी में भी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए, और फिल्में उन्होंने जो बनाई थी उसमें बहुत सुंदर संगीत उनका रहता था और बहुत ही सिलेक्टेड सॉन्ग्स होते थे जो सबको पसंद आते थे। तो यहाँ पर एक और बहुत ही प्यारा सा गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, हेमंत कुमार और साथियों का गाया हुआ, गुरुदत्त पर पिक्चराइज किया गया प्यासा फिल्म का ये सुरीला गीत आपके नाम, अभी सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। प्यासा फिल्म का खूबसूरत गीत आपने सुना। आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। हेमंत कुमार की खूबसूरत आवाज़ में साहिल दैनवी साहब का लिखा हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एस डी बर्मन का कंपोजिशन। जी हाँ, हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: मदन भाई, स्वागत है आपका।
1: अच्छा चल रहा है रेडियो, और मगर मौसम के मिजाज थोड़े गिर भी रहे हैं। चारों तरफ बादल छाए हैं और धूप आने से हमारा रेडियो बचता है, और अभी कम ज्यादा आपकी आवाज आती है, मगर जो फोन करके उनकी आवाज जरा कम आती है।
0: ओके ओके, जी जी
1: जी। और बस आपको नमस्कार कर रहे हैं, और हमारे कमलेश बहन है तो भी नमस्कार, नहीं है तो भी नमस्कार, कहीं बैठे हैं तो भी। और हमारे सभी रेडियो मधुबन को, बहनों को और हमारे सभी भाइयों को नमस्कार करते हैं। आज सतगुरुवार है, बहुत प्यारा सा वार है, जैसे हमारा तो अजय हर चौदशी है। और ये गाना जो सुना है, कल रात को भी मैंने सुना था, बड़ा अच्छा लगा। हेमंत कुमार की आवाज है और बहुत समझने लायक का गाना है, और हम तो बस ऐसे ही समझते हैं, और फिर ज्यादा भी वो चिंता नहीं करने का, भूल जाने का। ज्यादा वो फिर करेंगे तो फिर काम क्या करेंगे। तो नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन को।
0: नमस्कार, नमस्कार।
1: जैसे हमने सोचा था कि नहीं, ये बरसात आती है
0: बिल्कुल,
1: तो किसके बुलावन से आती है? इसका भी जवाब है हमारे पास।
0: बिल्कुल,
1: हम जब गाय चराते थे ना, गाय इस टाइम में मौसम बहुत अच्छे रहते थे, उस टाइम में हमने कभी जिंदगी के अंदर जरा भी टेंशन नहीं था। अच्छे कपड़े भी थे और साबुन भी धोने के नहीं थे, वो पानी के अंदर जो खार आता था उससे धोते थे, और पानी में फूल उगते थे सफेद सफेद और उनके पत्ते, और हम बैठे रहते थे तालाब के किनारे पे, और हरी चादर हाँ रखी थी, बारिश का मौसम था ना, बस चारों तरफ से गायें चढ़ती थी और हम बैठे रहते थे। सांप निकलते थे तो कोई, बहुत तरह तरह के सांप निकलते थे, और फिर कभी बारिश जैसे आती तो पपैया बोलता था प्याऊ प्याऊ, तो हम बोलते थे, बुजुर्ग लोग बोलते भैया पपैया बोल रहा है बरसात आएगी, तो बोले सही बात है आएगी भैया, तैयारियां बरसात की। तो हम भी सुनते थे, तो दूसरे बुजुर्ग क्या बोलते थे कि पीऊ पीऊ क्या करे पीऊ हमारे साथ, पीऊ पीऊ क्या करे पीऊ हमारे साथ। तो वो पपैया जो होता ना, वो बरसात का पानी पीता है, वो जब बहुत देर होती प्यास लगती ना, वो दरिया किनारे या तालाब के पास जाके ऊपर उड़ता है, जैसे वो हेलीकॉप्टर नहीं छोड़ जाता इस तरह, और फिर चपट मार के पानी पीता है। तो ऐसे और भी जानवर है, और हमने हमारी आंखों से देखे हैं,
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: भगवान ने हमको बताया है, और हम भगवान का शुक्रिया करते हैं, और उन बुजुर्गों का शुक्रिया करते हैं जो भगवान उन्हें समझदारी देते हैं। वो समझदारी जब मिलती है, जब कठिनाइयों का सामना करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं।
0: जी जी जी जी, ठीक है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बारिश कब आती है तो पीयू पीयू जब पक्षी बोलना शुरू कर देता है तब बारिश का आह्वान करके बारिश को बुलाती, ये आपका कहना था। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हम लोग गुरुदत्त जी के बारे में बातें कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने बेंगलोर में अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर शिक्षा प्राप्त करने के आगे के लिए वो कलकत्ता पहुँचे, और कलकत्ता में रहकर उन्होंने आगे की पढ़ाई की। फिर गुरुदत्त ने अल्मोड़ा स्थित उदय शंकर की नृत्य एकेडमी में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद कलकत्ता में टेलीफोन ऑपरेटर का काम पहला इन्होंने शुरू किया। बाद में वो पूना चले गए और वहाँ पर प्रभात स्टूडियो से जुड़े, जहाँ उन्होंने पहले अभिनेता और फिर नृत्य निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी पहली फीचर फिल्म बाजी थी 1951 में, देवानंद की नव निकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई जाल, फिर तीसरी फिल्म, इस तरह से उनकी फिल्मों की कहानी फिर शुरू हो गई। हालांकि अपने जीवन में उन्होंने प्रतिभा संपन्न पेशेवर जीवन में कई शैलियों का प्रयोग किया, लेकिन उनकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ रूप भावुकतापूर्ण फिल्मों में ही दिखाई दिया। तो ये थी कुछ खास बातें शुरुआत के दिनों की गुरुदत्त की। आइए फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा बीके परविंदर जी से, जिन्होंने अपनी जीवन कहानी कैसे जो है डिप्रेशन पेशेंट होने के बाद 15 साल तक वो डिप्रेशन को झेले, उसके बाद उनके पास एक नई रोशनी आई जहाँ ब्रह्मा कुमारी से उनका संपर्क हुआ और उन्होंने 3-4 दिन जैसे ही उस ज्ञान का आनंद उठाया उसके बाद उनके जीवन में डिप्रेशन धीरे धीरे कम होने लगा और प्रभु आनंद की मस्ती जो है उनके जीवन में छाने लगी। आप यहाँ पर आता है बात कि परविंदर जी, जैसे आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े तो क्या आपके समाज वाले, सिख समाज वाले, उनको नहीं लग रहा था कि ये कुछ और नए चीज़ करने लग गया, इनका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया?
2: नहीं, ऐसे नहीं था। जैसे मेरा डिप्रेशन ठीक हो रहा था ना,
0: जी जी जी,
2: तो मैं एक साइड पे लग गया, जैसे 5-6 घंटे सेंटर पे रहना।
0: जी जी जी।
2: तो मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा
0: ओके
2: कि इन्होंने विस्की भी छोड़ दी, नॉन वेज भी छोड़ दिया।
0: अच्छा, पूरा सात्विक जो जीवन आपका बनने लगा उससे लोग, परिवार को अच्छा लगा।
2: किचन उन्होंने धो दी। अरे

0: हाँ, तो ऐसे मेरे कोई है नहीं था मेरे खिलाफ।
1: जी जी जी।
0: तो परिवार वाले भी साथ थे, ससुराल वाले भी साथ थे, भाई बहन भी साथ थे।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने शुक्र किया कि ये ठीक हो गया है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आज तक मैं छोड़ता नहीं तो आज मेरी 9वीं-10वीं बरसी होती।
1: हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, नमस्कार
1: जी।
2: तारीफ हम चाहेंगे, इनका नाम क्या है?
1: बीके परविंदर जी, जलंधर से, पंजाब से आए हुए हैं।
2: परमेश्वर जी, हमारे भी एक परमेश्वर जी है। जब हम नौकरी जाते हैं तो कूटर लेके आते हैं कि भाई बैठ जाओ मदन लाल जी, आप मैं चौकड़ी तक छोड़ देता। परमेश्वर जी को हमारे तरफ से रेडियो मधुबन में और हमारे घर आंगन के इनकी आवाज को नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं हम। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे मोती, मेरे देश की धरती। ये गाना
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जरूर जरूर। ओम शांति। तो जिस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आया उसे देखकर आपको, आपका परिवार का पूरा सहयोग आपको
0: मिला? परिवार का सहयोग भी मिला है। तो एक ये हमारा जो ब्रह्म कुमारी की गुरबाणी है ना,
1: जी जी,
0: जो बाणी बाणियां आती हैं जो ऊपर से,
1: बिल्कुल
0: वो गुरु ग्रंथ साहब से बहुत मिलती हैं।
1: हो
0: जैसे प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ते आए, प्रथम भगवती है भगवान भगवती। तो गुरु ग्रंथ साहब से मिलने से हम गुरु ग्रंथ साहब भी सुनते रहे हैं, पढ़े तो नहीं
1: जी जी जी,
0: लेकिन वो जो बातें एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं
1: जी जी जी,
0: जैसे उनका नाम लिया गया ब्रह्मा देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः, शंकर देवता है नमः, शिव परमात्मा है नमः। तो फिर हमने ये सोचा कि गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि एक ओंकार, तो क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड इज वन,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एंड गॉड इज लाइट। तो इब्राहिम ने भी कहा है नूरे इलाही। तो भाई साहब एक हम लेवल पे ये जो भक्ति कर रहे हैं
1: जी जी जी,
0: इसके ऊपर भी कुछ है।
1: तो
0: वो हमें समझ लगती गई, हम पक्के होते रहे। वो लेवल क्या है कि शिव पिता परमात्मा, जब हम हमी को कष्ट आता है ना, पता लगता है कि फोन आ गया कि पापा को हार्ट अटैक हो गया है, जब पेपर आते हैं तो पढ़ते हैं हम, तो फिर ऊपर वाले को ये अरदास करते हैं कि हमें पास करा दो, ये हमारे पापा ठीक रहे हैं। ऐसे ऐसे ध्यान ऊपर ही जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अभी किसी से पूछ लो वो यही कहेगा कि परमात्मा ऊपर है
1: जी जी,
0: लेकिन क्लैरिटी नहीं है लोगों को। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने भाई बहनों से कि जो जो सुन रहे हैं एक बार ब्रह्मा कुमारीज के जो उनके क्लोज सेंटर हैं तो वहां पर आए, 7 डेज का कोर्स करें तो वहां उनको ज्ञान हो जाएगा। फिर आना है तो आए, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है।
1: बिल्कुल, वो फोर्स तो कहीं भी नहीं है।
0: हाँ, फोर्स कोई
1: आप
0: नहीं है।
1: अपना जो है आके सुने और समझे, समझने के बाद फिर आपके ऊपर रहता है कि आप आगे बढ़ते हैं या फिर आप अपने जीवन में रहते हैं।
0: जो सेंटर है वो 407 दर्श नगर जलंधर में, हमारे राज दीदी थे, कृष्णा दीदी थे, उन्होंने पालना दी है मेरे को।
1: अरे वाह।
0: तो बहुत ही, जैसे कृष्णा दीदी तो एक माँ के रूप में मेरे को दिखती थी
1: जी जी जी,
0: तो उन्होंने बहुत साथ दिया है, छोटी बहनों ने भी साथ दिया है, तो मैं इस मुकाम पे पहुंचा
1: हूं। ओम शांति। बीके परविंदर जी, बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और बहुत ही अच्छा लगा जब डिप्रेशन से निकलकर आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और आपका डिप्रेशन खत्म हो गया, आपके जीवन में अमूल परिवर्तन आ गया, आपने नॉन वेज और जो भी बुराइयाँ थी उनको सब धीरे धीरे करके आपने त्याग दे कर दिया और एक सात्विक जीवन जीने लगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे। तो परिवार और समाज के लोगों ने आपको सहयोग दिया क्योंकि उनको लगा कि ये बंदा तो ठीक हो रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है, तो ये चीज़ जो है उनको बहुत पसंद आई और इस वजह से आपको सारा जो है सहयोग प्राप्त हुआ और परमात्मा का प्यार भी मिला और परिवार का प्यार भी मिल रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति गीत हमारे मदन जी ने याद किया है, तो ये गाना आपके लिए भी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:49 हो रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ ये खूबसूरत गीत देशभक्ति वाला, उपकार फिल्म का, जो 1967 में रिलीज हुआ था। गुलशन बावरा साहब का लिखा ये गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सराबोर गीत आपने अभी सुना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बीके परविंदर जी हैं। एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूंगा, परविंदर जी आप सबको क्या देना चाहेंगे?
1: ओम शांति भाई।
0: ओम शांति, ओम शांति
1: भाई जी। ऐसे है कि हमारे यहाँ बनारसी भाई जी हैं।
0: जी जी जी।
1: तो वो 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं कि 10 करोड़ लोग नशा मुक्त हो जाए। तो हमारे पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। तो जब हम वहाँ देखते हैं, कोई यूट्यूब में देखते हैं, कभी कैसे कभी अखबार में आ जाता है कि इतने लड़के वहाँ मर गए, इतनी लड़कियाँ भी नशा बहुत करती हैं आजकल, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ करती हैं। हाँ, तो वो हम चाहते हैं कि पंजाब में भी ये नशा मुक्ति अभियान चले और पंजाब भी नशा मुक्त हो। तो ये हमारे विचार हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब के सभी जो भाई बहने हमें सुन रहे हैं और बीके परविंदर जी की भावना है कि पंजाब जो है गुरुओं का देश रहा और किसी भी गुरु ने हमको ये बताया नहीं कि भाई नशा करो, सभी ने नशा छुड़ाने और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो हम अगर अपने जीवन में नशा मुक्त रहते हैं तो हम अपने गुरुओं का बहुत दिल से सत्कार सम्मान करते हैं, यही उनकी सम्मान है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो भी हमारे भाई बहनें सुन रहे हैं और अगर आप नशा के लत में फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि छोड़ना है, मुश्किल हो रहा है, तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़कर अपने लिए सहयोग ले सकते हैं। उनके मार्गदर्शन में आप चलेंगे तो आप नशा मुक्त भी हो जाएंगे और एक बहुत ही सुंदर जीवन आप प्राप्त करेंगे। जिस तरह से बीके परविंदर जी ने भी अपने जीवन में 15 साल का डिप्रेशन एक हफ्ते में ख़त्म हो गया, समझिए कितना बड़ा मैजिक हुआ, चमत्कार नहीं तो क्या है, है ना। अगर आप 5-6 साल से भी नशा कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक हफ्ते में एक मैजिक होगा, एक चमत्कार होगा आपके जीवन में, जिसे आप हर बार यानी कई बार आपने छोड़ने की कोशिश की होंगी, लेकिन अब 7 दिन में बिल्कुल गारंटी के साथ आप जो है नशा मुक्त हो जाएंगे। बस सिर्फ जो बताया जा रहा है उसको सुनते जाए और अपने जीवन में अपनाते जाए, है ना। तो आप सभी को बेहतर जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, नशा मुक्त जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही सुंदर ईश्वर का दिया हुआ ये सुंदर जीवन, गॉडली गिफ्ट का ये जीवन है, प्रभु प्यार का उपहार है ये आपका जीवन। तो इसे सम्मानित होके जिए, इसे प्यार से जिए और सबको प्यार दे, ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी खुशियां आप सभी को। चलिए अब वक्त हो गया है बर्थडे टाइम का। जी हाँ, तो हमारे जो लिसनर सुरेश जी हैं, उनकी धर्म पत्नी रेणुका जी, उनका जन्मदिन है, तो भाभी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और उसके साथ ही सुखबीर सिंह बादल, जिनका जन्मदिन आज है और ये भारत के बहुत ही अच्छे राजनेता रहे, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे, 1962 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। बहुत ही पॉपुलर अभिनेता और निर्देशक जिनका जिक्र हमने किया, गुरुदत्त साहब का भी जन्मदिन है, 1925 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय एक और अभिनेता संजीव कुमार, इनका भी जन्मदिन आज है, 1938 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। बाल चंद्र जी, फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक, 1930 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारत के बहुत ही पॉपुलर राजनेता, संसदीय मामलों के मंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा, इनका भी जन्मदिन आज है, 1900 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। दूसरी लोकसभा के सदस्य मानक भाई अग्रवाल, 1923 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 1905 से लेकर 1910 तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड मिंटो दूसरा, इनका भी आज जन्मदिन है, 1845 में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है।

चलिए आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफ़र कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

तो प्यारे श्रोता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपको फाल्गुन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जिस तरह हम श्रावण महीने के उमंग उत्साह से उसका स्वागत करते हैं और श्रावण महीने में जिस तरह त्योहार आते हैं, उसी तरह फागुन महीना यानी कि फाल्गुन महीना भी इसी तरह त्योहारों से भरा हुआ होता है। जैसे कि होली आप सभी को पसंद है ना, तो अभी आने वाली है, तो इन सभी त्योहारों की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और आइए आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं उषा माहेश्वरी आज आप सभी के साथ फिर से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। आपकी अच्छी सी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज सुनने के लिए बहुत ही बेकरार हूँ, इसलिए आज आप फोन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि पहली तो मैं सुनाऊंगी लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी आपको बता रही हूँ। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, फिर घरेलू नुस्खों को कैसे भूल सकते हैं जरूर सुनाएंगे कि किस तरह तुलसी की चाय बनाई जाती है और तुलसी के क्या क्या फायदे हैं इस बारे में, और खुशनुमा जीवन की तो ढेर सारी बातें करेंगे ही, और नए नए व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, तैयार रहिएगा सीखने के लिए, सामान्य जानकारी भी देंगे। और पहेली तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहेली आज पूछने वाली हूँ, तैयार रहिएगा। हमारे नंबर तो आप जानते हैं, 9414-1415 पर कॉल कीजिएगा और आज की पहेली का जो सबसे पहले जवाब देंगे और जिनका जवाब सही होगा वो आज के विनर रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। और अभी

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और आज का विचार इस प्रकार है, अच्छाई और भाग्य पर कभी भी संदेह न करें। अच्छाई और भाग्य पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार है, अवसर न दिए जाने या फिर विघ्नों से मार्ग अवरुद्ध किए जाने पर भी जो विनम्र व शुभ चिंतक रहते हैं, ऐसे चरित्र वाला सदा संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह बड़ी बातें नहीं कर रहा बल्कि बड़े उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। बड़े बड़े कार्य यदि निजी मान महत्वाकांक्षाओं व लाभ की मिलावट के साथ किए भी जाए तो भी मैंपन के खाते में ही जाते हैं। तो ऐसे में स्वयं सोचिए कि सफलता के वास्तविक पैमाने क्या है। अतः अपनी अच्छाई और भाग्य पर कोई संदेह मत करिए। कर्म सिद्धांतों की घोर समझ को बुद्धि में बिठा करके निश्चिंत व निर्भय बनिए। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा और कभी भी अच्छाई और भाग्य पर संदेह मत करिएगा। तो ये हुआ आज का विचार। और मैं आप सभी से कह रही थी कि भाई बहुत दिनों से आप सभी से मिलना हो रहा है। देखिए, आवाज़ तो मेरी आप रोज़ सुनते हैं, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी की आवाज़ सुनने जाऊंगी, इसलिए इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरी भी इच्छा होती है कि आपके साथ बातें करूं, आपकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज़ सुनूं, है ना। तो ही मज़ा आएगा ना आपस में बात करने से। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ़ोन करेंगे। मैं आज की पहली अगले कार्यक्रम में दोहराऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आइए आपको घरेलू नुस्खे देंगे। इस गीत की पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको तुलसी के बारे में घरेलू नुस्खे देने जा रही हूँ, लेकिन पहले आज की पहेली दोहराऊंगी, ठीक है ना? तो आप तैयार रहिएगा। आज की पहेली इस प्रकार है, कागज पर मैं सरपट भागू चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, कागज पर मैं सरपट भागू चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली बहुत ही सरल है, इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन कॉल्स कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9414151415 पर फोन कीजिए और आज की पहेली का जवाब दीजिए। घरेलू नुस्खों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तुलसी के प्रयोग से सर्दी छाती में नहीं उतरने पाती, और छाती में जो उतर जाती है ना, तो सर्दी कफ के रूप में बाहर निकल जाती है। तुलसी के सेवन से छाती का दर्द भी कम हो जाता है, श्वास प्रणाली की झिल्ली पर स्वास्थ्यप्रद प्रभाव डालने में तुलसी अद्भुत क्षमता रखती है। तुलसी के सेवन से बुखार का भय जाता रहता है, बुखार जिसको हम ज्वर भी कहते हैं। निमोनिया और मलेरिया बुखार में तुलसी की पत्तियां 3 और काली मिर्च 3 दानों को 1 चम्मच पानी में घोट करके कुछ दिन तक खाली पेट सुबह सुबह लीजिए, इससे काफी लाभ मिलेगा। निमोनिया और मलेरिया बुखार, इन दोनों के अंदर तुलसी की पत्तियां 3 और काली मिर्च 3 दाने, ठीक है, इन दोनों को आप लीजिए 1 चम्मच पानी में, अच्छी तरह घोट लीजिए, ठीक है, और कुछ दिन तक रेगुलर आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है, इससे काफी लाभ मिलेगा। और तुलसी की चाय कैसे बनाई जाती है वो भी आपको सिखा रही हूँ। अदरक, चलिए तुलसी की चाय आपको सिखाएंगे, उसके पहले हमारे श्रोता बंधु से बात कर लेते हैं। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, उत्सव जी, सुरेश भाई जल्दी बोलते जताना से, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो?
1: बस बिल्कुल बढ़िया है, अच्छे है। और क्या आपका जो शादी का जो चेका था वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया?
0: जी जी जी, परमात्मा की कृपा से बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हुआ है कार्यक्रम।
1: जी जी, हम तो यही चाहते कि बस सबका काम अच्छा हो जाए, कोई मुसीबत ना आए और सबकी जो आशा है पूरी हो जाए, ऐसी तो हम बाबा से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि किसका काम अच्छा हो जाए इसमें तो सबकी भलाई होती है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल, अच्छा आप जैसे सभी प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं की दुआएं मिलती है ना, तो सचमुच बहुत ही काम आती है ये दुआएं।
1: जी जी जी बिल्कुल, दुआ तो सबकी होती है, क्योंकि दुआ एक ऐसी है दवा की, दवा नहीं काम करती लेकिन दुआ जरूर काम करती है, और
0: जी
1: सबको
0: जी।
1: अच्छा एक मौका मिलता है अच्छा काम करने का, तो दुआ है तो सब दुआ, ये कहते हैं कि दुआ सबकी लीजिए, तो

0: बस रहना भी एक अच्छी हमारी जो आशा होती है और हमारा भाग्य भी होता है
1: जी। सुरेश भाई और परिवार में सभी खुश है?
0: बिल्कुल, बड़ा सब आनंद में है, खुशी में है। हम भी अहमदाबाद भी थे 4 दिन से, कल परसों भी आए हैं। हमारे जो बेटी, हमारे बहन की बेटी की शादी थी हमारी भांजी की, तो 4 दिन से अहमदाबाद ही थे।
1: अच्छा,
0: परसों हम आए 4 दिन के बाद।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपके भी कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न हुआ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, इतनी मतलब कोई नहीं विघ्न, कोई ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी तरह से शादी हमारी भांजी की हो गई और बहुत खुशियां भी हमको मनाई सबने और सब अच्छा ही काम हो गया सब अच्छी तरह से।
1: चलिए तो आपको भी मुबारकबाद। और आज की पहेली का आप जवाब देंगे?
0: जी बस पहेली तो अभी अभी हमारे जो बताई हमारे बहन जी ने, तो वही हो सकता है टेंशन।
1: ओके, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपका जवाब हम जरूर सुनाएंगे।
0: जी जी, नमस्कार।
1: नमस्कार। तो आपको मैं तुलसी की चाय बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई तुलसी तो आप सभी जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। और इसकी चाय अक्सर हम क्या करते हैं, बाहर से खरीदते तो फिर थोड़ी महंगी भी होती है, इसलिए आपको बनाना सिखा रही हूँ अदरक काली मिर्च युक्त, है ना, तुलसी की चाय का। देखिए, इससे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं। बुखार मलेरिया ये तो दूर होता ही है, और एनर्जी भी रहती है। तो तुलसी की ताजा पत्तियां 7, ठीक है, काली मिर्च 7, सूखी हुई सूंठ का पाउडर होता है ना, भले तो आप सूखा करके इसका पाउडर कर लीजिए, क्योंकि सूखा करके, जैसे अदरक अभी सर्दी की ऋतु में थोड़ा सस्ता होता है, उस समय इसको सूखा दीजिए तो ये सोंठ बन जाता है, फिर इसको पीस लीजिए तो सोंठ का पाउडर हो गया, ठीक है, तो ये ले लीजिए। फिर इन तीनों को 1 कप उबलते हुए पानी में डाल करके आप 4-5 उबाले आने दीजिए, तीनों को मिक्स करके, फिर आप नीचे उतार दीजिए और 2 मिनट ढक करके रख दीजिए। 2 मिनट के बाद छान करके इसमें उबला हुआ दूध 100 ग्राम और 1-2 चम्मच शक्कर या चीनी डाल करके गरम गरम पी लीजिए और ओढ़ करके 5-10 मिनट सो जाइए। इससे क्या क्या लाभ होगा वो आप सुनेंगे कि इससे सर्दी का सिर दर्द, नाक में सर्दी, जुकाम, पीनस, श्वास नली में सूजन और दर्द, साधारण बुखार, मलेरिया, बदहजमी, ये इन सभी रोगों में काफी फायदा होगा। ये सारे ही रोग दूर हो जाएंगे। इससे छाती में जमा हुआ कफ ढीला होकर के निकल जाएगा। सर्दी से हुई छाती की अकड़न और पसलियों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। सर्दी के दिनों में इसको लेते रहने से ये सारी बीमारियां पहले से तो आप बचे रहेंगे। अगर पहले से ही लेते हैं तो जुकाम, खांसी, बुखार और गले के रोगों से सुरक्षित रहेंगे। और हम ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि पहले से ही बचाव करें, हम क्या करते हैं जब बीमारियां आती है उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो भी इससे फायदा मिलेगा इन सभी बीमारियों में। तो तुलसी की चाय बनाना आपने सीख ली ना, तो बहुत ही सरल तरीका है, पुनः दोहरा रही हूँ, तुलसी की पत्तियां लीजिएगा 7, ठीक है, ताजा, और काली मिर्च भी 7 लीजिए, सूखे हुई सोंठ का पाउडर वो आपको मैंने सिखा दिया है कैसे बनाना है, तो ले लीजिए 1/4 चम्मच, ठीक है। फिर इन तीनों वस्तुओं को 1 कप उबलते हुए पानी में डाल करके 4-5 उबाले फिर से आने दीजिए, इसके बाद नीचे उतार करके 2 मिनट तक ढककर रख दीजिए, फिर 2 मिनट बाद इसको छान लीजिए और इसके अंदर उबला हुआ दूध 100 ग्राम और 1-2 चम्मच शक्कर डाल करके गरम गरम पी लीजिए। पी करके आप थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए ओढ़ कर सो जाइए, ठीक है। इससे सर्दी का सिर दर्द, नाक में सर्दी, जुकाम, पीनस, श्वास नली में सूजन, साधारण बुखार, मलेरिया, बदहजमी, ये सारे ही रोग दूर हो जाते हैं और छाती में जमा हुआ कफ ढीला होकर के बाहर निकल जाता है। सर्दी से हुई छाती की अकड़न और पसलियों का दर्द भी दूर हो जाता है। तो इस तरह तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। तो ये हुए घरेलू नुस्खे। आइए फिर से पहेली की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली बहुत ही सरल है, जवाब दीजिएगा, हमारे नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं SMS भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से समय हो रहा है गीत सुनाने का, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो नमस्कार उषा जी।
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है रेडियो मधुबन में आपका। भाई कैसे हैं आप?
2: थैंक यू
1: आपको। और सुनाइए कैसे हो आप सभी परिवार वाले?
2: प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा चल रहा है, हम सभी बहनों को बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। रेडियो मधुमंदा परिवार खुले खाले
1: आज की पहली का जवाब
2: बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी
2: सभी बहनों को नमस्कार।
1: जी आपको भी। और आज की पहली का जवाब देंगे।
2: सुनाते हो आप नुस्खे तो बिल्कुल बढ़िया से लगते हैं, हम तो इसका उपयोग करते हैं। तुलसी की चाय पीते हैं ना, सर्दी उड़ जाती है ना, सुबह सुबह ऐसे चाय में भी डाल के पी सकते हैं ना। सौंठ का पाउडर है, काली मरी है और तुलसी के पत्ते और पुदीना भी, तो बिल्कुल बढ़िया था, उसका टेस्ट भी आएगा और सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल
2: बढ़िया सा नुस्खे सुनाते हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान
1: जी। जी आपको भी धन्यवाद कि आप इतने प्यार से सुनते हैं और इसका रिप्लाई भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज की पहेली का जवाब देंगे भाई साहब। श्रोताओं एक भजन सुनेंगे

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: हेलो ताफिर भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, हाँ जी हेलो, स्वागत है रेडियो मधुबन में।
2: नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार ताफिर भाई, कैसे हो आप?
2: बहुत अच्छे, आप सबकी दुआ से बहुत बढ़िया।
1: बस हम भी यही चाहते हैं, हमेशा खुश रहिए।
2: आपकी आपका सुख प्रसंग बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया होगा, ऐसी दुआ हमारी और ऐसा होगा भी।
1: जी जी धन्यवाद, आप सभी की दुआओं से बहुत ही अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत ही अच्छी तरह शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक संपन्न हुआ।
2: उनका जीवन, उन जोड़े का जीवन बहुत अच्छी तरह से जाए और सारी खुशियाँ उसको जीवन में भरा, ऐसी दुआ हमारी।
1: थैंक यू भैया आपको। और परिवार में खैरियत है?
2: सभी खैरियत है।
1: और सुनाइए भैया, आप तो रेडियो मधुबन के एनुअल फंक्शन में भी नहीं पधारे, हमसे नाराज हो क्या?
2: नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो हमारे सीजन है ना, वो मटके बनाने की सीजन चलती है।
1: अच्छा,
2: तो एक रजा रखते हैं तो 3-4-5 रजा पड़ जाती है।
1: ओके जी जी,
2: हम दिन में नहीं रुक सकते, वो काम ऐसा है मटके बनाने का, तो एक रजा रखने में 3-4 दिन काम बंद रखना पड़ता
1: है। जी जी, ये भी सीजनेबल होता होगा, है ना, सीजन के अनुसार बनते हैं।
2: मटके बनाने का ऐसा ही प्रोग्राम होता है इसलिए।
1: ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जरूर पधारिए। और आज की पहेली का जवाब देंगे भाई?
2: जवाब तो पेंसिल ही है।
1: ओके भैया, तो आपको जी
2: पहले फोन किया, वो हमारा फोन लगा नहीं।
1: अच्छा अच्छा, आपसे बात नहीं हो पाई। जी जी जी, चलिए
2: सभी दोस्तों को हमारी प्यारा नमस्कार।
1: जी जी जी, आपको भी सभी बहुत याद करते हैं, धन्यवाद आपको। मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आंखें, मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आंखें, क्योंकि हाथ को चोट लगने पर आंखों में पानी आता है। हाथ पर चोट लगने पर आंखों में पानी आता है, और आंखों में पानी आए तो उससे पोंछने को हाथ ही आगे आते हैं। तो प्यारे श्रोता बंधु, आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। सविता जी हमारी प्यारी सखी हमारे साथ बने हुई है, और सविता जी जो अभी अभी मित्रता के बारे में बात की है, तो सबसे पहले तो मैं आपका फिर से बहुत दिनों से आपसे मिली हूँ आज, और सभी से भी बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
3: धन्यवाद ऋषा जी, आपको बहुत बहुत। मुझे भी इतने दिनों बाद अपने प्यारी सहेली मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मित्रता की बात जैसे आपने की, तो बहुत दिनों से बिछड़े हुए मित्र मिल जाते तो बड़ी खुशी होती है, और आप मेरे से 1 महीने लगभग दूर रही मुझे लगता
1: है। जी बिल्कुल,
3: पर मुझे ऐसे लग रहा है बहुत दिन से दूर चली गई थी, और आपको बहुत लोग मिस कर रहे थे, यहाँ पे भी लोग पूछ रहे थे।
1: जी जी, मैं भी सभी को मिस कर रही थी, लेकिन इतनी व्यस्त हो गई कि मैं चाहते हुए भी समय नहीं निकाल पाई।
3: कोई बात नहीं उषा जी, देखिए हमारी घर गृहस्थ में हम रहते हैं ना, तो परिवार में ही हमारी जिम्मेवारी है ना, कि जो भी काम है मैं करने हैं उसे सही ढंग से सही तरीके से करें। और इस समय जो शादी विवाह का माहौल होता है, उसमें कई लोगों के संबंध संपर्क में हम आते हैं, तो उनके साथ भी हमारा जो कर्तव्य है उसे भली भांति निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये हो जाता है कि ये ध्यान नहीं देते हैं।
1: जी,
3: तो इसलिए वो कभी कभी मिलने वाले हमारे रिश्तेदार होते हैं, कुछ नए रिश्तेदार भी, दो परिवार जब जुड़ते हैं तो नए लोगों से भी हमारी मित्रता हो ही जाती है, तो उनके साथ हमें थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है। और हर मैं और आप तो पुराने सहेली, थोड़ा दूरी भी होगी कोई बात नहीं, दिल तो पास है।
1: कहते हैं कि पुराने का तो पुराने तो इशारे में ही समझ जाते हैं कि वह इनके साथ क्या चल रहा है, किस तरह की सिचुएशन है, लेकिन नयों को दिल में बिठाना, उनके साथ किस तरह हमको व्यवहार करना, वो पहले होना चाहिए। क्योंकि नए के मन में ऐसा आता है ना कि जब हम उनको समय नहीं देते तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो अपने आप को जैसे बहुत ही टाटा बिरला समझते हो, ऐसे व्यस्त समझ रखा।
3: जी बहुत बिजी लाइफ हो गई है, लेकिन
1: इसलिए उनको प्यार भी देना पड़ता है, उनको समय भी देना पड़ता है। कहते हैं कि स्नेह प्यार से ही संबंध जुड़ते हैं।
3: जी, संबंधी का मतलब ही होता है समान बंधन दोनों के, दोनों को एक दूसरे के लिए समानता होनी चाहिए। और उषा जी, मित्रता में जो बात हुई, तो अभी आपने कहा कि समय नहीं, दुनिया में सबके पास सब कुछ है,
1: जी,
3: पर अच्छे अच्छे मित्रों की कमी है और समय की कमी है। अगर हमें सौभाग्य से अच्छे मित्र मिल जाएं और उनके साथ समय व्यतीत करने का मौका मिल जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। इसे हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें एक अच्छा मित्र मिला है या सहेली मिली, जो भी कहिए, क्योंकि मित्रों से ही हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। कुछ बातें अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह सकते, होता है कई बार।
4: बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम अपने संबंधियों के साथ नहीं कर सकते, लेकिन एक मित्र, एक सखी, एक दोस्त के साथ हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, न करने जैसी बातें भी हम करते हैं।
3: हाँ, क्योंकि वो रास्ता दिखाते हैं। लेकिन कई बार आजकल जो जमाने में हम देख रहे हो, ऐसा माहौल है कि मित्रों के साथ ही लोग बिगड़ रहे हैं, दोस्तों में ही बच्चे खराब हो रहे हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी दोस्त नहीं कहलाते। जो बिगाड़ रहे हैं वो दोस्त नहीं होंगे, वो हमारे दुश्मन हो गए हैं। दोस्त तो वो होता है जो हमें कभी बिगड़ने ना दे। अगर मैं जाऊं भी बिगड़ने तो वो मुझे संभाल ले। आप समझ रहे हो
4: जी, जी,
3: तो मित्रता और दोस्ती की परिभाषा यही है। तो मैं कहना चाहूंगी श्रोताओं को कि कभी भी उनको अपना दोस्त ना समझे जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत मार्गदर्शन देते हैं। आपका मित्र वही है जो भले कई बार हमें ऐसा लगता है कड़वा बोल रहा है, मेरा ये दुश्मन है, लेकिन दुश्मन नहीं, वास्तव में वही आपका सच्चा मित्र है।
4: क्योंकि जो सच्चे मित्र होते हैं वो मुंह के सामने ही आपकी गलती को कहते हैं कि भाई आपकी यहाँ पर गलती है या आप गलत काम कर रहे हैं, इसको सुधार लीजिए। और बाकी जो कहते हैं ना कि बहुत से लोग जीवन में आते हैं जो सिर्फ आपको चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले होते हैं, आपके शुभ चिंतक नहीं होते।
3: बिल्कुल कतई नहीं होते वो हमारे शुभ चिंतक।
4: वो पीछे यही चाहेंगे कि इसका बुरा और सामने से तारीफ करेंगे तो मीठे और तारीफ करने वाले नहीं, वो फिर सही मायने में मित्र नहीं होते हैं।
3: हाँ,
4: विशेषताओं की तारीफ करिए सविता जी, विशेषताओं की तारीफ करना भी अच्छी बात है ताकि इंसान को पता चले कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है। लेकिन अगर कोई बुराई है तो उसको भी जरूर बताना चाहिए कि आपके अंदर ये बुराई है, आप इसको निकालिए।
3: जी बिल्कुल,
4: तो ही पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, कैसे हमको बदलना है स्वयं को।
3: जी देखिए, कई बार मित्रता के मायने आजकल के लोग ये समझने लगे हैं कि हमें धन से, धन जिससे प्राप्त हो रहा है। खासतौर पे देखिए मित्र क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं, उसने उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए, होटल में खाना खिला रहे, गिफ्ट दे रहे, लोग समझते यही हमारी सच्ची मित्रता है। लेकिन मैं समझती हूँ इससे बढ़कर एक चीज होती है जो हमारा अपनापन होता है, अपना प्यार होता है, और हम दोनों तरफ से संबंध बहुत अच्छे से निभाए, ये भी निभाए और सामने वाला भी निभाए, तब अच्छा लगता। और कई बार आप देखिए मित्रता को लेके परिवार में टेंशन होती, बच्चे बहुत ज्यादा घुल जाते हैं ना बाहर में जाके, पेरेंट्स दोनों के परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे कि देखो मेरा बच्चा तो उसके साथ ही घूमता रहता, बिगड़ रहा है। तो मैं ये कहूँगी, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो बच्चों की दोस्ती हो, चाहे वो महिलाओं की दोस्ती हो, महिलाओं के लिए भी कई बार ऐसे मतलब कहा जाता है कि ये तो जो है कि बात करने में लग जाते हैं, या दिन भर घूम घूम के मोहल्ले में इनकी दोस्ती रहती है, घर के काम पड़े रहते हैं, पति आए टाइम से खाना नहीं मिला, बच्चों को नहीं मिला, तो ये भी एक मित्रता ही है। लोग कहते हैं हमारी दोस्ती भाई, हम अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में या कहीं कहीं जा रहे हैं। इसी तरह जो हमारे भाई लोग होते हैं वो भी ऐसी दोस्ती निभाते, तो दोस्ती वो हो जो सुकून मिले, जिससे दोनों परिवार में सुख शांति बनी रहे। अब ऐसी दोस्ती हम ना करें कि उसके पीछे परिवार को भूल जाएं, या फिर परिवार का ध्यान ना दें, या दोनों तरफ के परिवार वाले उंगली उठाएं कि उसने मेरे बच्चे को खराब किया, या मेरे पति को खराब किया, या मेरी पत्नी को खराब किया, मेरी बेटी को। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, दोस्ती वो हो जो मिसाल बन जाए।
4: बिल्कुल, और हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम दोस्ती में अपने फ्रेंड्स को समय दे रहे हैं तो घर परिवार वालों को भी समय देना बहुत जरूरी है,
3: बेहद आवश्यक है। और पत्नी भी एक सच्ची मित्र होती है, मुझे तो उषा जी
4: बिल्कुल कहते हैं कि पत्नी जैसे तो मित्र मिल ही नहीं सकते।
3: हाँ, पति पत्नी बहुत सच्चे मित्र बन सकते हैं। आजकल देखिए बच्चों के साथ भी कहा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्तों के

0: रहे हैं। तो जब हम बच्चों के साथ अपना जो एक कहते उम्र जनरेशन गैप होती है ना, उम्र का जो वो होता है उसे हम घटाकर दोस्त बन जाते हैं, तो पत्नी तो हमारी हमजोली होती है।
1: बिल्कुल सविता
0: जी, अच्छे से दोस्ती उसके साथ हम कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं।
1: जी, कहते हैं कि पत्नी हो चाहे माँ हो, हर संबंध में हम जैसे कि जहाँ जब जरूरत पड़ी माँ को एक अच्छा मित्र बना सकते हैं, और माँ जैसे भी मित्र बाहर नहीं मिलेंगे
0: नहीं,
1: और पत्नी जैसे कि आपने बताया है कि पत्नी जैसे मित्र भी बाहर नहीं मिल सकते हैं, इसलिए पहले तो घर में ही मित्रता बनाइए अच्छी तरह। संबंध तो है ही, जो माँ बेटे का होता है, माँ बेटी का होता है, या पति पत्नी का होता है, संबंध तो है ही, लेकिन उस संबंध में मित्रता का प्यार, मित्रता का एहसास भी हम कर सकते हैं। तो चलिए सविता जी, और भी बातचीत करेंगे मित्रता के बारे में, लेकिन अभी आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली इस प्रकार है, कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली का जवाब दीजिए, आप चाहे तो SMS भी कर सकते हैं, हमारे नंबर है 9415141415 पर आप फोन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करिए, क्योंकि आपकी आवाज सुनने के लिए मुझे मतलब मैं बेकरार हो रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसी पर आपको एक प्यारा सा गीत सुना देते हैं, फिर तुरंत सविता जी के साथ आपसे बातें करेंगे। सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आग लगी थी मेरे घर में,
3: पूछने वाले आए। सविता जी, आग लगी थी मेरे घर में, सब पूछने वाले आए, हाल पूछा और चले गए। एक सच्चे मित्र ने पूछा,
4: जी
3: क्या क्या बचा है
4: जी?
3: मैंने कहा, कुछ नहीं, केवल मैं बच गई हूँ। उसने गले लगा कर कहा, सखी फिर जला ही क्या है।
4: जला ही क्या, वाह बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। सब चला गया पर मित्र बचा। अगर मित्र हमारे साथ हैं और मित्रता हमारी बरकरार है तो आप देखेंगे हम फिर से फलीभूत हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ये तो संसार की चीजें हैं, आना और जाना और जलना।
5: हेलो
3: जी सविता जी। हेलो, स्वागत है रेडियो मधुबन में। आप कौन बोल रही हैं?
5: ओम शांति उषा दीदी। ओम शांति।
3: अरे ओम शांति दुर्गा जी, क्या बात है, आपसे तो बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुन रही हूँ और आपसे बात होने जा रही है, मुझे बहुत खुशी है। कैसे हैं आप?
5: तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों से बात हो रही है आपकी मेरी।
3: जी जी जी। और आपके मदर इन लॉ, आपके सन वगैरह सभी अच्छे हैं?
5: हाँ सभी अच्छे हैं आपकी दया से।
3: चलिए बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले की मेहरबानी बनी रहे। और
5: हेलो।
3: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ। और दुर्गा जी, आज आपके किचन में क्या बनाए ये बता दीजिए।
5: मैं अभी पराठा बना रही हूँ, चालू है, हाथ में पराठा बन रहे हैं।
3: अच्छा अच्छा, तो परोठे कौन से, सिंपल वाले या फिर कोई चटपटे?
5: नहीं, मेथी और मसाला डाल के और गाजर का जूस दोनों बना रही हूँ।
3: क्या बात है, तब तो हम भाई आ रहे हैं थोड़ा ज्यादा बनाना, ठीक है?
5: ज्यादा तो मैं बनाऊंगी, आप तो खाते भी नहीं हो।
3: नहीं नहीं, जरूर खाएंगे। और चलिए अभी तो आप बनाइए, परिवार वालों को खिलाइए। और भाई, होली की तैयारी कैसी चल रही है दुर्गा जी?
5: बस ठीक ठीक चल रही है अभी तो।
3: चलिए अभी तो समय है। ओम शांति। अच्छा, आज की पहेली का जवाब तो दीजिए।
5: पहेली तो पता नहीं मेरे को।
3: कोशिश करिए, फिर से फोन कर सकते हैं आप।
5: ठीक है, सुनूंगी और सोचूंगी तो आएगी।
3: तो पहेली मैं सुना रही हूँ, सुनिएगा। कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊँ, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं।
5: तो मैं सोच कर दूंगी।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप SMS भी कर सकते हैं, ठीक है? अब तो आप अच्छी तरह पढ़ना भी जान गई है, लिखना भी जान गई है, तो SMS भी कर सकते हैं आप, ठीक है? तो सविता जी, दोस्ती की बात चल रही थी
4: जी उषा जी,
3: कि भाई कहते हैं कि सब कुछ चला जाए लेकिन हमारे मित्र जो हमारे चाहने वाले हैं वो सदा सलामत रहे।
4: जी उषा जी, क्योंकि उनकी सलामती से ही हमारी खुशी है। हम जिसको चाहते हैं, चाहे किसी भी संबंध से, आप देखिए अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो बहुत दुख होता है। जो करीबी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दिल के करीब कहा गया है, तो उनको बहुत तकलीफ होती कि उनका ये नुकसान हो गया। लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि सब कुछ जला पर मित्रता नहीं जली, और एक दूसरे को देख कर जलना भी नहीं चाहिए। अब जलने से बात याद आ गई, कई बार मित्र मित्रों में आपस में जलन हो जाती
3: होती।
4: आप देखिए एक साथ पढ़ने वाले कई बच्चे होते, बहुत प्यार होता है, मैंने देखा कई बार उनमें, लेकिन जहाँ मार्क्स कम आए एक दूसरे के अपडाउन, तो उसमें भी एक मतलब जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार कोई अच्छी जगह किसी का सिलेक्शन हो गया, वो अच्छी जगह चला गया, तो दूसरे मित्र का नहीं होता, तो वो बहुत प्यारा दोस्त होता है, उसके बावजूद उसकी ईर्ष्या होने लगती, जलन शुरू हो जाती है।
3: कहते हैं दोस्ती में जलन नहीं होनी चाहिए, और चाहे एक आगे बढ़ गया और एक काफी पीछे रह गया, लेकिन उनकी दोस्ती बनी रहनी चाहिए।
4: हाँ, दोस्ती
3: ऐसे नहीं कि कितने लोग क्या है कि अच्छी पोस्ट मिल जाने के बाद जब उसको ऐसा लगता है कि अरे अब उसके पास है ही क्या।
4: हाँ।
3: और फिर वो ईगो भी आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि नहीं नहीं सोसाइटी मुझे क्या कहेगी, लोग मुझे क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ इनकी दोस्ती है, तो वो धीरे धीरे उनसे किनारा करने लगते हैं और दोस्ती धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो सविता जी ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
4: और उषा जी, अभी मैंने आपने मित्रता की बात की, यहाँ तो मित्रों के बाद कई बार देखिए लोग ऊंचाई पर चले जाते, अपने माता पिता को भी नहीं पहचानते
3: जी।
4: मैंने देखा उनका भी परिचय कराने में उन्हें ऐसा लगता जैसे शर्मिंदगी महसूस हो रही। मुझे कई बार कुछ बातें याद आ जाती हैं, तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी क्या करेंगे, अपनी अपनी सोच है इस चीज को। तो मित्रता की बात पे याद है कि देखिए श्री कृष्ण कहाँ द्वारिकाधीश बन गए और कहाँ सुदामा जी कैसे रह गए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं भुलाया कि द्वारिकाधीश और सुदामा का मिलन कैसे होगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल गले लगाए, बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचा कि कहाँ ये और कहाँ मैं। और कहते हैं कि इतने नैनों से आंसू गिराए द्वारिकाधीश ने कि उनके चरण धुल गए, उनको अलग से पानी लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये है मित्रता, और जिसे कहा गया कि ये मित्रता संसार में आज एक मिसाल बन गई। और आप देखिए गोपिकाओं की और श्री कृष्ण की मित्रता का भी गायन है, द्रौपदी और श्री कृष्ण की भी मित्रता का गायन। देखिए दोनों श्री कृष्ण और द्रौपदी भी मित्र ही थे, सखी ही कह के उसको पुकारते थे श्री कृष्ण। और देखिए जब वक्त पड़ा तो द्रौपदी का उन्होंने कितना अच्छा मदद किया, आपने देखा ना,
3: बहुत ही अच्छी मदद की।
4: जब दुर्योधन दुशासन
3: सभी के बीच में कहते हैं एक सभा के बीच में द्रौपदी के किस तरह श्री कृष्ण जी ने लाज रखी
4: इज्जत बचाई जो कहा गया। और अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो फिर क्या हमारे सौभाग्य है। और कई बार ऐसे भी मित्र मिलते हैं कि जो एकदम उल्टे कर्म करने लग जाते हैं, मित्रता का गलत फायदा उठाते हैं। तो प्यारे श्रोता बंधु, हमें इन सब कहानियों को जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं या टीवी पर दिखाया जाता है सीरियलों के माध्यम से, वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि हम इनसे शिक्षा लें कि सच्ची मित्रता कैसे निभाई जाए या सच्चे संबंधों को कैसे निभाया जाए। और जिन्होंने इन सब का नाजायज फायदा उठाया, चाहे मित्रता का हो चाहे संबंधों का, आप देखिए उनका अंत भी बहुत बुरे तरीके से हुआ,
3: बुरा ही होता है, कहते हैं बुरे का अंत बुरा ही होता है।
4: इसलिए ये जो रेडियो मधुबन के थ्रू हम लोग जो भी वैल्यूज की बातें करते हैं, जो भी बता रहे हो, सिर्फ इसीलिए कि हम भी इसको सीखें और समझें, जीवन में धारण करें साथ में दूसरे भी। और जब हम इन चीजों को सुनकर समझकर अपने जीवन में उषा जी यूज करेंगे तभी सच्चा
3: सुख मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी और
4: सच्ची सफलता। हम भी जो प्रयास कर रहे हैं और श्रोता भी जो श्रोता बंधु भी जो सुन रहे हैं इसको ध्यान से, उनको भी सच्ची सफलता तभी मिलेगी जब इसका यूज करें। तो आप मित्रता किसी से भी कीजिए, बिना जाति का भेद रखे, धर्म का भेद रखे, लिंग भेद नहीं, कोई भेद नहीं, अमीरी नहीं, गरीबी नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, लेकिन सच्ची मित्रता कीजिए। चाहे वो परिवार में मित्रता आप कीजिए, चाहे परिवार से बाहर कीजिए, चाहे मेल की फीमेल की मित्रता हो, कोई भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए। उषा जी
3: तो कहते हैं कि संग ही तारे और संग ही बोरे, है ना। तो संग देखिए अच्छे और बुराई का भी एक जोड़ा होता है ना।
5: जी, हेलो।
3: हाँ जी, हेलो, स्वागत है रेडियो मधुबन में, आप कौन बोल रहे हैं?
5: मैं राधा बोल रही हूँ, नए खेड़े से।
3: हाँ हाँ हाँ, राधिका जी कैसे हैं आप?
5: वो आपने अभी पहले पूछी थी ना
3: जी,
5: उसका पेंसिल होता है।
3: ओके, तो राधा जी आप क्या करते हैं?
5: मैं नौकरी करती हूँ आंगनवाड़ी में।
3: अच्छा, आंगनवाड़ी में सर्विस करते हैं। और कितने समय से आप रेडियो मधुबन सुन रहे हैं?
5: 20 साल से।
3: कितने साल से? हेलो,
5: 1 साल से।
3: अच्छा, 1 साल से। और 1 साल से जो आप रेडियो मधुबन सुन रहे हैं, तो सुन करके आपके जीवन में किसी तरह का परिवर्तन आया?
5: हाँ, उसमें अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें मिलती है, सीखने को कुछ मिलता है, महिलाओं के बारे में भी बताते हैं, खेती बाड़ी के बारे में भी बताते हैं।
3: तो चलिए राधा जी, कभी आप आइए रेडियो मधुबन के स्टूडियो में भी, है ना, आपसे समय निकाल करके कभी आइए। और बहुत अच्छी बात है कि आप रेडियो मधुबन से जुड़े हैं और आज पहली बार आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है। ओके, धन्यवाद आपको।
5: मुझे भी अच्छा लग रहा है
3: जी। तो आप जुड़े रहिएगा, ठीक है?
5: मुझे एक गीत सुनना है।
3: हाँ जी, किस तरह का?
5: एक वो गीत है ना, एक अस्थी चली एक डोली उठी।
3: अच्छा अच्छा, देखिए हम है ना फरमाइशी गीत जो रात को खुशी के नगमे कार्यक्रम आते हैं ना 8:30 से 10 के बीच, उसमें आप सुन सकते हैं। हम क्या आशियाना में या तो राजस्थानी या गुजराती लोकगीत देते हैं, और जैसे कि भजन है, गजल है, इस तरह के अच्छे अच्छे मतलब देते हैं, हम फिल्मी गीत कम देते हैं, ठीक है ना। आप सोम से शुक्र तक जो चलते हैं खुशी के नगमे, उसमें आप फरमाइश कर सकते हैं, ठीक है। तो सविता जी, जैसे कि आप दोस्ती के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वास्तव में कहते हैं कि मैंने ये भी आपको बताया कि अच्छाई और बुराई इसके भी जोड़े हैं, कि मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अच्छे होते तो सामने वाले थोड़े गलत होते हैं, हमारे दोस्त हमारे सखी समझ लीजिए, या फिर वो अच्छी होती तो कुछ बुराई हमारे में होती है।
4: जी, बिल्कुल।
3: लेकिन कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि बुराई को देख करके किनारा कर ले, बुराई को बदल करके उसको अच्छाई के रूप में भी बता सकते हैं, जैसे कि कहा ना कि भाई मुसीबत के समय दोस्ती काम आते हैं, तो अगर हमारे अंदर कुछ बुराई है और हमारे दोस्त में हमारे सखी में ताकत होनी चाहिए कि हमारे बुराई को खत्म करे और अच्छाई हमारे अंदर लाए, है ना। ऐसे नहीं कि बुराई देख करके उससे किनारा कर दो तो फिर वो तो ज्यादा बुरा बन जाएगा।
4: देखिए किनारा हम तब करेंगे जब उसे कई बार हमने समझाया और वो व्यक्ति नहीं समझ रहा और गलत विचार और साथ में हमें भी गलत ले जा रहा, तब आप किनारा कीजिए। लेकिन वो व्यक्ति यदि हमारी बात समझने को तैयार है, अच्छी बात है, हमने उसे बताई, समझ रहा, उसे आप को किनारा नहीं करना, ना उसे बार बार नीचा गिराना कि आप में ये कमी है, ये गलतियां हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए अभी आपने ऐसे कहा कि किनारा नहीं करना चाहिए बल्कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उषा जी, उसी बात में मुझे एक अच्छे दोस्त की याद आ गई, जो संसार में सभी का दोस्त है, खुदा दोस्त है।
3: बिल्कुल,
4: हम कितने खराब होते हैं, देखिए हमारे अंदर कितनी गंदगी है। मानव जाति में कहा गया कि बहुत ही मतलब तमो प्रधानता आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा अपनी अपना दोस्त हमको बनाता है और हमें भी खुदा को अपना दोस्त बनाना चाहिए। कहा है ना खुदा दोस्त की कहानी भी मशहूर है उषा जी। तो देखिए जब हम खुदा के साथ दोस्ती करेंगे, परमात्मा का साथ उसका संग करेंगे, परमात्मा संग जिसे कहा गया या सत्संग जिसे कहिए, सत्य का संग करना, ईश्वर ही सत्य है, तो जब हम ईश्वर का सत्य का साथ करेंगे तो आप देखिए आपकी बुद्धि बहुत अच्छी बनती जाएगी, एकदम दिव्य बुद्धि हो जाएगी कि आप एक हंस की भांति दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखेंगे, आपको निर्णय करने की शक्ति भी आपकी बढ़ेगी और आप बहुत आराम से समझ सकेंगे कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। और हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार भी हमारे मित्र हैं, हम चाहे उन्हें अपना मित्र बना लें चाहे उन्हें अपना शत्रु बना लें। अगर हम मन बुद्धि और संस्कार से कुछ गलत करते हैं तो वो हमारे दुश्मन भी हो जाएंगे और उसे जी अगर हम अच्छा काम करते हैं तो आप देखेंगे वो हमारे सच्चे मित्र बन जाएंगे। उसी तरह खुदा को भी दोस्त बनाया हमने, अपने मन बुद्धि संस्कार को भी अपना मित्र बनाया, अपने कर्मों को भी अपना मित्र बनाएंगे तो इस संसार से हम हंसते हंसते आराम से निकल जाएंगे। और बाकी दुनिया में तो है ही दुनियादारी, दोस्ती है, पारिवारिक है, संबंधी है, सभी है ना। तो
3: कहते हैं सभी के साथ तोड़ निभाते हुए भी जो संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ते हैं और अपने मन बुद्धि को बदल करके उनको ही अपने मित्र बनाते हैं तो सबसे बड़ी खुशी मिलती है।
4: देखिए मीरा जी के दोस्त भी श्री कृष्ण थे, गोपिकाओं के दोस्त भी श्री कृष्ण रहे हैं, है ना उषा जी?
3: जी।
4: तो ये सब चीजें जो हमने देखा संसार में, पढ़ा, सुना, जाना, तो उनसे हमें कुछ सीखना भी चाहिए और अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए।
3: बिल्कुल। तो सविता जी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई आपके साथ, आप भी मेरी बहुत ही अच्छी सखी है,
4: आप भी है,
3: कि समय पर आप पहुंच ही जाते हैं हेल्प करने के लिए।
4: रेडियो मधुबन हमारा अच्छा दोस्त है,
3: रेडियो मधुबन तो है ही, कहते हैं कि रेडियो मधुबन तो हमारा एक एहसास है, हमारा
4: धड़कन है, दिल की धड़कन
3: है, सही है। तो रेडियो मधुबन है तो हम सभी भी
4: आबू की धड़कन
3: जी। तो सविता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे रेडियो मधुबन के माध्यम से हमारे जो सभी श्रोता जुड़े हैं वो भी बहुत ही अच्छे दोस्त है, बहुत ही अच्छे मित्र है हमारे।
4: और हमेशा सुनते हैं, देखिए हमें फोन कॉल्स आते हैं, हमारे सभी प्रोग्राम में फोन कॉल्स में देखती हूं, सारे प्रोग्राम्स में आते हैं, तो इसका मतलब है वो रेडियो मधुबन के सच्चे दोस्त हैं और रेडियो मधुबन भी उनका सच्चा दोस्त है, दोनों एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते हैं।
3: जी जी,
4: ये सच्ची दोस्ती का प्रतीक है
3: जी, और बहुत ही अच्छा भी लगता है, भले कितनों को हमने देखा है, मिले हैं, कितनों को नहीं देखा है, नहीं मिले हैं, फिर भी उनकी शुभ भावनाएं हमारे तक पहुंचती है और हम भी उन्हें दिल से दुआएं देते हैं।
4: जी बिल्कुल।
3: तो चलिए सविता जी आज की पहेली की तरफ बढ़े।
4: बिल्कुल, एक बार फिर से रिपीट कीजिए।
3: तो आज की पहेली इस तरह है, कागज पर मैं सरपट भागू, चल कर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली का जरूर जवाब दीजिएगा, हमारे नंबर तो जानते ही हैं 94-14-15-14-15 पर आप चाहे तो SMS भी कर सकते हैं, फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, और सविता जी आप भी समय पर पधारे और अपनी प्यारी सी आवाज भी सुनाई और अच्छी सी बातें भी की हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ, इसके लिए आपको धन्यवाद। और एक सुना देते हैं गीत।
4: बिल्कुल,
3: सुनते रहिए,
4: मुस्कुराते रहिए,
3: रेडियो मधुबन

0: तेरा शुक्र।
1: हेलो, मेरा नाम दीपक है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो यह है आज की पहेली। आप SMS भी कर सकते हैं, फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9414151415 पर। और आइए अब आशियाना के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में, देखिए मैं आपको दो तरह के कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ। तो अभी बनाएंगे पपीते के कोफ्ते। बहुत ही कम सामग्री है और बहुत ही सरल तरीका है, फिर भी पेन और डायरी तो आप ले ही लीजिए। और सामग्री इस प्रकार है, बेसन 125 ग्राम, फिर आप दही लीजिए।

125 ग्राम और पपीता ले लीजिए 1 किलो, गरम मसाला, नमक, मीठा सोडा, हरा धनिया, घी, ये सब ले लीजिए आप 125 ग्राम। तो ये हो गई पपीते के कोफ्ते की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। बेसन 125 ग्राम, दही भी 125 ग्राम, 1 किलो लीजिए पपीता और फिर आप लीजिए गरम मसाला, नमक, मीठा सोडा, हरा धनिया, घी, ये सब भी ले लीजिए 125 ग्राम, ठीक है। और बनाने का तरीका भी बहुत सरल है, साथ ही साथ आपको सिखा रही हूँ। पपीते की धुलाई करके इसको अच्छे से पोंछ लीजिए, फिर छील करके इसके टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। और इसको फिर उबालिए, उबाल करके इसको पीस लेना है। फिर पीसे पपीते में सारे मसाले, थोड़ा सा बेसन, ये सब मिला करके अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर लंबे और गोल आकार के बना करके आप तल लीजिए। तो ये हो गए पपीते के कोफ्ते, बहुत ही सरल तरीका है। और देखिए, हमारे घर पर जब गेस्ट आते हैं तो हमारी इच्छा होती ना कि कुछ ऐसी चीज़ बना करके खिलाए कि गेस्ट भी खुश और हम भी खुश। तो चटपटी चीज़ें सभी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी आप बना करके पिरस सकते हैं, क्योंकि सामग्री भी ज़्यादा नहीं है, समय भी ज़्यादा नहीं लगता है और खाने वाले को भी अच्छा लगता है, एक नया टेस्ट आता है। जल्दी जल्दी में बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाना अच्छा है। तो मैं पुनः विधि को दोहरा रही हूँ। पपीते की पहले तो धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर इसके छिलके निकाल दीजिए, छिलके निकाल करके इसके टुकड़े कर लीजिए और फिर उबालिए, उबाल करके इसकी पेस्ट बना लीजिए, ठीक है, पीस लीजिए। फिर पीसे हुए पपीते में ये सारे ही मसाले जो आपको बताया है ना, कि भाई नमक, मीठा सोडा, हरा धनिया, जो भी, सभी आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और फिर थोड़ा सा बेसन भी मिला लीजिए। बेसन मिला करके अच्छा गोल तैयार करके फिर लंबे और गोल आकार के बना करके तल लीजिए। आंच को न तो स्लो रखना है ज्यादा और ना ही फास्ट, मीडियम रखिए, ठीक है। मध्यम आंच पर जो भी चीज हम बनाते हैं अच्छी बनती है, अंदर से कच्ची नहीं रहती है, अंदर से सिक जाती है। तो इस तरह पपीते के कोफ्ते बनाए जाते हैं। अब मैं आपको एक तरह के कोफ्ते और भी सिखाऊंगी, अभी किसके सिखाने वाली हूँ वो मैं आपको गीत सुनाने के बाद ही बताऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर से आज की पहली दोहरा रही हूँ। कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। आज की पहली का जवाब दीजिएगा। आप चाहे तो SMS भी कर सकते हैं, हमारे नंबर है 9414151415 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू, मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो ये हुई आज की पहेली, आप जवाब दीजिएगा। नंबर है हमारे 94 14 15 14 15। और आइए, आप सभी आशियाने के किचन में हो, और आशियाने के किचन में हम गीत सुनने से पहले बना रहे थे पपीते के कोफ्ते, और आइए अब बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। लौकी जिसको गुजराती में दूधी भी कहते हैं और राजस्थान में आल भी कहते हैं, ठीक है, और घिया भी कहते हैं। तो आइए, लौकी के कोफ्ते की सामग्री भी आप लिखेंगे। सामग्री इसमें भी बहुत कम है, लेकिन लिख लेना अच्छी बात है। तो आप लिखिएगा आधा किलो लौकी, फिर आप लीजिए 100 ग्राम बेसन, एक चम्मच पीसी हुई काली मिर्च ले लीजिए, और एक चुटकी जीरा लेना है आपको, नमक घी आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए। सामग्री पुनः दोहरा रही हूँ, आधा किलो ले लीजिए आप लौकी, फिर आप लीजिए बेसन 100 ग्राम, एक चम्मच पीसी हुई मिर्च लेनी है, ठीक है, लाल मिर्च, और चुटकी भर काली मिर्च पाउडर भी लेना है आपको। फिर आप लीजिए एक चुटकी जीरा, नमक स्वाद के अनुसार लीजिए, और घी आवश्यकता के अनुसार लीजिए। घी पसंद करते हैं तो घी, तेल पसंद करते हैं तो तेल। तो ये हो गए लौकी के कोफ्ते की सामग्री। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, लौकी की धुलाई करिए और स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर इसके छिलके उतार दीजिए और इसको कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करके उसे उबाल लीजिए, उबालने के बाद पानी निचोड़ दीजिए, और अब बेसन का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें मिर्च, जीरा, काली मिर्च और नमक डाल दीजिए, और बेसन को घोलने के बाद लौकी के छोटे छोटे गोले, लौकी जो हमने कद्दूकस किया है ना, पानी निचोड़ के इसके छोटे छोटे गोले बनाइए, और इन्हें बेसन के गोल में डुबो करके आप कढ़ाई में तल लीजिए। हल्के हल्के गुलाबी होने तक तलिए, बाद में आप जाले से पलटी भी दीजिए, और अच्छी तरह सिक जाने पर आप निकाल दीजिए। तो ये बन गए लौकी के कोफ्ते। बहुत सरल तरीका है, विधि मैं पुनः दोहरा रही हूँ। लौकी की धुलाई करिए, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके फिर इसके छिलके हटा लीजिए, और फिर इसको कद्दूकस करके उबाल लीजिए। उबालने के बाद पानी से निचोड़ दीजिए,

आप कर सकते हैं दोनों में ही मसाले डाल दीजिए, और नहीं तो फिर आप इस तरह सिंपल बना लीजिए, इनके घोले बनाइए छोटे छोटे, और इन्हें फिर आप बेसन में, जैसे आलू बड़े कैसे बनाते हैं इसी तरह बेसन का घोल करके इसमें डुबाना है। डुबो करके आपको तेल गरम करके तेल में छोड़ देना है। आंच तो आपको पता ही है मध्यम रखनी है, पहले आप तेज रखिए ताकि तेल या घी जिसमें भी आप तल रहे हैं अच्छी तरह गर्म हो जाए, उसके बाद आंच को मध्यम कर दीजिए और इस तरह कोफ्ते तल लीजिए। बस तो ये बन गए लौकी के कोफ्ते, पपीते के कोफ्ते भी तैयार है। अब इसके साथ आप इमली की चटनी भी बना सकते हैं, टमाटर सॉस के साथ भी आप इस तरह के कोफ्ते खा सकते हैं। तो चलिए, चटनी तो आपको सिखाई मैंने पहले भी और टमाटर सॉस भी आपको सिखाया है, तो जो भी बनाया हो ले लीजिए एक कटोरे में और एक प्लेट में कोफ्ते रखिए। कटोरे को प्लेट में रख करके तुलसी पत्र भी रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कपड़ा ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित, मेहमानों सहित आनंद लीजिएगा पपीते के कोफ्ते का और लौकी के कोफ्ते का, और साथ ही साथ लेंगे आनंद एक प्यारे से गीत का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए, आपको सामान्य जानकारी जरूर देंगे, लेकिन आज की पहली पहले दोहरा रही हूँ। कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली का जवाब दीजिए, हमारे नंबर है 9414151415 पर। और आइए, आज जो मैं आपको सामान्य जानकारी देने जा रही हूँ वो इस प्रकार है, बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत जो होती है ना, उसको आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। छोटी उम्र के बच्चे अक्सर पेट दर्द की शिकायत करते रहते हैं, है ना, इसे बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिए। हो सकता है उनके पेट में कीड़े हो जो उन्हें पीड़ा दे रहे हो। बच्चों के पेट में तीन तरह के कीड़े पाए जाते हैं, हुक वर्म, विप वर्म और राउंड वर्म। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इसका दुष्प्रभाव भी इस प्रकार होता है, देखिए, पेट में कीड़े होने पर बच्चों के अंदर खून की कमी, कुपोषण और मानसिक समस्याओं के बच्चे शिकार हो जाते हैं या हो सकते हैं। आंत में मौजूद ये कीड़े पोषक तत्वों को खा जाते हैं और बच्चों के तन को भोजन का फायदा नहीं मिल पाता है। शरीर चुस्त दुरुस्त न रहने से बच्चे का मानसिक विकास भी बाधित होता है और मानसिक एकाग्रता भी नहीं रह पाती, जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कभी भी बच्चों के पेट में तकलीफ हो, दर्द हो, तो माता पिता को चाहिए कि उनको तुरंत डॉक्टर को बताए, चिकित्सक को बताए। ऐसे नहीं कि दुख रहा है और हम बच्चों की बात को टालते जाए, नहीं। और इन बातों को जरूर आप ध्यान में रखिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। साफ सफाई के प्रति बिल्कुल सचेत रहिएगा। घर में कीटनाशक का प्रयोग आप नियमित अंतराल पर करिएगा। भोजन करवाने से पहले, बच्चों को जब भोजन करवाते हैं तो उसके पहले खुद भी और बच्चों के भी हाथ की अच्छी तरह धुलाई करवाइएगा साबुन लगा करके। छोटे बच्चे को साफ सुथरी जगह पर ही बिठाए या फिर सुलाए। जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनको चप्पल या जूते पहनाए बिना बाहर नहीं जाने देना है। हुक वर्म नामक कीड़े का लार्वा पांव की त्वचा से शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए जूते चप्पल पहनाना जरूरी होता है। इसका इलाज भी इस तरह हो सकता है, पेट में कीड़े होने पर आप चिकित्सक को बताएं, 1-2 साल के बच्चे को एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की आधी टेबलेट पानी में घोलकर पिलाते हैं, और 2 साल से ज्यादा के बच्चों को यही दवा पूरी टेबलेट चूसकर या फिर चबाकर खाने को देते हैं। फिर भी डॉक्टर को बता देना अच्छी बात है, अक्सर डॉक्टर इस तरह की दवाएं देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों के पेट में तकलीफ हो तो उनको जरूर आप डॉक्टर को बताएं और हल्के में बिल्कुल ना लेवे, ठीक है। तो ये हुई सामान्य जानकारी। अब सुना देते हैं आपको फिर से एक गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नहीं, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम।

0: राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी।
1: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर के पुलिस को, डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं, तुलसी की चाय कैसे बनाई जाती है, तुलसी के किस किस तरह के फायदे होते हैं इस बारे में आपको बताया है, तो ध्यान दीजिएगा और तुलसी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिएगा अगर इस तरह की समस्या हो तो जो आपको बताई गई। और खुशनुमा जीवन की भी ढेर सारी बातें की सविता जी के साथ कि मित्रता किस तरह की होनी चाहिए, और अच्छे अच्छे से रेसिपीज भी सिखाई है कोफ्ते जो आप जरूर बना करके खाइएगा। सामान्य जानकारी भी अच्छी तरह दी है कि किस तरह बच्चों के पेट में तकलीफ होती है तो उनको हल्के में नहीं लेना है, तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। और किचन टिप्स भी आज की इस प्रकार की है, आलू की टिक्की बनाते समय यदि आलू उबाल करके मसलने के बाद 2 चम्मच सूजी मिला दी जाए ना तो टिक्कियां फटती नहीं है और कुरकुरी भी बनती है। अब आज की पहेली इस प्रकार थी, कागज पर मैं सरपट भागू चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली बहुत ही सरल थी। हमारे जिन श्रोता बंधुओं ने फोन किया SMS किए हैं उनके नाम आपको सुना रही हूं। सुरेश भाई दर्जी जिनका जवाब सही है, देखिए पेंसिल जवाब जिन्होंने दिया है सही है, फिर ताफिर हुसैन जी जोटाना से, ताफिर हुसैन जी सिंहपुर से इनका भी जवाब सही रहा, दुर्गा जी पंथवाड़ा से, राधा जी सातपुर से, भरत भाई खुशी आबू रोड से, दामोदर जी यादव इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सुभाष भाई माउंट आबू पीस पार्क से इनका जवाब भी सही है, थावर चंद जी करासिया केमल रोग से इनका जवाब पेन है वो गलत है, संजय भाई, शिवकरण जी, रिंकू, तनिषा, कृष्णा आप सभी का जवाब सही है, लेकिन आज के विनर रहे हैं ज्योति जी माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल से, सबसे पहले और जवाब आपने सही दिया है और उसको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी तालियां। तो ज्योति जी आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खमा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। दोस्तों कहते हैं कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, अगर आप हर वक्त हर मोड़ पर सकारात्मक रहते हैं तो उसे कहेंगे वाह क्या जीवन जिया है इन्होंने। ऐसे ही कुछ अनुभवों के साथ आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए है। आप है सुरेश कुमार जी। आप पिछले 3 दशकों से एक योगी जीवन जी रहे हैं, यानी कि ये नहीं है कि उन्होंने संसार को संन्यास कर दिया है, लेकिन अपनी भौतिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने जीवन को ब्रह्म कुमारी सेश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में शांतिवन में समर्पित करके अपनी योगी जीवन जी रहे हैं। इस योग की साधना से उन्होंने क्या प्राप्त किया है और उस उतार चढ़ाव में ये साधना उनके जीवन में कैसे मदद किया है, आइए आज हम जानते हैं। दोस्तों सुरेश कुमार जी, आप 1990 में ब्रह्म कुमारी इसके संपर्क में आए हैं, मूलतः आप कर्नाटका कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से हैं। आगे की कहानी उनके जुबानी हम सुनते हैं। स्वागत करते हैं सुरेश जी को। नमस्कार भाई जी।
5: नमस्कार
4: भाई जी। हम सबसे पहले आपकी जर्नी की ये कहानी जानना चाहेंगे कि आपकी जीवन की शुरुआत जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हुई है और आपका बचपन कैसा रहा, आपने क्या पढ़ाई किया और आपकी लौकिक परिवार, इसके बारे में आप संक्षिप्त में हमें बताएं।
5: देखिए हमारा लौकिक जन्म कर्नाटक से हुआ है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट पूरे दुनिया में फेमस है क्योंकि हमारा जो फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा उनका भी जन्मस्थल वही है, मेरा भी वही जन्म स्थल है। तो बचपन में मुझे थोड़ा सा जीवन में खेल कूद में इंटरेस्ट ज्यादा थे, तो एक अंदर से यही संकल्प था मुझे बड़े होने के बाद एक अच्छा काम करना है, थोड़ा एक सोशल सर्विस करना है। तो इसलिए मेरा प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल वगैरह कुर्ग में हुआ है। उसके बाद कुर्ग में पढ़ाई करते करते मुझे अंदर से यही हो रहा था मुझे फौजी में भर्ती होकर के भारत का सेवा करना है, ऐसे अंदर से मुझे एक तड़पन थी।
6: तो बचपन से
5: ही
6: जी,
5: मेरा जो बैकग्राउंड परिवार है किसान परिवार में थे, तो इसलिए मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रोसेस नहीं करते थे। तो हर एक जो भी बोलते थे मुझे फौजी में जाने के लिए प्रोसेस करते थे, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ जाता था। इसलिए मैंने सोचा पढ़ाई करना तो फौजी में जाने के बाद आगे पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद मैंने 10वीं पढ़ाई करने के बाद घर में नहीं रहा, घर से बाहर गए, बेंगलोर गए। बेंगलोर में 2 साल प्राइवेट जॉब करते रहा, उसमें बीच में 2 बार भी मैंने एंट्री के लिए गए था, CRPF में गए थे, फिर BSF में गए थे, उसमें भी छोटे छोटे मिस्टेक कारण नहीं हुआ, फिजिकल मेडिकल सब हो जाता था, बाद में रिटर्न टेस्ट में फेल हो जाते थे। प्राइवेट जॉब में जब करने के गए वहाँ एक भाई मुझे संपर्क में आया, वो केरल का भाई था, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संपर्क में 2 महीने से आया हुआ था।
6: ये कौन सी साल की बात है जब
5: आपको? 1990 के बाद है। फिर मुझे उन्होंने ये कहा आपको मैं एक जगह में लेके जाऊंगा, वहाँ जाएंगे तो आप हमेशा जीवन में खुशी में रहेंगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और कभी टेंशन नहीं रहेगा जीवन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बात सुन करके, जीवन में और क्या चाहिए, पहले भी वही संकल्प था। तो मैंने सोचा कहाँ जाने में आऊँगा, ऐसे बोला। तो मैं कभी जाने से पहले ब्रह्म कुमारी इसका नाम भी नहीं सुना था। जब ये भाई ने मुझे लेके गया ब्रह्म कुमारी सेंटर पे, तो वहाँ जाते ही मैंने दीदी को देखा, सफ़ेद वस्त्रधर दीदी को देखा, देखते मुझे ऐसा लगा ये अपना ही है, अपनापन महसूस हुई। मैंने सोचा पहले जब बचपन में थे मैंने क्रिश्चियंस को नंस को अगर देखते थे, तो मैंने सोचा क्रिश्चियंस में ऐसे नंस हो सकते हैं, हमारा हिंदू धर्म में क्यों नहीं हो सकते हैं, मेरे अंदर से ऐसे संकल्प चल रहा था। फिर वही मैंने सफ़ेद वस्त्रधारी को ब्रह्म कुमारी सेंटर में आके देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनापन महसूस हुई। उसके बाद मुझे पहले लेसन ज्ञान के बारे में हमें बताया है।
6: जब आपको ये राजयोग मेडिटेशन परमात्मा का ज्ञान जो ब्रह्म कुमारी से मिला है, उसमें कौन सी बात ऐसी थी जिससे आपको ये निश्चय हुआ कि यही सत्य ज्ञान है, यही चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा था?
5: तो जब बचपन में मुझे भक्ति में कोई इतना रस नहीं थी, मैंने अंदर से सोच रहा था कोई शक्ति है दुनिया में, क्योंकि इसलिए तो दुनिया में लोग भक्ति मार्ग में मंदिर भटकते रहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो कुछ मन्नत मानते हैं, तो कुछ कईयों को सिद्ध हो जाते हैं, तो कुछ शक्ति होगा। और भगवान का नाम तो हमने भक्ति में तो सुना ही है, भगवान एक ही है, ये तो ना पता था, अनेक भगवान तो नहीं है, भगवान तो एक ही होंगे। भगवान का नाम बोलते हम ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन एक तरफ तो दुनिया में मंदिर भी भटकते रहते हैं, लेकिन कौन सी भगवान है, सच्चा है, किसको हम पूजा करना है, अंदर से वो एक तड़फना थी, एक खोज थी, कोई सच कोई होंगे, ऐसा सोच करके। फिर मैंने जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो मुझे कोर्स के लिए जो बिठाया था, पहले खुद को परिचय मिले, उसमें मुझे संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, आत्मा ये प्रकृति के बीच में बैठ करके अंकों द्वारा देखेगा, मुख द्वारा बात करेगा, कानों द्वारा सुनेगा, हाथों द्वारा काम करेगा, पैरों द्वारा चलेगा, ये एक चैतन्य शक्ति है, वो आप है। मैंने सोचा ये तो बहुत इतना अच्छा ईजी ज्ञान है, हमें स्कूल कॉलेज में कोई बताया नहीं, टीचर्स लोगों ने तो हम शरीर के बारे में तो सारा ज्ञान बता देते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बता देते, लेकिन शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है इसके बारे में मुझे पहले बार मैंने सुना था। मुझे पहले सुनते ही मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी।
6: तो ये आपने कोर्स भी किया है और उस ज्ञान का अभ्यास करने लगे हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे अभी मेरा जीवन समर्पित करना है, और वो क्या मोड था, आप अपनी लाइफ को क्यों इस परमात्मा की कार्य के लिए समर्पित किए हैं?
5: जैसे बचपन मेरे को जो आर्मी में जाने का जो अंदर से दो तड़पन थी नहीं, तो उसका मुझे जैसे वो हम सोच रहे थे भारत देश का सेवा करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, मुझे लौकिक घर में नहीं रहना है, घर से बाहर जा करके सोशल सर्विस करना है, देश का सेवा करना है, ऐसे अंदर से दो संकल्प है ना, उसके अनुसार मुझे एक समर्पण भावना अंदर से थी। तो मैंने सोचा आर्मी में जाएंगे तो भी एक समर्पण हो जाएंगे, देश के लिए समर्पित हो जाएंगे, ऐसे मुझे अंदर संकल्प था। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मेरे को अंदर से ऐसा लगा अभी तो हम तो देश का सेवा कर रहे थे, तो मुझे ये पता चला वो ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरा दुनिया में है, केवल भारत देश में नहीं है, कि दुनिया में 140 कंट्री में है। तो इसलिए हम लोग केवल भारत का सेवा नहीं कर रहे, पूरे विश्व का सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जिस्मानी मिलिट्री वाले नहीं है अभी, हम लोग अभी रूहानी मिलिट्री वाले। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा अभी इसमें समर्पित होकर के इस ज्ञान में आगे बढ़ करके विश्व का सेवा करेंगे, ऐसे अंदर से मुझे दृढ़ संकल्प किया था मैंने।
6: जी, ये जो आप 1995 से ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं, तो अभी आप क्या सेवाएं करते हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं?
5: 90 से 95 तक हमने जो 5 साल के अंदर माउंट आबू में 3 बार विजिट दिया थे। एक बार क्या हुआ, 1994 में हमारा मैंगलोर सेंटर विजिट देने के लिए आए थे, तो वो मृत्युंजय भाई वरिष्ठ भाई, उन्होंने मुझे देख करके ये कहा आपको कोई बंधन नहीं है ना, आप कुमार है ना, आप माउंट आबू आ सकते हैं, तो हमारे साथ आ जाओ, आपको मैं सेवा दूंगा, ऐसे मुझे कहा था उस समय। तुरंत मेरे को अंदर से फ्लैश हुआ, जो मेरे को संकल्प था मैंने जो समर्पित होने के लिए, इसलिए भगवान ने इनको भेजा होगा, अभी मुझे माउंट आबू जा करके सेवा में उपस्थित होना है। अंदर से मेरे को एक प्रेरणा आ गई, तो इसलिए मैंने तुरंत 94 में वहां से माउंट आबू आ गया। माउंट आबू आने के बाद मुझे मृत्युंजय भाई साहब ने एजुकेशन विंग में उनके साथ मुझे सेवा दिया। मैंने सोचा माउंट आबू जाएं तो कुछ भी सेवा मैं कर सकता हूँ, मेरे को ऐसे कोई सिलेक्टेड सेवा नहीं है, भगवान की सेवा है, कुछ भी करो अमरली उसमें भागिया बन जाता है। आते मुझे उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए सेवा दिया उसी समय 1994 में। उसके बाद में उस समय तो माउंट आबू में तो हमारे जो आश्रम में बहुत गाड़ियां वगैरह बहुत कम थे, तो उस समय भाई साहब के पास एक क्रिएट कार था। उस समय जो माउंट आबू जो हमारा ज्ञान सरोवर कैंपस है उसमें वैरायटी विंग्स का हमारा कॉन्फ्रेंस बहुत होता था, हर हफ्ते में दो कॉन्फ्रेंस होता था। उस समय MLA MPs गवर्नर्स मिनिस्टर को इन्विटेशन देने के लिए मृत्युंजय भाई निमित्त बनते थे, उनको मिलने के लिए उनको इन्विटेशन देने के लिए जयपुर जाना होता था, दिल्ली जाना होता था। उस समय फ्लाइट का व्यवस्था बहुत कम थी और ट्रेन भी मीटर गेज थी, ट्रेन की फैसिलिटी नहीं था, दिल्ली जयपुर जाना हो तो हम क्या करते थे बाई रोड चले जाते थे। उस समय अच्छा गाड़ी भी नहीं होते थे, फिएट कार थे, एम्बेसडर होते थे, उसी कार लेकर के हम लोग दिल्ली जयपुर जा करके मिनिस्टर्स को MLA MPs को गवर्नर को निमंत्रण देके आते थे। तो मैंने पहला बार माउंट आबू आके यहाँ गाड़ी चलाना शुरू किया।
6: जी, तो इस यात्रा में आपने क्या क्या सीखा है? जैसे एक आध्यात्मिक जीवन के लिए आप आए हैं, स्थूल कार्य तो हर कोई करना ही है, करते ही है, लेकिन आपकी स्व उन्नति में आपने ऐसी क्या चीजें सीखी है, क्या बदलाव आप देखते हैं इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के कारण?
5: जैसे मेरा यही लक्ष्य था, जब इस मार्ग में चलो तो मैं इस मार्ग के जो लक्ष्य है उसको पकड़ के चलना है। कार्य तो हर कोई व्यक्ति को जब तक जीना है तो तब तक कुछ न कुछ शरीर के अंदर काम करना ही है, इसलिए वो कर्म से हम रह नहीं सकते बिना कर्म से। तो इसलिए वो अंदर से सोच रहे तो कुछ भी कर्म करे लेकिन हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाए, उस कर्म के अंदर हमारा योग रहे, तो ऐसे अंदर से एक संकल्प थी। इसलिए मैंने क्या किया, जैसे ईश्वर विश्वविद्यालय के नियम है जो कर्म योग करने का, हर कोई कर्म करते समय भगवान को याद में करना है, मुझे ये पहले कोर्स में बताया हुआ था, वो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। इसलिए मैंने परमात्मा के साथ याद में रह करके कर्म करने के लिए मैंने अंदर से स्टार्टिंग से कोशिश किया था। इसलिए हमें इस ईश्वर विश्वविद्यालय में मुझे ये पता चला सुबह से भी अमृत वेला होता है, तो अमृत वेला भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए बहुत सहज समय होता है, ईजिली कनेक्शन मिल जाती है। इसलिए मैंने जब से ये 7 डेज कोर्स हुआ तब से मैंने सुबह सुबह 4 बजे से 5 बजे तक जो अमृत वेला का मेडिटेशन होता है ना, उस मेडिटेशन को मैंने पक्का करा दिया था स्टार्टिंग से। तो वो मुझे बहुत अंदर से बल मिल गई, और जो भगवान की जो महावाक्य है जो उसको मुरली कहते हैं उसमें भी मैंने पक्का कर लिया था, कुछ भी हो जाए सुबह अमृत वेला उठना है और मुरली क्लास सुनना है और सारे दिन में जो भी सेवा मिले वो भगवान के याद में करना है। ये अंदर से मैंने दृढ़ संकल्प किया था, कहीं भी रहे, पहले माउंट आबू में रहे, बाहर जाए तो गाड़ी लेके जावे, तो भी मुझे भगवान को याद में सेवा करना है। अंदर से एक संकल्प करके मैंने सेवा कर रहा था, ये अंदर से मुझे बहुत बल मिल गई और एकाग्रता भी हमारा अंदर बढ़ते गया। इसलिए कोई भी दिन में जो भी हमारा विघ्न रूप बंधे वो भी विघ्न से मुक्त होते थे। इसलिए मुझे ये रहस्यदार राजयोग जाना ये अंदर से बहुत एक अच्छा लगा मेरे को, इसमें एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। तो इसके कारण से मैंने कोई भी कर्म करे भगवान की याद में करने के लिए शुरू करते थे स्टार्टिंग से। जब से माउंट आबू आया तब से मैंने इसको चालू रखा था, जैसे सुबह अमृत वेले उठना और मुरली क्लास सुनना है और सारे दिन जो भी हमें सेवा मिले उसका हम एक्यूरेट हो करके भगवान की याद में करना। इसमें अंदर हमें दिन में भले आप 500-600 किलोमीटर भी गाड़ी चलाए उसमें हमें थकान महसूस नहीं होता है, उसमें एनर्जी मिला हुआ रहता है, क्योंकि हम हर कर्म को भगवान को अर्पण करके हम कार्य शुरू करते हैं तो हमें वो जर्नी पता नहीं चलता है, बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ऐसे लगता है हम घर में बैठे बैठे हैं, बैठे हुए ऐसे फीलिंग होता है।
6: अगर आप अपनी पूरी जीवन को समराइज करते हुए अगर एक शब्द में आप कहना चाहते हैं, आप अपने जीवन को क्या कहेंगे?
5: क्योंकि जो समर्पित जीवन है ना, ये हमारा जीवन एक अच्छा जीवन जीने का कला हमें यहाँ मिल गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस आध्यात्मिक ज्ञान को पकड़ के चलने से जीवन एक ऊंची स्थिति में जा सकते हैं। जीवन में कोई भी प्रकार का टेंशन में आने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमें एक दिशा मिल गया है ना, एक लक्ष्य मिलेगा, जीवन का लक्ष्य मिल गए। तो वो लक्ष्य के आधार से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान को पकड़ के आगे चलने से हमारा जीवन सफल होगा। इसमें कोई भी प्रकार का हमारे लिए नुकसान नहीं है, हमारा जीवन एकदम सुंदर जीवन होगा। एक दैव गुण अंदर से बढ़ते जाएंगे, हमारा इस जो जन्म है वो हमारा जन्म सफल हो जाएगा।
6: बहुत सुंदर भाई जी, आपने इतनी सुंदर जर्नी को संक्षिप्त में बताया। भाई जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी सेवा मिले तो आप करने के लिए तैयार थे और आपको यहाँ पे ड्राइविंग करने की जो सेवा मिली है, और जैसे आपने कहा कि कितना भी थकावट होता है योग मतलब परमात्मा की याद में आप गाड़ी चलाते हैं तो आप कितना भी लंबा सफर है आपको कोई मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन 3 दशकों की आपकी इस यात्रा में कभी कुछ तो ऐसी बातें हुई होगी जो, क्योंकि सड़क पे जब चलते हैं हमेशा हम गलत है जरूरी नहीं है, हम जब सही भी जा रहे होते सामने से कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते हैं, तो कभी आपको ऐसी कोई परिस्थिति आई सामने और आपने इस आध्यात्मिक पढ़ाई या फिर इससे जो आपने सीखा है उससे आपने इस चीज को पार किया है?
5: तो एक अच्छी घटना है मेरे से हुई थी
6: जी,
5: तो आपको मैं सामने करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, अहमदाबाद से मैं अबरोड आ रहे थे, तो वहाँ से 3 घंटा लगता है अहमदाबाद से अबरोड आने के लिए। बीच में क्या हुआ, रात को हम ड्राइविंग कर रहे थे तो भाई साहब भी हमारे बाजू में बैठे थे, तो रात को करीब 11:30 बजे थी, तो उसी दिन कोई ज़रूरी काम थी तो हमें वहाँ रुकना ना पड़ा, इसलिए रात को हम जर्नी करके आ रहे थे। तो क्या हुआ, 1.5-1.5 घंटा जर्नी हो चुका था, उसके बाद क्या हुआ, हमारा हाईवे पे गाड़ी में बहुत कम गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हुआ, हम आगे चल रहे थे तो पीछे से एक कार वाले बहुत देर से हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, तो हमने सोचा इनको आगे जाने दो बोल करके उनको मैंने साइड दिया था, फिर भी वो थोड़ा देर आगे जा करके फिर वापस गाड़ी स्लो करके कभी राइट में कभी लेफ्ट में आ रहे थे, कम से कम 5 किलोमीटर तक ऐसे आ रहा था। तो उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर आया रोड पे, तो सिद्धपुर के पास में ही, तो मैंने गाड़ी को एकदम धीमे किया। तब तक ये गाड़ी पीछे जो आ रहे थे तो अचानक मेरा बाजू में आया, बाजू में आया तो मेरे को गाड़ी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे, तो मैंने सोचा ये कोई पहचाने वाला तो है नहीं, कोई अनजान व्यक्ति है, अंदर तो 4 लोग बैठे हुए थे। मैंने जबरदस्ती गाड़ी को रोक, मैं सोचा उनका कुछ रास्ता भूल गया होगा, कुछ रास्ता पूछने के लिए आ रहा होगा, ऐसे सोच करके मैंने गाड़ी को थोड़ा साइड में स्टॉप किया। तो उस समय भाई साहब बाजू में बैठे हुए थे लेकिन भाई साहब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, 5 मीटर दूर में वो कार स्टॉप किया था। फिर ड्राइवर उतर के मेरे पास आकर के पूछता है, आपके वजह से पीछे एक कार नीचे खड्डे में गया, अब गाड़ी के क्यों नहीं रोका, हम कब से आपको रोकने के लिए बोल रहे हैं, उसने मुझे कहा। ऐसे बोलते समय मुझे लगा ये तो ऐसे कुछ घटना हुआ ही नहीं है, हमारा गाड़ी को ऐसे नीचे खड्डे में गाड़ी कैसे जाएगा, हमारा गाड़ी टच भी नहीं हुआ, ऐसे इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, कुछ उनको हमारे से कुछ चोरी करना होगा, इसलिए उन्होंने ऐसे हमको बहानाबाजी कर रहे हैं, सोच करके मैं अंदर से संकल्प आया। फिर मैंने ग्लास आधा नीचे उतरा हुआ था, फिर ऐसे उन्होंने कहने के बाद उन्होंने मुझे क्या किया, अब गाड़ी से उतरो, अब ज़्यादा बात नहीं करो, अब मैं शूट करूँगा बोल करके उनके जोब में पिस्तौल थे, वो पिस्तौल ले करके मेरे कान के पास ऐसे टिका दिया था। उस समय मैंने जो ड्राइविंग करते थे तो मैं मेडिटेशन अवस्था में थे, अंदर से कोई कन्फ्यूज नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं थी, मेरा अंदर से एकाग्रता भी बहुत अच्छा था। समय मेडिटेशन करके हम अहमदाबाद से निकले हुए थे, तो दिन में रेस्ट भी मैं अच्छा किया हुआ था, कोई थकान भी नहीं थी, मैं एक्टिव होके गाड़ी चला रहे थे। उसी समय फिर इन्होंने ये ऐसा मेरा गाड़ी को रोका था, मेरे को पिस्तौल निकाल के मेरे कान के पास रखा। उसके बाद फिर मैंने भी डरा नहीं थी, मैं मेडिटेशन अवस्था में था, तो ये तो हमारा जैसे भाई है, ये क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ हुआ नहीं है घटना, या ऐसे डराने के लिए ऐसे दिखाएगा सोच करके मैंने अंदर से कॉन्फिडेंस हो करके बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर उसमें अंदर चार लोग थे, तो एक एक करके मेरे को गाड़ी से बाहर उतरने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो मैंने अंदर से संकल्प आया गाड़ी से उतरेंगे तो कुछ कर डालेंगे, इसलिए मुझे गाड़ी से कुछ भी हो जाए गाड़ी से हमें उतरना नहीं है, क्योंकि बाजू में भाई साहब बैठे थे, ये कुछ करके मुझे कुछ करके फिर गाड़ी में बैठ के गाड़ी ले चले जाएंगे, भाई साहब भी कुछ कर सकते हैं तो बड़ा दुर्घटना हो जाएगी, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे गाड़ी से उतरना नहीं है। अंदर से मेरे को भगवान का टचिंग हो रहा था, लेकिन मेरा लाइन क्लियर थी, कोई डर नहीं था, अंदर से मैंने उनको देख डरा भी नहीं था, मैं साक्षी होकर अपना भाई का समझ करके उनको देखा हुआ था। उस समय बाद में तीसरा व्यक्ति आकर के बोलते हैं अब गाड़ी से उतरो नहीं तो गाड़ी बंद करो, बोल करके गाड़ी बंद करके गाड़ी की चाबी अपने पास ले लिया। गाड़ी के अंदर हम दोनों बैठे हुए थे, गाड़ी बंद हो गई, फिर भाई साहब को नींद खुल गई, तब तक भाई नींद खुल गया तो जब इंजन बंद हो गए, तो इंजन बंद होने के बाद फिर बाद में वो लोगों ने भाई साहब को देख लिया, गाड़ी की चाबी तो ऑलरेडी ले चुके थे, हम गाड़ी मूव नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या किया, वो लोगों ने हमारा गाड़ी के पीछे जा करके आसमानी को और फायरिंग किया, तो उस समय भाई साहब उनको देखा तो भाई साहब पता चला ये लोग ऑलरेडी चोर लोग हैं, ये कुछ लूटने के लिए आए हैं, हमें किसी की हेल्प लेना पड़ेगा, बोल करके भाई साहब ने क्या किया रोड पे उतर, डोर ओपन करके रोड पे आया। रोड पे आते समय पीछे से एक ट्रक वाले आए, उसको देख के भाई साहब उसको हेल्प लेने के लिए उनको रोकने के लिए बोला था। उस समय ट्रक वाला नजदीक आया, आकर के हमें भी देखा, और वो लोग पीछे गाड़ी के पीछे तीन लोग थे, तो ट्रक वाले को समझ में नहीं आया ये कोई आरटीओ वाले चेक करने के लिए आया होगा सोच करके ये लोग सीधा चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद फिर बाद में भाई साहब क्या किया, पीछे मोड़ के देखा तो एक जीप वाले आए थे, वो हमारा गाड़ी के सामने खड़ा किया था। उस समय फिर भाई साहब इधर से उनके पास जाके बता रहे थे ऐसे ऐसे हम लोग अहमदाबाद से आ रहे थे, हमारे सामने लोग गाड़ी रोक करके आसमानी का और फायरिंग किया, शायद कुछ लूटने के लिए आ रहे होगा सोच करके समाचार बता रहे थे। मैंने अंदर से गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, सीट बेल्ट पहना हुआ था। उसके बाद ये लोगों ने क्या किया, इधर से मेरे को फायरिंग करके अपना गाड़ी बैठ कर चले गया। जैसे फायरिंग हुआ तो मेरा कान के पास ऐसे लगता था कोई इधर से कोई पत्थर फेंका, ऐसे फीलिंग हुआ, तो फायरिंग का आवाज भी सुनाई दिया था, तो यहाँ लगा तो मेरे को लगा ये तो उन्होंने फायरिंग किया ऐसा लग रहा था। बाद में जैसे हाथ पकड़ के ऐसे देखा कान के पास, धीरे धीरे कोन आना शुरू हो गई थी। फिर बाद में जब जीप के साथ जो भाई साहब बात कर रहे थे वो, फिर बाद में भाई साहब में जो मोड़ के देखा तो मैंने हाथ पकड़ के मेरा सिर नीचे ऐसे हो करके मैं बैठा हुआ था। उसी समय फिर जीप वाला भी पूछा, ये लोग जब गए थे ये लोग फायरिंग किया ना, बोल कर मैं ढूंढ करके पूछ करके आता हूँ, बोल कर गए वापिस नहीं आया जीप वाला। उसके बाद मुझे लगा तो इंजर हो गया, अभी भाई साहब को लगा अभी खून निकल रहा है, अभी ऑफिस हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना हो तो कहाँ जाना है क्या है कुछ पता नहीं है भाई साहब को। मेरे को जैसे खून आ रहा था कान के पास, जैसे मुंह में जैसे पानी भर हुआ था फीलिंग हो रहा था। जैसे भाई साहब नज़दीक आया, भाई साहब को मैंने चलो अभी हॉस्पिटल जाना तो एम्बुलेंस नंबर बताना पड़ेगा, पुलिस का नंबर बताना पड़ेगा, बोल करके मैंने भाई साहब को पुलिस को नंबर बताया, 100 नंबर में करो पुलिस आ जाएंगे, और 108 नंबर करो तो एम्बुलेंस आ जाएंगे। ऐसे मैंने भाई साहब बोलने के लिए जैसे मुंह ओपन किया तो मुंह के अंदर जो पानी समझा था वो खून भरा हुआ था मुंह के अंदर, वो क्या हुआ जैसे स्प्रे हो गया पूरा ऐसे सामने से। फिर भाई साहब उसको देखते बहुत घबराहट हो गया, भाई साहब को ये क्या हो गया अभी तो। फिर मैंने अंदर से संकल्प किया अभी कुछ ही वजह मुझे फायरिंग तो हुआ है, आत्मा तो विनाश नहीं होगा, शरीर तो फायरिंग किया तो शरीर को लगा है ना, लेकिन आत्मा जरा हमारा अविनाशी है, मेरे शरीर के अंदर पार्ट बजाने वाले आत्मा है, तो आत्मा इस शरीर छोड़ेंगे तो अगले जन्म में अच्छा पार्ट बजाएंगे। अंदर से मेरे को ये संकल्प तोड़ करके अंदर से कोई घबराहट नहीं थी, मैं आराम से शांति से बैठा हुआ था। फिर बाद में भाई साहब ने एम्बुलेंस को और को हॉस्पिटल को फोन करने के लिए बोला, पुलिस को फोन किया तो 20 मिनट में एम्बुलेंस भी आ गया और पुलिस भी आ गई। तब तक मैंने अंदर से मेरा पूरा बेहोश नहीं हुआ था लेकिन खून नाक से और मुख से निकल रही थी, तो उसको फिर मैंने स्टेबल करके माइंड स्टेबल करके अंदर से कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं आया और एकग्रत होकर के मैं यौगिक तो होकर के भगवान की याद में भगवान के साथ मैं बिंदु बन करके भगवान के साथ में बैठने के लिए अभ्यास किया। उतना अनुभव करते 20 मिनट हुआ, तब तक एम्बुलेंस भी आ गए पुलिस भी आ गए। तो उसके बाद फिर मुझे एम्बुलेंस में बिठा करके फिर नज़दीक वाला हॉस्पिटल में लेके गए, फिर वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने बोला आपको ये ज्यादा इंजर हो गया होगा, इसलिए हमारे पास स्कैन सिस्टम नहीं है, आपको वापिस मेहसाणे में जाना है, वहाँ जाएंगे तो आपका इलाज हो सकता है, ऐसे बोला। तब तक पुलिस भी आए थे, एम्बुलेंस भी साथ में, एम्बुलेंस में बिठा करके मुझे लेके गए थे। गाड़ी तो रोड पे खड़ी थी, गाड़ी खोलना पड़ा था, चाबी नहीं था हमारे पास। फिर मैंने भाई साहब को ये भी बोला था गाड़ी हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, चाबी हमारे पास नहीं है, वो लोग वापिस आकर के गाड़ी भी ले जा सकता है, इसलिए पुलिस को बोलना गाड़ी के पास रुकने के लिए। मैंने उतना भी कॉन्शियस मेरा अच्छे थी, क्योंकि मैं यौगिक तो कह रहा है ना, अंदर से कन्विंस नहीं थी, कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और बेहोशी भी नहीं हुआ था। मैं साक्षी होकर के मेरा खून निकलते हुए बॉडी को देख रहा था साक्षी होकर के उसी समय। फिर बाद में भाई साहब पुलिस को गाड़ी के पास रोकने के लिए बोला, फिर एक पुलिस गाड़ी के पास रुके थे। तब तक भाई साहब अहमदाबाद में हमारा हेडक्वार्टर में फोन करके वहाँ नजदीक वाला सेंटर वालों को फोन करने के लिए बोला, वहाँ से दो भाई लोग भी टूर लेके आए थे, और एक भाई और एक पुलिस गाड़ी के पास रुके थे, और एक भाई हमारा साथ एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में आए थे। फिर बाद में उस हॉस्पिटल में वहाँ से कुछ ने एक्शन नहीं लिया डॉक्टर ने, बाद में डॉक्टर बोला अभी वापस मेहसाणा में जाना है, वहाँ आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर पीछे से पुलिस वैन भी आए थे, हम भी एम्बुलेंस में बैठ करके मेहसाणा में गए, पेशेंट में जाते वो रोटरी हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ जाने के बाद में पुलिस बोला ये तो रोटरी हॉस्पिटल है, यहाँ कोई आपका इलाज हो नहीं सकता, यहाँ स्कैनिंग सिस्टम नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करो, यह इमरजेंसी केस है, इसलिए आप अहमदाबाद ले चलो। फिर वहाँ से फिर अहमदाबाद एक घंटा जर्नी है मेहसाणा से अहमदाबाद जाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल में, फिर वहाँ हम गए थे। वहाँ जाते समय फिर बाद में लग रहा था मुझे अब एक घंटा जर्नी में कुछ भी हो सकता है, शरीर भी छूट सकता है, इसलिए मुझे भगवान के याद में रहना है, अंतमति स्वगति ऐसा सोच करके भगवान के याद में एक हाथ तो मेरा कान के पास ही, मेरे अंदर ऐसा लगता है कान के अंदर खून जा रहा है, उसको बंद करके मैं रोकूं बोल करके एक हाथ में ऐसे बंद करके मैं बैठा हुआ था। फिर बाद में भाई साहब एम्बुलेंस में साथ में बैठे हुए थे, सब जगह में फोन करके मैसेज वगैरह बता दिया था ऐसे ऐसे हुआ है बोल करके। फिर बाद में अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हुआ, इमरजेंसी इलाज हुआ, अच्छा हुआ, मेरे को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ, और लास्ट तक भी बेहोश नहीं हुआ था, मैं फुल कॉन्शियस में हूँ, लेकिन सारा हिस्ट्री मुझे पता है क्या क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, कितना बजे हुआ, मेरा अंदर साथ में कितना लोग थे, सब मुझे सब याद रहता, साथ में याद रहा। फिर बाद में 8 दिन का हॉस्पिटल का सफर हुआ, एक ऑपरेशन अच्छी हुई। वो जी ड्रामा सर क्या हुआ, जो कान के पास जो बुलेट जो घुसी थी वो मुँह के अंदर आकर के लेफ्ट साइड में गले में फंसा हुआ था, तो मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद स्कैन करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया आपको यहाँ देखो गोली फंसा हुआ है, क्योंकि मुझे तब तक कुछ पता नहीं था, एम्बुलेंस में मैं सोते ही जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था। बाद में हल्का सा दर्द जैसा फीलिंग हो रही थी, फिर बाद में डॉक्टर बताने के बाद फिर बाद में स्कैन पता चला आपको गोली यहाँ फंसी हुई है, अभी उसको निकालना है। फिर बाद में स्कैनिंग पूरा होने के बाद फिर बाद में डॉक्टर ने बताया अभी आपका ब्लड खून बहुत लॉस हो चुके हैं, कम से कम इतना 3 घंटा जर्नी में कम से कम 3 लीटर खून निकल गया मेरा बॉडी से, तो मेरे को बॉडी से गाड़ी से एम्बुलेंस नीचे उतरने के लिए एनर्जी नहीं थी, तो मेरे को हाथ पकड़ के फिर एम्बुलेंस में इसमें स्ट्रेचर में बिठा करके ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। तो पहले स्कैनिंग वगैरह किया था, उसके बाद मेरे को स्टेबल करके ICU में भर्ती करके, फिर उसी समय डॉक्टर भी आए थे, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी आए थे, फिर नेक्स्ट डे तक के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि खून वगैरह चढ़ाना है, इसलिए आपको कल ऑपरेशन होगा बोल करके। फिर बाद में ब्लड अगर कोनो वगैरह चढ़ा दिया था, नेक्स्ट डे 11 बजे से 1 बजे तक ऑपरेशन हुआ, उसमें टेबल आ गई। फिर बाद में वापिस 4 दिन ICU में थे और 4 दिन वार्ड में आ गया, 8 दिन में डिस्चार्ज हो गई, और धीरे धीरे रिकवरी होते गए। लेकिन मेरा जैसे गोली कान के पास जो घुसी थी ना, यहाँ भी ऑपरेशन कर मतलब जो हड्डियाँ है वो थोड़ा डैमेज हो गई थी, उसको भी ज्वाइंट करके ये स्टिच किया था। अब लेफ्ट साइड में जो गले के पास थी जो बुलेट थी उसको निकालने के लिए ओपन करना पड़ा, उसको ओपन करके वहाँ भी स्टिच करके रखा था, इसके कारण इसको हीलिंग के लिए मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीना तक मुंह बंद करके रखा था। 1.5 महीने ओनली जूस पे मैं रहा और जूस पीते रहा और मेरा हीलिंग अच्छा हो गया। फिर बाद में जूस पीने के साथ साथ में टैबलेट भी देते थे, वो टैबलेट को खाना पड़ता था, लेकिन मुझे मुँह तो ओपन नहीं करना है तो जूस के साथ टैबलेट को क्रश करके देते थे, मैं वो भी भगवान के याद में पीता था तो मेरे को इजीली अंदर चले जाती थी, तो इसलिए मेरा हीलिंग जल्दी हो गया सब कुछ। जो भी हो इसका सार यही है, एक तो प्लस पॉइंट है मैं गाड़ी से उतरा नहीं है, वो दुर्घटना बड़ा दुर्घटना से बच गई, और दूसरा मेरा हीलिंग के कारण यही है मैं भगवान के याद से ये टैबलेट को मैं पीता था, इसलिए मेरे को हीलिंग जल्दी हो गई, मेरे को इसके अंदर का कोई तकलीफ ही मेरे को महसूस नहीं हुई, कोई दर्द का महसूस नहीं हुआ। हॉस्पिटल में मैं ऐसे 8 दिन रहा, मैं ऐसा लगता है मैं इस शरीर से नहीं रहा हूँ, मैं वतन में उड़ रहा हूँ, ऐसे जैसे फरिश्ते जैसे उड़ रहा हूँ। जो भी हमारा सेवा करने के लिए नर्सेस लोग आते थे, ऐसा लगता था मेरे को ये फरिश्ते लोग मेरा सेवा करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे भगवान ने मुझे भेजा है, ऐसे अंदर से मेरा संकल्प होता था। बाकी सबको भगवान का संदेश सबको मैंने बांटा था हॉस्पिटल में, सब लोग ऑर्डर कर रहे थे ये तो पेशेंट है, ये तो गिफ्ट बांट रहे हैं, ऐसे उनको अंदर से ये होता था। मैंने सबको ये कहता था भगवान ने देखो, मैं भगवान में याद में था इसलिए भगवान ने मुझे बचाया है, मेडिटेशन अवस्था में थे, इसलिए आप लोग भी इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, आपका जीवन भी ऐसे निडर होकर के जीवन में जो भी विघ्न आएगा वो विघ्न से पार हो सकते हैं, ऐसे मैंने सबको संदेश देता था।
6: सच ए वंडरफुल स्टोरी, कितनी बड़ी परिस्थिति है लेकिन एक परमात्मा की याद और उनके प्रति जो विश्वास है और वो जो शक्ति उससे जो मिलती है, कैसे हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को पार करते हैं। कई बार हम जीवन में जब विकट परिस्थिति आते हैं भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरे को ही ये क्यों परिस्थिति दिया है, लेकिन वही जगह पे भगवान तू था इसलिए मैं बहुत कुछ होने से थोड़े समय में बच गया। कितना अंतर है इस आलोचना में। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, कैसे विषम परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ हम अपने जीवन को फिर से एक नॉर्मल लाइफ में लेके आ सकते हैं। अब अपनी जीवन के उदाहरण उनसे हम सबके सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
5: थैंक यू।
6: जब परमात्मा को हम अपनी जीवन समर्पित करते हैं, हमारा जीवन कितना सुखमय और कितना सुंदर, कितना सरल सहज बन जाता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है और संतुष्टता से ही भरपूर है हमारा जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आज आपकी जीवन से हमें ये जो बातें सीखने को मिली हैं, शुक्रिया आपको। दोस्तों यहीं पे आपसे विदाई लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।
3: अभी बजे हैं दोपहर के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: तो सभी सुनने वालों को नमस्कार, सुप्रभात। और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। मन की आंखों से में हमने बहुत सारे हमारे साथियों, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों को आज तक रिकॉर्ड किया है, उनकी बातें सुनी है, उनको समझने की कोशिश की है कि वो आंखें नहीं होते हुए, या कहें कि वर्चुअली नजर ना होते हुए भी जीवन जीने का इतना नजरिया कहाँ से लाते हैं। और उसी की तलाश में हम निकल पड़े थे आज से 3 से 4 साल पहले। और मन की आंखों से के इस शो से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए हैं, और हमने यही जानने की कोशिश की कि ये आंखें ना होते हुए भी जीवन को कैसे आंखें मिलती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मन की आंखें रखते हैं हमारे वो साथी, जिनको हम नेत्रहीन कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, दृष्टि बाधित कहते हैं। और हमारे साथ ही हमारी एक सीनियर साथी, जिन्होंने एक समय पे न केवल बैंकिंग के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद किया, और इसके साथ साथ अब स्पिरिचुअलिज्म से भी जुड़ी हुई हैं, और हमारे शहर लखनऊ से, कहें कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लखनऊ के शहर से, खूबसूरत शहर से आती है हमारी साथी, हमारी सीनियर बहन, जिनका नाम है ममता कपूर। और ममता कपूर जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, और एक शानदार रेगुलर सेवाओं के बाद अब समाज में कैसे अपनी सेवाएं दे रही हैं, या कहें कि दूसरी पारी जीवन की कैसे खेल रही है, आइए हम जानेंगे। तो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और पर हम कहते हैं ना, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो ममता जी, आपका स्वागत है हमारे रेडियो शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए।
0: जी, ऑक्टावो की वादियों से आप सुन रहे हैं हमारा रेडियो शो, और आप इसे सुन सकते हैं हमारे रेडियो मधुबन ऐप पे भी, और कुछ दिनों बाद हम इसको लेकर आएंगे स्पॉटिफाई पे भी, तो आप उसको सुन पाएंगे हमारे रेडियो शो को रेगुलर, नियमित, और रखिए अपने दिल के पास इस शो को। तो मन की आंखों से में ममता जी हमारे साथ हैं, और ममता जी से हमको ढेर सारी बातें करनी है। और अब आप थाम के बैठ जाइए आपका दिल अगले 1 घंटे के लिए, देखिए ना कहाँ से इस पिटारे में कौन कौन सी बातें निकलती हैं, कौन कौन से जीवन के वो महत्वपूर्ण अनुभव निकलते हैं जो शायद आपको रोशनी देंगे और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, तो माउंट आबू की वादियों से हम आपके लिए लेकर आए हैं इस बार के रेडियो शो में एक और साथी, जो हमारे डिसेबल साथी है, हमारे ही कम्युनिटी से है, लेकिन उनकी चुनौती जो है वो थोड़ी सी अलग है। और आपको तो पता है हम मन की आंखों में से ऐसे साथियों को भी रिकॉर्ड करते रहे हैं जो नेत्रहीनता से अलग डिसेबिलिटीज के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन उनको उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा एहसास नहीं की कराया कि वो परेशान है या हैरान है। तो हम इस बार हमारी जो साथी हैं, जो ममता कपूर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, वे शारीरिक रूप से सक्षम हैं और व्हीलचेयर बाउंड हम उन्हें कह सकते हैं, आप व्हीलचेयर का उपयोग करती हैं। तो ममता जी, हम आपकी यात्रा को शुरू करेंगे, तो यात्रा की शुरुआत होती है बचपन से, अब आप बहुत तुले हैं बचपन से ऊपर, तो आपने डिसेबिलिटी कैसे एक्वायर की, और आपके बचपन की जो शुरुआत है, जो हम कहते हैं ना 55 साल पहले आपका जो बचपन था वो कैसा था, वो हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: मैं अपने माता पिता की पहली संतान थी, और उनके पास शादी के 5 साल बाद मेरा जन्म हुआ। घर में बहुत खुशियां मनाई गई, बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। जैसे गांव में मेरा बिलग्राम नाम के गांव में जन्म हुआ था, गोले छुड़ाए गए, आतिशबाजी की गई, लेकिन 2 साल की जब मैं हुई और चली नहीं, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट जो है कराने के लिए दर दर भटके, वो एलोपैथ डॉक्टर, होम्योपैथ, उन्होंने मतलब यहाँ से लेके अमेरिका तक, और आयुर्वेद से लेके कोई भी पैथी, किसी तरह की, कोई कहता कि अंग्रेज महिला आई हुई है वो कुछ पानी देके वो करती है, कोई जादू टोना भी कर रहा है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे पिता बहुत सीनियर ऑफिसर रिजर्व बैंक पे हुआ करते थे, लेकिन वो हर जगह ले लेके मुझे दौड़े, लेकिन 13 साल तक जब सफलता प्राप्त नहीं हुई और मैं पूरी तरह व्हीलचेयर पे आ गई, फिर उन्होंने पढ़ाई पे मेरे ध्यान देना शुरू किया। अक्षमता पे कोई उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, फिर मुझे उन्होंने पढ़ाई पे जोर दिया, और तब तक मुझे वो स्कूल के पेपर्स लाके देते थे, ट्यूटर आता था, मेरे एग्जाम लेते थे, और मैं एक के बाद एक क्लास ऊपर चढ़ती गई। हर साल मेरे एग्जाम लिए जाते थे घर पे, लेकिन मेरी तकदीर कहे या मेरी लगन कहे, क्योंकि मुझे कुछ बन कर दिखाने की तमन्ना मैं जब 5 साल की थी तब से ही मुझे लगता है था कि इस शारीरिक अक्षमता को मुझे बहुत पीछे छोड़ देना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर मैं जो थी, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो मैं मेरे घर के सामने ही एक स्कूल खुल गया। तो मेरे पिता ने बात की, तब तक मैं 9th पास कर चुकी थी, तो फिर मैंने 10th क्लास में डायरेक्टली एडमिशन लिया। और फिर उसके बाद तो एक के बाद एक सफलताएं पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे प्राप्त हुई। मैंने वहाँ पे SSC बोर्ड होता था, वहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया। फिर ग्रेजुएशन की, फिर ये लगा कि अब कॉलेज कैसे जाऊंगी, तो मेरी सिस्टर जो जस्ट मेरे से छोटी थी उसने मुझे कहा कि आप दीदी चिंता क्यों करती हैं, मैं तो हुई है ना आपके साथ। तो वो और मैं, मेरे से वो 1.5-2 साल छोटी है, तो हम दोनों ने ही एक साथ ही SSC बोर्ड पास किया था। तो फिर मैं, हम दोनों ने गुजरात कॉलेज जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने पढ़ाई की है, उस प्रेस्टिजियस कॉलेज में मैंने अहमदाबाद में, मेरे पापा तब उस समय अहमदाबाद में पोस्टेड थे, तो मैंने वहाँ पर अपना एडमिशन लिया। और वहाँ भी मुझे भैया इतना कोऑपरेशन मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं सुनती थी कभी, हम जैसे बच्चों के स्कूल अलग होते हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, कॉलेज में भी हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है, पर मुझे आज तक किसी भी जंक्शन में इस बात का एहसास किसी ने भी नहीं कराया मुझे भाई किसी तरह की कमी है। मेरी पढ़ाई की बुलंदियों को देखकर, मेरे मार्क्स को देख के सब लोग मुझसे जुड़ते चले जाते थे। और हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तो मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया कि आप सोचिए कि 4 साल जो कॉलेज के थे, रूम नंबर 16 में ट्यूटोरियल्स, सारे लेक्चर्स, आउटसाइड लेक्चर्स सब उसी क्लास में करवाए, मुझे कहीं भी मतलब किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और साथियों का भी मुझे पूरा पूरा सहयोग मिला। ये जरूर था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए शायद उससे लोग जुड़ना भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये एबिलिटी जो है उससे लोग इम्प्रेस होके भी और प्यार से, पर दया से कभी नहीं, मेरे कोई भी मुझ पर दया कभी नहीं दिखाई। और मैं सच बताऊं भाई, कभी भी मुझे हमेशा इस बात से चिढ़ रही कि मुझे कोई फिजिकली हैंडीकैप कह दे या बेचारी शब्द का यूज कर ले मेरे लिए। मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया, उसके बाद उसमें भी मेरिट स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई। और लेकिन मैं मेरिट स्कॉलरशिप को मैंने उन गरीब बच्चों को दान दे दी जो अपनी पढ़ाई करके नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद मैंने साहित्य रत्न किया वर्धा यूनिवर्सिटी से। मेरी पढ़ाई की चाहत कभी खत्म ही नहीं हुई, मुझे ये था कि मुझे दुनिया से कुछ अलग करना है, मुझे कोई ये ना समझे कि ये फिजिकली अक्षम है इसलिए ये काम नहीं कर पाए, ये बात मुझे कभी भी स्वीकार्य नहीं थी। उसके पश्चात फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना शुरू किया, उसमें भी तरह तरह की परेशानियां आई, लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे शायद, मैंने हर एक एग्जाम को क्लियर किया, यहाँ तक कि ESI एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फिर इनकम टैक्स, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टेलीफोन्स, इनकम टैक्स, हर एक के एग्जाम मैंने पास किए, लेकिन फाइनली मैंने रिजर्व बैंक को चूज किया और वहाँ फिर मैंने फिर जीवन के 37 साल आबाद गत से करे। और वहाँ भी मतलब राइट फ्रॉम प्यून टू टॉप ऑफिशियल्स सबने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया, और मैंने भी अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपने आड़े आने नहीं दिया। मुझे मेरा चूंकि ग्रेजुअली ये तकलीफ होती गई इसलिए बढ़ती गई, तो पहले मैं लिख के सारे स्टेटमेंट्स बनाती थी, सब करती थी, फिर धीरे धीरे भगवान भी मेरे साथ हमेशा मददगार रहा। जब हाथ में अक्षमता आनी शुरू हुई तो कंप्यूटर युग आ गया, मेरे एक साथी ने कहा कि दीदी आपने इतना अचीव किया, कंप्यूटर कौन सी बड़ी चीज है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मेरे सब साथी इतने अच्छे थे, लेडीज हो या जेंट्स, हर एक ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। और मैं आप विश्वास करें, मतलब आई वॉज द फर्स्ट टू कंप्यूटराइज माई सीट फुल्ली, मैं अपने पूरे काम को फुल्ली कंप्यूटराइज कर पाई। हाँ, और मतलब तो मेरी क्षमता और भी बढ़ गई, और फिर मैंने अपने प्रमोशंस के लिए भी एग्जाम दिए। आई रिटायर्ड एज मैनेजर, मेरे सब बॉसेस, मेरे सब साथी सब साथ तो देते ही थे और मुझे इंस्पायर भी करते थे। बस ये था कि मुझे कभी भी किसी चीज से कभी हार नहीं माना। और मैंने आपको एक बात और बताऊं, मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी का फायदा कभी नहीं लिया सरकार से। मैंने हमेशा जनरल कैंडिडेट की तरह हर एग्जाम में मैं अपीयर हुई, क्योंकि मुझे पसंद था ही नहीं कि मैं फिजिकली हैंडीकैप कहलाऊं। मैं अक्षम होते हुए भी हमेशा सक्षम बनी रही, और लोगों ने अपने साथ से मुझे बनाया भी। मेरा आत्मविश्वास हमेशा हाई पे रहा और कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रही।
0: जी, तो आपने अपने बचपन से लेकर और अपने यंग एज तक की सारी चीजें हमसे लगभग साझा कर ली हैं, लेकिन हम उस बातें और ढूंढना चाहेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, हमारे श्रोता जान रहे होंगे कि दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रिहैबिलिटेशन, और जिस हमारे दिव्यांग साथी का रिहैबिलिटेशन हो जाए वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, मेन स्ट्रीम में आ जाता है, मुख्य धारा में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों को ये अवसर नहीं मिल पाता, और उनके माँ बाप बहुत सालों तक डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं, और बच्चे की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोताओं से यही कहते हैं, या हम उनको यही बताना चाहते हैं, और आप जैसे हमारे साथियों के माध्यम से भी हम ये बात का प्रचार प्रसार लोगों तक करना चाहते हैं जागरूकता, कि आप बेशक इलाज के लिए यहाँ वहाँ जहाँ आपको ट्राई करना है वो आप बिल्कुल बेशक आप ट्राई करिए, लेकिन अगर आपको एक देश के एक प्रतिष्ठित अस्पताल के चिकित्सक ने कह दिया कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर हमें बाबाओं और नीम हकीमों के चक्कर में हमारे बच्चे का जीवन खराब नहीं करना चाहिए, और उसके रिहैबिलिटेशन के बारे में विचार करना चाहिए कि वो कैसे मुख्य धारा में आ सकता है, वो कैसे आगे पढ़ाई कर सकता है, कैसे उसका स्कूल में एडमिशन हो सकता है, और वो कैसे अपने साथियों का सहयोग ले सकता है। तो हम इसी परिकल्पना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोगों तक, जैसे आपका रिहैबिलिटेशन हो पाया, बेशक आपके माता पिता ने आपका इलाज कराने का भी भरपूर प्रयास किया और वो अमरीका तक पहुंच गए, परंतु उन्होंने आपकी शिक्षा में कोई कोताही नहीं बरती, आपको एक अच्छे विद्यालय में जाने का अवसर मिला, और आपने वहां पर अपने प्रेम से, अपने जज्बे से लोगों को प्रभावित किया और उनका प्रेम और सहयोग भी पाया। और आपका जो बात आपने रखी है कि दिव्यांग कहलाना मुझे पसंद नहीं है, निश्चित रूप से वो

0: है और बहुत सारी समस्याएं एक व्हील चेयर पे चलने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं। लेकिन जैसा ममता जी ने बताया कि हम उनके बचपन से लेकर उनके यंग एज तक का जो स्ट्रगल है, उन्होंने बताया कि वो कैसे अपना लोगों का सहयोग ले पाई, एक ही कमरे में उनको सारी चीजें उपलब्ध कराई, कमरा नंबर 16 उनके लिए एक माइलस्टोन बन गया है, तो जिसको उन्होंने जिक्र भी किया। तो ये कमरा नंबर 16 की कहानी क्या है वो हम इनसे जानना चाहेंगे और कैसे वो सहयोग मिल पाया, और बिल्डिंगों की जो हम हालात आज भी देखते हैं कि बिल्डिंगें एक्सेसिबल नहीं है और पोस्टिंग और ट्रांसफर के दौरान भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को कई तरह की चुनौतियां आती है, वहां उसको रियलाइज होता है कि मैं डिसेबल्ड हूं, लोग कहे बिना ही कह देते। ममता जी के इंसिडेंस आपको मैं बताऊं कि एक बहुत प्रतिष्ठित मॉल के मालिक से मेरी एक दिन डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपका मॉल तो बहुत सुंदर है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, हमारे दिव्यांग व्यक्ति नहीं आ सकते, आपने इसको एक्सेसिबल नहीं बनाया। तो वो कहते हैं कि वो आते ही नहीं है, हमें रैंप बनाने की जरूरत ही क्या है, आप पहले रैंप बनाइए फिर देखिए कि वो कैसे इस जगह इस मॉल को कैसे घेर लेंगे, तो आप एक बार मौका तो देखिए दीजिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये वही बात है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सरदार पटेल को कही थी कि आप, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे एक मौका तो दीजिए संविधान लिखने के लिए, हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो वही बात जो बात आपने अभी कही, तो ममता जी इन सारी बातों पर हम आपको सुनना चाहेंगे।
1: देखिए जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो पहले स्टार्टिंग में 4 स्टेप्स थे, तो मैं जैसे ही पहुंची तो मैं और मेरी सिस्टर, तो उन्होंने 4 लड़के आए और जैसे गॉडसेंट होते हैं उस तरह उन्होंने मेरी व्हीलचेयर सहित मुझे उठा के ऊपर चढ़ा दिया, जैसे भगवान के 8 हाथ आए और उन्होंने मुझे उठाया और ऊपर रख दिया। उसके बाद हमारे क्लास नीचे थे, कुछ क्लासेस नीचे भी थे और कुछ ऊपर भी थे, लेकिन मेरे साथियों ने जो मैंने को एजुकेशन में ही हमेशा थ्रू आउट पढ़ा है, तो मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि मैम आपके कोई ब्रदर है क्या, तो मैंने कहा अरे आप एक ब्रदर की बात करते हैं, मेरे तो इतने सारे भाई हैं, आप लोग मेरे क्या हैं, भाई तो हैं बस। उस दिन का दिन, उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से अप्रोच किया और मेरी प्रॉब्लम को बताया, मुझसे मिलवाया, और उसके बाद तो प्रिंसिपल मुझसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक क्लास क्या मतलब हर क्लास, हर ट्यूटोरियल, हर आउटसाइड लेक्चर सब रूम नंबर 16 फॉर ऑल द 4 इयर्स वहीं पे ऑर्गेनाइज हुए। इतना ज्यादा सहयोग मुझे मिला, मेरी सिस्टर जो थी वो मुझे रिक्शे से लेके जाती थी, ईश्वर की दया ही, मैं तो हर अपने मैंने जो किया सो किया लेकिन ईश्वर का पूरा हाथ मेरे पर रहा, वरदहस्त जिसको कहते हैं, मेरे परिवार ने जो मदद की उसके अलावा साथियों ने, और ईश्वर का वरदहस्त हमेशा मेरे पर रहा। मुझे कॉलेज ले जाने के लिए एक भैया जी मिल गए रिक्शे वाले, तब हम लोगों के पास कार तो हुआ नहीं करती थी, तो हम दोनों रिक्शे से जाते थे, वो हम लोगों को बहुत उससे ले जाते थे, मुझे मैनुअली उठा के व्हीलचेयर पे बैठाते थे, और फिर वहाँ रैंप बनवा दिया गया था, तो वो जो स्टार्टिंग के 4 जीने थे वो भी मेरे लिए बाधा नहीं बन सके, और उसके बाद तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर वही वर्धा यूनिवर्सिटी से साहित्य रत्न की डिग्री प्राप्त की, फिर ये रिजर्व बैंक ज्वाइन किया, लेकिन पढ़ाई की वो तो भूख मेरी कभी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आके LLB की शिक्षा प्राप्त की, मैंने LLB की भी डिग्री पाई, और वहाँ ज्वाइन करा नहीं लेकिन मैं एग्जाम देने गई, और वहाँ के जो डीन थे वो स्वयं मुझे अपने घर बुलाते थे और मुझे कहते थे कि ममता अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे तुम डिस्कस कर लो आके मेरे घर पे, और मैं उनके घर में जाती थी और वो मुझे गाइड करते थे, और इस तरह मैंने अपना LLB भी कंप्लीट किया। मुझे शरद जी हमेशा से डॉक्टर बनने की बड़ी अभिलाषा थी, पर चूंकि मैं शारीरिक रूप से अक्षम थी तो ये तमन्ना कैसे मेरी पूरी होती, लेकिन देखिए भगवान, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो इस तमन्ना को ये समझिए कि मैंने पत्राचार द्वारा मावेली लोबियो मिशन से करस्पॉन्डेंस का होम्योपैथ के डॉक्टर का कोर्स किया, और उसके बाद मैंने वहां से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में बन गई, और मैं होम्योपैथ की सेवाएं भी अपने ऑफिस में पहले तो कुछ लोगों तक ही सीमित रहा, लेकिन फिर मुझे मेरे ऑफिसर इंचार्ज को जब

0: पता चला कि इस फील्ड में भी मुझे ज्ञान है, तो उन्होंने मेरे लिए एक अलग से चैम्बर दे दिया और मैं उस पे बैठ के 10:15 से शाम को 5 बजे तक तो ऑफिशियल अपना कार्य का निर्वहन करती थी, और उसके बाद एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मैं अपने चैम्बर में बैठती थी 3 से 5, और वहाँ दवा की डिस्पेंसिंग के लिए मेरे पास कोई ना कोई आ जाता था और मैं दवा प्रिस्क्राइब किया करती थी। तो होम्योपैथ की डॉक्टरी भी मैंने इस तरह प्राप्त की, और मेरी यह तमन्ना भी पूरी हो गई कि मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लिख गया, मैं
1: जी
0: डॉक्टर ममता कपूर हो गई। फिर
1: जी जी
0: उसके पश्चात मैंने एक फील्ड और भी, मुझे पता चला कि भारतवर्ष में रेकी का बहुत प्रचार हो रहा था उस तकरीबन 1992 में, तो मेरी सिस्टर वहाँ रहती थी, तो उसने कहा कि जमशेदपुर में आजकल दीदी का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और इससे लोगों को फायदे हो रहे हैं, तो उसने तो इस लालच में मुझे बुलाया था कि शायद मेरी अक्षमता कुछ कम हो जाए और मैं एक सामान्य जीवन बिता पाऊँ। तो मैं वहाँ गई, मैंने अटूनमेंट्स लिए। मुझे तो खैर मेरा आत्मविश्वास तो पहले भी कम नहीं था लेकिन उससे और बढ़ा, लेकिन मुझे उसके बाद मैंने देखा कि उसके द्वारा जब मैं होम्योपैथ का ट्रीटमेंट करती थी या मैं लोगों को रेकी करती थी तो उससे लोगों को बहुत फायदा होना शुरू हो गया। तो फिर हमारे जो ग्रेट ज्ञान वाटर मास्टर थे उन्होंने मुझे मास्टरशिप दे दी, तो अब मैं रेकी मास्टर भी हूँ और अपना रेकी द्वारा भी ट्रीटमेंट देती हूँ, होम्योपैथ का भी ट्रीटमेंट करती हूँ, और इस तरह मेरा सही पूछे तो मेरे को अपना दिन थोड़ा 24 घंटे से कुछ ज्यादा हो जाए ऐसा महसूस होता है।
1: जी, तो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना यही इंसान की कुवत है और यही इंसान का जज्बा है। और जब हमारे साथ कोई समस्या हो जाए या कहीं कि हमें कोई चुनौती आ जाए तो फिर उस चुनौती को पार पा जाना ही इंसान होना है। तो आपने सिर्फ अपने कॉलेज में रैंप, अपने स्कूल में रैंप ही नहीं बनवाया और बल्कि आप अभी आज बहुत सारे लोगों को इलाज भी दे पा रही हैं या कहें कि उन्हें जीवन दान भी दे कर पा रही हैं अपने मेडिकल की शिक्षा के माध्यम से। तो मैं उन प्रिंसिपल, उन आचार्य का नाम इस शो में जरूर चाहूंगा जिन्होंने इतना मेहरबान होके या आपसे मुतमईन होके उन्होंने वो रैंप जो है वहां पर बनवा दिया, और जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी कहानी बताऊं कि भले मुझे रैंप की ऐसी आवश्यकता नहीं है नेत्रहीन व्यक्ति होने के नाते, परंतु मेरे शहर में ही एक पास में ही एक शौचालय बन रहा था, साधु कॉलेज जिसे कहते हैं, और उस पर रैंप नहीं बनवाए बिना ही उसका उद्घाटन किया जा रहा था। तो मैंने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसके लिए चेताया कि आप रैंप आवश्यक रूप से बनाएं, देश का कानून भी है और आवश्यकता भी है। तो फिर वो काम बड़ा देर सवेर हुआ और उसके लिए भी हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे शहर के शौचालय बन पाए, उसके लिए भी बड़ा प्रयास किया गया। मैरिज गार्डन्स को एक्सेसिबल किया जा सके उसके लिए मैंने एक कंप्लेन कोर्ट में लगाई, और बहुत सारा एडवोकेसी करते करते करते ये जो बात है ये प्रोटेस्ट तक पहुंच गई, और वो प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे मुकदमे मेरे ऊपर भी कायम हुए और बहुत सारे अन्य दिव्यांगों पर भी कायम हुए राजस्थान में, और फिर मेरी नौकरी भी चली गई इस वजह से। लेकिन वो सारी चीजें हुई, हालांकि फिर वापस से नौकरी कायम हुई, फिर मैंने वापस से चीजों को किया। लेकिन वो जो तो जज्बा है, तो एक देखिए ना, एक वो सज्जन है जिन्होंने रैंप बड़े प्रेम से स्वीकार किया और बनाया। और ऐसे भी हमारे जीवन में ऐसे भी लोग भी हैं हमारे आसपास जो तो जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस पर बात नहीं कर पा रहे, और बहुत के द्वारा कई बार बर्बरता भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे भी अनुभव हमारे कई साथियों के हमारे सामने हैं। लेकिन आपने जो बताया कि वो सज्जन कौन है, पहले तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे और बाकी साथियों पे क्या प्रभाव पड़ा आपके, वो मैं जानना चाहूंगा।
0: कॉलेज में जो गुजरात कॉलेज में तो डॉक्टर सांडिल्य थे,
1: जी
0: उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं मेरे लिए की, और मैं
1: जी
0: उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आजीवन रहूंगी। और रिजर्व बैंक में तो सभी सीनियर ऑफिसर्स जो हमारा सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे में है, वो क्योंकि मेरा कार्यकाल 36-37 साल का, मैंने 1975 में ज्वाइन किया रिजर्व बैंक और 2011 में वो किया, तो बहुत सारे मेरे साथ जो यहाँ पे रह चुके वो मेरी कार्य कार्य और मेरी मेरे जज्बे को देख के कहिए वो इम्प्रेस होके या मतलब सहयोग के उससे, क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल जॉब है, ये जो चीफ होते हैं बैंकों के वो उनको तो हर 3-5 साल में ट्रांसफर होकर जाना, पर जो आया उसने ये मदद की, किसी एक के नाम को नहीं कह सकती हूँ। हाँ, इसमें एक हमारे बहुत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होके रिटायर हुए मिस्टर दीपक सिंघल, उन्होंने जब हमारा ऑफिस विजिट किया तो वहाँ पे जो जब मेरा पुराने ऑफिस में तो लिफ्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ लकड़ी का रैंप रख दिया जाता था, रोज मेरा रिक्शे वाला, और फिर मैंने कार ले ली थी तो खैर मेरा ब्रदर मुझे लेके जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी दो बहनें हैं, मेरे से दो छोटी और मेरा ब्रदर है, उनका भी बहुत सहयोग मिला माता पिता के साथ ही, और उन्होंने भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं की, होने दी और मेरा पूरा सहयोग किया। मेरा ब्रदर मुझे कार से लेके जाता था और वो रेंट जो लकड़ी का बैंक ने बनवा के दिया था उसके थ्रू मैं चली जाती थी। लेकिन जब मेरा नया ऑफिस बना तो वहाँ पे रैंप की सुविधा नहीं थी, और इत्तेफाक से वो डॉक्टर मिस्टर सिंघल वहाँ आ गए, तो मैं बैंक में शरद जी दीदी के नाम से ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तब मुझे ममता दीदी के नाम से ही, आई वॉज पॉपुलरली नोन एज ममता दीदी, तो मुझे शायद ममता कपूर के नाम से लोग कम जानते थे, ममता दीदी के नाम से बहुत जानते थे और सम्मान और प्यार भी देते थे, और बल्कि लोग कहा करते थे कि अगर किसी को कभी कोई डिप्रेशन हो तो जाके ममता के पास बैठ जाओ
1: जी।
0: तो तुम्हारा डिप्रेशन तुरंत दूर हो जाएगा। दीपक सिंघल जी वहाँ आए और उन्होंने मुझे पैर लगा के व्हीलचेयर से चढ़ाते हुए देखा, और उन्होंने हमारे जो लोकल इंचार्ज थे उनसे कहा, अरे दीदी को इतनी परेशानी हो रही है आपने देखा नहीं उस दिन? मतलब आप ये सोचिए कि सुबह मैं जब आई हूँ तब मुझे पीछे से रेस्ट करके उठाना पड़ा था, और शाम को जब मैं गई हूँ तो रैंप से गई, रैंप से वापस गई, इतना कोऑपरेशन मतलब मुझे मिला
1: जी। और आपको मैं बताऊं कि श्रोता तो आपको सुन ही रहे हैं और श्रोताओं को आपको महसूस भी हो रहा होगा कि एक रूहानी रोशनी हमारे साथ है ममता दीदी के रूप में, और ममता दीदी से बात हो पा रही है। ममता जी, आप जिस संस्था में काम कर रहे थे उस संस्था में एक विशाल नाम, बहुत बड़ा नाम उस समय के डिप्टी गवर्नर के रूप में रहा, जिन्हें हम हमारा कई लोग दिव्यांग लोग हमारा अपना भगवान भी कहते हैं, और भारत रत्न के भी वो दावेदार हैं, परंतु वो कब मिलेगा, कब भारत सरकार समझेगी जानेगी वो हमें नहीं पता। उनका नाम है डीआर मेहता, जो महावीर विकलांग समिति के अध्यक्ष हैं, और महावीर विकलांग समिति आप जानते हैं कि देश में दुनिया भर में काम कर रही है, खासतौर पर उस क्षेत्र में वाना जैसे कहते हैं वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका जो जल रहा है कुछ नेताओं की क्या कहें कि भूख या हवस के चलते, और उन देशों में आग लगी हुई है, बहुत सारे लोग बमबारी की वजह से विकलांग हो गए हैं,
0: तो
1: लगातार वो पैर लगाने का काम वो कर रहे हैं जिसे हम जयपुर फुट कहते हैं। तो डीआर मेहता जी भी आपकी संस्था में आए, तो कभी आपका उनसे कोई परिचय या कोई संपर्क कभी हुआ या कैसा?
0: नहीं, उनसे तो मेरा परिचय नहीं हो पाया क्योंकि मेरे उसके दौरान वो आए नहीं कभी, लेकिन मुझे नाम से अवश्य जानते होंगे। यहाँ लखनऊ से लेके पूरे इंडिया में एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मेरा काफी नाम रहा। ये बात को मुझे अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कहना चूंकि जरूरी था तो मैंने बताया। तो मतलब मैं मेरे अपने काम के लिए तो मैं जानी गई, लेकिन एज ए होम्योपैथ डॉक्टर और रेकी स्पेशलिस्ट की तरह मुझे बहुत मिली है।
1: बिल्कुल, कुछ चीजें मैं भी आपसे साझा करना चाहता हूँ, और श्रोता भी जान रहे हैं कि समाज में कई बार कुछ इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, गांवों में, ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस जहाँ पर कम है, वहां पर तो लोग ये भी समझते हैं कि सुबह सुबह अगर दिव्यांग व्यक्ति को देख लिया तो उनको लगता है कि आज हमें भोजन भी नहीं नसीब नहीं है, तो ये भी धारणा कई बार लोग हमारे बारे में कई इलाकों में रखते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, मन की आंखों के माध्यम से हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके बहन हैं, और जहां तक आदमी की जो पहचान है उसकी काबिलियत तो उससे काम से होनी चाहिए, ना कि वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, किस जाति से आता है, या उसका लिंग क्या है, या वो दिव्यांग है कि नहीं, ये हमारे जीवन के मूल्यांकन, किसी व्यक्तित्व के मूल्यांकन के मानक नहीं हो सकते। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक यही बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हम आप जैसे सचेत के साथ बात करते हुए इन बातों पर फोकस करते हैं कि कि समाज में जितनी भी ये कुरीतियां और खास तौर पे अंधविश्वास फैला हुआ है दिव्यांगता को लेकर, ये दूर हो सके, कि दिव्यांग व्यक्ति भी अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकता है, वो भी विवाह कर सकता है यदि चाहे तो, और वो भी एक सामान्य जीवन जीते हुए अपनी टेबल पे, अपनी डेस्क में, अपने हुनर से, अपने कौशल से समाज को में योगदान करने की स्थिति में है। तो डीआर मेहता जी ने भी कुछ ऐसे ही दिव्यांगों से शायद वो प्रभावित हुए होंगे और उनको फिर महावीर विकलांग समिति उन्होंने बनाने का निर्णय लिया और आज वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको तो कोई याददाश्त में रहा ही होगा कि वो 1990 से लेकर शायद 1991 से लेकर कुछ समय के लिए आपके यहाँ डिप्टी गवर्नर के पद पर रहे और उस दौरान उन्होंने बहुत सारा काम देश भर में वो कर पाए। जी
0: मेरा नाम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिजिकली चैलेंज को देती है उसके लिए भी हुआ था, नॉमिनेट हुआ था। हाँ
1: जी।
0: और यहाँ पर भी इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो उसने लखनऊ में यूपी से 7 ज्वेल्स को चुना था, उसमें भी मेरा 2009 में चयन हुआ था और मुझे बहुत सम्मान उन्होंने दिया था।
1: बहुत सारी बातें आज देखिए ना, हमने मन की आंखों से के शो में आपके डॉक्टर चांडिले को भी याद कर लिया, आपके रिक्शे वाले भैया को भी याद कर लिया, उन भैया को भी याद कर लिया, वो 8 हाथ, वो हेवनली 8 हाथ जो आपके साथ आते हैं उनको भी हमने याद किया, हमने डीआर मेहता जी को भी याद किया और हमने आपके वो सारे साथी सहयोगी उन सबको भी याद किया जो आपके जीवन में आपके साथ रहे,
0: बहुत अमूल्य योगदान जिनका रहा है।
1: जी जी। और इस हरफन मौला शख्सियत को बता दूं श्रोताओं कि देखिए ना कि चिकित्सा विज्ञान से लेकर और बैंकिंग तक की रेंज मैंने तो किसी व्यक्ति के आज तक नहीं देखी और शायद आप पहली शख्सियत है जो इतनी बड़ी रेंज में इतने विशाल डायस्पोरा के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आपने इधर से लेके उधर तक, ए से लेके जेड तक की आपके साथ एक हुनर आपके पास है, तो ये सब जो करने की का जज्बा क्या माता पिता का रहा या कैसे सिर्फ आपसे ऑटोमेटिकली होता रहा, कोई बाबा जैसी शक्ति आपके अंदर आई और वो चलता रहा, कैसे हुआ ये?
0: मुझे तो लगता है कि मेरा आत्मविश्वास, मेरा ईश्वर में पूरा विश्वास और मतलब आगे बढ़ने के मेरी जो जज्बा था
1: जी,
0: और आत्मविश्वास से और सबके सहयोग से और भगवान के वरद हस्त के कारण ये सब संभव हो पाया, नहीं तो मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ सबके बदौलत हूँ।
1: और मैं आपको बताऊँ, हमारी 2 बेटियाँ होती हैं, एक का नाम भावना होता है ना, और तो जो भावना नाम की जो बेटी है ना, वो बहुत जल्दी आहत हो जाती है, सुबह उसको हम खिलाते पिलाते नहीं है, उसका पोषण नहीं करते, तो उसमें लोगों की बहुत जल्दी से आहत होती है, तो हम तो लोगों को यही कहते हैं कि भैया अपनी थोड़ी भावना नाम की जो बेटी है उसको आप थोड़ा खिलाए पिलाए, उसका पोषण करें जिससे जल्दी से आहत ना हो। तो इस पर भी लोगों से हमें बात करने की आवश्यकता है। आप तो लखनऊ में रहते हैं, अदब के शहर में रहते हैं और वहां पर तो भाईचारा बहुत सालों से अमन बना हुआ है समाज में, और मैं एक जमाने में एक दौर में उस बीच बीच में कुछ रुकावटें भी आती रही हैं, दोनों तरफ की जो शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां हैं दोनों ही समुदाय से या कहीं समुदाय से और भी समुदाय उसमें घी डालने का काम करते रहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में समाज में, कि आप एक लीडर हैं और एक दिव्यांग लीडर भी हम कहेंगे आपको, तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
0: नहीं, ये जो मुझे तो कभी भी ये जाति और धर्म और इस सब में, भाई इंसान को बस इंसान होना चाहिए, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। इंसान में अगर इंसानियत है तो वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे कोई वो नहीं है। बस केवल इंसानियत अगर उसमें है और प्यार सबके दिल में हो, इज्जत सबके सम्मान हो, बस इसी की समाज को आवश्यकता है और बहुत दुखद है कि वो कम होती जा रही है
1: जी।
0: ये तकलीफ दे बात है।
1: जी जी बिल्कुल, समाज में जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं और हम सबको जैसे लीडरान को इस पर काम करने की जरूरत है, जो समाज में लगातार इन मुद्दों पर भी बोल सकें, बात कर सकें, और जब भी ये भावना नाम की बेटी आहत हो तो उनसे बात करें कि भैया अपनी भावना को संभाल के रखो, ये बहुत जल्दी आहत हो जाती है, इसको बाहर ना आने दिया। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं, हम भी आपसे यही बात करना चाहते थे कि देखिए आपकी जो बात है श्रोताओं, आप जान लें कि खास तौर पर कोई भी भगवान हो, कोई भी ईश्वर हो, कोई भी अल्लाह हो, कोई यीशु मसीह हो, वो तालीम को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, वो शिक्षा को बड़ी, वो बाबा साहब तो कहते हैं कि ये वो दूध है जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा और लड़ेगा, तो वही आप देखिए, आप दिव्यांग होते हुए या कहें कि आप स्त्री होते हुए भी आपकी शिक्षा पे आपके वालिद ने, आपके फादर ने, आपके पिताजी ने ध्यान दिया और आपने जीवन में अपना एक मुकाम पाया और उसका कारण है शिक्षा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और अभी बहुत सारे देश के बच्चों के जो हालात है आप देखते हैं
0: कि मैं कुछ हाँ। बातें और भी बताना चाहूंगी। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, तो मैं जो है स्कूल के यहाँ के टॉप को स्कूल के बच्चों का मेरे लगातार 15-16 साल ये सब स्कूल्स के बच्चों को मैं इनवाइट करती थी अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में अपने OIC से परमिशन लेके, और उनके कॉम्पिटिशन्स मैंने लगातार 15 साल करवाए हैं, और उससे भी मेरा बहुत नाम हुआ। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरा आर्ट कंपटीशन का रिजल्ट जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था वो जब वाजपेयी जी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो वो लखनऊ आए हुए थे और हमारा नेक्स्ट डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो हमने उन्हें इनवाइट किया और वो इतने जनरस और इतने अच्छे इंसान थे कि मेरी एक छोटी सी संस्था यंग फ्रेंड्स एसोसिएशन जिसको कि मैंने रजिस्टर करवाया था जिसके तत्वाधान में ये सब प्रोग्राम मैं कराती थी, तो उसमें आने के लिए वो तैयार हो गए और वो 1.5 घंटे तक लगातार हमारे साथ रहे। सर जी मैं 5 साल पहले मधुबन से एक हमारे पहले के ही जानने वाले अनिल भट्टागर जो कि ब्रह्म कुमार और उनकी वाइफ भी ब्रह्म कुमारी में पूरी तरह लीन हो चुके हैं, वो हमारे वहाँ आए, वो मुझे पहले से जानते, मेरी सिस्टर के साथ वो पढ़ा करते थे, तो आए उन्होंने ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया और आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड, तो उन्होंने मुझे 7 दिन का घर पे ही बैठे बैठे, इस पे भी मैं ईश्वर की दया ही कहूँगी कि सामने से चल के ईश्वर मेरे घर आ गए, निमित्त बन के किसी को निमित्त बनाया उन्होंने अपना, और मिस्टर भटनागर ने मुझे 7 दिन तक ये राजयोग और ये ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया, और पिछले 5 सालों से मैं पूरी तरह बाबा की हो चुकी हूँ, बाबा मेरे हैं मैं बाबा की हो चुकी हूँ, और मुझे पूरा पूरा बाबा पे विश्वास है। मैं बाबा की होने के बाद पूरी तरह से निश्चिंत हो गई हूँ, और अब तक मुझे ये नहीं पता था कि ईश्वर कहाँ रहता है, मैं कौन हूँ, ये सारी बातें अब ब्रह्म कुमारी में आने के बाद मुझे पता चली कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, और सभी जो हमारे ब्राह्मण भाई बहन हैं वो सब आत्माएं हैं और उनका हमारे साथ अटूट और भाई भाई का नाता है, और ईश्वर से हमारा अटूट नाता है जो कि मुक्ति धाम शांति धाम में रहते हैं, और मैं रोज अमृत वेला में उनसे मिलन मनाती हूँ। मेरी डिसेबिलिटी है इसलिए मैं किसी और को डिस्टर्ब ना करते हुए लेटे लेटे ही बाबा को शुक्रिया अदा करती हूँ और बाबा से रू रूहान करती हूँ, उनसे उनका आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करती हूँ, और मेरी यही तमन्ना है कि मेरा जो अब बाकी जीवन जो बचा है वो बाबा की याद और साथ में गुजरे और बाबा के दिए हुए ज्ञान को मैं आत्मसात करूँ और धारण करके मैं बाबा के श्रीमत पे चलूँ और उनके डायरेक्शन अनुसार जितना मैं मनसा वाचा कर्मणा से लोगों की सेवा कर सकूं और अपने जीवन को धन्य बना सकूं।
1: बहुत बढ़िया श्रोताओं, आज मजा आ गया बात करके, और आज हम इस बात का इस कार्यक्रम का समापन जो है मनसा वाचा कर्मणा से ही करेंगे। मन वचन और कर्म से जब समानता आ जाती है तो जीवन के सारे रोग और सारे दुख मिट जाते हैं, ये संदेश हमको ममता जी ने अपनी बात में कहा, और यही हम आज का हमारा टेक अवे है इस कार्यक्रम के लिए। मन की आंखों से केशव को जमाने और सजाने और आपकी आवाज की बुलंदी से हमें जोड़ने के लिए हम ममता जी की जो आत्मा है हम उसका धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आप ऐसे ही कार्य करते रहें, हमसे जुड़े रहें, और श्रोताओं फिर से ऐसी ही एक सत्य से मुलाकात होगी 107.8 FM पर आपके फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से, और मैं आपका होस्ट आपको सलाम कहता हूँ, अलविदा कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ।
0: शरद जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, और आपके इतने बड़े सम्मान के लिए मैं काबिल हूँ भी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस शो के काबिल मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपकी जब ज्ञान की गंगा बह रही थी तो धैर्य तो आना जरूरी था। बहुत सारे अनुभव आपने बहुत अच्छे अनुभव साझा किए हैं, मजा आ गया।

0: रिक्शा रिक्शा
1: कहाँ जाना है माँ जी?
0: रेलवे स्टेशन। कितना लोगे?
1: 200 रुपया।
0: क्या बात कर रहे हो भैया, मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ यहाँ से।
1: इतना कम नहीं होता, अब बोहनी का टाइम है माँ जी, चलना है तो चलिए वरना जाने दो मुझे। सुबह सुबह बुढ़िया दिमाग खा रही।
0: क्या बोला, जोर से बोलो।
1: 150 लूंगा, उससे कम नहीं होगा।
0: मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ। और रिक्शा आते रहते कितने?
2: माता जी आलू गैस पर रखे हैं, एक सीटी हो गई है, एक दो और होने दो।
0: दीदी इस रिक्शा में मत जाना, ये रेलवे स्टेशन तक का ही 150 मांग रहा है, दूसरी रिक्शा मिलेगी ना।
1: अरे दीदी आप हो, आइए आइए, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा, आइए ना, 120 में ही चलेंगे।
2: चलो चलती हूँ मैं, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना।

0: भैया माताजी से तो 150 मांग रहे थे और मुझसे 120 क्यों?
1: दीदी आपको क्या झूठ बोलें, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है हृदय में।
0: भैया आप रिक्शा चालकों की एक कम्युनिटी है, आपका किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स होता है, आपका मीटर क्यों नहीं चलता?
1: कौन मीटर चलाता है अब? सच कहूँ तो आज के जमाने में सच बोलकर कोई अमीर नहीं बना, जो चल रहा है वही करना पड़ता है, नहीं तो भूखे मर जाएं।
0: अगर दुनिया झूठ बोलती है तो क्या आप भी वही करें?
1: क्या बताऊं दीदी, आजकल सच्चाई से काम नहीं चलता, अगर मैं सही रेट बोलूं फिर भी कहेंगे भैया थोड़ा तो कम करो।
0: तो आप पहले से ज्यादा रेट बोलते हो?
1: हाँ हाँ, पहले ज्यादा बोल देता हूँ, फिर जो बार्गेनिंग करता है उसे सही रेट बता देता हूँ, ग्राहक खुश हो जाता है और मुझे भी नुकसान नहीं होता।
0: लेकिन भैया यही तो शुरुआत है उस आदत की जो पूरे समाज को बिगाड़ती है।
1: अब हम जैसे लोग अगर सच भी बोलें तो लोग हमारी मेहनत की कद्र नहीं करते, इतनी धूप में इतने खराब रास्तों पर दिन भर सवारी ढोते रहते हैं, हालत खराब हो जाती है पूरी।
0: भैया सोचिए, जब आप ज्यादा रेट बताते हो तो आप ही ग्राहक को बार्गेनिंग करने की छूट दे रहे हो, क्यों ना शुरू से ही फिक्स रेट बताएं?
1: बोलना आसान है दीदी, पर जीना बड़ा मुश्किल है। लोग बड़े बड़े दुकानों में मॉल में कोई मोल भाव नहीं करते, पर हम गरीबों से हर बार मोल भाव करते हैं।
0: आप दिन भर इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हो, लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा कमाई के चक्कर में जो 30-40 रुपए ज्यादा लोगे, वही पैसा शायद अगले हफ्ते आपकी गाड़ी पंक्चर करवा देगा या घर में कोई ऐसी जरूरत खड़ी कर देगा कि वो 30 की जगह 300 चले जाएंगे। क्योंकि छोटा मोटा झूठ बोलकर पैसा तो आ सकता है, लेकिन पुण्य नहीं आता, और जो धन दुआओं के बिना आता है वो चैन और सुख कभी नहीं लाता।
1: आपने तो सोचने पे मजबूर कर दिया।
0: हर ग्राहक के साथ एक कर्म जुड़ता है, आप चाहो तो रोज 2 रुपए कम ले जाओ, लेकिन 2 सच्ची दुआएं साथ ले जाओ, वही दुआएं आपके बच्चों की रक्षा करेगी और घर में शांति लाएगी।
1: ये आदत तो बहुत पुरानी है, अचानक कैसे बदली?
0: जब आपकी नीयत साफ, भाषा विनम्र और आत्मविश्वास पक्का होगा तो लोग आपको विश्वास से देखेंगे। फिक्स रेट बोलिए, प्रेम से बोलिए और डटे रहिए। हर बड़ी आदत एक छोटे से संकल्प से बदलती है।
1: आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, काश हर कोई ऐसा सोच पाता। कभी कभी तो कोई सवारी गुस्से से बात करती है, बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है, एकदम चिढ़ जाता हूँ।
0: हाँ तो आप भी सेंटर आ जाया करो, आप जैसे कई लोग सेंटर पर आते हैं, आप सेंटर के सामने से ही कई बार आते जाते होंगे।
1: हाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन दिन भर भागदौड़ करता रहता हूँ, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतने सारे खर्चे बढ़ गए हैं।
0: जी भैया, लेकिन धन तो टिकता ही नहीं, ये सोच और खर्च बढ़ा देता है। इससे अच्छा कहो मैं धनवान हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं।
1: कर्म अच्छे हों वह तो समझ में आ गया, लेकिन आप बुरा नहीं मानना, मैं धनवान हूँ बोलने से धन अगर आ जाता तो लोग काम धंधा छोड़कर बस यही जाप करते।
0: कई लोग हमेशा यही गलती करते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं टिकता, और यही गलत सोच उन्हें और गरीब बना देती है। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे।
1: ओह अब मैं समझा, आपकी बात बिल्कुल सच है। मेरे एक दोस्त ने उस दिन पहले ही छोटा सा ही धंधा चालू किया था, लेकिन उसे जब भी पूछो कैसा चल रहा है तो बोलता था भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और देखते ही देखते उसने बहुत तरक्की कर ली। सोच का असर तो होता है।
0: देखा, लाइफ प्रूफ। भैया एक मिनट, कॉल आ रहा है।
2: हेलो दीदी, अब
0: अरे भैया क्या हुआ, आप ठीक तो है? आप तो पिछले दिनों तबीयत खराब बता रहे थे, अब कैसे हो? जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, रोहन के पापा बोले थे आपके ठीक होते ही वो भी आपके साथ सेंटर आएंगे कोर्स करने।
2: दीदी दरअसल मैं उन्हीं की बात करने के लिए कॉल कर रहा था।
0: क्या हुआ भैया, क्या बात है?
3: रोहित के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे।
0: क्या?
1: हे भगवान।
0: शायद इसलिए भगवान कहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
2: हाँ दीदी, सच में मुझे आज रोहन का कॉल आया। जब उसने ये बताया तो सच में मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
3: दो दिन पहले ही तो वो मिलने आए थे और कल ही उनका कॉल भी आया था। बोल रहे थे जल्दी से ठीक हो जाओ, हम दोनों साथ में सेंटर जाएंगे।
0: मैं अभी जाती हूँ उनके घर मिलने।
2: अभी रोहन की माँ से कोई बात नहीं कर सकता, डॉक्टर ने मना किया है, उनको बड़ा धक्का लगा है।
0: अच्छा ठीक है भैया, जब आप वहाँ जाओ तो रोहन से मेरी फोन पर बात करा देना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ।
2: हाँ दीदी जरूर, मैं रोहन से बात करवाऊंगा।
0: देखा भैया, सुना आपने?
1: हाँ सुना मैंने, जानता हूँ मैं उनको, बड़ा भला आदमी था, लेकिन देखो ना, धन शोहरत सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता।
0: साथ जाते हैं सिर्फ हमारे कर्म, इसलिए बस अच्छे कर्म करो और सिर्फ धन के लिए नहीं जियो, कुछ दुआएं भी कमा लो, यही आत्मा के साथ जाता है।
1: हाँ दीदी सच कहा आपने, आज से मैं सच के रास्ते पर चलूंगा और सिर्फ धन के लिए नहीं दुआएं भी कमाऊंगा।
4: क्योंकि
5: आज जमाना बदलने का समय है, बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। मोल भाव की मानसिकता तब तक रहेगी जब तक हम खुद को सच्चाई पर नहीं टिकाते, इसलिए आज से संकल्प लें, ना तो बेईमानी करेंगे, ना झूठा रेट बोलेंगे और ना किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे। सच्चाई से कमाएं, सच्चाई से जिएं, यही है असली रिचनेस, यही है असली जीत। झूठ से कमाया धन मन का सुख खा जाता है, लेकिन सच्चाई से कमाया हुआ धन दुआओं और आत्मसम्मान के साथ आता है।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी हेल्दी और हैप्पी होंगे। और ये आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष राहुल किन्नी उपस्थित। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह की कहानियां सुनते हैं व्यक्ति की, तो निश्चित तौर पर बेहद खुशी मिलती है हमें, क्योंकि हम लोग कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और सबके पास चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई चैलेंजेस नहीं आया हो, और आपने उसको अगर फेस करके उसको बेटर बनाया है और उसको एक स्टाइल बनाया है और प्रोफेशनली आप उन चीजों को टच कर पाए, तो निश्चित तौर पे आप एक एग्जांपल सेट करते हैं और वो एग्जांपल सारी दुनिया के लिए एक मास्टरपीस हो जाता है। तो बिल्कुल राहुल किन्नी भी हमारे साथ एक मास्टरपीस है, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को अपना प्रोफेशन बनाया और आज बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं। और ये अपनी वॉलंटरी सर्विस जो है बच्चों के लिए दे रहे हैं इंग्लिश सिखाने का। तो वो कैसे शुरू हुआ, वो यात्रा क्या है, उसके बारे में आज उन्हीं से जानेंगे। तो आप सभी की तरफ से राहुल किन्नी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। राहुल नमस्ते, स्वागत है आपका।
1: नमस्ते रमेश जी, नमस्ते बिंदिया, अर्चना, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर इन दिस प्रोग्राम। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर। हर्ड अबाउट दिस प्रोग्राम, आई हैव बीन अ फॉलोअर ऑफ ओवरऑल ब्रह्मकुमारीज टीचिंग्स एज वेल, एंड आई हैव हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन माय लाइफ एज वेल। सो इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी।
0: थैंक यू राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। और अर्चना जी, आप थोड़ा बताएंगे बीजिंग कैसे हुआ, राहुल जी से कैसे मुलाकात हुई, यहाँ तक लाने का बता रहा हूँ उसके बारे में।
2: जी नमस्ते राहुल। एक्चुअली रमेश जी, मुझे राहुल जी से इंट्रोड्यूस बिंदिया जी ने कराया है। तो जब ही बिंदिया जी से बात हो रही थी कि वो हमारे शो पे आके कभी एक अच्छा सा गीत सुनाए, बिकॉज शी इज अ गुड सिंगर, तो मैंने कहा कि हमारे शो के फॉर्मेट में ऐसे इंटरव्यूज होते हैं, बातें मुलाकातें शो पे, जहाँ पर हम अच्छे लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है और उनकी एक इंस्पायरिंग जर्नी है, जिसको सुन के बाकी लोग भी प्रभावित हो जाएंगे और इंस्पायर हो जाएंगे कि वो भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, एंड प्रॉब्लम आते ही फुल स्टॉप ना हो जाए लेकिन कंटिन्यू करे। एंड तो ये जो जर्नी के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में जो विद्या ने बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने उनसे कांटेक्ट किया, एंड वो तुरंत ही रेडी हो गए शो पे आने के लिए और बहुत इंटरेस्ट से उन्होंने पूरे शो के बारे में प्लानिंग और क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे, क्या शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पिरेशन मिले और आगे बढ़ने की शक्ति और प्रेरणा मिले, इसके लिए कोऑपरेट किया है। एंड सो अभी जो ऑलरेडी हमारे शो पे है, एंड वी ऑल द व्यूअर्स और हम सब उत्सुक है जानने के लिए कि उनकी जर्नी क्या है उन्हीं के मुंह से, ताकि हम जान सके कि इंग्लिश ये जो लैंग्वेज है जो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, इवन दो वो अपनी मातृभाषा नहीं है, लेकिन इट इज ए इनहेरिटेड लैंग्वेज विच इज बिकम अ कॉमन प्लेटफॉर्म, और उसके साथ ही हम अभी जुड़ गए हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको किसी हद तक तो जानना जरूरी है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में इंग्लिश ही चलता है। सो राहुल जी ने कैसे इंग्लिश सीखा, किस उम्र में इंग्लिश सीखा, और कैसे सीखने के बाद वो आगे बढ़ते गए और दूसरों को सिखाने में उन्होंने इतनी रुचि रखी, और उसके ऊपर जो अभी काम

0: कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे. वेलकम टू द शो राहुल.
1: थैंक यू वेरी मच अर्चना. इट्स रियली काइंड ऑफ यू टू से सच अ नाइस थिंग अबाउट मी एंड हैविंग मी ओवर इन दिस शो. सो या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कन्वर्सेशन. थैंक यू.
2: चलिए राहुल, बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार. और बिंदिया से मैं कहूंगा कि एक छोटा सा गीत आपके लिए डेडिकेट करें और फिर हम लोग आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखें. या
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: जी, शुक्रिया बहुत बहुत रमेश जी. थैंक यू अर्चना एंड वेलकम राहुल. सो यार आई गो.

0: क्योंकि मैं चाहूंगा कि बताइए।
1: सो द वे आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग इन माई लाइफ इज दैट वेन एवर देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू रियली इंटरैक्ट विद एनी इंडिविजुअल्स who I feel is in need, right? Like, say, for example, there are, whenever I used to go to work, in our, you know, multi-level parking, okay, there used to be security guards who used to, you know, do their job really well. They used to come from, you know, cities like, so yeah, it's a great example. When I walk out of my office, if there is a security guard, I would really engage. Pankaj was someone who had studied, but he was not finding an employment, landed up being a security guard. In 2 to 3 weeks time, uske paas, you know, I just spoke to him and saying that how to really, I just gave him confidence saying that you go ahead and really express yourself. And then it gave him confidence to just say, his English is not perfect, but that confidence where he was really able to express. That's the small way I really started. And in return, what I would expect, the program is called Each One, Teach One. So when I teach Pankaj, the commitment from him is that he will go ahead and really teach another person and pass that on. So the cycle of learning and helping each other continues, and you become a leader in that particular process altogether. So that's the overall journey which I started.
0: जी जी बहुत अच्छी इनिशिएटिव आपने दिया है। और एक गार्ड का काम करने वाले लड़के को आप अगर इंग्लिश सिखाते हैं और उसको सीखने की उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो भले शब्द टूटा फूटा पहले स्टार्टिंग में बोलेगा आगे पीछे, लेकिन बात वो है कि गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए आपको।
1: Correct.
0: सीट पे बैठ कर उसको चलाने की डेयरिंग आपके पास होनी चाहिए, फिर तो मैकेनिज्म थोड़ी देर में समझ लेंगे या किसी से प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाता है तो गाड़ी स्टार्ट तो हो जाता है। फिर तो ट्रैक आपको संभालना है, ट्रैफिक आपको देखना है, आपको वे देखना है कैसे जाना कहा जाना। तो अभी जिससे बात किया हमने वो गार्ड वाला लड़का, उनका उन्होंने इंग्लिश में बताया कि मुझे होटल मैनेजमेंट का अभी कोर्स करना है, एक्चुअली मैं बनना चाहता हूँ डॉक्टर लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है मेरे पास और उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं होटल मैनेजमेंट के लिए जो है तैयारी कर रहा हूँ, ये उन्होंने बताया। और बाद में उन्होंने वो भी बताया कि मैं हर व्यक्ति के साथ इंग्लिश में बात करना चाहूंगा क्योंकि मदर लैंग्वेज में या हिंदी में जब बात करते हैं तो कोई मुझसे बात नहीं करता, तो नेचुरली वहां जो लोग आते होंगे वो इंग्लिश समझते होंगे या इंग्लिश बोलने के आदि, तो उनके साथ मैं हेलो हाय करता हूँ तो उनकी कम्युनिकेशन बन जाती है, एक रैपो बन जाता है, एक मिलाप हो जाता है कि हाँ ये बच्चा इंग्लिश जानता है, तो नेचुरली एक स्टेटस ऑफ बात करने का कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है, लोग उनसे बात तो कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं कर सकता या उसको देखे नहीं।
1: करेक्ट।
0: जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप किसी भी पोस्ट पे है लेकिन आपका एक कनेक्टिविटी बन जाता है, तो लोगों के साथ आप बातचीत करके उनके प्रॉब्लम्स या उनकी जो नीड है उनको हेल्प करना या आप उनसे हेल्प लेना, ये दोनों चीजें हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने बनाया है। अपने आसपास के लोगों में किसी एक को आप सिखाओ और उसको कहो कि वो दूसरे को सिखाए, तो ये चैन बनेगा और ये चैन एक सर्कल बनेगा, जब तो वो सर्कल कंप्लीट होते ही बहुत सारे लोग इससे जुड़ जाएंगे और बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल की तरफ। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट राहुल किन्नी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, कैसे वो वॉलंटरीली इंग्लिश में बोलने का कैसे, इसके बारे में कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर जो सीखना चाहते हैं इस भाषा को उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार कॉन्फिडेंस आता है तो फिर चीजें तो होने लगती हैं। तो एक व्यक्ति अगर करता है तो उसको देख के दूसरा भी करता है। जी
1: रमेश जी, आपने जो बताया जी, वो कॉन्फिडेंस जो है वो गाड़ी को चलाना काम जो शुरू करता है, वो आपने बहुत ठीक पकड़ा। एंड लाइक व्हाट हैज हैपेंड इज दैट हाउ दैट engine has taken Pankaj's life, just want to really complete on that yeah, after some time he went ahead and applied for multiple jobs, he got into a sales and then he became a sales representative and today he's a sales manager in an organization, and he's moved from from where he started to. So that entire engine has to start and it has to move, and it's been a wonderful journey. It just Pankaj is just one example. There are many more people who have many done that people. And the program is it's continuing.
0: चलते रहना चाहिए, गाड़ी हमेशा चलता हुआ अच्छा लगता है, रुका हुआ गाड़ी अच्छा नहीं लगता भले कितना भी कीमती हो।
1: Yes, absolutely.
0: तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, हाउ डू यू कनेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस विद द पीपल एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। क्या होता है कि कई बार हम लोग को थोड़ा सा क्योंकि दूसरे लैंग्वेज में होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग इंग्लिश बोलेंगे और टूटा फूटा बोलेंगे या गलत बोल दिया तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो पहली बात तो उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता और वो पहले ही बोलने में वो बहुत

दुल्हन बरे नाजों में पली, खेली है बाहर से ये फूलों की कली, ख्वाबों की दुल्हन बड़े

भी बाबुल की गली, अपने बाबुल की गली, गाए खुशी के तराने ऐसी प्रीत मुबारक, गाए खुशी के तर...

0: नमस्कार, ओम शांति। आज बड़ी खुशी की बात है कि ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें देश भर से बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। जयपुर से डॉक्टर आर्य सर भी हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद है। सर, सबसे पहले रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे हमारे श्रोताएं सुन रहे, आप अपना परिचय दें। जी,
1: मैं डॉक्टर डी आर आर्य हूँ।
0: जी,
1: मैं जयपुर से आया हूँ यहाँ पर। आज मुझे एक सौभाग्य मिला यहाँ पे काफी समय के बाद ब्रह्म कुमारीज में आने का। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर लगभग 12-13 साल पहले हम लोग यहाँ पर आए थे मेरे कुछ कजन और मेरे दोस्तों के साथ। तब से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा शायद 7वां या 8वां विजिट है यहाँ पर आने का।
0: जी जी सर, आप डॉक्टर डी आर आर्य, 21 फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन क्या है सर?
1: मैं जयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज SMS में मैं सीनियर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ।
0: जी,
1: और मेरा जो सब्जेक्ट है हेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन।
0: जी जी,
1: ब्लड बैंक को मैं संभालता हूँ। हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जो है मरीजों के लिए रक्त का आदान प्रदान और भी जो बहुत से जो कार्य होते हैं वो हमारे विभाग में होते हैं।
0: सर, जरा आप विस्तार से बताएंगे तो हमारे श्रोताओं को भी जान जाएंगे कि आपके डिपार्टमेंट में क्या प्रोसीजर होती है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है।
1: हमारा जो विभाग है
0: जी,
1: जिसको कि पहले रक्त कोष कहते थे
0: जी,
1: उसको ब्लड सेंटर्स कहते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है
0: जी,
1: जिसकी की जरूरत सभी हमारे जो मेडिकल के विभाग है उनको पड़ती है, क्योंकि बिना रक्त के कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। बहुत से गायनीज के ऑपरेशंस हैं जिनमें रक्त की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे एक्सीडेंट में सबसे पहले जो मेडिसिन चाहिए वह रक्त की ही चाहिए।
0: जो
1: रक्त आज की तारीख में रक्त का कहीं पर भी कोई निर्माण नहीं होता।
0: यह
1: एक मानव के द्वारा दूसरे मानव को की गई सेवा और दान के रूप में ही लिया जाता है। तो रक्त संग्रहण का कार्य, रक्त को जांच का कार्य एवं जरूरत के अनुसार रोगियों को देने का जो कार्य है, ये सारे का सारा जो काम है ये मेरे विभाग में जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के में होता है।
0: जी जी, बहुत खूब सर आपने बताया कि रक्त के बारे में संचय भी करना, रक्त दान करना, ये भी बहुत पुण्य का काम करते हैं। रक्तदान महापुण्य कहा जाता है, जिससे किसी की जान भी बच सकती है। सर, अभी कोई डोनेट ब्लड करता है तो उसके कितने यूज, किस प्रकार के यूज होते हैं?
1: आज साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, हम लोगों के पास में बहुत सी मशीनें हैं। हम जो रक्त का जो भाग जिस मरीज को चाहिए हम उसी भाग को मेन रक्त से अलग कर सकते हैं। सामान्यता मैं कहूँ कि एक यूनिट जो ब्लड की जो डोनेट की गई है किसी भी रक्तदाता के द्वारा, वह 4 मरीजों को अलग अलग उसका भाग में बांट कर उसको दिया जा सकता है। इसका मुख्यतः भाग जो है लाल रक्त कण है, दूसरा हम लोग उससे प्लेटलेट्स अलग कर सकते हैं, तीसरा हम जो उससे प्लाज्मा अलग कर सकते हैं। प्लाज्मा से फिर एक जो चीज जो तत्व निकाला जा सकता है जो क्रायोप्रेसिपिटेट है। तो इन सभी की जो रक्त के जो कंपोनेंट्स हैं हर मरीज को अलग अलग समय पे अलग अलग जरूरत होती है। तो एक सदुपयोग या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो ब्लड का जो हम लोग कर सकते हैं ये कंपोनेंट के द्वारा उसको किया जा सकता है।
0: जी जी सर, बहुत खूब। जैसे बताया सर ने कि एक अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसके 4 प्रकार किए जाते हैं। जैसे पहले एक ब्लड डोनेट करता था तो उसका किसी एक को ही फायदा पहुंचता था, लेकिन साइंस ने तरक्की की है, साइंस प्रगत हुआ है, तो अभी उसमें उन्होंने सर ने कहा कि प्लेटलेट्स भी लेते हैं, प्लाज्मा भी अलग करते हैं, तो इसी प्रकार से 4 लोगों की अलग अलग जानें भी बचाई जा सकती। बहुत अच्छा सर। सर, अभी हम जानना चाहेंगे कि आप ब्रह्मा कुमारीज के इस शांतिवन में पधारे हैं तो यहाँ का अनुभव आपको कैसे लग रहा है?
1: ब्रह्मा कुमारी में आना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है
0: जी।
1: मैं जैसा कि मैंने बताया कि आज से बस 12-13 साल पहले मुझे आने का सौभाग्य मिला था। हमारा एक मेडिकल की ही एक कॉन्फ्रेंस थी, फिर उसके बाद यहाँ के द्वारा जो माइंड बॉडी मेडिसिन जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है उसमें भी मैं काफी बार आया हूँ। डॉक्टर गुप्ता जी ने जो हार्ट से संबंधित जो कॉन्फ्रेंस करते थे उसमें भी मुझे आने का सौभाग्य मिला। और अभी कुछ दिनों पहले ब्रह्म कुमारी का एक ब्लड डोनेशन का ड्राइव था
0: जी,
1: एक डेट बैनर करे राधि प्रकाश मणि जी के
0: जी जी।
1: में तब मैं जयपुर सेंटर्स का क्योंकि SMS का मैं हेड हूँ, तब पूरे जो जयपुर में पूरे राजस्थान में ही है, शायद पूरे देश में ही है, ब्लड डोनेशन के जो कैंप लगाए गए थे, तब मैं वापस जो सेंटर से हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई तब मुझे वापस तब मालूम चला कि एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मैंने बहन जी से इंचार्ज से जब मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि मैं भी इसमें भाग लेना चाहूँगा
0: जी जी जी,
1: उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया। यहाँ आने का मुझे हमेशा आकर्षण रहता है, हमेशा मैं लालायित रहता हूँ, जब भी मौका मिलता है तब हम लोग आते हैं। और आने के बाद जो एक अनुभूति है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब भी पूर्णतः शांत वातावरण एक लगता है कि जब स्वर्ग की सी अनुभूति होती है हमें यहाँ आने का। इतना अच्छा इंतजाम जो रहने का होता है, भोजन का जो इतना प्रेम से जो परोसा जाता है, ये सभी चीजों को मैं देख के अभिभूत हूँ।
0: जी जी बहुत खूब सर, आपका शेड्यूल तो बहुत बिजी रहता है और बिजी रहते हुए भी आप ऐसे कॉन्फ्रेंस में आते हैं और आपने अनुभव सुनाया कि यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ मेडिटेशन का वातावरण है और मेडिटेशन के वातावरण होने के कारण वाइब्रेशन बहुत अच्छे यहाँ फैलते हैं और जो भी मेहमान आते हैं या जो भी व्यक्ति आता है तो उसे बहुत अच्छी अनुभूति होती रहती है। बहुत अच्छा अनुभव आपने सुनाया सर। तो हम जाते जाते यही चाहेंगे कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे।
1: मेरा मैसेज तो यही एक में है कि आप आइए, अपने आप में निश्चित रूप से आप अपने व्यक्तित्व में एक चेंज महसूस करेंगे जो कि पॉजिटिव साइड में होगा। ये मैंने अपना भी अनुभव किया है कि पहले हम जो किसी भी घटना को किसी और रूप में भी लेते थे, लेकिन अब हम उस यहाँ आने के बाद में हम इसको एक सहज रूप में लेने लग गए हैं। चाहे वो घटना मेरे लिए अच्छी हो, बुरी हो, दुखदाई हो, लेकिन एक उसको हैंडल करने की जो प्रवृत्ति सहज रूप में जो मुझे यहाँ आकर डेवलप हुई है, मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर आर्य जी ने बताया कि यहाँ आने के बाद उनका हर घटना को देखने का दृष्टिकोण एक पॉजिटिव तरह से बन गया क्योंकि जीवन में चढ़ाव उतराव होते, कोई बात ही होती है, ऊपर नीचे आने के बहुत सारे प्रसंग होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। और आप भी अगर यहाँ आकर अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार का आप मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्ते दोस्तों। भाई आज तो मीना और राजू बहुत खुश हैं। बता दो क्यों? क्योंकि आज कई सालों बाद साथ वाले गांव से आ रही है उनकी बड़ी दादी। आप सब यही सोच रहे हैं ना कि ये बड़ी दादी कौन है? मैं बताता हूँ, बड़ी दादी का नाम है जमुना और वो है मीना की दादी की बचपन की सहेली, इसलिए सब उन्हें बड़ी दादी कह के बुलाते हैं। वो देखो मीना और राजू कैसे भागे चले जा रहे हैं अपने घर की तरफ। चलो हम भी वहीं चलते हैं।
1: बड़ी दादी, बड़ी दादी।
2: अरे मीना और राजू कितने बड़े हो गए हैं, इतने से थे जब मैं यहाँ पिछली बार आई थी।
1: पिछली बार आई थी, मिठाई भी लाई थी।
2: इस बार भी खाली हाथ नहीं आई मिट्टू। ये देख।
3: ये क्या है बड़ी दादी?
2: राजू बेटा, ये है नई कमीज तेरे लिए।
3: सच?
2: हाँ।
3: बड़ी दादी, वो
2: क्या हुआ?
3: आप मीना के लिए कुछ?
2: अरे राजू बेटे, मीना को भला क्या जरूरत है नए कपड़ों की?
4: जमुना, इस बड़े पैकेट में क्या लाई है?
2: कंबल।
4: कंबल?
2: दरअसल कल शाम को मुझे ना
5: मीना, राजू हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे।
1: खाना खाएंगे? पहले साबुन से हाथ धो के आएंगे।
6: ओ हो, मेरी रानी को भी भूख लगी है, रानी भी खाना खाएगी।
3: खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है।
2: अरे बहू, तू रानी को संभाल, खाना मैं परोस देती हूँ।
0: बड़ी दादी ने एक थाली में तो खूब सारी सब्जी, रोटी, चावल, दाल और दही डाली और दूसरी थाली में जरा सी दाल और दो रोटियाँ।
3: बड़ी दादी, मेरी थाली में भी सब कुछ डालिए ना, सिर्फ दो रोटी और दाल।
2: राजू बेटा, तेरी थाली ये नहीं है बल्कि ये है, ज्यादा खाने वाली।
3: और ये दो रोटी और जरा सी दाल वाली थाली
2: मीना की।
4: जमुना बहन, मीना की थाली में भी सब्जी, चावल और दही डालो, ये भला कम क्यों खाए? आखिर बढ़ती बच्ची है मेरी मीना।
2: बढ़ती बच्ची है मेरी मीना। ये ले मीना, तू भी खा ले सब्जी, चावल और दही।
1: सब्जी, चावल, दही? अब है थाली सही।
3: मिठू चुप।
0: खाना खाने के बाद मीना की दादी और बड़ी दादी आपस में बातें करने लगी।
4: तूने बताया नहीं जमुना, कंबल किसके लिए लाई है?
2: मैंने तो अभी तुझे ये भी नहीं बताया कि मैं यहाँ आई क्यों हूँ।
4: मतलब?
2: मैं यहाँ आई हूँ लक्ष्मी का रिश्ता पक्का करने।
4: लक्ष्मी? अच्छा, तेरी पोती।
2: हाँ, कल शाम को जाना है लड़के वालों के यहाँ। मैंने सोचा कि खाली हाथ जाना तो ठीक लगता नहीं, इसीलिए ये कंबल ले आई।
1: कंबल ले आई, गर्मी में सर्दी की याद दिलाई।
0: और फिर शाम को जब बड़ी दादी सो के उठी।
2: अरे मीना, मीना।
6: जी बड़ी दादी।
2: तू कहाँ से आ रही है मीना की माँ?
6: हैंडपंप तक गई थी पानी लाने, कुछ चाहिए था आपको?
2: हाँ, चाय पीनी थी, इसीलिए मीना को आवाज लगा रही थी।
6: मैं अभी आपके लिए चाय

0: बना देती हूँ।
1: वो तो ठीक है, पर मीना है कहाँ?
0: गई होगी राजू को लेके अपने दोस्तों के साथ खेलने।
1: खेलने? खेलने क्यों गई है? अब मुझे ही देख लो, जब मैं मीना जितनी थी तो बस अपनी माँ और दादी का हाथ बटाया करती थी। हाँ
0: बड़ी दादी, वो जमाना और था, आज की बात अलग है। आज की लड़की स्कूल कॉलेज जाती है, पढ़ती लिखती है, खेलती कूदती है, तभी तो जीवन में आगे बढ़ती है।
1: और घर के काम?
0: बड़ी दादी, मीना और राजू दोनों घर के काम में भी मेरा खूब हाथ बटाते हैं। काम के समय काम और खेल के समय खेल, और फिर अगर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो उनके शरीर का विकास कैसे होगा?
1: हाँ ठीक है ठीक है, तू चाय बना।
2: और अगली शाम को बड़ी दादी लड़के वालों के घर जाने के लिए तैयार हुई।
1: राजू, तेरी दादी तैयार हुई या नहीं?
3: हाँ हाँ जमुना, मैं तैयार हूँ।
4: और मैं भी, मैं तो सबसे पहले तैयार हो गया था। अब बड़ी दादी देखिए, मैंने अपनी नई कमीज पहनी है।
1: मेरा राजा बेटा है राजू।
5: राजा बेटा है राजू, इससे खिलाना काजू।
1: राजू, तेरी माँ तैयार हो गई?
4: माँ तो बाजार गई हुई है।
1: बाजार?
4: हाँ बड़ी दादी, घर का सामान लाने गई है माँ।
1: घर का सामान लाने गई है? एक तो पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से तुम्हारी माँ भी।
3: तू चिंता क्यों करती है जमुना, हम लोग चलते हैं, बहू बाद में आ जाएगी।
1: ठीक है चलो।
2: बड़ी दादी, मीना की दादी, राजू और मीना अभी थोड़ी दूर ही पहुँचे थे कि अचानक एक केले के छिलके पे बड़ी दादी का पैर पड़ा और वो गिर गई।
4: जमुना,
3: तू ठीक तो है ना जमुना?
1: आए मेरी टांग।
4: मीना, लगता है बड़ी दादी की टांग में चोट आई है, अब हम क्या करें?
6: बड़ी दादी के हाथ में गरम कंबल है, ये कंबल मुझे दीजिए बड़ी दादी।
1: मेरी टांग, अरे ये क्या कर रही है, मेरी टांग पे कंबल क्यों लपेट दिया? हाय मेरा नया कंबल, हाय मेरी टांग।
6: दादी, राजू, आप ये कंबल बड़ी दादी की टांग पे ऐसे ही लिपटा रहने दीजिए, इससे उनका खून गर्म रहेगा और उन्हें दर्द कम होगा। मैं भाग के नर्स बहन जी को बुला के लाती हूँ।
2: मीना जल्दी से नर्स बहन जी को बुला लाई। नर्स बहन जी ने बड़ी दादी का उपचार किया और उनकी टांग पे पट्टी बांधी, जिससे बड़ी दादी को तुरंत आराम पहुंचा।
1: मीना बेटी, तू जितनी समझदार है उतनी ही चुस्त भी, देखो तो कैसे भाग के गई और नर्स बहन जी को भी बुला लाई।
3: लाखों में एक है मेरी मीना, और समझदार क्यों ना हो, आखिर रोज स्कूल जाती है, दिल लगा के पढ़ती है और रोज खेलती है, पौष्टिक खाना खाती है, इसीलिए चुस्त भी है।
1: मुझे माफ कर दे मीना बेटी, मैंने तुझ में और राजू में फर्क किया, लेकिन मेरे ऐसे बर्ताव के बाद भी तूने मेरी मदद की।
4: मदद क्यों नहीं करती, आखिर आप मेरी बड़ी दादी हैं।
5: बड़ी दादी है, गिरने की आदी है।
4: मिठू, चुप।
1: मीना बेटी, आज तूने मुझे ये सिखा दिया कि बेटा हो या बेटी, दोनों को एक समान प्यार मिलना चाहिए, उनके खाने पीने में, खेलने कूदने में, पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का फर्क या भेदभाव नहीं होना चाहिए।
3: हाँ जमुना, क्योंकि लड़का लड़की एक समान।
5: लड़का लड़की एक समान, मिठू बाटे ले लो ज्ञान।
2: और फिर कुछ दिनों बाद हुई लक्ष्मी की शादी। अरे भूल गए, लक्ष्मी बड़ी दादी की पोती, और मीना ने उस शादी में पहने नए कपड़े जो लाई थी उसकी बड़ी दादी। चलो आप देखते हैं कि आज मीना और मिठू ने कैसी कविता लिखी है।
4: खाना पीना खेल कूद हो या पढ़ने लिखने का ज्ञान,
5: दोनों में कुछ फर्क न करना, बेटा बेटी एक समान।
2: भाई वाह, छोटी सी कविता में कितनी गहरी बात सिखा गए अपनी मीना और मिठू। चलो अब सुनते हैं एक गहरा, मेरा मतलब है एक मजेदार गाना।

0: ना गाना मजेदार। फिर ठीक है, तो अब हम चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है? हाँ, तो आज का शब्द है सितार। चलो अब सितार शब्द के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
2: बहन जी, सितार शब्द का पहला अक्षर है स, और स से होता है सांप।
1: शाबाश मीना, और सांप से जुड़ा मुहावरा?
3: सांप नेवले का बैर होना, यानी बहुत दुश्मनी होना।
1: बिल्कुल सही दीपू, शाबाश। चलो अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
2: स के बाद सितार में आता है त, और त से होता है ताला।
1: सही जवाब सुमी, और मुहावरा?
4: अकल पे ताला पड़ना, और इस मुहावरे का मतलब होता है बुद्धि का काम ना करना।
1: शाबाश कृष्णा, बिल्कुल ठीक।
2: बहन जी, स और त के बाद सितार में आता है र, और र से होता है राग।
1: हाँ रानो, और राग से जुड़ा मुहावरा?
2: अपनी डफली अपना राग, यानी सिर्फ अपनी तारीफ ही करना।
1: बिल्कुल ठीक मीना। मजा आया ना बच्चों?
5: बहुत मजा आया।
0: भाई मजा तो हमें भी खूब आया है ना? फिर ठीक है, अभी मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी जरूर लिखना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: दादाजी और ज्योतिपुंज। दादाजी और राहुल लूडो खेल रहे थे तभी वहां रिया आ गई।
2: दादाजी, ओरियन क्या होता है?
3: अरे बुद्धू, ओरियन नहीं ओनियन होता है। ओनियन यानी प्याज।
4: राहुल, रिया ठीक कह रही है, ओरियन एक ज्योतिपुंज या तारामंडल है।
2: दादाजी, ज्योतिपुंज कैसे होता है?
4: ज्योतिपुंज अनेक तारों का समूह होता है। पता है इनका अपना महत्व होता है?
3: कैसा महत्व दादाजी?
4: अगर किसी ज्योतिपुंज को पहचान लिया जाए तो उसमें स्थित सभी तारों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, और केवल यही नहीं उनके आसपास स्थित अन्य ज्योतिपुंजों को भी आसानी से पहचाना जा सकता है।
2: वह कैसे दादाजी?
4: रिया, तुम ओरियन को ही उदाहरण के रूप में ले लो। इसमें लाल तारा बीटलजूस इसके कंधे का, तो नीला तारा रीगल इसके पैरों का निर्माण करता है। इसी प्रकार बीटलजूस के समानांतर बेलाट्रिक्स तारा स्थित होता है, तो रीगल के समानांतर सैप।
3: वाह, अच्छा दादाजी, हमें ओरियन के विषय में कुछ और बताइए।
4: ओरियन को अंग्रेजी में द हंटर और हिंदी में मृग के नाम से जाना जाता है।
2: दादाजी, ओरियन कब और कहां देखे जा सकते हैं?
4: रिया, ओरियन दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म काल में तथा उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन शाम को सरलता पूर्वक देखा जा सकता है।

0: मुख्य रूप से जनवरी से मार्च के महीने तक।
1: दादाजी कुल कितने ज्योतिपुंज हैं?
0: अब तक कुल मिलाकर 88 ज्योतिपुंजों की खोज हो चुकी है।
2: ये ज्योतिपुंज कौन कौन से हैं दादाजी?
0: ये ज्योतिपुंज कर्क, वृषभ, मिथुन आदि हैं।
1: दादाजी ज्योतिपुंजों के नाम क्या राशियों के नाम पर ही आधारित होते हैं?
0: केवल राशियां ही नहीं, ज्योतिपुंजों के नाम पशुओं और ग्रीस के पौराणिक कथाओं के पात्रों के नाम पर भी आधारित होते हैं।
2: धन्यवाद दादाजी, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी।
1: रिया मैं तो दादाजी के साथ साथ तुम्हें भी धन्यवाद दूंगा।
2: भला मुझे क्यों भैया?
1: क्योंकि यदि तुम ओरियन का जिक्र नहीं करती तो दादाजी से हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ नहीं मिलती।
3: राहुल ने हंसते हुए कहा तो दादाजी और रिया मुस्कुराने लगे और उन्होंने सोचा कि ऐसे ही बड़ों से अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, तीसरा पाठ, भोपाल की सैर, पृष्ठ 23। आज सुगंधा बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। मीनाक्षी मैडम,
2: हमें 4 बसें चाहिए।
1: राकेश सर,
3: मुझे लगता है 5 की जरूरत पड़ेगी।
1: मीनाक्षी मैडम,
2: हर बस में 50 सीटें हैं।
1: राकेश सर,
3: पहले पता कर लें कि कितने बच्चे जा रहे हैं।
1: इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ सबसे ऊपर कक्षा में मीनाक्षी मैडम और राकेश सर को बातें करते दिखाया गया है। यहां पर एक तालिका है जिसके 2 भाग हैं। एक में लिखा है कक्षा और दूसरे में लिखा है बच्चों की संख्या। कक्षा 1, बच्चों की संख्या 33, कक्षा 2, बच्चों की संख्या 32, कक्षा 3, बच्चों की संख्या 42, कक्षा 4, बच्चों की संख्या 50 और कक्षा 5, बच्चों की संख्या 53। कुल बच्चों की संख्या बराबर रिक्त स्थान। मीनाक्षी मैडम ने कहा,
2: क्या हमें 4 बसों की जरूरत पड़ेगी? अगर एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं तो 4 बसों में 50×4 बराबर कितने होंगे?
1: तो कुल मिलाकर रिक्त स्थान बच्चे जा रहे हैं। अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे रिक्त स्थान? क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा रिक्त स्थान? एक मैडम ने कहा,
2: थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते।
1: दूसरे ने कहा,
2: हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे।
1: शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को पहले अनुमान लगाने, सोचने के लिए प्रेरित किया जाए। उत्तर ढूंढने के लिए वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। छात्रों द्वारा सोचे गए अलग अलग तरीकों पर चर्चा करना आवश्यक है। पृष्ठ 24, बसों के इंतजार में। साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं। अचानक वो जोर से चिल्लाई,
2: अरे मुझे बस दिखाई दे गई है, भागो, खिड़की वाले सीट पर कब्जा करो।
1: दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे, लेकिन मैडम ने कहा,
2: रुको रुको रुको, ये क्या, ये बसें तो बहुत छोटी हैं।
1: बहस शुरू हो गई। मैडम ने कहा,
2: हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था।
1: कर्मचारी बोले,
4: हमारे पास ज्यादा बड़ी बसें नहीं थीं, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए हैं।
1: इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ बच्चों का चित्र है जो एक पंक्ति में खड़े हुए हैं और सबसे आगे मैडम खड़ी हैं। साथ ही एक और दृश्य में मैडम को कर्मचारियों से बातें करते दिखाया गया है और सबसे नीचे बसों के कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें बच्चों को पंक्ति से उनमें चढ़ते हुए दिखाया गया है। हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की जरूरत होगी? रिक्त स्थान। पृष्ठ 25, यात्रा शुरू हुई। इस पृष्ठ में सबसे ऊपर बाईं तरफ एक बच्चे और एक सर का चित्र है। जैसे ही बसों ने होशंगाबाद से चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और जोर जोर से गाने लगे। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नजारे का मजा ले रहे थे। इंदिरा,
2: हम भोपाल कब पहुंचेंगे?
1: आशा मैडम,
4: अगर हम रास्ते में कहीं ना रुकें तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए।
1: लगभग रिक्त स्थान बजे। मंजीत,
2: बहुत दूर है क्या?
1: भीमसेन सर,
3: लगभग 70 किलोमीटर दूर है। रूबी,
4: क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे?
3: राकेश सर, शायद भीमबेटका, यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अगर वो भीमबेटका जाएं तो वे वहां पहुंचेंगे 10 बजे से पहले, 10 और 11 बजे के बीच या 11 बजे के बाद। जब वो सब बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया,
2: वाह नर्मदा नदी!
3: सभी खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी ने कहा,
2: अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है,
4: चलो अंदाजा लगाएं कितनी चौड़ी होगी।
3: और इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे नर्मदा नदी का चित्र बना है जिसके ऊपर पुल को दिखाया गया है। पृष्ठ 26। गोपी,
4: 100 मीटर नहीं और भी ज्यादा, पता नहीं कितनी।
3: विक्टोरिया,
4: ये जरूर ही आधा किलोमीटर से ज्यादा होगी।
3: आशा मैडम,
4: देखो यहां लिखा है ये पुल 756.82 मीटर लंबा है, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी।
3: क्या विक्टोरिया सही थी?
2: सदफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर।
3: आशा मैडम,
4: देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है, सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं।
3: क्या तुमने कभी किसी लंबे पुल को पार किया है? वो लगभग कितने मीटर लंबा होगा? रिक्त स्थान। फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे। राकेश सर,
5: अब पानी का स्तर काफी नीचा है, ये पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा।
3: आशा मैडम,
4: लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में देखा है, तब ये बहुत ऊपर तक आ गया था, तब तो ये पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था।
3: नर्मदा के पानी के स्तर में बरसात वाले मौसम और अब के मौसम के बीच कितना अंतर है? रिक्त स्थान, मीटर। बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें करते रहे। इसी पृष्ठ के सबसे अंतिम हिस्से में एक पुल का चित्र बना है। पृष्ठ 27। अचानक एक झटके के साथ बस रुकी।
6: ओह, पेट्रोल पंप, 2 बसों में डीजल डलवाना होगा।
3: सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गईं। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वो पास से देख सकें। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं और 2 बसों में डीजल भरवाना है, इसलिए वो लोग वहां लगभग, रिक्त स्थान, मिनट रुकेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें पहुंचने में, रिक्त स्थान, मिनट की देर हो जाएगी। इस पृष्ठ पर एक पेट्रोल पंप का चित्र है। इस चित्र में कई वाहनों को पेट्रोल भरते हुए दिखाया गया है, साथ ही कुछ बच्चे पेट्रोल पंप की मशीन को ध्यान से देख रहे हैं। एक लड़के ने कहा,
2: अरे इसका पेट कितना बड़ा है, ये तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है।
3: एक लड़का बोला,
4: इसलिए हमें डीजल के लिए 3500 रुपए देने पड़ेंगे।
3: चित्र में देखो और 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। रिक्त स्थान। जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगा? एक लड़की बोली,
4: अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में।
3: पृष्ठ 28। भीमबेटका की ओर। बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वो पहले भीमबेटका रुकेंगे। अंजन,
7: भीमबेटका क्या है?
3: रैना मैडम,
4: ये एक जगह है जहां बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था।
3: सुमोंतो,
2: 10,000 साल? मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता।
3: गोपी,
2: ओह
4: 1000 साल तो बहुत होते हैं। मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता।
6: गौरी,
4: मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की हैं।
6: मंजीत,
4: इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी हैं।
6: सभी जोर जोर से हंस पड़े। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वो भीमबेटका पहुंचे। एक बच्चा बोला,
4: कमाल है, 10,000 साल पहले भी वो इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर।
6: एक लड़की बोली,
4: अरे ये चट्टानें हजारों साल पुरानी हैं।
6: इस पृष्ठ के अंतिम भाग में गुफा का एक चित्र बना है, जिसमें कुछ जानवरों को दिखाया गया है। पृष्ठ 29। शंकर,
4: इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अरे मुझे एक बात सूझी है, इन चित्रों में मैं सांडों को गिनता हूं और तुम हिरणों को गिनो।
6: बोनोमाला,
4: मैं लोगों को गिनती हूं, देखते हैं कौन ज्यादा है, सांड, हिरन या लोग।
6: एक लड़के ने गिना,
4: 34, 35, 36, 37। मैंने 37 सांड गिने।
6: लड़की बोली,
4: 112, 113, 114, 115, 116, 117। मैंने 117 हिरण गिने हैं।
6: यहां पर सांड से हिरण कितनी ज्यादा हैं? रिक्त स्थान। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें विभिन्न जानवरों के चित्र बने हैं, जैसे सांड, हिरण इत्यादि। लेकिन बोनोमाला सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि लोगों की संख्या सांडों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे ज्यादा थी, लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी। उसने कितने लोगों को गिना होगा? 214, 154, 134 या 177? रित स्थान। गाइड ने बताया कि यहां कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया था। वो लोग लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। कितने बजे होंगे? रिक्त स्थान। आखिरकार अब वो भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें वहां 1 घंटे से भी कम समय में लगभग रिक्त स्थान बजे पहुंच जाना चाहिए। पृष्ठ 30। भोजन का समय। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हरेक बच्चे को 1 संतरा, 1 केला और 5 बिस्कुट दिए गए। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए, पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए? इस पृष्ठ पर दाई तरफ बिस्कुट और फलों के चित्र बने हैं और बाई तरफ कुछ बच्चे इन वस्तुओं को देख रहे हैं। मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत,
4: मुझे वो संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती हो।
6: भानु,
4: 120 नहीं, 130 नहीं, ये 125 होगी।
6: मंजीत,
4: बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो।
6: तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए। वो सभी तरह तरह की पहेलियां बुझाने लगे।
4: मैंने 4-4 टॉफी अपने 4 दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफी फिर भी बच गई, कुल कितनी टॉफी मेरे पास थी?
6: रिक्त स्थान। दूसरा बच्चा बोला, ख,
4: 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? तुम
7: 357 और 537 बना सकते हो। इसके अलावा और क्या बना सकते हो?
6: एक और बच्चा बोला, ग,
7: एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है, वो संख्या क्या होगी?
6: यहां पर कुछ बच्चों का चित्र दिया गया है जो आपस में बातें करते हुए दिखाए गए हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को ऐसे ही और अधिक प्रश्न या पहेलियां मौखिक रूप से और लिखकर हल करने को कहा जा सकता है। उन्हें हल करने के लिए उपयोग में लाए गए तरीके समझाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पृष्ठ 31। घ, एक लड़के ने कहा,
7: ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो।
6: एक और बच्चा बोला, ल,
7: एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा?
6: क्या तुम भी इनको हल कर सकते हो? कोशिश करके देखो। हम कौन सी नाव में बैठें? बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी न चला कि वो कब भोपाल में ताल के पास पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सी बत्तखें शोर कर रही थीं। कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बाईं ओर एक लड़की का चित्र है और सबसे नीचे कुछ बच्चे ताल के पास दिखाए गए हैं। कुछ को नाव चलाते हुए दिखाया गया है और कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ताल में बत्तखों को तैरते हुए भी दिखाया गया है। उसके बाद आया सबसे मजेदार समय, नाव में घूमने का। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था, जो आसान नहीं था। पृष्ठ 32। वहां अलग अलग तरह की नावें थीं, जिसके टिकटों की कीमतें भी अलग अलग थीं और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। यहां पर एक तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है नाव का नाम, दूसरे में लिखा है टिकट की कीमत प्रति बच्चा और तीसरे में समय लिखा है। आइए अब हम तालिका को पढ़ें। 1, नाव का नाम डबल डेकर, टिकट की कीमत प्रति बच्चा 30 रुपए, समय 45 मिनट। 2, नाव का नाम पैडल बोट, टिकट की कीमत प्रति बच्चा 15 रुपए, समय 30 मिनट। नाव का नाम 3, मोटर बोट, टिकट की कीमत प्रति बच्चा 25 रुपए, समय 20 मिनट। नाव का नाम 4, चप्पू वाली नाव, टिकट की कीमत प्रति बच्चा 15 रुपए, समय 45 मिनट। इसी पृष्ठ पर कुछ बच्चे इस तालिका को पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पृष्ठ के सबसे अंतिम भाग में एक चित्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की नावों को दर्शाया गया है और साथ ही कुछ लोग वहां खड़े दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कुछ बच्चों के चित्र भी बने हैं। एक लड़की बोली,
7: हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे।
6: एक दूसरी लड़के ने कहा,
7: हम मोटर नाव लेंगे, ये महंगी तो रहेगी पर बड़ा मजा आएगा।
6: शिक्षकों के लिए निर्देश, टिकट की कीमत समय आदि की दी गई तालिका पर आधारित कुछ प्रश्न पुस्तक में दिए गए हैं। बच्चों को ऐसे ही और अधिक प्रश्न स्वयं बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पृष्ठ 33। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर एक नदी का दृश्य है जिसमें विभिन्न प्रकार की नावें दिखाई गई हैं। लड़की बोली,
7: चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, ये महंगी भी नहीं है और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज्यादा मिलेगा।
6: एक दूसरी लड़के ने कहा,
7: हे, हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा, इसकी कीमत जरूर कुछ ज्यादा है, पर समय भी तो ज्यादा मिलेगा।
1: इस पृष्ठ पर कुछ बच्चों के चित्र भी दिखाए गए हैं। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए? रिक्त स्थान रुपए। उनको दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला? रिक्त स्थान। बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया। उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपए दिए। कितने बच्चे डबल डेकर में गए? रिक्त स्थान। कौन सी नाव एक घंटे में दो चक्कर लगाती है? रिक्त स्थान। कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में एक चक्कर लगाती है? रिक्त स्थान। किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा समय मिलता है? रिक्त स्थान। जावेद ने दो बार नाव चलाई। उसने कुल 40 रुपए दिए और 50 मिनट नाव चलाई। उसने दो कौन सी नाव ली होंगी? रिक्त स्थान। वापसी। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। अब वापस लौटने का समय हो गया था। लौटते हुए वो कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो उन्हें होशंगाबाद रिक्त स्थान बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस पृष्ठ के सबसे अंतिम भाग में कुछ बच्चों को बस में चढ़ते हुए दिखाया गया है, साथ ही उनकी मैडम और सर भी दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ 34। पता करो, क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो? कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे? तुम कैसे गए थे और कितनी दूर गए थे? उसमें कितना समय लगा था? हर एक बच्चे की यात्रा का खर्चा कितना आया? पता करने की कोशिश करो। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ कुछ बच्चों का चित्र बना हुआ है जो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अभ्यास। 1. बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा है? क 4200 वर्ष पुराना, ख 1000 वर्ष पुराना, ग 8500 वर्ष पुराना या घ 1300 वर्ष पुराना। रिक्त स्थान। 2. एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? क 100, ख 200 या ग 150। रिक्त स्थान। 3. संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज्यादा बनता है? क 152 और 241, ख 321 और 192, ग 99 और 299 या घ 401 और 91। 4. किस समय पर क्या हुआ था? मिलान करो। इस चित्र पर सबसे अंतिम भाग में बाईं तरफ कुछ गतिविधियां दी गई हैं और उनके सामने दाईं तरफ समय लिखा हुआ है। आपको इनका आपस में सही मिलान करना है। नर्मदा नदी को पार करना, भीमबेटका के चित्रों को देखना, पेट्रोल पंप पर, ताल पर बोटिंग, दिन का भोजन और होशंगाबाद वापसी। और इनके सामने लिखा है शाम 3 बजे, शाम 6 बजे, सुबह 9:10, दोपहर 12:30, दिन में 11:30 और सुबह 9:30। इस तालिका में पहली गतिविधि को समय के साथ मिलाया गया है जो इस प्रकार है, नर्मदा नदी को पार करना सुबह 9:10 पर। अब आगे आपको स्वयं सही मिलान करना है। इसी के साथ तीसरा पाठ भोपाल की सैर यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदोह, ध्वनियंकन विकास सांगवान,
8: निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: आदि, तुझे पता है
7: क्या,
6: आज मैंने मेरी फेवरेट सब्जी बहुत दिनों बाद खाई।
7: कौन सी?
6: कद्दू।
7: कद्दू की सब्जी?
6: हाँ।
7: ये तेरी फेवरेट सब्जी है?
6: हाँ।
7: मेरी तो पनीर है।
6: फेवरेट तो बहुत है, खा हर एक लेते हैं, बट लेकिन कोई ना कोई बड़ी मुश्किल से खाने मिलती है, इस कारण वो
7: फेवरेट होती
6: है। उसका अलग ही मजा है।
8: हेलो बच्चों।
9: हाय दीदी।
8: क्या बात है, मुझे लग रहा है आज सब लोग कुछ अच्छा अच्छा खाने में खा के आए और बड़े खुश दिखाई दे रहे हो।
9: हाँ दीदी।
10: हाँ दीदी।
8: चलो, मतलब सबके फेवरेट सब्जियां तो डेफिनेटली अलग अलग होंगी। यश, आपकी कद्दू है, मैंने अभी अभी सुना।
6: हाँ जी।
8: है ना?
6: हाँ जी।
8: चलो बच्चों, एक काम करते हैं, आपके फेवरेट खाने पीने यानी फूड के बारे में आज हम लोग बात करते हैं।
6: ठीक है दीदी।
7: ठीक है।
8: ठीक है, तो चलो पहले मुझे ये बताओ, खाने के बारे में, खाना तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, किसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
6: मेरे को। वैसे तो सबको अच्छा लगेगा क्योंकि खाने के बिना कोई रह ही नहीं सकता ना। दिन में सब लोग 5 बार खाते हैं।
10: मैं तो पानी पी।
6: 3 बार का खाना होता है, 2 बार आप शायद एक्स्ट्रा खाते होंगे।
10: मैं 7 बार खाता हूँ।
6: मैं बताऊँ दीदी, हम बच्चे बहुत काम करते रहते हैं, थक जाते हैं तो हमें जल्दी भूख लगती है, तो हम सिर्फ 3 बार नहीं खाते होंगे। जैसे सुबह स्कूल से पहले खा के जाते, फिर स्कूल में भी खाते, स्कूल से आकर भी खाते, शाम को भी खाते और रात को भी खाते।
8: मतलब बीच में जो हमारे स्नैक्स होते हैं वो भी हमारे फूड में इंक्लूड होते हैं।
6: हाँ। हाँ।
8: अच्छा, तो एक बात बताओ, सब लोग सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन कौन सी है?
6: दीदी मैं बताऊँ?
1: दीदी मैं बताऊँ? दीदी मैं बताऊँ?
10: मैं बताऊँ? मैं।
8: हाँ चलो बताओ, एक एक करके सब लोग बताओ।
10: पहले यश।
6: चलो ठीक है, मेरी फेवरेट सब्जी, पहले स्थान पर पनीर, फिर दूसरी शिमला मिर्च।
10: और कद्दू कहाँ गई?
6: तीसरी पे है ना।
10: तो तूने बोला मुझे फेवरेट लगती है।
8: अच्छा, मतलब 4-5 फेवरेट भी हो सकते हैं ना। हाँ, कुछ भी फेवरेट जो आपको खाने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और आदित्य, आपको क्या पसंद है?
7: मुझे कढ़ाई पनीर।
8: कढ़ाई पनीर, अच्छा। और वेदांत?
1: पनीर हांडी।
8: अरे वाह, ये तो तीसरे टाइप का पनीर है।
1: हाँ, जिसमें मटके में बिल्कुल अच्छे से कितना बड़ा मटका भर के पनीर आता है, उसके बाद पूरिया आती है।
6: अरे वाह, फिर तो खाने में मजे आएगी।
8: आकाश, आपको क्या पसंद है?
10: दीदी आलू छोला पनीर।
6: आलू छोला पनीर?
10: मेरी मम्मी।
1: नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा हूँ, हम सबको पनीर पसंद है।
8: वही मैं भी देख रही हूँ, क्या बात, सबका फेवरेट पनीर है लगता है। आप
1: वेल दीदी, आपको क्या अच्छा लगता है?
8: भाई पनीर तो मुझे भी पसंद है। अच्छा, अब ये बताओ, खाना पीना तो हम सबको बहुत पसंद है, बट क्या आप लोगों को खाना बनाने का भी शौक है?
10: जी दीदी, हमें आता है।
8: आता है सबको? आता है।
6: यस दीदी।
7: हाँ दीदी, मुझे नहीं आता।
1: वैसे हम लोग तो सीखते रहते हैं उड़ान केयर स्पेशल में, हमेशा हम लोग रेसिपी बनाते रहते हैं, मैं और आदित्य, तो हम लोगों को कुछ रेसिपी तो आती ही होगी।
8: अच्छा, तो कभी आप लोगों ने खाना बनाया है या कुछ खाना में कुछ भी, एक भी डिश या कोई छोटी सी चीज?
10: हाँ दीदी, बनाई है।
6: दीदी बनाया है।
8: अच्छा, तो बताओ यश, क्या बनाया आपने?
6: मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं छोटा था,
11: मैंने आज तक अपनी लाइफ में पहले नंबर पे चाय सीखी थी बनानी, फिर उसके बाद मैंने सीखा था चावल बनाने कैसे, फिर रोटी और उसके बाद मैगी।
8: अच्छा, मतलब आप रोटी एकदम गोल गोल बना लेते हो?
11: कुछ हद तक बन जाती है, कभी कभी ही नहीं बनती तो हार जान।
8: तो जब मम्मी पापा कहते हैं तो फिर चाय बना के पिलाते हो?
11: हाँ बिल्कुल, एकदम एक्यूरेट टेस्ट के साथ।
10: चाय में चीनी डालते हो?
11: अरे हाँ हाँ,
8: ये तो बहुत अच्छी बात है। और वेदांत, आपको क्या क्या बनाना आता है?
6: मोमोज बनाने आते हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगता है। मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं जरूर सीख लेता हूँ बनाना। जैसे डेली रूटीन में दाल चावल बनता है ना, दाल चावल सीख लेता हूँ। कोई सब्जी फेवरेट है आलू या पनीर की भी, तो वो बना लेता हूँ। पर सबसे अच्छा मोमोज बनाना आता है।
8: अच्छा, और मम्मी की हेल्प कराते हो किचन में?
6: हाँ, मम्मी की, एक्चुअली मैं मम्मी की इसी में ज़्यादा हेल्प कराता हूँ, सफाई और किचन में।
11: बिल्कुल मेरी तरह।
8: अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। और आकाश, आप बताओ।
12: दीदी, मैंने लाइफ में अभी तक जितनी भी चीज़ें खाई हैं उसमें से 80% मुझे बनाना आता है।
8: अच्छा, तो सबसे अच्छा आप क्या बनाते हो?
12: डोसा।
8: डोसा बनाना आता है आपको? अरे वाह। मैं आदित्य, आपको क्या आता है? कुछ आता है आपको कुक करना?
7: सिर्फ मैगी बनानी आती है।
8: अच्छा, और कभी कभी मम्मी की हेल्प कराते हो किचन में?
7: किचन में नहीं, उसके अलावा बाकी कामों में करवा देता हूँ।
8: किचन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, है ना?
7: नहीं है।
8: चलो, कोई नहीं।
6: वेल दीदी, खाना बनाना तो सीखना चाहिए। कभी हॉस्टल में जाएंगे तो खुद खाना बनाना पड़ता है। किसने कहा? हाँ।
8: नहीं, ये तो अच्छी बात है। अगर हमें कुक करना आता है तो जब हम बड़े होंगे और कभी अकेले रहेंगे तो हमें खाना बनाना आता होगा, तो थोड़ा थोड़ा मम्मी को देख के हम थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं, उनकी हेल्प करा सकते
6: हैं।
8: हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताओ कि जो मेनली हम लोग खाना खाते हैं उसमें वेजिटेबल्स और पल्सेस होते हैं, यानी दाल और सब्जी।
11: हाँ जी,
8: है ना? तो क्या आप लोग उनको अच्छी तरह से पहचान पाते हो? ये कौन सी दाल बनी है आज, कौन सी सब्जी खा रहे हो आप?
6: मतलब आग बंद करके?
8: नहीं, देख के आप समझ पाते हो कौन सी दाल है, उनके नाम वगैरह आपको पता है?
11: दीदी, दाल के नहीं पता, लेकिन सब्जियों के तो सारे पता है।
6: आग बंद करके तो मैं टेस्ट से भी पता लगा सकता हूँ क्या है।
10: दीदी, मैं तो सुगंध से भी पता लगा लेता हूँ।
7: मैं अच्छा, थोड़ा बहुत पता लगा लेता हूँ दाल का।
8: अच्छा, तो सारी दालों के नाम पता है आप लोगों को?
11: नहीं।
10: हाँ।
8: अच्छा, अगर एक बात बताओ, आपको मम्मी बोले जाओ जाके मार्केट से ये सब्जी लेके आओ, तरोई लेके आओ, लौकी लेके आओ, तो क्या आप लोग अच्छे से ला पाओगे?
11: जी दीदी,
6: वैसे मैं तो ला सकता हूँ, पर सच ये है कि मैं ज्यादा मार्केट गया नहीं, और अगर वो सब्जी वाला मेरे को ज्यादा रेट में दे दिया तो मेरे को रेट नहीं पता अभी क्या चल रहा है सब्जियों का, इसलिए मैं नहीं चाहता सब्जी लेने।
10: दीदी, मैं लौकी के अलावा जो सब्जी मम्मी बोले सब ले आ दूंगा।
6: लौकी क्यों नहीं आकाश?
10: बकवास सब्जी लगती है लौकी।
8: लेकिन किसी सब्जी को बकवास नहीं बोलना चाहिए।
6: और लौकी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है,
8: क्योंकि लौकी तो बहुत हेल्दी होती है।
11: हाँ।
8: है ना?
11: हाँ, जैसे भी।
8: और वैसे भी जो टेस्ट होता है वो तो हमारी जबान का होता है, लेकिन जो हेल्थ है वो पूरी बॉडी के लिए होती है।
11: जी,
8: तो बताओ, छोटी सी जुबान इम्पोर्टेंट है या पूरी बॉडी की हेल्थ?
11: हेल्थ, पूरी बॉडी की हेल्थ।
8: छोटी सी जुबान, तो छोटी सी जुबान के लिए फिर हमें जो हेल्थ मिलेगी ना वो भी छोटी सी होगी।
10: चलेगा दीदी?
8: अभी तो चलेगा, जब बड़े हो जाओगे तो बेटा चलेगा। नहीं
10: हाँ।
8: अच्छा, ये बताओ आप लोग, मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, है ना?
6: जी दीदी।
10: जी दीदी,
8: थोड़ा सा अपने बारे में और अपने स्टेट के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो आप लोग? सबसे पहले यश, आप बताओ।
11: मैं महाराष्ट्र और पंजाबी हूँ, और बर्थ मेरा महाराष्ट्र का है। अच्छा। तो मैं दोनों तरफ जानता हूँ।
8: और आकाश, आप?
10: दीदी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ।
8: और आदित्य, आप?
7: मैं ओडिशा से।
8: और वेदान?
6: मैं तो कई स्टेट्स में रहा, पर यूपी में मेरा जन्म हुआ है।
8: अच्छा, तो वैसे मुझे लगता है बहुत सारे आइडियाज होंगे आपको वहाँ की डिशेस के बारे में भी, है ना?
6: हाँ दीदी।
8: तो सबसे ज्यादा जो आपके स्टेट में डिशेस बनती हैं उसमें आपको जो पसंद है या आपको पता है कौन कौन सी स्पेशल डिशेस होती हैं वो बताओ हम लोगों को।
10: दीदी, मैं पहले। दीदी, हमारे वहाँ पे दही लिट्टी बहुत फेमस है।
8: अच्छा, और वो क्या होता है? अरे जैसे यहाँ पे बाटी बनाते हैं राजस्थान में, वैसे ही हम लोग लिट्टी भी बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर चने का आटा यानी सत्तू भरा रहता है।
13: अच्छा, और उसके साथ दही से खाते हैं?
8: हाँ।
13: अरे वाह,
8: वो भी एकदम खट्टी दही से।
13: अच्छा।
8: हमारे गांव के तरफ सुरेमनपुर स्टेशन पे जाइएगा ना, तो ठेला लेके ऐसे चिल्लाएंगे, दही दही लीटी लीटी लीटी दही दही लीटी।
13: अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत डिफरेंट सी डिश है। अच्छा यश, आप बताओ।
11: पहले पंजाबी में फेमस डिश ये है, मक्के की रोटी खाते हैं और उसके साथ सरसों का साग।
13: मक्के की रोटी और सरसों का साग?
11: हाँ जी।
13: अरे वाह।
11: और थेपले भी बहुत खाते हैं वहाँ पे। और महाराष्ट्र में पूरण पोली वहाँ की फेमस डिश है। वाह, तो हर एक मराठी के घर जाओ तो वहाँ पे फेमस, मतलब इसी के साथ स्वागत करते हैं।
13: हाँ। अच्छा, और ये डिश कैसी होती है खाने में?
11: एकदम मीठी होती है, मेरी तो फेवरेट डिश है।
13: यूपी में कौन सी डिश आपको बहुत पसंद है?
6: यूपी के भी तीन भाग है ना, मतलब इस साइड लखनऊ के साइड में मैं बताता हूँ, वहाँ पर तेल का खाना बहुत मिलता है, जैसे चटपटे खाने जो होते हैं, जैसे कि छोले भटूरे, पूरी छोला, बहुत ऑयली फूड वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। और आपको वहाँ पर सिर्फ एक तरीके के फूड नहीं, कई तरीके के हर फूड वहाँ आपको देखने को मिलेंगे हर जगह। और अभी ज़्यादातर वहाँ पर कबाब पराठा मिलता है। और छत्तीसगढ़ के बारे में भी बता देता हूँ, वहाँ पर सैलेड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि वो उतना हिस्सा जंगल है, तो वहाँ पर बहुत आदिवासी रहते हैं, तो वहाँ पर सैलेड बहुत खाया जाता है हर खाने के साथ, मतलब वो लोग कच्चा सैलेड भी खा लेते हैं, उनको सैलेड बहुत पसंद होता है। तो भैया, आपका बॉर्न कहाँ पे है? एक्चुअली मैं लखनऊ में पैदा हुआ, पर पापा की जॉब की वजह से 10 ईयर्स छत्तीसगढ़ में रहा।
11: तो मतलब आपने पहले ऑयली फूड भी बहुत खाया होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाने
6: मतलब
11: के बाद
6: मम्मी ने दोनों चीज़ सीख ली, छत्तीसगढ़ की भी खाना है, और मतलब अगर ज़्यादा स्टेट्स में रहो तो सारा खाना सीख लेते हैं, दोनों स्टेट्स के खाना आ जाता है।
11: वहाँ के लोग तो हेल्दी भी बहुत होंगे फिर।
6: हाँ,
13: मतलब आप सबको ये पता है कि ऑयली फूड से ज्यादा जो सलाद होता है, जो हेल्दी चीजें होती हैं, वो फायदा देती हैं।
8: अरे यश, इसका मतलब ये नहीं कि साइज में हेल्दी, हड्डी में मजबूती आनी चाहिए।
11: हाँ।
13: बिल्कुल। और जब हम सैलेड खाते हैं, अच्छे पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो एक्चुअली ताकत अंदर ही आती है कि नहीं बच्चों?
6: इम्यूनिटी तेज होती है।
13: बिल्कुल। मुझे ये बताओ, हेल्दी डाइट के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो?
6: हेल्दी डाइट मीन्स बैलेंस डाइट।
13: अच्छा, और बैलेंस डाइट क्या होती है?
6: जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं, ऐसा मत, ये नहीं कि सबसे कम खाना खाओ या सबसे ज्यादा खाना खाओ, नॉर्मल जो एवरेज हमें खाना चाहिए, ना तो ज्यादा फैट वाला फूड, ना तो ज्यादा कैलोरीज वाला फूड, नॉर्मल फूड जो हम खाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, वो बैलेंस डाइट कहलाता है, जो हम हमेशा खाते रहते हैं।
11: विधान भाई, आप साइंस के स्टूडेंट हो?
6: हाँ, मैंने साइंस ली है।
13: और आकाश, आप बताओ, हेल्दी डाइट से आप क्या समझते हो?
8: दीदी, हेल्दी डाइट से दीदी मेरे को लगता है दूध की ज्यादा चीजें खाना।
13: अच्छा,
8: क्योंकि मेरे घर में बोलते मोटा हो दूध पी, बटर खा, ऐसे बोलते हैं।
13: अच्छा यश, आप बताओ।
11: दीदी, हमारे यहाँ पे तो मतलब यही कहते हैं, अच्छे से घी का खाना खाओ, थोड़ा तेल लगाओ, मक्खन खाओ, मक्खन पंजाबी भाषा में मक्खन खाओ,
6: मक्खन
11: हेल्दी रहो।
8: माँ के हाथ के बने आलू के परांठे से मक्खन लगा के सड़ा पंजाबी बल्ले बल्ले।
13: और आदित्य, आपको क्या पता है हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट के बारे में?
14: बैलेंस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी गिविंग फूड होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स।
13: बिल्कुल सही बात है बच्चों, बैलेंस डाइट मतलब हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी को चाहिए वो प्रचुर मात्रा यानी एक्यूरेट मात्रा में हमारे साथ हो, यानी प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, और हर चीज़ का एक मिक्स हमें चाहिए, तो उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, दाल भी होने चाहिए, रोटी भी होने चाहिए, वो चीज़ें जो हमें फ़ायदा करें वो सभी हमारे थाली में मौजूद होने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं करते कि मैं ये दाल खाऊंगा और वो सब्जी नहीं?
11: नहीं दीदी, ऐसा नहीं होता।
6: मैं तो करता हूँ, मैं को अरहर की दाल ज्यादा अच्छी लगती है, बाकी मसूर की दाल चने की दाल थोड़ा कम अच्छी लगती है।
8: ऐसा और भी लोग करते हो क्या?
11: नहीं दीदी, मैं तो सब खाता हूँ।
8: और आकाश?
12: मैं भी सब खाता हूँ दीदी।
6: मेरी सबसे फेवरेट सब्जी करेला की सब्जी है, मैं तो दाल चावल के साथ भी खा लेता हूँ।
8: अच्छा अब ये बताओ, क्या ज्यादा पसंद है, घर का खाना या फिर फास्ट फूड बाहर खाना?
12: घर का खाना।
6: मुझे तो फास्ट फूड बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ, मतलब हफ्ते में एक बार, कभी ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाता। वैसे हर बच्चों को पसंद है फास्ट फूड, पिज़्ज़ा बर्गर, चाउमीन वगैरह, लेकिन तो हम लोगों को यूजुअली घर का ही खाना ठीक रहता है।
11: दीदी मैंने तो पिज़्ज़ा आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ दो बार खाया।
12: दीदी मैंने तो खाया ही नहीं है।
6: मैंने तो से दो तीन बार खाया होगा।
8: और आदित्य आपने?
14: 5-6 बार।
6: बरसात के मौसम में तो कभी नहीं खाना चाहिए बाहर का।
11: नहीं दीदी, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर के बारे में बहुत सी बातें निकली है, जैसे पिज़्ज़ा है तो पिग होती है उसकी मांस से बना गया, ऐसे भी बताया गया था बीच में, तो उस समय से मैंने
12: देखा था।
11: ना ना,
12: तो
11: मैं तो इंटरनेट पे देखा था।
12: माय गॉड,
11: मेरी मम्मी ने दिखाया था।
6: वैसे दीदी टीवी में हर फास्ट फूड के लिए अलग अलग डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स बताए जाते हैं,
11: वो तो हर जगह मिलेंगे ना।
6: कि घर का खाना एक ऐसा होता है जिसके लिए हमारी मम्मी का बना खाना कोई भी नहीं कहेगा कि ये गंदा खाना है, चाहे जो अगर मेहमान भी आते हैं तो हमारी मम्मी के खाने को पसंद करते हैं
11: जी।
6: तो सबसे अच्छा खाना होता है।
8: हाँ बच्चों, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तो आप लोग घर में हो, साथ में हो, तो आपको मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा खाना मिलता है। लेकिन अगर कभी जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें बाहर रहना पड़ता है या फिर कभी काम करना पड़ता है, तो हमें तब उस खाने की वैल्यू बहुत रियलाइज होती
11: जी
8: है।
11: जी दीदी,
8: फुल बेनिफिट उठाओ, क्योंकि मम्मी से अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। और फास्ट फूड के जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो तो आप लोगों को पता ही है
11: जी दीदी,
8: है ना, क्योंकि हमारे ब्रेन पे भी वो असर करता है, बॉडी पे भी असर करता है,
6: मेंटली फिजिकली।
11: दीदी मैगी को पचने के लिए 2 दिन लगते हैं पूरे, यानी 48 आवर्स।
8: अच्छा, क्योंकि जो मैदा होता है, मैदे से बनी जो भी चीजें होती हैं, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती हैं।
6: और इसीलिए शायद हमारी मम्मी मैदा का खाना भी, जैसे छोले भटूरे बहुत कम बनते हैं, अगर आप 4 दिन लगातार छोले भटूरे खाओगे
11: तो पेट खराब हो जाएगा,
6: इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है।
8: बिल्कुल, और मुझे लगता है अगर सारे दिन आपको एक जैसा खाना मिले ना, तो वो भी खाने का मन नहीं करेगा।
11: हाँ, जी बोर हो जाते हैं।
6: अलग अलग दाल, अलग अलग डिश सब लोग खाते तो ही अच्छा लगता है।
8: और बच्चों हाँ। पता है एक और अच्छी बात ये है खाने की, कि टेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं। कोई चीजें हमें पसंद होती हैं, कोई कोई चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जब हम वो खाना शुरू करते हैं धीरे धीरे, ये समझ के कि वो अच्छी है, तो हमें वो अच्छी लगने लगती है।
6: हाँ ये तो सही है। पहले मेरे को शिमला मिर्च टमाटर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे कि मेरे को ना बाहर फास्ट फूड में सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते थे, तो जब मैंने वहाँ के लोगों को देखा कि वो ऐसे ऐसे बनाते, टमाटर डाल देते हैं, तो फिर मम्मी कहती है तुम टमाटर तो नहीं खाते, पर इसमें तो पड़ा होता है,

0: हाँ
1: जी दीदी, तो और अगर नकार दे तो उनको कितना बुरा लगता होगा ना।
0: बिल्कुल, तो इसीलिए अब सब लोग घर में हर चीज खाना।
2: आज तो हम लोगों ने खाने के डिश के बारे में भी जाना और उनके वैल्यूज के बारे में भी जान लिया।
0: बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग टाइम पे खाना खाते हो या फिर कभी कभार लेट हो जाता है या मिस भी करते हो कोई मील?
2: मैं तो दीदी तीनों चीजें कर लेता हूँ। मिस हो जाता था, जैसे सुबह स्कूल होता था तो मैं सुबह नहीं खा पाता हूँ। मैं कभी भी स्कूल जाता हूँ तो खा के नहीं निकल पाता हूँ, क्योंकि शायद ये कारण है कि मैं लेट उठता हूँ, इसे खा नहीं पाता और जल्दी स्कूल भी रहता है।
0: और आदित्य आप बताओ, कभी कोई मील मिस करते हो या फिर सब चीजें टाइम पे खाते हो हमेशा?
3: कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, मिस।
0: बाय मिस्टेक मिस हो जाता है, वैसे हमेशा रेगुलर खाते हो?
3: हाँ।
0: अच्छा, वेरी गुड। और आप बताओ यश?
1: दीदी बस सुबह का, उसके अलावा तो प्रॉपर टाइम पे।
0: अच्छा, मतलब दोपहर का खाना, रात का खाना, सब चीजें टाइम पे खाते हो?
1: जी दीदी। अच्छा। टाइम पे सो भी जाते हैं।
0: अरे वाह, वेरी गुड। और आकाश आप बताओ?
4: हाँ दीदी, कभी कभी स्कूल के काम से या कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो खाना मिस हो जाता है कभी कभी, बाकी प्रॉपर।
0: अच्छा, वैसे तो प्रॉपरली खाते हो? हाँ, हमेशा टाइम पे, है ना? क्योंकि टाइम पे खाने की जो वैल्यू है ना, वो बेटाइम खाने की बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग तबीयत खराब होती है या आप लोग बीमार हो जाते हो तब क्या खाते हो?
2: खिचड़ी।
1: खिचड़ी।
4: खिचड़ी।
2: अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले खिचड़ी बनाया था उड़ान के स्पेशल में। मैंने बताया कि कैसे खिचड़ी
3: हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता
2: है, पेशेंट के लिए अच्छी होती है।
4: दीदी मैं तो अभी अभी ताजा ताजा खिचड़ी खा के आया।
0: अरे वाह। अच्छा वैसे जब तबीयत खराब होती है तो खाने का मन तो नहीं करता है ना?
1: हाँ दीदी, मेरा तो खेलने का मन करता है।
0: अच्छा, लेकिन तब तुम लोग खाना खाते हो या नहीं खाते हो?
2: वैसे
1: खाता हूँ दीदी, थोड़ा कम।
2: जब तबीयत खराब रहती है ना तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है। मम्मी कहती है कि तुम चटपटा बुखार के समय खाओगे तो और ज्यादा बीमार हो सकते हो।
4: हाँ दीदी ऐसा होता है, और है ना त्योहार भी उसी टाइम पे आता है,
1: क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना, एक्साइटमेंट के कारण हम बहुत उछलते हैं तो बॉडी पे लोड आता होगा इसलिए।
0: और आदित्य आप बताओ?
3: मेरा जब बस गला खराब हो जाए तब कुछ खाने का मन नहीं करता।
0: लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं तो खाना तो जरूरी होता है।
3: हाँ,
0: तो इसलिए जो मम्मी बताए ना वो खा लेना चाहिए, है ना?
2: यस दीदी।
0: और जब हम तबीयत हमारी ठीक हो जाएगी तब तो फिर सब कुछ खा सकते हैं।
3: हाँ।
0: अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई चीज आपने खाई हो बाहर या इधर और उस कारण से आपकी तबीयत खराब हुई हो?
2: हाँ दीदी हुआ है, बरसात में जब खाते तो हो जाती तबीयत खराब।
0: और यश आप बताओ?
1: दीदी मैं तो बहुत कम खाता हूँ बाहर।
0: अच्छा, और आकाश?
4: दीदी मेरा तो घर से बाहर खाने का कभी होता ही नहीं है, बस अगर स्कूल की पिकनिक में जा रहे हैं या कहीं टूर पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ तो खा लेते हैं बाहर का।
0: अच्छा, और एक और सवाल, क्या आप लोग प्लेट में जब खाना खाते हो तो कौन कौन सच्ची सच्ची खाना छोड़ता है प्लेट में या पूरा खत्म करते हो?
4: दीदी मैं तो हमेशा पूरा खत्म करता हूँ। अच्छा। शांतिवन की बात बता रहा हूँ।
0: और घर पे?
4: घर पे भी।
2: वैसे मैं तो घर में पूरा खाना खा लेता हूँ, लेकिन कभी कभी छोड़ देता अपने खरगोशों के लिए, जैसे छिलके वगैरह।
0: अच्छा, वैसे आप पूरा फिनिश करते हो ना खाना?
2: हाँ दीदी हमेशा।
0: और
1: मैं भी दीदी।
2: एक्चुअली घर में क्या होता है कि हमें जो चाहिए होता है वही हम लेते हैं, और इतना सा हमारी मम्मी को पता रहता है कि मेरा बच्चा कितना खाएगा, कब छोड़ते हैं हम लोग।
0: ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आदित्य?
3: मैं भी हमेशा खत्म करता हूँ सारा खाना।
0: चलो मेरे ख्याल से आप लोग खाने की वैल्यू को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो।
4: हाँ दीदी
0: है ना, क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना खाना मिलता है, प्रॉपरली हर चीज हमारे पास अवेलेबल है और इतने प्यार से हमारी मम्मी हमें खिलाती है, तो उसकी वैल्यू को हमें जरूर समझना चाहिए और कभी प्लेट में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए।
4: दीदी मेरे पापा कहते हैं हिंदुस्तान में 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें दिन का सिर्फ 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है।
0: हाँ बच्चों बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस तो हमें पता होनी चाहिए।
3: हाँ।

0: अच्छा, जाते जाते एक और सवाल, जब आप खाना खाना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या सोचते हो? क्या आप कभी भगवान को थैंक यू बोलते हो उसके लिए, या फिर कुछ याद करते हो?
1: दीदी, भगवान को पहले याद करके शुक्रिया करते हैं कि हमें जो भी मिलता है वो हमें ऐसे मिलता रहे।
2: और मैं तो हैंड वॉश भी करता हूँ,
0: मैं डेटॉल से। नहीं, बिल्कुल, हैंड वॉश करना तो प्रॉपरली बहुत जरूरी है। और आदित्य, आप?
3: हाँ, गॉड को प्रे करते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं।
0: गॉड को प्रे करते हो सब लोग?
1: जी दीदी।
0: अच्छा, चलो बच्चों, ये तो अच्छी बात है। हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, और हमें उन सभी को थैंक यू बोलना चाहिए जिनके थ्रू ये खाना हमें मिला। वो किसान जो सब्जी उगाते हैं, वो वेंडर्स जो उनको सेल करते हैं, और मम्मी,
2: हमारी मम्मी लेकर भी आती है बहुत थैले में, इतना भारी भारी कद्दू भर गए।
1: जी दीदी,
0: तो सोचो हमारी प्लेट में वो खाना आता है, उसमें कितने लोगों का हाथ होता है?
1: 4-5 लोगों का,
0: है ना?
4: और दीदी, एक हाथ तो हमारा भी होता है खाने का।
0: लेकिन वो खाने के लिए जो हमें चाहिए वो सब मिलता कितने लोगों की बदौलत है। तो हमें उन सब का थैंक यू जरूर करना
2: चाहिए, सबसे ज्यादा प्रकृति का।
0: बिल्कुल, और हर किसी का थैंक यू करते विश भी करना चाहिए कि जो भी लोग हैं, भगवान उन सभी को अच्छा खाने को दे और सभी खुशी से रहे। है ना? तो आज से हम सब ये करेंगे।
4: हाँ दीदी।
2: यस दीदी।
0: अच्छा चलो ठीक है। तो खाने के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की, और आपके फेवरेट फूड के बारे में भी जाना, और ये भी जाना कि खाने की वैल्यू क्या है। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 3 ज्ञान प्राप्ति पृष्ठ संख्या 40 ज्ञान प्राप्ति दर्शन परिचर्चा। शांति प्रिय अराड़ मनी के आश्रम में राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उनकी शरीर की आभा से सारा आश्रम प्रकाशित हो गया हो। मुनि अराड़ ने दूर से ही राजकुमार को देख लिया और उच्च स्वर में कहा, स्वागत है, आइए। राजकुमार धीरे धीरे उनके पास आए। दोनों ने विधिपूर्वक एक दूसरे का अभिवादन किया, कुशल क्षेम पूछा और फिर मृग चर्म बिछी दो चौकियों पर दोनों बैठ गए। मुनि ने राजकुमार को निहारते हुए स्नेहपूर्वक कहा, हे सौम्य, मुझे पता चला है कि आप सभी स्नेह बंधनों को तोड़कर घर से निकल आए हैं। आपका मन सब प्रकार से धैर्यवान है। आप ज्ञानी हैं, तभी तो राजलक्ष्मी को त्याग कर यहां आए हैं। वैसे राजा लोग भोगी हुई राजलक्ष्मी को अपनी संतान को सौंप कर ही वन में आते रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि आप विषयों के बीच रहते हुए युवावस्था में ही लक्ष्मी को बिना भोगे ही यहां आ गए हैं। इस धर्म को जानने के लिए आप श्रेष्ठ पात्र हैं। आप ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर को पार कीजिए। यद्यपि शिष्य को अच्छी तरह जानकर ही उचित समय पर शास्त्र ज्ञान दिया जाता है, परंतु आपकी गंभीरता और संकल्प को देखकर मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। अराड़ मुनि के ये शब्द सुनकर कुमार परिव्राजक अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, आप जैसे विरक्त की यह अनुकूलता देखकर मैं कृतार्थ हो गया हूं। जैसे देखने की इच्छा वाला प्रकाश को, यात्रा की इच्छा वाला पथ प्रदर्शक को और नदी पार जाने की इच्छा वाला नौका को देखता है, वैसे ही मैं आपको देख रहा हूं। यदि आप उचित समझें तो मुझे जरा और मृत्यु के रोग से मुक्त होने का उपाय बताइए। अराड़ मुनि ने कुमार से कहा, हे श्रोताओं में श्रेष्ठ, पहले आप हमारा सिद्धांत सुनिए और समझिए कि यह संसार जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में चलता रहता है। पृष्ठ संख्या 41। हे मोह मुक्त, आलस्य अंधकार है, जन्म मृत्यु मोह है, काम महामोह है और क्रोध तथा विषाद भी अंधकार है। इन्हीं पांचों को अविद्या कहते हैं और इन्हीं में फंसकर व्यक्ति पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। इस प्रकार आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त कर आवागमन से मुक्त होती है और अक्षय पद अमरत्व को प्राप्त करता है। अराड़ मुनि से यह तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कुमार ने अक्षय पद प्राप्त करने के उपाय पूछे। तब उन्होंने अनेक उपाय बताए और अंत में कहा, यदि आप संतुष्ट हों और उचित समझें तो इनका अनुपालन कीजिए, क्योंकि इन्हीं सिद्धांत का अनुसरण करके प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। अराड़ मुनि के प्रवचन सुनकर कुमार ने कहा, हे मुनि, मैंने आपसे उत्तरोत्तर कल्याणकारी मार्ग सुना, किंतु मैं इसे मोक्ष नहीं मान सकता। आत्मा के अस्तित्व को मानने पर अहंकार के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है। मुझे आपकी ये बातें स्वीकार नहीं है। अराड मुनि के सिद्धांतों को सुनने के बाद भी कुमार को संतोष नहीं हुआ, अतः यह धर्म अधूरा है ऐसा मानकर वे उस आश्रम से निकल गए और अपने लक्ष्य की खोज में आगे बढ़ गए। अराड मुनि के आश्रम से निकलकर कुमार उद्रक ऋषि के आश्रम में आए। वहां भी आत्मा की सत्ता के विचार जानकर उन्हें संतोष नहीं हुआ, अतः परम पद पाने की इच्छा से उन्होंने उद्रक ऋषि का आश्रम भी छोड़ दिया और धीरे धीरे वे राजश्री गय के नगरी नामक आश्रम में गए। कुछ समय के बाद बोधिसत्व कुमार को एकांत विहार की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने नए रंजना नदी के तट पर निवास किया। वहां उन्होंने 5 भिक्षुओं को देखा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और वहीं रहकर तपस्या कर रहे थे। उन भिक्षुओं ने जब इस नवागत साधु को देखा तो वे उनके निकट आए और उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद जन्म और मृत्यु का अंत करने के उपाय के रूप में बोधिसत्व ने निराहार रहकर कठोर तप प्रारंभ किया। वहां उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया और अनेक उपवास व्रत किए। कठोर तपस्या के कारण वे कृशकाय हो गए। वे भोजन के रूप में कभी एक बेर, कभी एक तिल, कभी एक तंडुल यानी चावल का सेवन करते थे। इस कठोर तपस्या के कारण जैसे जैसे उनका शरीर कृश होता जाता था उनके मुखमंडल का तेज बढ़ता जाता था। मैदा, मांस और रक्त से रहित और मात्र त्वचा और अस्थि वाला उनका शरीर फिर भी समुद्र के समान भरा भरा सा लगता था। पृष्ठ संख्या 42। कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस प्रकार की कठोर तपस्या से व्यर्थ ही शरीर को कष्ट होता है। यह तापस धर्म ना वैराग्य दे पाता है, ना बोध, ना मुक्ति। उन्हें ऐसी अनुभूति भी हुई कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता, अतः वे शरीर बल वृद्धि के विषय में विचार करने लगे। उन्होंने सोचा भूख, प्यास और श्रम से अस्वस्थ मन के द्वारा मोक्ष भला कैसे प्राप्त हो सकता है। उन्हें लगा कि आहार तृप्ति से ही मानसिक शक्ति मिलती है, स्थिर और प्रसन्न मन ही समाधि पा सकता है तथा समाधि युक्त चित्त वाला व्यक्ति ही ध्यान योग कर सकता है। ध्यान योग के सिद्ध हो जाने के बाद साधक उस धर्म को प्राप्त करता है जिससे उसे दुर्लभ, शांत, अजर अमर पद प्राप्त होता है। उन्हें लगा कि मुक्ति का उपाय आहार पर ही आधारित है, अतः उन्होंने भोजन करने की इच्छा की। कठोर तपश्चर्या से बोधिसत्व अत्यंत कृशकाय और दुर्बल हो गए थे, फिर भी वे धीरे धीरे नए रंजना नदी की ओर गए, स्नान किया और तट के वृक्षों की शाखाओं का सहारा लेकर वे ऊपर आए। उसी समय निकट ही रहने वाले गोपराज की कन्या नंदबाला प्रसन्नता पूर्वक वहां आई। शंख जैसी गोरी बाहों वाली गोपबाला ने नीला वस्त्र धारण किया था और लग रही थी जैसे फेन मालाओं से युक्त यमुना प्रकट हो गई हो। नंदबाला ने पहले श्रद्धापूर्वक बोधिसत्व को प्रणाम किया और उन्हें पायस यानी खीर से परिपूर्ण पात्र प्रदान किया। इस प्रकार के सुभोज्य से तृप्त होकर उन्हें लगा कि वे अब बोधि प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। बोधिसत्व के साथ रह रहे 5 भिक्षुओं ने जब उनका यह आचरण देखा तो उन्हें लगा कि अब यह मुनि भी धर्मच्युत हो गया है, इसलिए वे उन्हें छोड़कर चले गए। उन सबके चले जाने के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और वे पास ही एक अवस्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे भूमि पर आसन लगाकर बैठ गए। तभी काल नामक एक सर्प प्रकट हुआ, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका था कि यह मुनि अवश्य ही बोधि प्राप्त करेगा। उसने पहले उनकी स्तुति की। काल सर्प ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों से आक्रांत होकर यह पृथ्वी बार बार डोल रही है। सूर्य के समान आपकी आभा सर्वत्र प्रकाशित है। आप अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हे कमल लोचन, जिस प्रकार आकाश में नीलकंठ पक्षियों के झुंड आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं और मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है, उससे लगता है कि आप अवश्य ही बुद्ध बनेंगे। पृष्ठ संख्या 43। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें नंदबाला नामक कन्या सिद्धार्थ को खीर से भरा पात्र प्रदान कर रही है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 44। सर्प द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सिद्धार्थ ने तृण लेकर बोधि प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा की। वे महावृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मैं कृतार्थ नहीं हो जाता, इस आसन से नहीं उठूंगा। जब सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा पूर्वक आसन लगाया तो देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। सर्वत्र नीरवता छा गई। उस समय न मृग बोले न पक्षी। वे धीरे धीरे नितांत एकांत शांत वातावरण में समाधिस्थ हो गए। मार की पराजय। जब महामुनि सिद्धार्थ ने मोक्ष प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर आसन लगाया तो सारा लोक अत्यंत प्रसन्न हुआ। परंतु सदधर्म का शत्रु मार यानी कामदेव भयभीत हो गया। उसे सामान्यतः कामदेव, चित्रायुद्ध और पुष्पशर कहा जाता है। यह काम के संचार का अधिपति है। यही मार है। उसके विभ्रम, हर्ष और दर्प नाम के तीन पुत्र हैं और अरति, प्रीति और तृष्णा नाम की तीन कन्याएं हैं। उन्होंने जब अपने पिता को भयभीत देखा तो इसका कारण जानना चाहा। मार यानी कामदेव ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बताया, देखो, इस मुनि ने प्रतिज्ञा का कवच पहनकर सत्व के धनुष पर अपनी बुद्धि के वाण चढ़ा लिए हैं। यह हमारे राज्य को जीतना चाहता है। यही मेरे दुख और भय का कारण है। यदि यह मुझे जीत लेता है और सारे संसार को मोक्ष का मार्ग बता देता है तो राज्य सूना हो जाएगा। इसलिए यह ज्ञान दृष्टि प्राप्त करे उससे पहले ही मुझे इसका व्रत भंग कर देना चाहिए। अतः मैं भी अभी अपना धनुष बाण लेकर तुम सबके साथ इस पर आक्रमण करने जा रहा हूं। इस प्रकार सारी स्थिति समझाकर मार अपने पुत्र पुत्रियों को साथ लेकर उसी अश्वत्थ वृक्ष के पास गया, जहां महामुनि समाधि लगाकर विराजमान थे। उसने पहले महामुनि को ललकारा और फिर धनुष बाण हाथ में लेकर कहा, हे मृत्यु से डरने वाले क्षत्रिय, उठो, अपने क्षत्रिय धर्म का आचरण करो, मोक्ष का संकल्प छोड़ो, शास्त्रों और यज्ञों से लोक जीतकर इंद्रपद प्राप्त करो, नहीं तो मैं अपना बाण छोड़ दूंगा। पृष्ठ संख्या 45। मार की इस चेतावनी का जब मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने अपने पुत्रों और कन्याओं को आगे भेजा और अपना बाण छोड़ दिया। परंतु इसका भी कोई प्रभाव मुनि पर नहीं हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने यही बाण शिव पर छोड़ा था तो एक बार विचलित हो गए थे, परंतु आज यह निष्फल कैसे हो गया है? क्या इस मुनि के हृदय नहीं है, अथवा यह बाण वह बाण नहीं रहा जिसने शिव को पराजित किया था? इस प्रकार सोचते हुए उसने अपनी सेना को याद किया और तत्काल उसकी विकराल सेना उपस्थित हो गई। महामुनि के चारों ओर विचित्र और भयंकर आकृति वाले जीवों की भीड़ सी लग गई। वे विविध प्रकार की रूप सज्जा धारण किए हुए थे। उनमें से कुछ त्रिशूल घुमा घुमा कर नाच रहे थे, कुछ गदा हाथ में लिए इधर उधर कूद रहे थे और सांड की तरह हुंकार रहे थे। रात्रि के प्रारंभ में ही शाक्य मुनि और मार के बीच होने वाले युद्ध के कारण सारा आकाश मलिन हो गया, पृथ्वी कांपने लगी और दिशाएं जलने लगीं। उस समय भयंकर झंझावात प्रवाहित होने लगा। आकाश में उस समय ना तारे थे और ना चंद्रमा था, चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया। इन सब के बीच शाक्य मुनि उसी प्रकार स्थिर चित्त बैठे रहे जिस प्रकार गायों के बीच में सिंह निश्चिंत भाव से बैठा रहता है। मार ने तब अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया और कहा कि महर्षि को भयभीत करो जिससे इसका ध्यान भंग हो जाए। आज्ञानुसार सभी महामुनि को डराने लगे, किंतु जैसे खेल में उत्तेजित बालकों को न व्यथा होती है न उद्वेग, वैसे ही महर्षि इन सब के भयंकर रूपों और क्रियाकलापों से न व्यथित हुए और न ही उत्तेजित। जब मार के किसी सैनिक ने अपनी आंखें तरेर कर महामुनि पर गदा से प्रहार किया तो उसका गदा सहित हाथ ही जकड़ कर रह गया। किसी ने शिला और किसी ने वृक्ष उठाकर उन पर प्रहार करना चाहा तो स्वयं ही गिर गए। किसी ने उन पर अंगारों की वर्षा की तो मुनि के मैत्री भाव के कारण वे लाल कमलों की पंखुड़ियां बनकर बरसने लगे। शाक्य मुनि अपने आसन से जरा भी विचलित नहीं हुए। इस भयंकर वातावरण से वन के पशु पक्षी आर्त नाद करने लगे। सभी भयभीत हो गए, किंतु सिद्धार्थ मार की सेना से भयभीत नहीं हुए। इस पर मार को बहुत दुख हुआ और उसे बहुत क्रोध भी आया। तभी किसी अदृश्य जीव ने आकाश से प्रकट होकर मार से कहा, तुम व्यर्थ ही क्यों परिश्रम कर रहे हो? जैसे सुमेरु पर्वत को हवा हिला नहीं सकती, वैसे ही तुम और तुम्हारे भूतगण इस महामुनि को विचलित नहीं कर सकते। चाहे अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, चाहे जल अपना द्रवत्व त्याग दे, चाहे पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़ दे, लेकिन अपने पूर्व जनों के पुण्य प्रताप से यह मुनि अपना नहीं निश्चय छोड़ेगा। यह मुनि शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित सारे जगत का महावैद्य है। तुम इसके कार्य में विघ्न न डालो। पृष्ठ संख्या 46। उस अदृश्य जीव ने आगे कहा, देखो क्षमा रूपी जटा, धैर्य रूपी दृढ़ मूल, चरित्र रूपी पुष्प, बुद्धि रूपी शाखा और धर्म रूपी फल देने वाला यह वृक्ष उखाड़ने योग्य नहीं है। बोधि प्राप्ति के लिए जो कार्य पहले इन्होंने किए हैं उनकी सिद्धि का समय अब आ गया है। यह स्थान भी वही है जहां प्राचीन काल में अनेक मुनियों ने साधना की है। यह स्थान भूतल की नाभि है। ऐसी श्रेष्ठ भूमि पृथ्वी पर अन्यत्र नहीं है जो इस महामुनि की समाधि के वेग को सह सके। इसीलिए हे मार, तुम व्यर्थ परिश्रम मत करो, जाओ शोक मत करो और शांति प्राप्त करो। अपने सभी प्रयत्नों को विफल होते देखकर और इस अदृश्य जीव की ये बातें सुनकर मार अत्यंत खिन्न हुआ और वहां से शीघ्र भाग गया। जैसे अपने सेनानायक के मारे जाने पर सैनिक भाग जाते हैं, वैसे ही मार के जाने के बाद उसके सारे भूतगण भाग गए और मार पर महर्षि की विजय हो गई। मार पर महर्षि की विजय होते ही सारा आकाश चंद्रमा से सुशोभित हो गया। सुगंधित जल सहित पुष्पों की वर्षा होने लगी, दिशाएं निर्मल हो गई। बुद्धत्व प्राप्ति। मार और मार की सेना को धैर्य से पराजित करके शाक्य मुनि ने परम तत्वों को जानने की इच्छा से ध्यान लगाया। ध्यान की समस्त विधियों पर पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया। मैं कहां कहां, कब कब अवतीर्ण हुआ हूं, इस प्रकार उन्होंने सहस्त्रों जन्मों का प्रत्यक्ष स्मरण किया। अपने उन अवतारों में उन्होंने जो दया कर्म किए थे और जिस प्रकार मृत्यु प्राप्त की थी, उन सब का प्रत्यास्मरण किया। उन्हें अनुभूति हुई कि यह सारा संसार केले के गर्भ के समान नितांत निस्सार है। द्वितीय प्रहर में उस महामुनि ने दिव्य चक्षु प्राप्त किए। उन्होंने नीच ऊंच कर्म करने वाले प्राणियों के उत्थान पतन का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिससे उनकी दयालुता और भी बढ़ गई। उन्होंने पाप कर्म करने वालों की नारकीय वेदना और पीड़ा का अनुभव कर दुख का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कि कर्म बंधनों से बंधे हुए प्राणी किस प्रकार दुख भोगते हैं पर मर नहीं पाते, और जब मरते हैं तो कैसे ये प्राणी निम्न योनियों में पुनः जन्म ग्रहण कर दुख भोगते हैं। पृष्ठ संख्या 47। उन्होंने अनुभव किया कि संसार में छोटे बड़े सभी जीव भूख और प्यास जनित दुखों से पीड़ित हैं। कुछ जीव हैं जो नरक के समान गर्भ नामक सरोवर में गिरकर मनुष्य के स्वर्ग जाते हैं और वहां और तृप्त होने से पूर्व ही स्वर्ग से गिर जाते हैं। उन्होंने जन्म जरा और मृत्यु के कारणों का साक्षात्कार किया। उन्हें लगा जैसे वायु के योग से अग्नि का एक कण

भी सारे वन को जला देता है, वैसे ही तृष्णा युक्त काम कर्म रूपी जंगल को जलाता रहता है। उन्होंने ध्यान में समझा कि तृष्णा का मूल कारण वेदना या संवेदना है, जो इंद्रियों, वस्तुओं और मन के संयोग से उत्पन्न होती है। उन्हें बोध हुआ कि अविद्या के नष्ट होने पर ही संस्कार क्षीण होते हैं और परम पद का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्हें प्रतीति हुई कि उन्हें अब पूर्ण मार्ग का ज्ञान हो गया है। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जब सारा चराचर जगत शांत था, महाध्यानी मुनि ने अविनाशी पद प्राप्त किया और वे सर्वज्ञ बुद्ध हो गए। जैसे ही शाक्य मुनि बुद्ध हुए, सारी दिशाएं सिद्धों से दीप्त हो गईं और आकाश में दुंदुभी बजने लगी। बिना बादल बरसात होने लगी, मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी, वृक्षों से फल फूल बरसने लगे और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर धर्म छा गया। इक्ष्वाकु वंश के मुनि ने सिद्धि प्राप्त कर ली और वे बुद्ध हो गए। यह जानकर देवता और ऋषिगण उनके सम्मान के लिए विमानों पर सवार होकर उनके पास आए और अदृश्य रूप में उनकी स्तुति करने लगे। ध्यानावस्थित होकर महात्मा बुद्ध ने जीवन मरण के कार्य कारण संबंधों को भली भांति जान लिया था और मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इस मुक्तावस्था में वे 7 दिनों तक बैठे रहे, तभी उन्हें जगत को बोध प्रदान करने की अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। तभी 2 देवता आए और उन्होंने निवेदन किया, हे भवसागर को प्राप्त करने वाले मुनि, आप इस दुखी जगत का उद्धार कीजिए। जैसे धनी धन बांटता है, वैसे ही आप अपने गुण और ज्ञान को बांटिए। महात्मा बुद्ध ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। तभी अन्य दिशाओं से देवतागण आए और उन्होंने महामुनि को भिक्षा पात्र दिया। निकट से जाने वाले एक सार्थवाह के 2 श्रेष्ठियों ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। पृष्ठ संख्या 48। तब उन्होंने अराड और उद्रक का स्मरण किया, परंतु तब तक वे दिवंगत हो चुके थे। अतः उन्होंने उपदेश देने के लिए उन 5 भिक्षुओं का स्मरण किया जो उन्हें तप से भ्रष्ट मानकर छोड़कर चले गए थे। इस तरह संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए महात्मा बुद्ध ने काशी जाने की इच्छा की। वे अपने आसन से उठे, उन्होंने अपने शरीर को इधर उधर घुमाया और बोधि वृक्ष की ओर प्रेम से देखा। प्रश्न 1, अराड मुनि ने अविद्या किसे कहा है? 2, कठोर तपस्या में लगे सिद्धार्थ ने किस कारण भोजन करने का निर्णय किया? 3, मार कौन था और वह बुद्ध को क्यों डरा रहा था? 4, सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्त करने पर प्रकृति में किस प्रकार की हलचल दिखाई पड़ी? यहां 3रा अध्याय समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। ध्वन्यंकन विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को आज विशेष 9 जुलाई है और 9 जुलाई की कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। और इस बीच हमारे साथ कृष्णमूर्ति जी भी पहुँच गए हैं स्टूडियो में, तो कृष्णमूर्ति जी से भी बात करते हैं। कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: बहुत ही बढ़िया, रेडियो मधुबन से प्रेरणा मिलती है कि सदा सुनते रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए।
0: चलिए, आज हमारे श्रोताओं को आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं?
1: आज मैं एक स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनाने वाला हूँ।
0: जी जी जी, सुनाइए।
1: मैं

मैं तुझको नजर आऊं, तेरी हर ऊंचाई का प्रभु दिल ने किया एहसास है। तुम पर तू ही निश्चय मेरा, तू ही तो विश्वास है।

कृष्णमूर्ति जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए मित्रों, आशा करूंगा कृष्णमूर्ति जी को सुनकर आध्यात्मिक गीत से आज का कार्यक्रम शुरू हो गया है तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं और बड़ी अच्छी बातें होगी आज के इस कार्यक्रम में। आप जो है कृष्ण मूर्ति की सुंदर गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की है हमने आज, और आज 9 जुलाई है और अश्लेषा नक्षत्र है। इसके साथ में गुरुदत्त, संजीव कुमार के बालचंद्र, सत्यनारायण सिन्हा, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही शेरी भूपाली, सरदार अंजुमा, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को एक सुंदर विचार के साथ जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है, तो इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे, है ना। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। लीजिए एक और गाना आपको सुनाते हैं। और शाम का समय है और शाम के समय में जो है मौसम जिस तरह से बदल जाता है, आपको अपने मन के मानस पटल को भी बदलते जाना है। मन भी जो है थक जाता है तो आलस से बस नकारात्मक सोचने लगता है, इसलिए मन को थकने मत देना। भले शरीर थक जाए तो आप सो जाना, आराम करना या थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ जाना, लेकिन मन को थकने मत दीजिएगा। मन को रिफ्रेश करिए, मन के अंदर सुंदर विचार लाइए, सोचिए कि परमात्मा की असीम कृपा जो है आप पर बन रही है, आपको मिल रही है और परमात्मा आप पर जो है वरदानों की वर्षा कर रही है। इस तरह के जो विचार हैं वो आप बनाते जाएं अपने मन में और आशा और खुशी से अपने आप को, अपने मन को भरपूर कीजिए। तो क्योंकि जब तक आप शरीर से थक जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से अगर थक जाते हो तो नेगेटिव विचार आने लगते हैं और वो आपको ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, इसलिए इससे बचे रहें। आइए आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और गीत सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, आज दो लेजेंडर कलाकारों का जन्मदिन है जिनके बारे में मैं आपको डांस, ड्रामा, डायलॉग डिलीवरी के साथ संगीत भी सुनाने वाला हूँ। भारतीय सिनेमा

0: प्रभात फिल्म में एक कोरियोग्राफी की हैसियत से, और अभिनय भी कभी उनकी पहली पसंद नहीं रही, मगर उनके सरल संवेदनशील और नैसर्गिक अभिनय का लोहा सभी मानते थे। उन्होंने प्यासा के लिए पहले दिलीप कुमार का चयन किया था। वे एक रचनात्मक लेखक भी थे और उन्होंने पहले पहले इलेक्ट्रोड वीकली ऑफ इंडिया में कहानियां भी लिखा करते थे। तो ऐसे विशेष गुरुदत्त की कहानी अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चांद। प्यारे मियां ने ये सबसे बड़ा एहसान किया है मुझ पर।

0: बसाते तो।
1: इनके पिता हेडमास्टर थे और बाद में बैंक में काम करने लगे और माँ बसंती शुरुआती दौर में तो सिर्फ घर संभालती थी पर बाद में टीचर भी बनी।

गुरुदत्त का बचपन कोलकाता में बीता, जहां बंगाली वातावरण में गुरुदत्त ने अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की और यही वजह थी कि उन्होंने अपना नाम पादुकोण से दत्त कर लिया था, क्योंकि दत्त एक सामान्य बंगाली सरनेम है।

0: किस्मत बदल गई।
1: यूं तो गुरुदत्त एक बहुत ही अच्छे छात्र थे, पर पैसों की तंगी की वजह से इन्होंने उदय शंकर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उदय शंकर एक मशहूर और मारूफ डांसर रहे, यही वजह रही कि गुरुदत्त ने फिल्मों में बतौर डांस डायरेक्टर शुरुआत की थी।

0: ये बात भी हैरान करती है कि कोलकाता में गुरुदत्त ने बतौर टेलीफोन ऑपरेटर काम किया था और फिर सन 1944 में ये मुंबई आ गए। उस जमाने में मुंबई के नजदीकी शहर पुणे में ज्यादा फिल्में बनाई जाती थीं और वहीं की प्रभात फिल्म कंपनी में गुरुदत्त को जॉब मिल गई। यहाँ पर गुरुदत्त बतौर डांस डायरेक्टर काम कर रहे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी। एक्टिंग से गुरुदत्त का नाता अभी इतना गहरा नहीं था, पर यह दौर मुश्किलों भरा था। प्रभात फिल्म कंपनी में गुरुदत्त का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और ये फिर बेरोजगार हो गए।
1: मुझे पुलिस चाहिए।
2: यहाँ मैं हाजिर।
1: ये सामान रख दो गाड़ी में। राम राम राम, क्या हालत हो गई इस दुनिया की। अरे पढ़े लिखे लोग भी पुलिस की निकल रहे हैं।
0: ये वक्त इतना कठिन था कि ऐसा माना जाता है कि इसी दौर में गुरुदत्त ने अपनी आप बीती लिखी, जिसका नाम रखा गया कश्मकश, जो बाद में फिल्म प्यासा के रूप में नजर आई।

ये वो वक्त भी था जब गुरुदत्त की जिंदगी में उनका पक्का दोस्त आया और ये दोस्त आगे जाकर बना लेजेंडरी देवानंद। इन दोनों ने एक दूसरे से एक बहुत ही अनोखा वादा किया था।

अगर देवानंद कभी प्रोड्यूसर बने तो वो जरूर गुरुदत्त को एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए देंगे, और गुरुदत्त कभी डायरेक्टर बने तो जरूर देवानंद को अपनी फिल्मों में लेंगे। जैसे ही देव साहब ने फिल्म बाजी प्रोड्यूस की तो उसमें गुरुदत्त को बतौर डायरेक्टर लिया, और जब गुरुदत्त प्रोड्यूसर बने तब देवानंद को फिल्म तो जरूर दी पर उस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया। उस फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला। तो इस तरह गुरुदत्त अपना वादा अधूरा ही रख पाए और उस फिल्म का नाम है CID।

0: थी आंखों में।
1: गुरुदत्त साहब की एक के बाद एक फिल्म्स हिट होती जा रही थी, चाहे वो आर पार रही हो या मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी या फिर प्यासा। सन 1957 तक गुरुदत्त ने अपना एक अलग मकाम बना लिया था और फिल्म इंडस्ट्री में भी सबने ये मान लिया था कि ये एकदम अलग हुनर हैं। पर गुरुदत्त इस बात से बेखबर थे कि वो एक ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं जिसके बाद वो डायरेक्शन से संन्यास ले लेंगे, और ये फिल्म है कागज के फूल।

0: ये किस्से मशहूर हैं कि सबने गुरुदत्त को समझाया था कि फिल्म कागज के फूल ना बनाएं, ये फिल्म नहीं चलेगी। और तब गुरुदत्त ने कहा था कि मैं ये फिल्म अपने लिए बना रहा हूँ। पर इस फिल्म की असफलता के बाद गुरुदत्त संभल नहीं पाए और फिल्मों से डायरेक्शन पूरी तरह से छोड़ दी। वो और बात है कि आगे जाकर ये फिल्म एक क्लासिक मानी जाने लगी। ऐसा भी माना जाता है कि ये फिल्म भी गुरुदत्त की जिंदगी पर ही बेस्ड थी, जहां पर एक डायरेक्टर एक नई हीरोइन की मोहब्बत में पड़ जाता है। कुछ लोग तो इसमें गुरुदत्त के निजी जीवन को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरुदत्त और वहीदा रहमान का रिश्ता भी बहुत मशहूर रहा। वहीदा रहमान को ब्रेक भी इन्होंने ही दिया था और इन दोनों की प्रेम की खबरें सुर्खियों में भी रही।
1: बिल्कुल वही हो तुम। मुद्दत से मेरी आंखें इसी रूप की तलाश कर रही थी, इसी रूप के
2: जी?
1: वही सादगी, वही भोलापन।
0: फिल्म कागज के फूल के साथ वक्त ने एक ऐसा सितम किया कि गुरुदत्त ने डायरेक्शन छोड़ दी। पर बहुत जल्द फिल्म चौधरी का चांद बनाई गई, जो बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त हिट रही, जिसके बाद गुरुदत्त ने कहा था कि जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, या तो आप सफल होते हैं या फिर असफल।

0: खुद डायरेक्शन छोड़ने के बाद इन्होंने फिल्म साहिब बीवी और गुलाम बनाई, जिसके डायरेक्टर रहे इनके राइटर दोस्त अबरार अलवी, और इस फिल्म ने अबरार अलवी को फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जितवाया।
1: बगियन का मेहमान है।

गुरुदत्त ने सिर्फ अच्छी फिल्में ही नहीं बनाई बल्कि बहुत अच्छा संगीत भी हमारे सामने रखा। म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन और ओपी नैयर के साथ इनकी जोड़ी ऐसी खूब जमी कि जब जब कोई भी गाना बनाया गया वो हिट ही रहा। और गीतकार साहिर लुधियानवी का साथ भी गुरुदत्त को

0: फिल्म प्यासा के लिए ये बात मशहूर है कि गुरुदत्त चाहते थे कि इसमें दिलीप कुमार, नरगिस और मधुबाला काम करें, पर बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे पर आए कि दिलीप साहब के सामने गुरुदत्त की नहीं चलेगी, इसलिए ये रोल खुद गुरुदत्त ने निभाया।
1: हम क्या कहते क्यों कर कहते, एक हर्फ न निकला होठों से और आंखों में आंसू आ भी गए।

0: बैठे ही रहे।
1: मधुबाला और नरगिस दोनों ही गुलाबों का चरित्र प्ले करना चाहती थीं, जिसे बाद में वहीदा रहमान ने निभाया और यही वजह रही कि फिल्म प्यासा में दिलीप कुमार, मधुबाला और नरगिस बाहर हुए। गुरुदत्त, माला सिन्हा और वहीदा रहमान ने इतिहास रच दिया।

यदि हम गुरुदत्त के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि गुरुदत्त एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे और उनकी लव मैरिज हुई थी उस जमाने की मशहूर मारूफ सिंगर गीता दत्त के साथ, और इनके 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना।

तकरीबन हर फिल्म में ये गीता दत्त की आवाज का इस्तेमाल करते और गीता जी भी एक बहुत ही अनोखी आवाज की मल्लिका रहीं। उनका हर एक गाना सुपर हिट रहा, पर इन दोनों की शादी में तूफान आने लगा। गीता दत्त वहीदा रहमान और गुरु दत्त के बीच के संबंधों को लेकर बहुत परेशान थीं और यही वजह रही कि वो इनसे अलग हो गईं। और इन सब परेशानियों में गुरु दत्त ने शराब का सहारा लिया और शराब ने उनकी हालत बहुत खराब कर दी थी।

भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने वक्त से आगे की फिल्में बनाई। वो अपने ही वक्त में बहुत मायूस हुए और ऐसा माना जाता है कि शराब और नींद की गोलियों की ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई।

0: वो शाम जब गुरुदत्त ये दुनिया छोड़कर चले गए बहुत ही तनाव भरी थी। ऐसा माना जाता है कि गुरुदत्त इंतजार कर रहे थे कि उनकी बीवी गीता दत्त उनसे मिलने जरूर आएंगी और साथ में बच्चों को भी लाएंगी, पर गीता जी नहीं आई। ये बात भी सामने आती है कि गुरुदत्त अपनी बीवी से मिलने के लिए इतना तड़प रहे थे कि उन्होंने आशा भोसले को फोन करके पूछा था, क्या गीता तुम्हारे साथ है? और शायद आशा जी ही वो आखिरी इंसान रही जिनसे गुरुदत्त ने फोन पे बात की थी।
1: कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है?
0: गुरुदत्त की त्रासद मौत ने फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। उनके चाहने वालों ने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया कि इतना यंग एक्टर डायरेक्टर कैसे इस दुनिया से जा सकता है। और आज तक गुरुदत्त के जीवन का रहस्य लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठाता रहता है।

0: भारतीय सिनेमा के इतिहास में गुरुदत्त साहब का नाम हमेशा अमर रहेगा।
1: तो ये थी कहानी गुरुदत्त जी के बारे में, आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका नाम है संजीव कुमार। सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गुरुदत्त की जीवन कहानी सुना आपने और बड़े प्यारे प्यारे फिल्म और उनकी स्टोरी भी, फिल्मी दुनिया से कोई कम नहीं थी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, इस तरह के खूबसूरत गानों के साथ फिल्मों को बनाने वाले गुरुदत्त साहब की कहानी को सुनकर कहीं ना कहीं आपको जो है उनकी जीवन कहानी से वाव फील हो रहा होगा। तो आइए आपकी खुशी को और बढ़ा देते हैं, एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। तो के बाल चंद्र जी के बारे में बात करेंगे अभी। और ये भी एक ऐसे शख्सियत थे जो एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म निर्माता, निर्देशक और कहानी लेखक थे। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान इनका रहा। 2010 के लिए इन्हें विशेष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वरिष्ठ फिल्मकार के बालन चंद्र को दिया गया। पुरस्कार पाने के बाद स्वर्ण कमल और दस लाख यानी स्वर्ण कमल का एक उन्हें चिन्ह दिया गया, उसके साथ में 10 लाख रुपए नकद दिए गए। दक्षिण भारत के इस फिल्मकार ने हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए उत्तर भारत में अपनी विशेष पहचान बनाई है। तो आप सभी जानते हैं एक दूजे के लिए ये फिल्म जो है बहुत ही पॉपुलर रहा। कमल हसन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म। तो आइए ऐसे विशेष निर्देशक के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले 45 सालों में अधिक समय केएल बालचंद्र फिल्म निर्देशक, निर्माता और कहानी लेखक के रूप में सक्रिय रहे। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में 100 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। उन्हें अलग तरह की फिल्में निर्माण करने के लिए जाना जाता है और बालचंद्र जी फिल्म निर्माण की अपनी एक अनोखी शैली के कारण जाने जाते हैं। उनके लेखन और निर्माण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जटिल से जटिल चीज़ों को, व्यक्तिगत संबंधों को, सामाजिक बंधनों को विशेष रूप से उन्होंने फिल्मों पर उजागर किया है। और बालचंद्र में नवीन प्रतिभाओं को जो पहचानने की एक अद्भुत क्षमता थी। और बालचंद्र को रजनीकांत, कमल हसन, प्रकाश राज और विवेक जैसे वर्तमान दौर के कई सितारों को फिल्मी दुनिया में लाने का बिल्कुल श्रेय जाता है। और 1965 में फिल्म उद्योग में आए और नागेश अभिनीत अपनी पहली फिल्म निरकु मिजीज से ख्याति प्राप्त कर दिया इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया जिनमें कई राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तरों के पुरस्कार इनको मिले हैं। उल्लेखनीय फिल्म में अगर बात करें तो 47 नटकल, सिंधु भैरवी, एक दूजे के लिए, तेलुगु में रुद्रवीणा तथा कन्नड़ा में अरली दावू शामिल है इस तरह के फिल्में। और फिर रोजा इनकी एक जो फिल्म है जो इनकी कहानी इन्होंने लिखी, आलियो मान्य रत्नम को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। वहाँ पर के बालचंद्र को इसके निर्मित के लिए इन्हें सम्मान मिला। और फिर कहानी, तकनीक, संवाद, निर्देशन और निर्माण को लेकर बालचंद्र की नज़र हमेशा एक खोजी की रही है। वो दर्शकों को ध्यान में रखते हुए अपने नज़रियों को कुछ आगे ले जाते, कभी पीछे नहीं देखते हैं। यही वजह है कि अनेक विभागों ने उन्होंने कई बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं। आप सुन रहे हैं सफ़र कार्यक्रम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए, बालचंद्र जी के बारे में आपने सुना, बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पे भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और इस तरह से उनकी गंभीरता पूर्वक उनकी जो कहानी है, या थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, उस सारी जगह पर जो है अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी पर रहे हैं। आइए इसके साथ ही मैं आपको जोड़ना चाहूँगा एक और कलाकार के बारे में जो हिंदी फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता थे। इनका नाम हरिभाई जरीवाला था, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये मशहूर हुए अपने नाम संजीव कुमार से। जी हाँ, संजीव कुमार से ये पॉपुलैरिटी हासिल की फिल्मी दुनिया में, और एक नायक, सहायक नायक और खलनायक और चारित्र कलाकार की भूमिकाओं को इन्होंने निभाया। इनके द्वारा अभिनीत बहुत ही पॉपुलर फिल्म कोशिश, शोले, अंगूर, त्रिशूल, पारस, अनामिका, खिलौना, बंचली, शतरंज के खिलाड़ी, सीता और गीता, आंधी, मौसम, विधवा, दस्तक, नया दिन, नई रात, ये सारी फिल्में शामिल हैं। जी हाँ, इनका जन्म आज ही के दिन 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था और बचपन से ही फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखा करते थे, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन के शुरुआती दौर में रंगमंच यानी नाटक कंपनी से जुड़े रहे, और बाद में उन्होंने फिल्मालय में विशेष एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया और विधिवत उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की। 1960 में उन्हें फिल्मालय के ही बैनर तले हम हिंदुस्तानी में एक छोटा सा भूमिका निभाने का मौका मिला। बस फिर तो क्या था, कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है, फिल्मी सफर उनकी। और फिर 1962 में राजसी प्रोडक्शन के तले एक फिल्म आरती के लिए उन्हें स्क्रीन टेस्ट देना था, जिसे वो पास नहीं कर पाए। फिर सर्वप्रथम मुख्य अभिनेता के तौर पे संजीव कुमार को 1965 में एक फिल्म आई निशान, उसमें काम करने का मौका मिला। इस तरह से ढेरों छोटे बड़े रोल करते करते 80 और 1960 से लेकर 68 तक, यानी पूरे 8 साल तक संजीव कुमार इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत, मशक्कत और संघर्ष करते रहे। साथ हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिकाएं मिली उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बदला, नैनिहाल, गुनेगार जैसे फिल्मों में अभिनय तो किया, लेकिन कहीं भी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई, और इसकी वजह से ये थोड़े से टेंशन तो था ही। और 1968 में इनका जो है फिल्म एक शिकार के लिए इनको पुलिस ऑफिसर की भूमिका दी गई। ये फिल्म पूरी तरह से अभिनीत धर्मेंद्र पर केंद्रित थी, पर फिर भी इसमें संजीव कुमार छोटे रोल में अभिनेता की उपस्थिति में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में थोड़ी सी कामयाबी इनको यहाँ मिली। इस फिल्म में दमदार अभिनय के साथ उनको जो है अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिला, और फिर उसके बाद उनकी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी और फिर संघर्ष में एक संघर्ष नाम का एक फिल्म आई, जिसमें फिल्म जगत के बहुत ही बड़े सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन संजीव कुमार अपनी छोटी सी भूमिका के जरिए वहाँ भी वो पॉपुलैरिटी हासिल की। इसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंग, सत्यकामा जैसे अनेक फिल्मों में ये कामयाबी के रूप में दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनते गए। तो आइए इनके बारे में और बातें जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मैं सीधे आपको इनकी कहानी डायलॉग डिलीवरी के साथ सुनाने वाला हूँ। अभी दिल थाम के बैठिए, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: वो गंदे नाले में जाकर कैसे मिल गई?
3: लेकिन 1968 में एक ऐसी फिल्म आई जहाँ पे संजीव कुमार ने जबरदस्त अभिनेता दिलीप कुमार तक को हिला कर रख दिया था। इस मल्टी स्टारर में संजीव कुमार का हुनर चमक के सामने आया। 1970 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने संजीव कुमार को स्टार बना दिया। ये फिल्म रही खिलौना। संजीव कुमार उस दौर में इकलौते ऐसे एक्टर थे जो हीरो भी बन रहे थे, विलन भी बन रहे थे और कैरेक्टर रोल्स भी प्ले कर रहे थे।
2: खुद कर्ज और लालची किरण, इसके सर पर ताकत और हुकूमत का नशा सवार था, और वही ताकत और हुकूमत का नशा आज नहीं बादल नहीं, मुझे वो ताज और तख्त नहीं चाहिए जिसे पाकर मेरा देवता समान भाई राक्षस बन गया। अगर तुम्हें सिंहासन चाहिए तो ले लो, लेकिन भगवान के लिए फिर वही बादल बन जाओ।
3: ये बात भी मशहूर है कि जब इन्होंने रंगमंच पर कदम रखा तब इनके डायरेक्टर थे ए के हंगल। संजीव कुमार ने बड़ी गुजारिश की और कहा कि मुझे हीरो बनाए नाटक का, लेकिन ए के हंगल ने इन्हें बूढ़े आदमी का किरदार दिया और कहा कि हीरो तो तुम दिखते ही हो, वो रोल तो तुम बड़ी आसानी से निभा लोगे, लेकिन जो तुम दिखते नहीं हो अगर तुम वो किरदार निभा सको रंगमंच पे तब माना जाए कि तुम एक्टर हो। वही सीख संजीव कुमार के साथ जिंदगी भर चली।
4: देख रामू, भगवान ने हाथ अच्छे काम करने के लिए दिए हैं, बुरे काम करने के लिए नहीं। जो हाथ मुंह में निवाला डालने के लिए होते हैं उन हाथों से चोरी नहीं की जाती।
3: ये बात भी बड़ी मशहूर रही उस जमाने में कि संजीव कुमार साहब दरअसल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा जी अपना दिल उस जमाने के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र को दे चुकी थीं, तो कैसे वो संजीव कुमार का रिश्ता कबूल थीं। इस बात ने संजीव कुमार का दिल तोड़ दिया। ये भी कहा गया कि इसी वजह से इन्होंने आगे जाकर शादी नहीं की।
5: आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं।
4: शुक्रिया, मैं अपनी तारीफ सुनने का आदी नहीं, खासकर औरतों की जबान से।
5: क्यों, औरतों में क्या बुराई है?
4: औरत की दगाबाजी और मक्कारी से अल्लाह बचाए, मुझे दुनिया की किसी भी हसीन औरत पर भरोसा नहीं।
3: हालांकि इनकी रोमांस की खबरें उस जमाने के मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित के साथ भी सामने आई, लेकिन शादी न करने की असली वजह इन्होंने अपने दोस्त गुलजार से एक बार बांटी थी। इन्होंने कहा था कि इनके परिवार में कोई भी मर्द 50 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जिया, इसलिए ये किसी से शादी नहीं करना चाहते, किसी और की जिंदगी खराब नहीं करना चाहते। और ये बात सही भी थी, इनके पिता 50 साल की उम्र में गुजर गए, इनका छोटा भाई 48 साल की उम्र में और खुद संजीव कुमार 47 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। संजीव कुमार ने जो भी किरदार निभाए वो अमर हो गए, चाहे वो अंगूर का अशोक रहा या फिर शोले का ठाकुर बलदेव सिंह। जया भादुड़ी के साथ ये बहुत सी फिल्मों में नजर आए, इन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार जया जी के साथ निभाए। अक्सर ये कहा करते थे कि परिचय में ये मेरी बेटी बनी थी और मैं इसका बाप। फिल्म नौकर में हमने रोमांस किया, कोशिश में हम मियां बीवी बन के नजर आए और शोले में ससुर और बहू। काश ऐसा भी हो कि मैं कभी इसके बेटे का किरदार निभाऊं और ये मेरी माँ बनी हो। संजीव कुमार ऐसे हरफन मौला अभिनेता थे कि इनकी हर एक अदायगी पर लोग तालियां बजाते न थकते थे। फिल्म दस्तक के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इनकी डायलॉग डिलीवरी, इनका संजीदा पन और इनकी कॉमिक टाइमिंग ने इन्हें अव्वल नंबर का एक्टर बना दिया। धीरे धीरे संजीव कुमार का वजन बढ़ने लगा, ये खाने पीने के बहुत शौकीन थे। इनका इलाज भी हुआ और ऑपरेशन भी हुआ, इन्होंने खाने पीने पे कंट्रोल भी रखा, लेकिन धीरे धीरे इनकी तबीयत गिरती गई और 1985 में इनका देहांत हो गया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में संजीव कुमार जैसा ना कोई था और ना

0: حبلي
1: भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी बगाए चले जा रहे हो हैं?
2: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
1: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
3: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ संजीव कुमार की कहानी आपने सुनी। आशा करूंगा उनके डायलॉग डिलीवरी और सब चीज़ें आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने शोले फिल्म देखा हो तो ठाकुर का रोल कभी आप याद भूल नहीं पाएंगे। खिलौना अगर देखा तो एक मेंटली जो प्रॉब्लम होते हैं उन चीज़ों को, मानसिक बीमारी की यहाँ पर बताई गई थी, जिसमें उन्होंने एक जो है पागल का रोल ऐसा जीवंत तरीके से निभाया जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और वो फिल्म उनकी कामयाबी के बुलंदी पर उनको पहुंचा लिया। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको आज के शो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। जाते जाते आपके लिए एक सुंदर विचार, अपने मिशन में सफल होने के लिए, अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित भाव से समर्पित होना पड़ेगा, है ना कमाल की बात। तो चलिए आप अपने लक्ष्य के लिए समर्पित भाव से एकचित हो जाइए। ऐसे शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है युवा मंच. चुनाव के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों. ये कार्यक्रम लाइव यानी कि सीधा प्रसारण हो रहा है आप सभी के लिए. और आज एक स्पेशल दिन है क्योंकि हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है जिनका मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगी. हमारे साथ स्टूडियो में आज है डाइटिशियन नेहा जी जो कि अहमदाबाद से आई हैं. नो हेल्थ डाइट क्लिनिक वो अपना ही उनका वेंचर है, वो रन कर रही हैं पिछले 9 साल से और उससे भी पहले से 14 साल से वो इस फील्ड में हैं. न सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि कई हॉस्पिटल्स को वो विज़िट करती आ रही हैं. तो दोस्तों हम जानते हैं स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो सपने हैं, स्वास्थ्य है तो अपने हैं, स्वास्थ्य है तो भविष्य है, स्वास्थ्य है तो हम किसी सक्सेस को भी इंजॉय कर सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं. तो कितना कितना कितना जरूरी है स्वास्थ्य, ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों. तो चलिए आइए आज हम कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जानेंगे नेहा जी से और जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे जो हमें हेल्प करेगी हमारे भविष्य तक पहुँचने के लिए. सबसे पहले स्वागत करते हैं नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: थैंक यू.
0: मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि हम डाइट के बारे में बात ज़रूर करेंगे लेकिन पहले आपसे जानना चाहूँगी ये फील्ड का आपका साथ कैसे कनेक्शन हुआ या आपने डाइटिशियन बनने का कैसे सोचा?
1: जब मैं स्कूल में थी तो मेरा डॉक्टर बनने का ही सपना था
0: जी.
1: मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी पर मैंने देखा कि हमारे ही फैमिली में काफ़ी ऐसे सडन डेथ हुए कई सारे मेडिकल इश्यू की वजह से. तो मुझे हमेशा ऐसा लगने लगा था कि दवाई के अलावा भी और कोई वजह हो सकती है जिससे हम डिजीज़ को रिवर्स कर पाए, या तो फिर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम नेचुरली क्योर कर पाए या मैनेज कर पाए. तो वो टाइम पे मेरे को ऐसे सवाल होते थे. और जब मैंने साइंस में एडमिशन BSc में एडमिशन में करने गई तब वहाँ पर मुझे मैडम ने गाइड किया जो हमारे प्रोफेसर थे, तो वो काउंसलिंग कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे डाइटिशियन होते हैं और उनका अच्छा फ्यूचर है. वो टाइम पे मुझे खुद ही नहीं पता था कि डाइटिशियन क्या होता है,
0: होता क्या है.
1: पर वही है कि अंदर से ऐसी फील थी कि मैं नेचुरली कुछ क्योर कर पाऊँ या कुछ कर पाऊँ, ऐसा था
0: जी.
1: और ये मुझे क्लिक किया, उन्होंने मुझे डिटेल में समझाया और फिर मैंने BSc इन डाइटेटिक्स में ही शुरू किया.
0: वंडरफुल. तो आपने, क्योंकि आपका जो विजन था जो वो एक प्योर काम से जुड़ा था, आपको लगा आप लोग मदद कर पाएं, उनके लिए हेल्प कर पाएं, इसलिए इस प्रोफेशन को आपने चुना. अब नेहा जी, जैसे अगर युवाओं की बात करें खास तौर से तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें इस उम्र में पता नहीं चलती हैं, लेटर ऑन हमें एज में पता चलती हैं. और अभी तो हम बहुत जोश में होते हैं तो हमारा दिन रात शेड्यूल, पेरेंट्स बोलते हैं ये करो, जल्दी उठो, ऐसे खाओ वैसे खाओ, पर हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा है, मैं ठीक हूँ. तो क्या सच में ठीक होते हैं कुछ भी करके या वो असर पड़ता है धीरे धीरे?
1: एक्चुअली अर्ली एज में तो कुछ पता नहीं चलता, मतलब आप 25 के हो तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है. इवन आप भूखे भी रहते हो तो भी शायद आपका बॉडी जो है वो सपोर्ट कर लेता है. पर ये सब चीज़ों की अफेक्ट नियर बाय 30 होते होते आने लगती है. अब तो ऐसा होने लगा है कि अर्ली एज में भी प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज ऑफ दी जो आसपास का जो वातावरण भी ऐसा हो गया है, मेंटल हेल्थ से लेके फिजिकल हेल्थ दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है. कई बार होता है कि मेंटली वो डाउन है तो फिजिकली अफेक्ट करता है, फिजिकली डाउन है तो मेंटली अफेक्ट करता है. तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा रोल है कि अच्छा हेल्थ होना भी बहुत बड़ी चीज़ है
0: जी. तो क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मतलब बहुत बड़े बड़े चेंजेस कई बार हमें लगता है हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं?

0: डाइटिशियन का रोल क्या होता है, लाइफस्टाइल सुधारना, राइट? तो उसमें बेसिक तीन चार चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है. ऑफ कोर्स डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही, पर अभी की जो जनरेशन है उनका मेन है कि वो फिजिकली एक्टिव नहीं है. उनको लगता है वो भाग दौड़ रहे हैं, वो एक्टिव है, पर एक्चुअली अपने बॉडी को टाइम देना, मतलब कि आप पूरे दिन में खुद को कितना टाइम दे रहे हो, वो बहुत जरूरी है. और वो कहीं ना कहीं एब्सेंट है ही, मतलब पूरा दिन एक्टिव है, पढ़ाई में ध्यान दे रहे, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं एक फोकस के साथ फिजिकली एक्टिव होना, जहाँ पे आपको एटलीस्ट खुद को 30-45 मिनट देना चाहिए, जहाँ पे आप गेम खेलो या आप वॉक के लिए जाओ, साइकिलिंग करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो. जबकि आज की जनरेशन क्या कर रही है, ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल कंप्यूटर उसमें ही वो अपना टाइम पास करती है जब उसके पास टाइम होता है, तो माइंड फ्रेश वो वैसे कर रही है. और वही चीज़ ज़्यादा अफेक्ट कर रही है फिर मेंटल हेल्थ को भी. फिजिकली तो हो ही रहा है, मेंटली भी फिर कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है. तो ऑफ कोर्स फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. उनको जो भी पसंद हो वो कर सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो गया, चाहे कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी. 1 आवर तो करना ही चाहिए पूरे दिन में. जरूरी नहीं है कि जिम करना. जनरली क्या होता है कि ट्रेंड चल रहा है अभी कि हाँ जिम ही ज्वाइन करेंगे वरना कुछ नहीं करेंगे.
1: फिजिकल एक्टिविटी मतलब जिम,
0: ऑफ कोर्स, पर जिम वो है, वो डिपेंडेंसी है. हमें ये भी समझना होगा कि हमें कोई भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है. हमको अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. मतलब कि आप खुद की आदतें ऐसी रखो जो अपने हिसाब से खड़ी की हो, ना कि कोई जिम की वजह से, या कुछ ज्वाइन किया तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊँ खुद को पुश करूँ, वैसे नहीं. तो फिजिकल एक्टिविटी. दूसरी चीज आती है वाटर इनटेक. ऑफ कोर्स ये बहुत छोटी सी एडवाइस है, बट मैंने बहुत नोटिस किया है लेटर ऑन कम पानी पीने वाले लोगों की डाइजेशन हेल्थ कैसी होती है.
1: अच्छा,
0: तो ये छोटी चीज है पर इसका अफेक्ट बहुत बड़ा हुआ है इन फ्यूचर. तो वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए. हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको रिमाइंडर देते थे कि पानी पिया, पानी पिया. अब क्या है, लाइफस्टाइल बहुत ही फास्ट है, पेरेंट्स भी बिजी है, बच्चे कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रिमाइंडर देने वाला कोई नहीं है. तो उनको वाटर इनटेक अच्छा करना चाहिए. पूरे दिन में 3-4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए
1: सबको.
0: ऑफ कोर्स आइडियली 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि छोटी एज में किडनी के प्रॉब्लम्स भी बहुत देखने को आ रहे हैं. जो मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, मैं देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पानी का रोल है. एंड थर्ड वन इज डाइट. डाइट जो है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है. आजकल क्या हो रहा है, मैंने अभी रिसेंट एग्जाम्पल आपको दूँ. मेरे आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट है, जो किसी रेफरेंस, मेरे क्लाइंट के रेफरेंस से ही आए वो पेरेंट. इन्होंने मुझे फोन करके बोला, मेरी बेटी 14 ईयर की है और उसने कहीं पे रील देखी ऑनलाइन और वेगिन पे आ गई. ऑफ कोर्स वो अंडरवेट थी और अंडरवेट हो गई. मतलब कि 42 समथिंग वेट था, अभी उसका 37-38 है.
1: अच्छा,
0: तो ये खुद से डिसीजन लेना आपकी बॉडी के लिए वो सूट करे ना करे, कुछ भी देखे भी ना. आज की जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड भी हो रही है ऑनलाइन देख देख के. ये लेना है, ये नहीं लेना है, तो ये लेना नहीं लेना, ये सब चीजों में भी वो कंफ्यूज हो रहे हैं. पर उनकी खाने की एज है
1: जी,
0: उनको खाना है, बस जंक फूड से दूर रहना है. जंक फूड जो है वो फैशन हो चुकी है, बाहर निकले जंक फूड खाओ. हाँ, आप खाओ, पर एटलीस्ट बैलेंस में फ्रीक्वेंसी उसकी कम होनी चाहिए. महीने में 1-2 बार ठीक है, पर आप वीकली, अब तो हो रहा है, मैं जिसका भी काउंसलिंग करती हूँ, जनरली वीकली वो लोग बाहर का खा रहे होते, वो भी जंक.
1: जी जी,
0: तो जंक फूड का अफेक्ट बहुत है. होममेड फूड होना चाहिए और बैलेंस में सब कुछ खाओ. बच्चे फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, पैकेट्स फूड खा रहे हैं, रोटी सब्जी मुश्किल से खाते हैं, बहुत ही ज्यादा चूजी है, जिसकी वजह से हाइट का ग्रोथ नहीं है, अच्छा फिजिक्स नहीं है. तो ये सब चीजें बच्चों में देखने को मिल रही है,
1: मिल रही
0: जो 20 के अंदर के है वो.
1: जी, मैं एक्चुअली यही पूछना चाहती थी, आजकल ऑनलाइन इतना कुछ है, इतने सारे वीडियोस हैं, कोई कहता है इतना पानी पीते, कोई कहता है बिल्कुल नहीं, मतलब इतना कम ज्यादा हो जाता है, आपको जब प्यास लगे तभी पीना चाहिए, कोई बोलता है कि आपको ये खाना चाहिए, कोई बोलता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. इतना कंफ्यूजन है कि समझ ही नहीं आता कि करना क्या है.
0: एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है तब ढूंढने लगते हैं डाइटिशियन को. पर जनरली ऐसा है कि आप अगर कोई राइट गाइडेंस के लिए राइट पर्सनालिटी को फॉलो कर रहे हो, या उसे आप उसका एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, जो ऑनलाइन बैठे हैं काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स जो है वो
1: जी.
0: तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वो कौन है, क्या सलाह दे रहा है, कई बार वो सलाह आपके लिए सही है कि नहीं है. एज ए डाइटिशियन मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्सन टू पर्सन एडवाइस जो है वो वराय करती है. है ना,
1: एक एडवाइस सबके लिए नहीं हो सकती,
0: बिल्कुल नहीं हो सकती. हाँ, जनरली हमें मैं जनरल एडवाइस दूं फिर भी पर्सन टू पर्सन वो वराय करती है कहीं ना कहीं. डिपेंड ऑन हेल्थ कंडीशन, रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें मैटर करती है.
1: बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. तो ऐसे आंख बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं करने लगे, लाइफ के डिसीजंस ना ले लें, पहले देखें जैसा आपने कहा उनकी भी डिग्री, उनको भी समझें, अपनी बॉडी को भी समझें और तब डिसीजन लें. इतना जल्दी स्विच ना हो जाए, ये वीडियो दिखा ये करने लगे, ये वीडियो दिखा वो करने लगे. ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, महिलाओं की अगर बात करें मिया जी, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में हम देखते हैं भाई खाने की आदत होती है कि भाई लाइक कभी खा लेंगे, कभी सबको खिला दिया, फिर बाद में खाया, चाहे घर की बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, या फिर कभी मतलब ज़्यादा अगर अच्छा खाना है तो फिर ये होता है कि ये मेल्स को इनको इनको देना, बाहर काम करते हैं और हमको थोड़ा चलो नहीं भी खाया तो चलेगा, या स्किप भी कर देते हैं बहुत बार. तो क्या ये चीज़ें असर नहीं डालती हैं फीमेल बॉडी पे, या उस फीमेल बॉडी को कम चाहिए होती हैं चीज़ें?
0: एक्चुअली फीमेल की अगर बात करें तो 80% मेरे पास जो है वो लेडीज़ क्लाइंट ही है. और उनका यही फोकस होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फैमिली, उनके चाइल्ड है ना, उन पे वो ज़्यादा फोकस कर रही है. खुद के लिए जो बनाने या करने की बात आती है तो उनके पास टाइम नहीं होता है. तो ऑफकोर्स मैं उनको सिखाती हूँ ये चीज़ कि आप सेल्फ लव को बढ़ाओ, और उसके लिए ज़रूरी है कि खुद की केयर करना, खुद का ध्यान रखना. आप इग्नोर ना करें, आपको बैक पेन हो रहा है, आपको नी पेन हो रहा है, आपको गट हेल्थ का प्रॉब्लम है ना, कहीं पर कई बार हेडेक हो रहा है ज़्यादा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ों को वो इग्नोर करती है
1: जी,
0: क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतनी बिजी है चीज़ों में कि उनको अपना ध्यान ही नहीं है, और फिर बहुत लेट हो जाता है. तो मेरे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं, लेडी क्लाइंट, तो उनको वही है कि मैं हमेशा उसे पॉजिटिव करती हूँ कि आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, खुद का शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है. और खाने की अगर बात करें तो घर में अगर कुछ भी बचा है, कुछ लेफ्ट ओवर है फूड, तो वो वही ले लेती है और चला लेती है, तो ये नहीं करना चाहिए. खुद का भी उतना ही ध्यान रखें, क्योंकि वो मेन पिलर है फैमिली का.
1: बिल्कुल,
0: अगर वो उनका हेल्थ खराब हुआ तो बाकी सब फैमिली मेंबर्स है उनका, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी. तो उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि खुद का ध्यान ना दे. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो खुद का ध्यान भी उतना रखना,
1: ज्यादा देना होगा. बिल्कुल सही बात है, बड़ी बात है. जैसे मान लीजिए आपने हार्मोनल इम्बैलेंस की बात की, बहुत सारी महिलाओं में है ये बात, प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जल्दी एज में होने लगते हैं, तो क्या करना चाहिए मतलब उसको बैलेंस करने के लिए? क्या कुछ आप टिप्स दे सकते हैं या सजेशंस दे सकते हैं?
0: हार्मोनल इम्बैलेंस में नो डाउट फिजिकली और साइंस भी है इसके पीछे, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि आज के टाइम में 50-70% जो है वो उनका मेंटल हेल्थ है जो अफेक्ट कर रहा है उनके हार्मोन्स पे.
1: ओके,
0: तो पहली बात तो उनको खुद को मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, फिजिकल एक्टिविटी पे भी फोकस करना चाहिए. जो हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने का. इसके साथ साथ कुछ ईटिंग हैबिट्स भी होती है, इरेगुलरिटी खाने पीने की, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है तब भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए. और अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उनको कंसल्ट करके राइट वे से उनका इलाज करना चाहिए. हार्मोन इम्बैलेंस जो होता है वो लाइफस्टाइल को सुधारने से ही इम्प्रूव हो सकता है, और वो हम जब क्लाइंट आते हैं तो उनका पूरा देखते हैं शेड्यूल, पूरा काउंसलिंग करते हैं, तो पता चलता है कि कौन सी चीज़ मिस हो रही है जिसकी वजह से ये शायद हो रहा है. तो उस पर अगर हम काम करते हैं तो ऑफकोर्स उनका रिजल्ट मिलता ही है. पर वेट बढ़ता है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, वो भी एक रीज़न है कि ओबेसिटी भी एक रीज़न है.
1: वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है,
0: वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है,
1: और हेल्दी खाना जैसा आपने बताया ना, टाइम पे खाना, हेल्दी खाना,
0: हाँ
1: बहुत ज़रूरी है. और यहाँ एक दोस्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर. हेलो नमस्ते. हेलो नमस्कार जी. रेडियो मधु, अच्छा फ़ोन कट गया शायद, माफ़ कीजिएगा, कोई बात नहीं. दोस्तों रेडियो मधुबन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415. फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौट कर आएंगे और डाइटिशियन नेहा जी हमारे साथ हैं, उनसे और भी चीज़ें जानेंगे जो हम अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखला दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? है इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है युवा मंच. युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन नेहा जी, और वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, बहुत से लोगों की मदद करती हैं. और दोस्तों, आज हम उनसे जान रहे हैं कि किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्या हम प्रैक्टिकल चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं, ना रिलेशनशिप ना सपने, और ये सब तो चाहिए जीवन में. तो भाई चलिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में, यानी स्वास्थ्य के बारे में. नेहा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: थैंक यू.
0: नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल बहुत हम देखते हैं कम एज में ही बहुत सारी बीमारियाँ आने लगी हैं. पहले हम देखते थे चाहे 40 के बाद 50 के बाद आती थी, आज वो टीन एज में या फिर 20s में आने लगी हैं वो बीमारियाँ. तो आपने हमें बताया कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है और भी चीज़ें करना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्या गट हेल्थ यानी हमारे कॉन्स्टिपेशन या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं बहुत सारी बीमारियां, या ये रॉन्ग है परसेप्शन या सही है?
1: यस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर गट हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जस्ट एग्ज़ाम्पल, अगर हम टेंशन ले रहे हैं और अचानक से कोई मतलब कोई ट्रोमा फेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमारे गट हेल्थ को अफेक्ट करती है. वैसे ही डेली बेस पे अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, गट हेल्थ में जैसे कि इनडाइजेशन फील करना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन फील करना, तो ये नॉर्मल नहीं है. अब कई लोग हैं वो ध्यान ही नहीं देते, उनको लगता है ये नॉर्मल है,
0: होता
1: इग्नोर
0: है.
1: करते हैं यार, राइट? तो ये इग्नोर करने से ये चीज़ और बढ़ती है, और कहीं ना कहीं डाइजेशन जो है वो स्लो पड़ता है, मेटाबॉलिज्म डाउन होता है. अब उसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो आप खा रहे हो उसके एब्जॉर्प्शन जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, तो जो आप खा रहे हो उसके न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेंगे नहीं, तो फिर वो डेफिशिएंसी की तरफ आप जा रहे हो. तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी लॉन्ग टर्म रहेगी, तो कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज भी आ ही सकता है.
0: राइट?
1: तो हाँ, गट हेल्थ का इश्यू जो है वो नॉर्मल नहीं है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस पर ध्यान दिया जाए.
0: लेकिन कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर डाइजेशन इशू रहता है, तो लोग सोचते हैं कि ये तो होता ही है, मतलब मुझ इस खाने से ये प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो उसके बाद कुछ चूरन खाते हैं या फिर कुछ और चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन चलता रहता है ये.
1: Yes.
0: ये कोई ख़त्म नहीं होता, आज yeah. हुआ, परसों फिर हुआ, एक हफ्ते में फिर हुआ. तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे ये हेल्प हो ठीक करने में?
1: यस, ऑफ कोर्स. इसमें पहले पानी का रोल तो है ही.
0: Okay.
1: जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो एम्प्टी स्टमक आपको गुनगुना पानी एक दो ग्लास पीना चाहिए. एंड एवरी जैसे कि हमारा पूरा दिन का जो मील है उसमें एक मेन मील होता है जो है लंच, जहाँ पे लोग रोटी सब्जी राइस दाल सब कुछ लेते हैं. पर उससे पहले सलाद की एक प्लेट तो लेनी चाहिए, जो सीजनल सलाद.
0: Okay.
1: जिसमें कुकुम्बर, टमाटर, कैरेट या जो भी बीट हो गया, तो जो भी सीजनल है एक दो कॉम्बिनेशन का सलाद थोड़ा सा लेना चाहिए, क्योंकि फाइबर जो है वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है.
0: ओके.
1: तो वो आपके डाइजेशन को और इम्प्रूव करता है, तो सलाद लेना चाहिए बिफोर लंच कंपलसरी. एंड आफ्टर मील, अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा फेस वो कर रहे हैं, तो आफ्टर मील उनको 15 मिनट के बाद एटलीस्ट फिर से गुनगुना पानी थोड़ा पी लेना चाहिए.
0: अच्छा, गुनगुना ही पीना चाहिए.
1: हाँ, गुनगुना पानी एक दो ग्लास पिए, और रात को सोने से पहले भी एक दो ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए. पूरा दिन पीते रहते हैं कई लोग ये सुन के कि गर्म पानी पीने से अच्छा हो जाता है, तो पूरा दिन पियेंगे तो फिर वो भी कहीं ना कहीं एक लेवल तक रिजल्ट नहीं देगा.
0: ओके.
1: तो बेटर है कि आप आफ्टर मील, आफ्टर लंच हो गया गर्म पानी पीना, बिफोर लंच सलाद लेना, सुबह एम्प्टी स्टमक, रात को सोने से पहले गर्म पानी पीना, पूरे दिन में एक दो फ्रूट खाना. बाय नेचर चीज़ें लेंगे तो ऑफकोर्स बॉडी में एक अच्छा उसका अफेक्ट पड़ेगा गट हेल्थ के ऊपर, क्योंकि फाइबर का बहुत बड़ा रोल है, और फूड में अगर फाइबर नहीं है तो वो फूड कहीं ना कहीं फाइबरलेस होगा, कम फाइबर होगा, तो वो हेल्दी नहीं है कहीं ना कहीं
0: जी.
1: वो फिर शुगर स्पाइक करेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं.
0: ओके. तो इसमें जैसा आपने बताया सलाद लेना है और गर्म पानी, और कई बार हम बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि भाई एक दिन जूस पी रहे हैं या फिर एक दिन केवल फ्रूट्स खा रहे हैं या बीच बीच में इस तरह का फास्टिंग करके, या इस तरह की भी कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं.
1: फास्टिंग अच्छी चीज़ है, बहुत सारे बेनिफिट है उसके, बट अभी की जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से मैं प्रैक्टिकल कहना चाहूँगी ये चीज़ कि पूरा दिन सिर्फ फ्रूट पे सलाद पे जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्दी साइन नहीं है. क्योंकि आसपास का जो माहौल है उसके सामने लड़ने के लिए आपको हिम्मत चाहिए. आप सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे नहीं रह सकते लॉन्ग टर्म, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप ऐसा कुछ करना भी चाहते हो अपनी पर्सनल वे से तो भी एक टाइम तो आपको खाना खाना ही चाहिए. जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, राइट, प्रोबायोटिक है, उसके साथ फाइबर है, तो एक कंप्लीट मील तो आपको लेना ही चाहिए. आपका बॉडी इतना तो डिजर्व करता ही है, उसको सर्वाइव करने के लिए इतना चाहिए ही चाहिए. तो जो लोग अगर फास्टिंग कर रहे हैं उनके लिए यही है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है. और जो चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं है उस पे डिपेंड रहे कि अगर कोई रिजल्ट आप ले भी रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं नहीं रहेगा, वो सस्टेनेबल तो नहीं है.
0: कई बार ऐसा होता ना, वेट कम करने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि स्किप कर दिया, नाश्ता नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, सिर्फ एक टाइम खा रहे हैं या फिर लिक्विड ही पी रहे हैं, कुछ इस तरह की वेट कम करने के लिए भी उपाय करते हैं लोग. नींबू पानी पी रहे हैं तो वही उस पे चल रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं खाना है, चीनी छोड़ना, चीनी.
1: आपका जो कल्चर है, आपका लॉन्ग टर्म से जो ईटिंग हैबिट्स चली आ रही है, आपको उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करना चाहिए. जैसे आप बहुत सालों से 10 बजे ही लंच कर रहे हैं तो वो आपकी हैबिट है. तो आपकी अगर लॉन्ग टर्म से ऐसी हैबिट है जहाँ पे आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लंच भी कर रहे हो, डिनर भी कर रहे हो, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ना कि उसे पूरा बंद कर देना, स्कीप कर देना.
0: अच्छा, ओके. मतलब कुछ चेंजेस करें,
1: मतलब हेल्दी मील स्विच कर सकते हो, स्किप नहीं करो. स्किप करना, इरेगुलरिटी होना, ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करती है, डाइजेशन पे अफेक्ट ज़रूर करती है. और इस हिसाब से आप अगर आप नहीं खा के वेट लॉस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एजिंग इफेक्ट भी दिखने लगती है. स्किन डल हो जाती है, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है पर साथ में आपकी बाकी सारी चीज़ें भी लॉस हो रही है बॉडी में. तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये गलत है. तो आपको अपने साइन वो समझने चाहिए होंगे कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो इससे आपको एनर्जी फील होना और बेटर फील होना, ऐसा होना चाहिए. स्किन पे एक ग्लो आना, ये होना चाहिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप हेल्दी वे से वेट लॉस कर रहे हो, जहाँ पे फैट लॉस दिखना चाहिए, वेट लॉस भी हो रहा है साथ में वो भी, और मसल्स लॉस नहीं होने चाहिए.
0: तो मतलब वेट लॉस करने के भी तरीके हैं, वो सही तरीका होना बहुत जरूरी है. गलत मतलब, तरीके से वेट लॉस भी नुकसान है.
1: मैं हमेशा कहती हूँ कि भूखे रह के वेट लॉस नहीं करना है. इवन मैं मेरे क्लाइंट को हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको जो भी डाइट दे रही हूँ ना, उसके अलावा भी अगर आपको भूख लग रही है तो आपको जरूर हमें हमारा जो है मैसेज कर देना है कि मैम मुझे इस टाइम पे क्रेविंग हो रही है स्वीट या स्पाइसी की, या मुझे भूख लग रहा है, मुझे जरूर बताना. क्योंकि हम बॉडी के कोई भी सिग्नल को इग्नोर नहीं करेंगे, हम उसे रिस्पॉन्स करेंगे.
0: अच्छा,
1: तभी बॉडी काम करेगा राइट वे से.
0: जी, ओके, दैट्स वंडरफुल. तो मतलब बॉडी को भी समझना है और फिर सही रास्ता
1: बिल्कुल उसकी सुननी है, क्योंकि
0: उसकी सुननी है,
1: उससे ही काम लेना है हमको.
0: करेक्ट, बिल्कुल. तो दोस्तों, फिलहाल एक और वक्त हो गया है ब्रेक का, छोटे से लौट कर आएंगे. कार्यक्रम युवा मन जारी रहेगा. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार.
3: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए. मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी. फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ. फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए. लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी. एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा. व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट. जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है. जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स. एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी. 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, तो उसका effect कितना लंबा जाएगा? तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं, उसका brain पर असर पड़ रहा है. ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं। अहम कार्यक्रम है युवा मंच और दोस्तों हमारे साथ डाइटिशियन नेहा जी मौजूद हैं। बहुत सारी उन्होंने टिप्स दी, पानी, खाना, सलाद कैसे लेना है। दोस्तों अगर आपने एपिसोड सुना है तो मुझे लगता है आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा बड़ा असर दिखा सकती हैं, कई बीमारियाँ रिवर्स हो सकती हैं। सही तरीका आना चाहिए, बस सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। नेहा जी, हमने बहुत सारी बातें करी, अब अगर थोड़ी सी बात हम बात करें, महिलाओं की बात करें या फीमेल बॉडी की बात करें, हर महीने हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आने लगती हैं अर्ली एज में भी या बाद में भी, इरेगुलरिटी आती है, पेन ज़्यादा होता है या कई तरह की और समस्या आती है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सुन लेते हैं, ये शब्द आम सुन लेते हैं आजकल, पर होता क्या है ये, क्या हमें पता होना चाहिए कुछ।
1: हार्मोनल इम्बैलेंस में पहले तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, जहाँ पे डेट डिले हो रही है या फिर जल्दी भी पीरियड्स आ जाते हैं, 30 डेज या 25 डेज की जो साइकिल होती है वो या तो जल्दी हो रहे हैं या लेट हो रहे हैं, तो ये एक सिम्टम्स है। उसके साथ साथ मूड स्विंग होना, ज़्यादा क्रेविंग्स होना, रात को नींद नहीं आना, अननेसेसरी स्ट्रेस फील होना, तो ये सब चीज़ें उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। सडन वेट गेन होना ये भी एक रीज़न है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। उसके कहीं टेस्ट भी होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर उसके लिए आपको सही सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की। आप उसे कंसल्ट करें, आप देखिए कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, है ना, उसमें उसके टेस्ट करने से पता चलेगा। और फिर उसका आता है सॉल्यूशन क्या है। तो जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो एक नेचुरल प्रॉब्लम है, समझो ये कोई बीमारी नहीं है हार्मोन्स इम्बैलेंस होना।
0: okay.
1: है ना, एक नेचर जो है, जिसने नेचर ने जो दिया है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे हमें नेचर से ही क्योर करना है।
0: ओके
1: तो जिसमें हमारी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जनरली ये स्ट्रेस की वजह से होता है।
0: ओके
1: या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, तो भी हो सकता है, या तो आप कहीं ना कहीं खाने में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सही खाना नहीं खा रहे हो, डेफिशिएंसी बॉडी में, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, पर्सन टू पर्सन कई बार

0: पढ़ाई भी करते हैं ये रीजन, उसमें ध्यान कैसे रखेंगे हम? तो पहले आपका खाना सही होना जरूरी है, मतलब आपका एक करेक्ट डाइट हो, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए।
1: सही खाना मतलब क्या होता है?
0: सही खाना मतलब जिसमें प्रोटीन भी आ गया, फाइबर्स भी आ गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए। जबकि आजकल की जनरेशन की जो गर्ल्स है, जैसे 25 के अंदर की लड़कियों की बात करें, तो वो सब्जियां खाना पसंद नहीं कर रही है, फ्रूट्स खाना नहीं पसंद कर रही है, जनरली वो बाहर का खा रही है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। धीरे धीरे वेट गेन होने लगता है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे सब कुछ आ गया, 5 फूड ग्रुप्स जो है उसमें से सब आ गया, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लेंटिल्स है, ग्रेन्स है, राइट, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए इनिशियली। फिर ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो हाँ ऑफकोर्स फिर मिल्क प्रोडक्ट भी बंद करवाते हैं। तो अच्छा, वो जब हो जाएगा प्रॉब्लम, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। पर शुरुआत में अगर आप वो चीज़ को बैलेंस कर लेते हो तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट मिलता है। पर हमें सिम्टम्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता है कि आपका वेट बढ़ा है तो हमें वो घटाना पड़ेगा,
1: राइट।
0: अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसे कम करना पड़ेगा। तो आपको जो चीज़ हुई है वो किस वजह से हुई है
1: वो पता करना,
0: ये पता करना है, फिर उसके ऊपर हमें काम करना है, तो ही वो हमें रिजल्ट मिलेगा, राइट।
1: वेट बढ़ने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है,
0: ऑफ कोर्स, या और फिर वेट लॉस करने से वो बैलेंस हो भी जाता है, ये भी रिजल्ट हमने मतलब देखते हैं, हम
1: उसे ठीक भी हो जाता है, मतलब बहुत दवाएं नहीं खानी पड़ती है, नहीं तो ऐसा लगता है ना इन चीजों के लिए कितनी दवा खाओ, कितनी दवा खा के भी परेशान हो जाते हैं,
0: वेट गेन होता है फिर, फिर वही भी होता है। तो उसमें फिर वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मेडिसिन तो पीसीओडी में है ही नहीं, ना हार्मोनल इम्बैलेंस में है। तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफस्टाइल को ही सुधारना पड़ेगा। और एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी जो भी लोग सुन रहे हैं उन सबको, कि चाहे वेट लॉस करना हो, चाहे अपनी हेल्थ को सुधारना हो, उसके लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप अगर मार्केट में उसके मैजिक पिल्स ढूंढ रहे हो तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला है।
1: हाँ, आजकल बहुत सारी चीजें हैं,
0: रिसेंटली अभी ओजेम्पिक इंजेक्शन आ गया,
1: राइट, जी जी,
0: वो भी अगर आप ले रहे हो उसके साथ भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, डाइट पे भी ध्यान देना है, तो ऑफ कोर्स बात तो उसी पे आ रही है,
1: कुछ जादू से ऐसा नहीं होने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी,
0: एग्जैक्टली। और अभी ये चीज का सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते। वेट लॉस करना है या कोई भी चीज को रिवर्स करना है तो वो आपकी खुद की मेहनत से ही होगा। जो भी डॉक्टर है या मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं आपको सलाह दूंगी, मैं आपको गाइड करूंगी, पर करना आपको है,
1: करना आपको ही
0: है। जब तक आप नहीं करोगे, आप बदलते रहोगे लोगों को, जैसे प्रोफेशनली प्रोफेशनल्स को बदल रहे हो आप, प्रोडक्ट्स बदल रहे हो, कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो मार्केट में कि जिससे आपका वेट लॉस हो जाए। वेट लॉस के लिए कोई दवाई नहीं है और ना ही कोई फूड है, बैलेंस इज द की,
1: बैलेंस इज द की,
0: ऑफ कोर्स
1: जी।
0: तो जो लोग मुझे बोलते हैं कि जैसे ऐसे ही रैंडमली
1: बता दीजिए, पूछते होंगे ना आपका दादी जी,
0: क्या पूछते पता, हाँ अच्छा डाइटिशियन हो, बताओ ना क्या करना चाहिए, मेरा देखो ये बढ़ गया है, बताओ ना क्या खाना चाहिए। तो ऐसे खड़े खड़े मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकती, ऑफकोर्स उसके लिए पर्सन टू पर्सन वराई करेगी एडवाइस, तो ऐसी कोई पर्सनली टिप्स नहीं है। पर आप अपने सिम्टम्स को समझो, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक बैलेंस खाना पीना और सोना, ये तीन चीज का बैलेंस होना चाहिए। पीना मतलब वाटर इनटेक अच्छा, हाइड्रेशन वो मेंटेन करो, खाना मतलब कि आप अच्छा हेल्दी खाओ, कभी अनहेल्दी खाने का मन कर रहा है तो खाओ, वो भी मना नहीं है, वो भी दुश्मन नहीं है आपके जंक फूड, ऑफकोर्स वो खाने की चीज है, पर उसमें फाइबर कम है, वो कम न्यूट्रिशन उसमें न्यूट्रिशन है, तो ऑफकोर्स वो फ्रिक्वेंसी उसकी कम रखो, बस मना नहीं है पर कम फ्रिक्वेंसी रखो उसके। पर अगर आप हेल्दी खा भी नहीं रहे हो फिर वो भी रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी हेल्थ बहुत खराब होगी। पर आप रूटीन में, हाँ, आप हेल्दी रोज खा रहे हो, कभी कभी अनहेल्दी खा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी को, वो भी माफ कर देगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आपकी रूटीन अच्छी होगी,
1: माफ कर देगी,
0: एग्जैक्टली।
1: लास्टली मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि डिटॉक्स की बात करी थी आपने, क्या कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हेल्प करती हैं?
0: ऑफकोर्स होती है, पर डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि भूखे रहना।
1: हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना।
0: लोगों को लगता है डिटॉक्स करना है मतलब पूरा दिन फ्रूट्स खाना है, लिक्विड लेना है, नहीं ऐसा नहीं है, खाना खाना है, पर डिटॉक्स मतलब कि आपका जैसे एम्प्टी स्टमक का टाइम है, जैसे सुबह उठ रहे हो, मिड मॉर्निंग है, मिड इवनिंग है, रात को सो रहे हो, ये 4 टाइम जो है ना, 4 टाइम, उस टाइम पे आप डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हो।
1: जैसे
0: विंटर के अलग आते हैं, समर के अलग आते हैं, जैसे समर का बेसिक डिटॉक्स ड्रिंक जो बोलूं जो सबके लिए पॉसिबल है, जिसमें आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 4 से 5 स्लाइस कुकुम्बर की, 5 to 7 लीफ ऑफ मिंट एंड लेमन स्लाइसेस 2 से 3 ऐड करके उसे 2-3 घंटा फ्रीज में रख दो,
1: ओके,
0: और फिर उसे आप पीते रहो, 3 आवर्स के बाद उसको इन्फ्यूज्ड वाटर बोलते हैं जिसे, तो वो आप पीते रहो, उससे आपका डिटॉक्स होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, अल्कलाइन मिलेगा और एक अल्कलाइन मेंटेन होगा. अगर एसिडिटी, गैस या कुछ भी है तो कहीं ना कहीं गट हेल्थ बैलेंस में आएगी.
1: ओके,
0: पर उसके लिए भूखे रह के मील स्किप करके ये चीज नहीं करनी. उसका राइट टाइम है मिड मॉर्निंग 9 से 12 या इवनिंग में 4 to 6
1: जब थोड़े खाली होता है पेट.
0: यस, क्योंकि ये ठंडा पानी है ना, तो हम खाली पेट सुबह एम्प्टी स्टमक नहीं पी सकते.
1: ओके,
0: एम्प्टी स्टमक एकदम पियोगे तो फिर प्रॉब्लम और भी हो सकता है कुछ ना, ऐसे आपको सर्दी लग गई या कुछ हो सकता है. तो मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग में ये आप पानी पी सकते हो.
1: ओके,
0: एंड गर्म पानी सुबह खाली पेट पीना है, खाली पेट ठंडा पानी नहीं पीना,
1: नहीं पीना है।
0: तो सुबह उठ के गर्म पानी, जैसे उसमें बहुत सारे, हमारे किचन में ही बहुत सारे स्पाइसीज है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है. तो उसमें जैसे कि कभी हल्दी लेमन वाला पानी पी लिया, कभी जीरा लेमन वाला पानी पी लिया, कभी अपने मेथी रात को सॉक करके सुबह उसका पानी पिया. पर ये आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, आपको 10-10 दिन में चेंजेस करने पड़ेंगे. इसमें 10 दिन आपको ये लिया फिर उसको क्विट करो.
1: अच्छा,
0: क्योंकि आप कहीं पे ऑनलाइन टिप्स देख भी रहे हो, उसका फॉलो करोगे ना, आपको 7-10 डेज में ही रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद वो नहीं मिलेगा आपको.
1: अच्छा,
0: तो आपको इंग्रेडिएंट्स चेंज करते रहने पड़ेगा 10-10 दिन में, आप चेंज करते रहो उसे. तो हमारे इंडियन मसाले है, उसके अच्छे कॉम्बिनेशन में आप गुनगुने पानी के साथ उसे ले सकते हो. ऐसे बहुत सारे नुस्खे है, पर वो हम क्या करते हैं, क्लाइंट का कैसा है हेल्थ,
1: उसके हिसाब से हम
0: उसमें अलग अलग पानी ऐड करते हैं. पर हर वीक में हम उनका डाइट प्लान चेंज करते रहते हैं.
1: अच्छा,
0: तो बॉडी रिस्पॉन्स एवरी 7 डेज में करती है फिर.
1: दैट्स ग्रेट. तो दोस्तों, आज हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई. ऐसा नहीं है खाना छोड़ देना है वेट कम करना है तो, या कोई बीमारी है तो दवा खा के ही जीवन निकालना पड़ेगा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में, मेहनत हमको करनी है, सही चीज़ को समझना है और फिर उसे एक्शन में लाना है. नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे लगता है ये चेंजेस अगर हम कर लें तो हमारा जीवन बदल सकता है, इतनी शक्ति है इनमें. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और ये टिप्स और ये बातें समझाने के लिए.
0: थैंक यू सो मच.
1: तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का. मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए.
2: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन.
3: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई.

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो, हाँ हाँ पहुंचा दूंगा, आप समय से पहुंचा दूंगा।
2: ओए इधर इधर इधर, ओए क्या पहुंचा दोगे हैं? ओए कहाँ पहुंचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुंच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ओए ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? ओए जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
4: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सोशल मीडिया
1: तू ही तो चित्रकार है। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आई हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आऊंगी सवाल, साथ ही साथ कहानियां, कविता और अमेजिंग जानकारी। होमवर्क भी आप तक जरूर पहुंचने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहना, सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।
0: पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: मामा,
1: अरे चंदा मामा दूध के दूर के पुए पकाए, ये गाना जरूर सुनेंगे। लेकिन पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो चंद्रमा मिशन चलाया उसमें रैंडी फ्रैंक, आंद्रे और आंद्रे के अलावा यूरोप से लूका उतरने वाला है। 2026 में 50 साल पूरे हो जाएंगे मानव मिशन को, और इसीलिए 2026 में नासा का लक्ष्य है कि दक्षिण ध्रुव, चांद के दक्षिण ध्रुव में वो इंसानों को उतारे। आप और मैं ये गीत सुनते रहते हैं और सपने बुनते रहते हैं।

0: दूर के।
1: चंदा मामा दूर के। किस नदी को बुजुर्ग नदी या बूढ़ी नदी कहा जाता है? इनमें से किस नदी को बुजुर्ग नदी या बूढ़ी नदी कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ए अमेज़न नदी को, या फिर बी नील नदी को, या फिर सी गोदावरी नदी को। सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: को क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: अमेजिंग जानकारी के बाद आज की प्यारी कविता भी। सहारा की तपती रेत के बीच बहती है एक जीवन धारा। सहारा की तपती रेत के बीच बहती है एक जीवन धारा। नील नदी की मीठी कलकल भरती है जीवन में उजियारा।

इस प्यारी सी कविता के साथ साथ आज का सवाल भी, किस नदी को बुजुर्ग नदी कहा जाता है या बूढ़ी नदी कहा जाता है? ए अमेज़न को, बी आपके सामने है नील नदी को, या फिर सी भारत की गोदावरी नदी को? सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हूँ आपकी दोस्त मोना। तो चलिए आज के होमवर्क की बारी आ चुकी है। आज का होमवर्क है आपके लिए गड़ाथन। सुंदरपुर गांव में रामदिन नामक किसान रहता था। उसकी चार बेटे थे। रामदिन खुद बहुत परिश्रम करता था, पर उसके चारों बेटे बड़े ही आलसी, हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारते। रामदिन उनके इस अल्हड़पन से काफ़ी परेशान। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताती। वो दिन रात यही सोचते कि बेटे अब पेट कैसे पालेंगे। एक रात वो इन्हीं विचारों में खोया था, तब उसकी पत्नी ने झिड़कते हुए एक उपाय सोचाया। उपाय सुनकर कुछ देर रामदिन सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगले सुबह रामदिन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा दिया है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर आप उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर सारे बेटे खुश। उन्होंने अपने पिता को खुशी खुशी राजी विदा कर दिया, तीर्थ यात्रा में जाने को कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ ही दिन तक पिता का कोई बंधन नहीं और वो आजाद। हाँ, कोई बंधन नहीं, गड़ा धन। जी हाँ दोस्तों, गड़ा धन। पर पुनः सवाल आज का, किस नदी को बुजुर्ग नदी या बूढ़ी नदी कहा जाता है? हमारे बड़े बुजुर्ग बच्चे भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं, क्या आपको इसके विषय पर जानकारी है? भाई आज एक पहली कविता जो सुनाई है वो इसी से जुड़ी हुई थी। यदि आपको हिंट मिल चुका है तो ज़रूर आप हमें सवाल का जवाब देना। बूढ़ी नदी कौन सी है आपके सामने? ए अमेज़न नदी, बी नील नदी, सी गोदावरी नदी। सही जवाब ज़रूर देना 9414151415 पर देना। 6650 किलोमीटर की लंबी यात्रा ये नदी पूरी करती है। ये श्वेत और नीली दोनों रंगों में होती है। कहते हैं प्राचीन फिरौन या फिरोज या और क्लियोपेट्रा का साम्राज्य भी इसी नदी के किनारे की शान हुआ करता था, और इसका उद्गम स्थान तो बिल्कुल अलग ही एक छोटा सा देश है, और वहाँ पर मौजूद एक गहरा झील भी बोलते हैं, और उसके साथ जुड़ा हुआ है आपका झील के साथ जुड़ा हुआ है जलप्रपात। वहाँ से शुरू होकर ये नदी बहते हुए मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है। इतनी लंबी बातें आप तक पहुँचा दिए, देर मत करना, सही जवाब हम तक पहुँचा देना 9414151415 पर देना। कौन सी नदी को बूढ़ी नदी कहा जाता है? और आज का होमवर्क हो गया। इसके साथ साथ एक और गीत आप तक पहुंचा देते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: विशाल और समृद्ध वन में सिंहराज नाम का एक शक्तिशाली शेर राज करता था। उसने अपने महल के पीछे एक दिव्य उपवन बनवाया था, जहाँ की हरी भरी घास और झरने सिर्फ उसके उपभोग के लिए थे। एक सुबह राजा खिदकी से बाहर देखता है।
1: महामंत्री, ओ महामंत्री, जरा देखो तो हमारे इस दिव्य उपवन में कौन धृष्ट प्राणी घुस आया है जो हमारी शाही घास को चर रहा है। उसे तुरंत बंदी बनाकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो।
2: जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर देखता हूँ।
0: गजराज उपवन में जाता है, जहाँ चित्रा नाम की हिरण शांति से घास खा रही होती है।
2: कौन हो तुम हे नादान जीव, और इस प्रतिबंधित दिव्य उपवन की घास खाने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? क्या तुम नहीं जानती कि यह हमारे महाराज सिंहराज का निजी बगीचा है? यहाँ की एक एक पत्ती पर सिर्फ उनका अधिकार है।
3: आदरणीय महामंत्री जी, मैंने ऐसा कौन सा घोर अपराध कर दिया जो आप मुझे इस तरह रोक रहे हैं? यह हरी घास और यह प्रकृति तो ईश्वर की देन है, इस पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? पृथ्वी का हर भूखा जीव इससे अपना पेट भर सकता है।
2: तर्क वितर्क मत करो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है महाराज के सामने ही कहना, चलो हमारे साथ।
0: महामंत्री गजराज उस स्वाभिमानी हिरण को लेकर सीधे राजा सिंहराज की सभा में पहुंचते हैं।
2: महाराज, यह रही वह अपराधी हिरण जो आपके शाही उपवन की पवित्र घास को दूषित कर रही थी।
1: हिरण, तुम्हारी यह हिम्मत, हमारे शाही उपवन की दिव्य घास को छूने का साहस तुमने कैसे किया? तुम तुच्छ जीव क्या जानो कि यह केवल राजा के वैभव के लिए है। यहाँ से केवल हम ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
3: हे राजन, यदि गहराई से देखा जाए तो यह पूरा वन ही आपका है। यदि मैं यहाँ की घास नहीं खाऊंगी तो मैं और मेरे बच्चे भूख से प्राण त्याग देंगे। मैंने केवल अपनी क्षुधा शांत करने के लिए थोड़ी सी घास खाई है, उसे उचाधा नहीं है। अभी भी आपके उपवन में अथाह घास शेष है, आप स्वयं भी जाकर खा सकते हैं।
1: मूर्ख हिरण, तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? क्या हम जंगल के राजा होकर तुम्हारी जूठन खाएंगे? तुम्हें भान भी है कि जिस घास को तुम मुख लगा देती हो वह हमारे योग्य नहीं रह जाती। हम किसी अन्य पशु की झूठी घास नहीं चर सकते। कल से यदि तुम इस उपवन के आसपास भी दिखीं, तो तुम्हें सीधे अंधकूप कारागार में डाल दिया जाएगा।
0: अपमानित और दुखी होकर चित्रा अपने घर लौटती है। वहाँ उसका छोटा बच्चा उसका इंतजार कर रहा था।
4: माँ, आज तुम हमारे लिए उस दिव्य उपवन की मीठी घास लेकर नहीं आई? वह घास इतनी कोमल और मधुर होती है कि उसे खाकर आनंद आ जाता है। तुम मेरे लिए वह घास क्यों नहीं लाई माँ?
3: मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज उसी उपवन में गई थी, किंतु वहाँ के अभिमानी राजा ने मुझे अपमानित करके भगा दिया। उन्होंने कहा कि वह केवल राजा का बगीचा है। इसलिए बेटा, आज हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, आज केवल जल पीकर ही सो जाओ।
4: नहीं माँ, मुझे तो केवल उसी दिव्य उपवन की मीठी घास चाहिए। यदि तुम कल मेरे लिए वह घास लेकर नहीं आओगी तो मैं अन्न जल का पूरी तरह त्याग कर दूंगा और अपने प्राण दे दूंगा। मुझे वही घास चाहिए।
3: ठीक है मेरे लाल, शांत हो जाओ। माँ तुम्हारी हट के आगे हार गई, तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं कल पुनः उस उपवन में जाऊंगी और तुम्हारे लिए वह घास लेकर आऊंगी।
0: अगली सुबह होते ही महामंत्री राजा के कक्ष में पहुंचते हैं।
2: महाराज, भोर हो चुकी है, आपके भ्रमण और भोजन का समय हो गया है, चलिए दिव्य उपवन की ओर प्रस्थान करें।
1: महामंत्री, आगे बढ़ने से पहले मुझे यह बताओ कि कल उस हिरण ने जिस स्थान की घास खाई थी, क्या तुमने उस पूरे उपवन को शुद्ध जल से धुलवा दिया है या नहीं?
2: हाँ महाराज, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ है, वह स्थान अब पूर्णतः स्वच्छ है। तभी राजा और महामंत्री देखते हैं कि चित्रा फिर से वहां घास चुन रही है।
1: महामंत्री, देखो उस धृष्ट हिरण की धृष्टता तो देखो, हमारे मना करने के बाद भी वह पुनः यहाँ आ गई। अब इससे वार्तालाप करने का कोई लाभ नहीं है, इसे तुरंत पकड़ दो और लोहे के पिंजरे में बंद कर दो। जब 3-4 दिन यह भूखी प्यासी तड़च पेगी तो इसकी सारी हेक्तथी और यहाँ आने की आदत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
0: राजा के भयानक आदेश को सुनकर चित्रा डर जाती है। वह अपने बच्चे के लिए घास का तिनका मुंह में दबाए हुए अपनी जान बचाकर भागने लगती है। विशालकाय महामंत्री गजराज भी उसके पीछे तीव्र गति से दौड़ता है। इसी आपाधापी और दौदभाग में गजराज का भारी भरकम पैर अनजाने में भागती हुई चित्रा के पिछले पैरों पर पडडडट जाता है। एक चीख के साथ चित्रा वहीं गिर पड़ती है और अपाहिज हो जाती है।
3: आहा, मिल गई तुम्हारे क्रूर राजा को आत्मिक शांति, अंततः मुझे अपाहिज बना ही दिया। मेरे घर पर दो छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। उन्होंने मुझसे इस उपवन की घास लाने की याचना की थी, केवल उनकी जिद और जीवन की रक्षा के लिए मैं यहाँ आई थी, और तुमने थोड़े से तिनकों के लिए मेरे पैर ही तोड़ डश दिए। क्या एक राजा को यह निर्दयता शोभा देती है? राजा को यह निर्दयता शोभा देती है?
2: तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे अत्यंत दुख है शादी, किंतु मैं राजा का सेवक हूँ। मुझे अपने महाराज के आदेशों का पालन करना ही पड्डी डीएचता है। यदि वे तुम्हें सहर्ष घास खाने की अनुमति देते तो मैं तुम्हें कभी न रोकता। मेरा कर्तव्य केवल आज्ञा का पालन करना है, चाहे वह उचित हो या अनुचित।
3: यदि ऐसा है तो सुनो, मैं इस धरती और प्रकृति को साक्षी मानकर तुम्हारे अहंकारी राजा को श्राप देती हूँ। यदि तुम्हारे राजा ने अपने स्थान से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वह उसी क्षण अपाहिज हो जाएगा और भूमि पर गिर पड़ेगा। कह देना अपने महाराज से कि एक दुखी माँ का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता।
0: अत्यंत दुखी और भयभीत होकर महामंत्री गजराज धीरे धीरे राजा के पास लौटता है। उसका मुख चिंता से मलिन था।
1: अरे महामंत्री, तुम अकेले आए हो? हमने तुम्हें उस हिरण को बंदी बनाने को कहा था, तुम उसे पकड़ ले राजकर क्यों नहीं लाए?
2: महाराज, मैं उसे जीवित ही पकड़ देने का प्रयास कर रहा था, किंतु तीव्र दौड़ के कारण मेरा विशाल पैर भूलवश उसके पैरों पर पड़ेज गया। उस आघात से उसके पैर टूट गए और वह अपाहिज हो गई।
1: अरे वाह, यह तो अत्यंत हर्ष का समाचार है। बिना कारागार के कष्ट के ही उसे उसके अपराध का दंड मिल गया। प्रकृति ने स्वयं हमारा न्याय कर दिया। किंतु तुम इतने उदास क्यों हो महामंत्री?
2: महाराज, प्रसन्न होने का समय नहीं है। उस मरणासन्न और अपाहिज हिरण ने अत्यंत क्रोध में आपको एक भयानक श्राप दे दिया है।
1: श्राप? कैसा श्राप? एक तुच्छ हिरण का श्राप हमारा क्या बिगाड़ा सकता है?
2: महाराज, उसने कहा है कि यदि आपने अब अपने स्थान से एक भी पग आगे बढ़ाया तो आप भी अपाहिज हो जाएंगे। मुझे इसी बात की चिंता खाई जा रही है। यदि वनराज ही अक्षम हो गए तो इस साम्राज्य का क्या होगा?
1: महामंत्री, तुम व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हो। राजाओं को ऐसे छोटे जीवों के श्राप नहीं लगते। देखो, मैं अभी तुम्हारे सम्मुख चलकर दिखाता हूँ, जिससे तुम्हारा यह भ्रम टूट जाएगा कि उसका श्राप सत्य था।
0: जैसे ही गर्वीले सिंहराज ने अहंकार में अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक उसके पैरों की शक्ति समाप्त हो गई। वह तड़ड़ड़प कर भारी आवाज के साथ भूमि पर गिर पड़ा। वह चाहकर भी खददहा नहीं हो पा रहा था।
2: आह महाराज, मैंने कहा था ना, उस पीड़ित हिरण ने अपने टूटे हुए हृदय से श्राप दिया था, वह निष्फल नहीं हो सकता था। महाराज, आप सचमुच अपाहिज हो गए।
1: हाँ महामंत्री, उस हिरण की वाणी में सत्य की शक्ति थी। मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़दीढ़ा होने में असमर्थ हूँ।
0: राजा की इस दुर्दशा की सूचना पाकर वन के सबसे वृद्ध और बुद्धिमान भालू रीछराज का आगमन होता है। महामंत्री उनका स्वागत करता है।
2: भालू काका, आपको मेरा सप्रणाम, आप सही समय पर आए हैं।
5: कल्याण हो महामंत्री, किंतु मुझे यह बताओ कि चारों ओर इतनी उदासी क्यों है? क्या जंगल में सब कुशल मंगल है?
2: भालू काका, कुछ भी मंगल नहीं है। हमारे अन्नदाता, हमारे महाराज सिंहराज अपाहिज हो गए हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं।
5: ये तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? वन के सबसे शक्तिशाली राजा अपाहिज कैसे हो सकते हैं? उनके पास तो तुम्हारे जैसे पराक्रमी सैनिक और अंगरक्षक हैं। फिर यह विपदा कैसे आई?
2: काका, यह किसी शत्रु का आक्रमण नहीं, बल्कि एक पीड़ित हिरण के दुखी हृदय से निकला हुआ श्राप है।
5: एक हिरण का श्राप? भला उस सीधे साधे जीव ने हमारे राजा को ऐसा श्राप क्यों दिया? महाराज ने ऐसा क्या अनर्थ किया था?
0: तब महामंत्री गजराज ने आदि से अंत तक उपवन की घास से लेकर हिरण के घायल होने और श्राप देने की सारी कथा रीछराज को विस्तार से सुनाई।
5: अत्यंत निराशाजनक, हमारा राजा इतना निर्दयी और संकीर्ण सोच का कैसे हो गया? क्या उन्हें झात नहीं था कि सत्ता का अर्थ संरक्षण होता है, शोषण नहीं? किसी भूखे को भोजन से वंचित करना सबसे बड़ा पाप है। चलो, मुझे महाराज के पास ले चलो।
0: रीछराज और महामंत्री महाराज सिंहराज के पास पहुंचते हैं, जो भूमि पर असहाय पड़े रहे हुए थे।
1: भालू काका, आप आ गए। मुझे झात था कि मेरी यह दुर्दशा सुनकर आप मेरी सहायता के लिए अवश्य आएंगे।
5: राजन, मुझे आना ही था। इस संपूर्ण वन का भविष्य आपके उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर है, किंतु महाराज, आप इतने स्वार्थी और कठोर कब से हो गए कि एक तृण घास मात्र के लिए आपने एक भूखी माँ को लहूलुहान कर दिया। एक सच्चे राजा का हृदय तो प्रजा के दुहक से पिघल जाना चाहिए था।
1: आप शत प्रतिशत सत्य कह रहे हैं काका। मुझे अपने के पर अत्यंत पश्चाताप हो रहा है। जो अनर्थ होना था वह हो चुका। मेरे झूठे अभिमान की सजा मुझे मिल चुकी है। अब आप ही कोई मार्ग सुझाएं और मुझे इस असहनीय पीड़ा और श्राप से मुक्ति दिलाएं।
5: राजन, इस संसार का नियम है कि जिसने श्राप दिया है वही उसका निवारण भी कर सकता है। आप धैर्य रखें, मैं स्वयं उस हिरण के पास जाता हूँ और उससे क्षमा प्रार्थना करता हूँ।
0: बुद्धिमान रिचाराज तुरंत चित्रा हिरण के निवास स्थान पर पहुँचते हैं। वह अपने बच्चों के साथ पीड़ा में लेटी हुई थी।
5: हे भद्र हिरण, मैं इस वन का संदेशवाहक बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे झात है कि राजा और उनके सेवकों ने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है।
3: प्रणाम भालू काका, आप वन के पूजनीय बुजुर्ग हैं। मैं आपके आदेश को कैसे टाल सकती हूँ? बताइए, मुझ जैसी असहाय हिरण आपके किस काम आ सकती है?
5: पुत्री, तुमने क्रोध और पीड़ा में आकर महाराज को जो श्राप दिया है, क्या उसका कोई निवारण है? यदि राजा इसी प्रकार अक्षम रहे तो पूरा वन व्यवस्था के बिना नष्ट हो जाएगा। कृपया कोई उपाय बताओ।
3: काका, आप ठीक कहते हैं। राजा के बिना प्रजा अनाथ हो जाती है। अब मेरा क्रोध भी शांत हो चुका है। मैं आपको श्राप मुक्ति का रहस्य बताती हूँ। यहाँ से कोस दूर काली पहाड़ी के घने जंगलों में एक दुर्लभ संजीवनी वृक्ष है। उस छोटे से पौधे पर एक अलौकिक विशाल सुनहरी फल लगता है। यदि आप उस फल को लाकर राजा को खिला दें तो वे पुनः स्वस्थ हो जाएंगे।
5: तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बच्ची। तुमने अपनी पीड़ा भूलकर वन के हित में यह उपाय बताया। मैं अभी प्रस्थान करता हूँ।
0: रिचराज बिना समय गंवाए उस दुर्गम काली पहाड़ी के जंगलों की ओर चल पड़ते हैं। अत्यंत परिश्रम के पश्चात उन्हें वह अद्भुत संजीवनी वृक्ष दिखाई देता है जिस पर वह दिव्य फल लगा हुआ था।
5: ईश्वर का धन्यवाद, वह रहा वह जादुई फल। मैं इसे तुरंत सुरक्षित तोड़ डॉच लेता हूँ।

तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। तो चलिए साथ ही साथ सवाल भी एक बार और आपके लिए। किस नदी को बुजुर्ग नदी या बूढ़ी नदी कहते हैं हम? ए अमेज़न नदी को, या फिर बी नील नदी को, या फिर सी गोदावरी को? सही जवाब सिर्फ एक है। एक नदी इनमें से बहती है दक्षिण अमेरिका में, एक नदी बहती है अफ्रीका में, और एक नदी बहती है एशिया, जी हाँ, एशिया महाद्वीप में। पर इनमें से जो नदी अफ्रीका में बहती है वो बूढ़ी नदी या प्राचीन नदी या बुजुर्ग नदी के नाम से जानी जाती है। क्या आपको सही जवाब पता है? तो फिर यदि पता है तो कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9414151414।

मन का फेर रे, मन का फेर रे। आगे बढ़ते हुए आज का सवाल का जवाब भी जरूर जरूर देते हैं। किस नदी को बुजुर्ग नदी या बूढ़ी नदी कहते हैं? वेल, हमने आपके लिए ऑप्शन सी रखा था गोदावरी, ऑप्शन बी रखा था नील नदी, ऑप्शन सी ए रखा था अमेज़न। तो गोदावरी नदी भी इतनी प्राचीन नहीं जितनी कि नील है, और अमेज़न भी इतनी विशाल होते हुए भी इतनी प्राचीन नहीं कि उसे बुढ़ी नदी कहा जाए। तो नील नदी सबसे बुढ़ी नदी या बूढ़ी नदी के नाम से जानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहूँगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं म्हारो गांव म्हारो अंचल। सही में सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही जो प्रतिभा है जन जन तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर ईश्वर विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों मिल सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट को जन जन तक परिवार तक दोस्त तक अपना बड़ों तक पहुंचाने के लिए का मंच आज दे रहे हैं। तो राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय सातपुर में पहुंचे जो कि आबू रोड में ही ये कहने से अत्युक्त हो गए नहीं। और हम जानते हैं सातपुर कितना सुंदर स्कूल है और जब भी आते हैं एक इशारे से सभी स्टाफ हमें कोऑपरेशन करते हैं, इसलिए पहले सभी स्टाफ को धन्यवाद देते हैं और खासकर प्रिंसिपल साहब को भी। तो बच्चों का आवाज आज बारी बारी सुनने को मिलेगा और इसको देखभाल करने के लिए हमारा साथ हेमलता मैम भी है तो उनको भी देते हैं, वो आप बच्चों का कोऑर्डिनेट करेंगे कौन कौन बच्चे आए हैं। और मैम तो स्टेज कोऑर्डिनेट में नंबर वन, मैं कभी भी जहां भी देखते हैं इतने सुंदर रूप में करते, मैं भी आज रेडियो में आरजे बना देंगे आज हम तो आज मुझे रेडियो जोकी बन जाएगी। तो मैम आपको स्वागत, अपना इंट्रोडक्शन प्लीज।
1: सभी को प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम हेमलता पंजाबी है। मैं पिछले 18 वर्षों से इसी विद्यालय यानी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हूं और यह जो प्रोग्राम है रेडियो मधुबन इनका हमें सहयोग निरंतर मिलता रहा है। ये दूरस्थ जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको भी उजागर करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कार्य करते हैं। पवित्र भाई जी मलिक जो हमारे बीच में आते हैं उनका सहयोग भी संस्था को मिलता रहता है। तो मैं संस्था की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रेषित करती हूँ क्योंकि आप ही हमारे बच्चे जो कल का भविष्य है उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब मैं अधिक आपका समय न लेते हुए कार्यक्रम को दिशा देती हूँ। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी ईश वंदना से, क्योंकि कोई भी कार्य हो उसमें पहले हमारे इष्ट का विराजमान होना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना सफलता की पहली शर्त है। तो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ बड़ी सुमधुर आवाज में हमारी बच्चियों के द्वारा एक मनमोहक सी सरस्वती वंदना।

0: ప్రజాపతి బుద్ధిం ప్రదాం శారదా బుద్ధిం ప్రదాం శారదా.
1: सभी को सरस्वती माता की ब्लेसिंग्स मिल गईं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने प्रस्तुत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। शुरुआत जब अच्छा होता है तो अंतिम तक अच्छा होगा। इतना सुंदर भाव में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी अपना अपना नाम और क्लास का नाम बताए, क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन बच्चा अभी गा रहा है। और जो उनका मम्मी पापा सुनेंगे, ये तो हमारा गुड़िया का आवाज, ये हमारा सुदिष्टा का आवाज है, तो कैसे पता चलेगा आप कहाँ से बोल रहे हैं, पता नहीं चलेगा। इसलिए अपना परिचय देंगे पहले।
3: मेरा नाम ज्योति कुमारी बुम्बरिया है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
2: और कहाँ से?
3: मैं कोटड़ा से हूँ।
2: वाह, कोटड़ा, आज तो पूरा नाम रोशन कर दिया हमारा।
4: मेरा नाम सना है, मैं गांधीनगर से इस विद्यालय में आई हूँ पढ़ने के लिए। मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स में पढ़ती हूँ।
2: गांधीनगर नाम सुनते हैं हमको गुजरात याद आता है, और गांधीनगर अपरोड में भी एक गांधीनगर है और सातपुर नजदीक है।
5: मेरा नाम सुमित्रा कुमारी है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और मैं सातपुर में रहती हूँ।
2: वेरी गुड, बहुत अच्छा।
6: मेरा नाम जीनल राव है और मैं गांधीनगर में रहती हूँ।
2: बहुत अच्छा, वेरी गुड।
7: मेरा नाम जानवी कुंवर है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ, मैं भी सातपुर में रहती हूँ।
2: अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर प्रभाव में अपना परिचय दिए। और परिचय जो होता है तो हमें नजदीकपन आता है। हाँ, ये हमारा आसपास के, ये हमारा गांव के, हमारा मोहल्ला के, हमारा दोस्त है, हमारा इसे पता चलता है। इसलिए परिचय बिना कोई भी आदान प्रदान नहीं होता, तो परिचय पहले जरूरी था। जैसे मैम अपना परिचय दिए, मैं भी अपना परिचय दिया, और साथ साथ हमारा बच्चे जो होबनहार बच्चे जो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में स्वर लय और ताल का साथ पूरा सभी श्रोता मित्र को एक परमात्मा तक, माँ सरस्वती तक अपना दिल का तार जोड़ दिए, ये कम बात नहीं, ये ही बच्चों का हुनर है। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे। एकल में हमारा साथ ज्योति भी इस कार्यक्रम को सजाएंगे। लेकिन लेकिन हमारा श्रोता मित्र कहीं मत जाइए, अपना वॉल्यूम को तेज रखिए और बच्चों का आवाज बारी बारी सुनते जाइए, क्योंकि हर स्कूल का आवाज आपका पास हम पहुंचाते हैं, लेकिन आज पूरा सातपुर का आवाज शांत स्वरूप है। जो सातपुर जैसे नाम से बच्चे भी इसे पढ़ते हैं, बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे देंगे। कोई भी बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए तो हमारा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, सरकारी राज के विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय, ये दोनों का जो शक्ति डोज मिल रहा है बोस्ट, तो जरूर आगे कामयाब करेंगे। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमें इंतजार कर रहे हैं और हमारा बच्चे एक के बाद एक रेडी है। सब बड़ों को देखकर छोटे भी सीख जाते हैं और अपना आवाज को भी रोक नहीं पाते। आज सब बच्चे अपना आवाज को नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि बड़ों को देखकर छोटे भी सीख जाते हैं। हमारा छोटी सी परी तो कहेगी क्योंकि बारी क्लास है, फिर भी वो परी जैसे लग रहा है और हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं इस कार्यक्रम को। और हमारा मैम साहब भी कम नहीं, मैम साहब अपना कौन बच्चे अभी सेकंड पार्टिसिपेंट आएंगे और क्या विषय में वो आलोकपात करेंगे, आप थोड़ा बताइए। आपका स्वागत है।
1: कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बालिकाएं और बालक दोनों ही जोश से भरे हुए हैं। अब जो अगली प्रस्तुति एकल गायन के रूप में ला रही हैं, वो है हमारी कक्षा 12वीं की छात्रा ज्योति बुमरिया। मैं उनका परिचय दूं, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बालिका बहुत जगह अपनी प्रस्तुति देकर हमारे विद्यालय के नाम को ऊंचा कर चुकी है और आज भी वे अपने जोश के साथ हमारे सामने देशभक्ति गीत को प्रस्तुत करने जा रही है। कुमारी ज्योति बुमरिया, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जी ज्योति, आप अपनी आवाज दर्शकों तक पहुंचाइए।
2: क्या

0: ज्योति नाम कितना सुंदर, और ज्योति जैसे नाम उस तरह अपना काम करती, और इस तरह प्रेरणा बा कैसे सीखती, तुम कहाँ से सीखती, इंटरनेट से ना किससे, प्रेरणा का स्रोत कौन है तुम्हारा, तुमको इतना आगे जो स्वर लय का साथ इतना सुंदर रूप में लय और ताल का साथ गाई, तो कैसे सीखती तुम, कितना प्रैक्टिस करते रियाज?
1: मम्मी से।
0: ओ मम्मी क्या है, करती है?
1: मम्मी भी सिंगिंग करते हैं।
0: ओ ये राज है बा, अभी समझ में, कोई तो हम जिंस तो होना चाहिए, तब तो एक प्रेरणा का स्रोत बनती है, और मम्मी पूरा गीत गाती है, उनसे सीख।
1: मम्मी घर भी और भजन गाते हैं।
0: भजन भी गाते
1: हैं।
0: वंस मोर और चांस मिलेगा तो और एक गीत गाएगी तुम, जैसे ऐसे गीत गाए हमें बहुत खुशी लगा, और एक गीत हमारा श्रोता मित्र की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई गीत हो।
1: हाँ है वो थे।
0: अरे करो, अरे बाबा सबका एक चांद जैसे पूरा रात को उजला कर देते, बहुत सारा तारे होते हैं लेकिन चांद का तो आप स्कूल का चांद जैसे पूरा, और एक वंस मोर गीत सुनाओ।

0: परिस्थितियां विकट है और हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो ज्योति उनके लिए एक मिसाल है।
1: जी जी।
0: ये एक ऐसे गांव से है, कोटड़ा से, जहां पर की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। ये बालिका जनजाति छात्रावास में रहती है, उसके बाद भी इसके सुरों में वह तालमेल है, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। और हम सभी सभा आपको ये आशीर्वचन देते हैं कि भविष्य में भी आप इस शौक को जिंदा रखें, हम सभी की यही अभिलाषा है। अब
1: अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे श्रोता मित्र भी थोड़ा पानी पानी फ्रेश होंगे और हवा भी खाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी थोड़ा गर्मी में भी बैठे हैं, थोड़ा हवा भी उनको भी चाहिए। लेकिन फिर गए फिर आए, फिर मिलेंगे ब्रेक का बाद। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सातपुर आबू रोड का ये आवाज है। और बच्चों का आवाज को जब भी मैंने लेते हैं तो हमें जाने को इच्छा नहीं होता, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैंने ब्रेक देना पड़ रहा है। तो आए फिर आपसे मिलने के लिए, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी फिर से आ गए अपना एक अच्छा गीत सुनने के पश्चात फिर हमारा साथ जुड़े हुए, अपना वॉल्यूम को तेज रखते हुए आप सब सुन पा रहे 107.8 FM पर। ये कि सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। रेडियो सरकार का दिया हुआ स्टेशन है। जैसे तीन प्रकार का रेडियो होता है, ऑल इंडिया रेडियो, कमर्शियल रेडियो और कम्युनिटी रेडियो, मींस योर रेडियो, आपका रेडियो, आपका आवाज और आप लोग सुनते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए गीत का बाद एक प्रस्तुत स्पीच भाषण के तहत हम लेंगे और हमारा साथ होबनहार एक पूरा टैलेंट जो कि सिलेक्टेड मैम और सर का दिशा निर्देश से पहुंचे, तो वो अपना परिचय देंगे तो अच्छा होगा और मैम भी जानते होंगे बच्चे को।
2: अगली प्रस्तुति आपके सामने सूरज कक्षा 12th से लेकर आ रहा है। ये वर्तमान में चल रही समस्या नशा जो हमारे युवा पीढ़ी को पूरा निगल रहा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, इसी संदर्भ में छात्र आपके समक्ष अपने विस्तार प्रस्तुत करने जा रहा है। छात्र बड़ा ही होनहार है और इस तरह के कार्यक्रमों में वह भाग लेता रहता है। अगली आवाज आप सुनेंगे सूरज की।
3: नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह चौहान है, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने नशा मुक्ति के बारे में आपके समक्ष कुछ शब्दों का वर्णन करूंगा, अगर इसमें कोई भूल हो जाए तो माफ करिएगा। वैसे रेडियो पर सब कुछ समझाना तो नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं कुछ शब्दों को अपने समक्ष व्यक्त करूंगा। नशा, लोग जो शौक शौक में नशा करते हैं, आज की युवा पीढ़ी इस नशे के अंदर पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई है और इस प्रकार नशे में लिप्त होना गलत है। फिर भी हमारे भारत की ओर लोगों ने, कई लोगों ने देखा है, कई लोगों ने नशा मुक्ति की ओर देखा है और अपने आप को सुधारने की कोशिश की है और कई लोग हैं जो अभी भी नहीं सुधर रहे, पर कुछ संस्थाएं हैं जो कोशिश कर रही है कि इन्हें नशा मुक्ति दी जाए। धन्यवाद।
1: कौन भूल पाएगा सूरज को? सूरज का बिना अंधेरे का जाएगा नहीं, कितना धक्का लगा है किन्तु अंधेरा नहीं जाता, जब सूरज आती है तो पूरा अंधेरा ऑटोमेटिक चला जाता है। इतना डर है सूरज को, सूरज से बहुत डर अंधेरा को, है कि नहीं? तो हमारा सूरज नाम रोशन करते, जैसे सूरज का किरण सब तरह पड़ता है, जैसे ज्ञान का सूरज, और ये तो सूरज ही है। और सूरज आप कौन सा क्लास में बोल रहा था?
3: 12th आर्ट्स।
1: और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
3: बड़े होकर मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहूंगा।
1: क्या बात, वाह, अभी से ही उनका उच्च एम्बिशन लक्ष्य रखें तो जरूर लक्षण दिखाई देगा, इसके लिए तो इन एडवांस, क्योंकि एक जो एम रखेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। एक सोच उनका जो ऊंचा विचार है, कोई MBBS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एक सब इंस्पेक्टर, कोई कलेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर उसके लिए तो मेहनत कितने घंटा करते हैं? स्कूल में तो 5 घंटा पढ़ाई होता है और बाकी समय?
3: बाकी घर पे।
1: कितने समय?
3: 4 घंटे।
1: 4 घंटा पढ़ाई करते?
3: हाँ।
1: क्या बात है, लगन से, ध्यान से 4 घंटा
3: करेंगे।
1: क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। भले 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी मिलेगा तो जरूर काम आएगा। और सुबह कितने बजे उठते हैं सूरज?
3: 4:30।
1: 4:30, वाह, ताली बजा भाई,
4: हमारा बराबर कर दिए।
1: हम भी 4 बजे उठते, स्टूडेंट जीवन विद्यार्थी, हम भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी, हम भी स्टूडेंट, हम तो 4 बजे जरूर हमको उठना। अरे भाई उठते हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुबह में जो भी उठेगा ना वो समय बहुत वरदान का समय, अमृत वेला कहते हैं। और सूरज उस समय उठ, वो सूरज तो 6 बजे दिखाई देता है, लेकिन ये सूरज वो उठ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह कार्यक्रम में आपने भाग लिया। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट?
3: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भूगोल है, ज्योग्राफी।
1: ज्योग्राफी, वेरी गुड। और फेवरेट टीचर क्लास में, स्कूल में?
3: टीचर सब फेवरेट है।
1: वाह, जीत लिया भाई, कोई भी एक का नाम ले लिया, चाहे हमारा प्रिंसिपल का साहब का नाम लेके, हेमलता मैम का, भरत साहब का, भाई साहब का, साहब मैंने प्रिंसिपल का नाम ले, लेकिन सभी टीचर्स उनके लिए अच्छे हैं, प्रेरणा का स्रोत है, नहीं? बहुत अच्छा। और एक जोर से ताली बजाओ, उसका विचार ऐसे होना चाहिए, सभी टीचर हमारा अच्छे, क्योंकि अच्छा टीचर का लक्षण हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, पहला बार आपको आकाशवाणी में आपका आवाज को दे रहे हैं, आकाशवाणी में सब सुनेंगे, आपका परिवार वाले, कर वाले और आपका दोस्त लोग जो सुनेगा आपका आवाज को, ये तो सूरज का आवाज जैसे लग रहा है, ऐसे लगेगा उनको। तो पहला बार आपको कैसे महसूस हो रहा, व्हाट यू फील नाउ?
3: अच्छा लग रहा है।
1: क्या अच्छा, एक अच्छा बताओ।
3: फर्स्ट टाइम सबके सामने,
1: और आपका प्रिंसिपल साहब है, आपका टीचर में बहुत दोस्त लोग सहपाठी भी है,
3: फर्स्ट टाइम सबके सामने माइक पर प्रस्तुति दी है अपनी, तो मुझे अंदर से सुकून मिल रहा है।
1: सुकून मिला। जब इंस्पेक्ट होंगे उस समय भी आपको ऐसे मीडिया वाला आकर पूछेंगे, हाँ भाई में पूछेंगे, सभी लोग बैठे रहेंगे, तो उस समय आपको डरना नहीं, याद करना। उस समय स्कूल में मैंने 12th क्लास में हमारा प्रिंसिपल, हमारा मैम और हमारा सहपाठी के साथ हमें इंटर भाई बहन जो भी प्रश्न पूछा था करेक्ट दिया था, उस समय याद रखना। अब जरूर कामयाब होंगे और हम सबका ब्लेसिंग है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एक सामूहिक गीत में हमारा प्रस्तुति सभी इंतजार कर रहे, वो भी अपना आवाज को बुलंद करके बैठे, तो एक सामूहिक गीत सुनेंगे अल्प विराम के बाद।

0: चलिए आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, खासकर विद्यार्थी विकास में बच्चों का भाव और भावना को, दिल का बात, बड़ होकर क्या बनना चाहते हैं और उसका प्रेरणा का स्रोत कौन है और किसको धन्यवाद देते हैं, सब चीज अपना पास दे रहे हैं और सिर्फ सीमित क्यों रहे आबरोड ब्लॉक में, जहां जहां हमारा इस कार्यक्रम पहुंच रहा है इंटरनेट का माध्यम से, लिंक का माध्यम से, आपका माध्यम से, जो जो सुन रहे पूरा ऑल इंडिया में, क्योंकि आजकल डिजिटल का समय है, कहीं पर भी हम सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रेडियो एफएम का माध्यम से तो और इंटरनेट का माध्यम से। तो हमारा अगला प्रस्तुति के लिए मैम किसको बुलाएंगे? मैम
1: अब आप सुन पाएंगे हमारी 12th आर्ट्स और कॉमर्स की छात्राएं आपके सामने एक प्रेरणा गीत जो आपको प्रेरणा से भर देंगी। प्रस्तुत है समूह गान जो आपको कुछ कर करने के लिए ऐसा प्रेरित करेगा कि हम सभी के दिलों में कुछ कर गुजरने का जज्बा आ जाएगा। बालिकाएं प्रस्तुत

0: हैं।
1: तालियों का स्वागत स्वागत कर रहे हैं और बच्चों का जो प्रतिभा है आज जन जन तक पहुंचा रहे हैं और मैम को कौन भूल पाएंगे, मैम तो पूरा कोऑर्डिनेट में पूरा एक्यूरेट है। मैम क्या कहना चाहेंगे इस गीत के ऊपर में हमारे श्रोता मित्रों
2: को? मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि हम सब सिद्धांतों की तो बहुत बात करते हैं पर व्यवहारिक जगत में न तो हम कोई मूल्य अपनाते हैं। तो बच्चियों ने मानो अपने गीत के माध्यम से हमें ये संदेश दिया कि मानव की पूजा नहीं होती, मानवता पूजी जाती है। इस संदर्भ में मैं दो पंक्तियां यह कहना चाहूंगी कि यूं तो सब कुछ बन रहा है तरक्की के जमाने में,
1: क्या बात,
2: यूं तो सब कुछ बन रहा है तरक्की के जमाने में, पर क्या करें आदमी इंसान नहीं होता, क्या करें आदमी इंसान नहीं होता। इंसानियत वही इंसान इंसान है जिसमें इंसानियत है। तो बालिकाएं भी मानो ये संदेश दे रही हैं कि मानवता पूजी जाती है, मधुमेहता पूजी जाती है, यानी कैरेक्टर का ज्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में। हम अपनी बाहरी सुंदरता से किसी भी व्यक्ति को दो चार दिन तक ही अपने आकर्षण में बांध कर रख सकते हैं, परंतु यदि गुण हो और हमारा व्यक्तित्व उज्ज्वल हो, उसमें आध्यात्मिकता का पुट हो, तो वह व्यक्तित्व कभी भी असफल नहीं हो सकता।
1: जी जी, बहुत अच्छा सुंदर रूप में आपने बताया। और जैसे फूल में खुशबू न हो तो फूल किस काम के हैं, विद्यार्थी जीवन में जो स्टूडेंट जीवन में उसका जो अंतर्मुखी व एकाग्रता न हो, अनुशासन न हो, वो विद्यार्थी किस काम के। और हमारा बच्चे तो पूरा अनुशासित है और टैलेंटेड है और दिव्य गुण में भरपूर है, सहनशीलता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, पवित्रता, स्वच्छता जिसमें ता आता है, और परोपकारिता, निर्मलता और पवित्रता, स्वच्छता, कठोरता, गुण ग्राहकता, गुण सबका गुण को उठाना, ऐसे बहुत दिव्य गुण रहेंगे तो मेरे पास अंतर्निहित जो शक्ति उजागर होगी। और मैम ने बताया भाई वैल्यू होना चाहिए, गुण बान होना चाहिए, जो गुण का सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा जानते हैं? भगवान पूछते हैं, माँ सरस्वती पूछते हैं आपको भाई विद्यार्थी जीवन में कौन सा सर्वश्रेष्ठ गुण होना चाहिए, जैसे नम्रता है, कठोरता है, दृढ़ता है, बहुत सारे गुण है, लेकिन माँ सरस्वती व भगवान परमात्मा कहते हैं विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी में आना है। क्या बोला? नियमितता, रेगुलर आना है। इसके बाद मैम अपना काम करा देंगे अच्छे से, क्योंकि कच्चा मिट्टी का डे लाएंगे तो वो मूर्ति है ना मैम
2: जी। एक कुम्हार जिस प्रकार घड़ा बनाते समय अंदर से अपने हाथ की थाप रखकर उसे ऊपर से प्रहार करता है, गुरु भी उसे जो रॉ मटेरियल मिलता है उसे एक यथोचित आकार देकर उसे सुंदर प्रतिमा के रूप में घर देता है। परंतु जैसा कि पवित्र भाई जी ने बताया कि नियमितता और निरंतरता विद्यार्थी जीवन की प्रथम आवश्यकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं, है ना मैम? अंतिम प्रस्तुति की ओर हमारा श्रोता मित्र थोड़ा सा अपना समय को देकर सुन रहे हैं और बच्चों का आवाज जब सुनेंगे, ये आपका बच्चे है, ये होबनहार बच्चे, उनको थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए, क्योंकि आप सुनेंगे तो उसको भी कभी भी समय मिलेगा तो स्कूल में आकर उनके भामाशाह का रूप में हो, चाहे सरकार सुन रहे तो वो बच्चों के लिए हो, चाहे यहाँ का स्कूल के लिए जो आवश्यकता है वो भी अपना दे सकते हैं, तो हमारा ये भावना है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: FM सुनता रहा और मुस्कुराता रहा।
1: चलिए मैम को देता हूँ माइक। मैम क्या कहना चाहेंगे अंतिम प्रस्तुति का और चल रहा है और हम तो कंपटीशन जैसे आज एक के आरजे ने दो दो दो आरजे बन गए और दो दो आरजे के साथ साथ हमारे छोटे आरजे भी बन गए और एंकरिंग में हमारा सहयोग दे रहे हेमलता मैम, उनको कौन नहीं जानते। मैंने 12 साल से उनको जानते हैं, जब भी रेडियो में कोई भी प्रोग्राम करना है तो हेमलता बहन को याद करते हैं और जो भी प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल उनको सहयोग देने के लिए पूरा प्रभारी हिसाब से दे देते, तो हमें बहुत खुशी है। तो रेडियो मधुबन परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते। तो अगला प्रस्तुति के लिए क्या कहना चाहेंगे।
2: रेडियो मधुबन और पवित्र भाई जी का सहयोग निरंतर मुझे मिलता रहा है। मैं बचपन में अगर इस प्रकार के प्रोग्राम होते तो मैं अपनी और भी अधिक प्रतिभा को निखार पाती। अब अंतिम प्रस्तुति बहुत ही ऐसी प्रतिभावान छात्रा के द्वारा दी जा रही है जिसका नाम दिया त्रिवेदी है। यह हमारे विद्यालय में 10वीं की होनहार छात्रा है। मैं बालिका के विषय में एक पंक्ति अवश्य कहूंगी कि कुछ लोग आर्थिक अभाव और कुछ कतिपय परिस्थितियों को बहाना बनाकर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, पर हमारी यह बालिका हर कठिनाई को पार करते हुए हर कक्षा में प्रथम स्थान तो प्राप्त करती ही है। इसके साथ ही हम कहेंगे कि इसका नाम जैसा है तथा ही इसके काम है दिया। यह ज्योति के समान जलती रहती है। अभी कुछ समय पूर्व ही हमारी सरकार की ओर से जो निम्स की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई जिसमें की बालिका को 48,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी मिली। बालिका ने 8वीं में भी पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं इस मंच के माध्यम से भी बालिका के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं और सभी श्रोताओं को बताना चाहती हूं कि जिनको भी यह लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लीड नहीं कर सकते तो यह बालिका उन सभी का एक करारा जवाब है। अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है तो कोई भी बेड़ी आपको पीछे नहीं घसीट सकती। अब मैं अधिक समय नहीं लेते हुए को ये देना चाहूंगी माइक जो नारी सशक्तिकरण पर ही अपने विचार प्रस्तुत कर रही।
1: जी जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद और उनका जो महिमा सुना है अभी तो सभी इंतजार कर उनका जितना जो टैलेंट है और सरकार भी उनका जो ध्यान दिए है ये कम बात नहीं है। ऐसे सरकार प्रोत्साहन देते हैं चाहे लैपटॉप हो चाहे साइकिल हो चाहे स्कूटी हो चाहे राशि हो पैसा नगद भी देते हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत प्रेरणा का। सरकार का जो उन्नति करने के लिए बच्चों को एक प्रोत्साहन देते राशि ये भी कम नहीं है। सभी बच्चे जो सुन रहे चाहे माता पिता सुन रहे उनका बच्चों को इस तरह मार्गदर्शन करेंगे तो वो आपका बच्चे भी लेकर आएंगे। सिर्फ सातपुर क्यों और वो बच्चे क्यों, दिया क्यों, दिया मींस दिया जैसे मैम बताया, दिया मैंने ज्योति आलोक, दिया मैंने देना है, हमेशा देते रहेंगे, जो देते वो देवता है देवी बनते, दिया लेता नहीं देते है, तो दिया मतलब दे रहे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, उसका आवाज सुनेंगे, इतना सुंदर से आवाज है उनका, क्योंकि सुनेंगे तो पता चलेगा क्योंकि इतना टैलेंट मैम और हम बता दिया, अभी सुनेंगे उनका आवाज। तो सुनिए जो इंतजार कर रहे हैं बच्ची का दिया का, तो सुनते उनका आवाज।
3: नमस्कार, मेरा नाम दिया त्रिवेदी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। इस रेडियो के माध्यम से मैं अपने विचारों का आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है आज अभी सत्र 2026 चल रहा है, दुनिया काफी आगे पहुंच चुकी है, पर फिर भी आज के भी इस जमाने में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मानसिकता बहुत ही संकीर्ण है। वो आज भी यही सोचते कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को सिर्फ घर का काम करवाना चाहिए, वो इसी के लिए बनी है। पर मेरे विचार से उनको कल्पना चावला, मैरी कॉम जैसे उदाहरण को देकर मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है आगे। अगर आप लड़कियों को पढ़ाओ तो देश का इतना अच्छा नाम रोशन करेगी, लड़कों से भी आगे निकलेगी। और एक बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज की इस दुनिया में बेटी पढ़ाओ पर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है और बहुत सारे शहरों कस्बों गांवों में हर जगह बेटियां पढ़ रही है, पर मैं ध्यान देना चाहती हूँ बेटी बचाओ पर। आज आप देखते हैं हर साल हर दिन न्यूज आ रही है कि कहीं पर लड़की के साथ ये हो गया ये हो गया, तो मेरे हिसाब से आज के इस जमाने में बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटी बचाओ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए और ये सब करवाना बहुत ही जरूरी है। पढ़ाने के साथ साथ अगर आप उसको सेल्फ डिफेंस भी सिखाएंगे तो अगर वो कहीं बाहर जाए तो वो बहुत अच्छे से रह सकती है, उसके पास फ्रीडम होगी, वो कहीं भी घूम सकती है, वो जो करना चाहे वो कर सकती है। तो ये मेरा कहना था, धन्यवाद।
1: दिया कितने सुंदर रूप में अपना दे दिए बात को, सबको एक प्रेरणा का माने एक सचेतन हो, चाहे जो आवश्यकता है वो चीज आप रखें। जैसे बेटी तो दे देते लेकिन बचाने के लिए हमें कितना मदद करना चाहिए, कितना सोचना चाहिए। जैसे पेट तो लगा देते उसको बचाना बहुत जरूरी होता है, एक बेटी तो हमारे पास है लेकिन बेटी को जैसे बाहर का जो माहौल है तो उससे भी बचाना हमारा कर्तव्य, हमारा बहन और माँ जैसे। तो खास कर आपको एक दिन के लिए सभी बेटी और बहन का एक लीडर बना जाए, प्राइम मिनिस्टर बना जाए, आपका पास पूरा पावर दिया जाए बेटी बचाओ के लिए, जो बेटी अभी तक नहीं बच पा रहे, तो आप इतना कम उम्र में क्या सोच रखते हैं? आपका सोच, व्हाट यू थिंक अबाउट गर्ल्स फॉर सेफ्टी?
3: सेल्फ डिफेंस सबको आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: वेरी गुड।
3: और जो इंडिया का लॉ है मेरे हिसाब से उसको में भी थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए,
1: वेरी गुड। दो पॉइंट में बता दिए, एक तो कानून हम हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून का साथ लेकर हमारा विचार को कानून का साथ रख के बचाव करेंगे, तब जाकर हमारा जहां नारियों का सम्मान होगा वहां देवी देवता वास करते, नारियों का सम्मान होगा इसलिए तो श्री सीता राम कहते हैं, है ना, सीता राम कहते हैं, और श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं, जो जमाना आ रहा है, क्योंकि भारत जब स्वर्ग बनेगा आप लोग का राज्य आएगा, हम तो बाद में आएंगे भाई लोग नारायण तो बाद में आता है, पहले श्री लक्ष्मी। तो देवी देवता का नाम भी अभी भी इतना शक्ति का सेना जो देखते ना, काली दुर्गा अम्बा पार्वती सभी शिव का शक्ति है, और आप लोग के पास जो बेटियों का जो सम्मान आप धीरे धीरे होते जा रहा है, और जरूर एक दिन आएगा और भारत का प्रतिनिधित्व विश्व गुरु जो बनेगा, भारत का प्रतिनिधित्व आप बहने दुर्गा काली अम्बा के रूप में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और हमारा इस कार्यक्रम को अंतिम प्रस्तुति के लिए देना है, तो हमारा सर को भी कौन भूल पाएंगे, भरत राम पुरे जी को, जो कि अच्छा से संभालते हैं स्कूल को, 5 साल 6 साल पहले जब आए थे स्कूल का अस्तित्व इतना सुंदर नहीं था, मैंने जो आवश्यकता जो बच्चों के लिए आवश्यकता, चाहे टॉयलेट हो चाहे सभागृह हो चाहे प्रार्थना जो करते हैं वहां पर, इस सातपुर में पब्लिक प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम करते, जब अगस्त 15 हो चाहे जनवरी 26 में बहुत सुंदर में पार्टिसिपेट करते, पूरा नाटक का माध्यम से, कभी मैं दोबारा आपका स्कूल में आकर उसको कवरेज किया था, तो बहुत हुनर है, क्योंकि ये मिक्सिंग है एक आदिवासी बच्चों का टैलेंट, क्योंकि जनजाति आवासीय स्कूल पास में ही है, और अबरोड का जो टैलेंट बच्चे मिलकर जो आते हैं, तो कोई भी कल्चरल प्रोग्राम कोई भी रेडियो प्रोग्राम एक चुटकी में हो जाता है, ये स्कूल का ये विशेषता, और आप महान सब जब रहते तो हमें बहुत खुशी होता है। तो दिया जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, आज रेडियो मधुबन आपका पास आपका आवाज को पूरा सब तक पहुंचा रहे, तो क्या कहना, हम बार बार इसको प्रसारण करेंगे, तो आपको कैसे लग रहा है, क्या महसूस कर रही तुम अभी रेडियो में पहला बार आए?
3: बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अपने विचार प्रस्तुत करके रेडियो पे पहली बार, और मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि बेटी को पढ़ाने के साथ साथ बेटी बचाओ पर भी ध्यान दिया जाए।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए सभी का आवाज हम तो सुने, और हमारा जो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सातपुर का जो प्रभारी है प्रिंसिपल साहब है, और हर्ताकर्ता पूरा कर्णधार भीष्म पितामह जैसे कप्तान है, सभी को लेकर अच्छा कराते हैं, और मैंने देखा 5 साल पहले और आज का जो स्थिति बहुत सुंदर में बहुत प्रोग्रेसिव है, स्कूल का चाहे पेंटिंग हो चाहे सब वेल व्यवस्थित है, इसका सभी लोग नहीं कर पाते, कोई जिसको इच्छा होता है तो अच्छा बन जाते, इच्छा रखना जरूरी है अच्छा बनाने के लिए। सर आपका स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। एक बार हमें याद है मुझे देलदर में मिले थे सर, आज प्रमोशन हो गया तो हमें खुशी है, रेडियो मधुबन परिवार से आपको धन्यवाद देते हैं, तो आप विचार दीजिए जो कि आपका विचार सबका विचार हो।
4: सबसे पहले तो रेडियो मधुबन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ
1: जी सर,
4: कि ये अपने इस जनजाति अंचल वनवासी अंचल में सभी जगह पे जाकर के पूरे अंचल की जो भी जनता की विद्यार्थियों की समाज की जो भी भावना है वो रेडियो मधुबन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा पहला चैनल है जिसके माध्यम से हमारे इस एरिया की आवाज को आगे तक जनता तक या सक्षम स्तर तक पहुंचाते हैं। ये एक पहला माध्यम हमने देखा, ऐसा हमारे एरिया में कोई माध्यम नहीं है जो जनता की आवाज बने, मधुबन रेडियो ऐसा एक है माध्यम जो जनता की आवाज बन करके संबंधित तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, इसके लिए इनका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और आज ये सातपुर विद्यालय में पवित्र भाई पधारे हैं, हमारा इनसे पूर्व परिचय भी है, देवधर विद्यालय में था उसमें भी एक दो बार हमारे से साक्षात्कार हुआ है इनका, आज ये यहाँ आए हैं, और बच्चों के जो प्रतिभाएं थी हमारे विद्यालय में जो छिपी हुई प्रतिभाएं थी जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और इनकी प्रतिभाओं के अंदर जो भी अच्छी बातें हैं वो समाज तक पहुंचा रहे, और इनके माध्यम से जो भी बच्चे या समाज के नागरिक सुनेंगे तो शायद प्रेरणा लेंगे, और इन बच्चों को भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि इन्होंने हमने अच्छा किया था, हमें कोई देखने वाला भी है ताकि हम और अच्छा करें, ताकि आने वाले समय में हमारा नाम और समाज तक पहुंचे, तो ऐसा एक मोटिवेशन का काम भी आज आपने किया, इसके लिए हम भी वापस इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब रही बात शिक्षा की, बात जैसा सर ने बताया कि 5 साल पहले भी मैं सांतपुर आया था, आज वापस आया हूँ। देखिए, एक जन धारणा बनी हुई है लोगों में कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। संस्था को चलाने के लिए संस्था प्रधान की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो संस्था को कैसे चलाना चाहते हैं। मैं भी आज से ठीक लगभग 2 वर्ष पहले इस विद्यालय में कार्यक्रम किया था
5: जी।
4: मैंने नहीं कहना चाहिए हमारे विभाग की बात है, लेकिन एक जिस स्थिति में विद्यालय को मैंने पाया था, मुझे काफी पीड़ा हुई, दुख हुई कि इतना बड़ा विद्यालय होकर के साधन सुविधाओं की कितनी कमी है यहाँ पे। तो उसी दिन मैंने स्टाफ मीटिंग ली और स्टाफ से पूछा, साहब बताइए विद्यालय के लिए हमें क्या करना है। तो स्टाफ में से एक मैम आई, उन्होंने कहा कि सर बाकी बात है विकास तो छोड़ो आप, लेकिन हमारे स्टाफ के बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि हम सब स्टाफ वाले और मिलकर के स्कूल के लिए बहुत अच्छा करेंगे, मिलकर हम प्रयास करेंगे और स्कूल को एक आदर्श स्कूल बनाएंगे। तब से लेकर के अब तक आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि इस विद्यालय में भौतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है
5: जी।
4: मैं IDBI बैंक के हमारे मित्र है, मैनेजर है बनवाई जी प्रजापत, उनसे मिला कि सर हमारे स्कूल के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत कहा, सर आप आदेश को क्या करना है, मैं सबसे पहले तो हमें स्टाफ के लिए कुर्सियां चाहिए, दूसरा हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं पहले से पांचवी वाले उनके लिए फर्नीचर चाहिए डालू मेज
5: जी, जी।
4: और तीसरा कुछ कमरों में पंखे की व्यवस्था भी नहीं है, गर्मी में बच्चे बैठते तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उन्होंने तुरंत ही कहा, भरत जी आप डिमांड लेटर मुझे दीजिए, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। और उन्होंने उसी समय लगभग 1.5 लाख रुपए हमारा स्वीकृत किया और 50 तो कुर्सियां, कक्षा 1 से 5 के बच्चों के बैठने के ढालू मेज और पंखे बेड किए हमारे को, जिससे हमारा काम थोड़ा गति पकड़ा। उसके बाद में मैंने विभागीय जो बजट है उधर से प्रयास किया, पंचायत से संपर्क किया, तो ग्राम पंचायत सातपुर का भी अच्छा सहयोग मुझे मिला। 24 लाख रुपए उन्होंने स्वीकृत किए हमारे सातपुर स्कूल के लिए। सबसे पहला काम तो हमने किया, खेल मैदान और विद्यालय के बीच में जो दीवार थी वो नीची थी, तो लोग बार बार विद्यालय में आना जाना होता था, डिस्टर्बेंस रहता था खेल मैदान का भी, तो उस दीवार को 8 फीट ऊंचा करवाया, 6 लाख रुपए उसके सैंक्शन किए। मैदान में धूल मिट्टी थी, बच्चे प्रार्थना में नीचे बैठते थे, गंदे होते थे, हम भी भागते थे, मेरे भी शाम को जाता था तो ये जूते और कपड़े सारे गंदे हो जाते थे। तो पंचायत से 12 लाख रुपए सैंक्शन करवा करके ये पूरे मंच से सामने का पूरा उसको सीमेंटेड फर्श बनवाया। फिर बालिकाओं के लिए शौचालय की कमी थी तो बालिका शौचालय स्वीकृत करवाया 6 लाख रुपए में। फिर हमारे एक विभाग की एक योजना चलती है, समसा समग्र शिक्षा अभियान चलता है कार्यक्रम, वहां से हमने संपर्क करके इस भवन में जुलाई और अगस्त महीने में तो 2 महीने पढ़ाई नहीं होती थी, इतना पानी टपकता गया कि हमारे बैठने की एक भी जगह सुरक्षित नहीं रहती बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए भी। तो वहां से 20 लाख रुपए सैंक्शन करवा करके पूरे 18 कमरों पर जो पुरानी बिल्डिंग है उस पर चाइना मोजिक करवाया।
1: सर जैसे आपने बताया तो कितना लिस्ट बन जितना और चलेगा ही, लेकिन सिर्फ आप सातपुर एक ग्राम पंचायत है, अबरोड ब्लॉक में सातपुर ग्राम पंचायत से आपने सैंक्शन कराए, 32 ग्राम पंचायत है
4: जी।
1: तो जैसे सातपुर कर पा रहे हैं सभी स्टाफ का आपका सहयोग से ये सब प्रेरणा, तो दूसरे क्यों नहीं लेते, दूसरे स्कूल के जो प्रभारी हो चाहे स्टाफ क्यों नहीं।
4: मैंने सर आपको पूर्व में निवेदन किया कि संस्था प्रधान की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।
1: ओके,
4: संस्था प्रधान चाहे तो संस्था को बढ़िया बना सकता है और संस्था प्रधान नहीं चाहे तो फिर संस्था जैसे चल रही है वो चलती रहेगी। मेरा एक स्वभाव है, मैं जिस भी संस्था में रहा मैं ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी मान के काम करता हूँ, मैंने विभागीय अधिकारी
1: में करते हैं बच्चों के लिए और हम भी बैठेंगे, हमारा बच्चे भी बैठे, हमारा घर में इतना आलिशान लगाते हैं कुर्सी पंखा पर रखते हैं, हमारा बच्चा हम रहेंगे 8-5 घंटा 6 घंटा बच्चों के साथ रहेंगे ना
4: जी,
1: हम भी गर्म रहेंगे तो बच्चे भी गर्म, तो हमको भी तो दुख होगा ना।
4: सही है,
1: आप आ रहे तो पैदल कीचड़ होगा तो आप कैसे स्कूल में पढ़ाएंगे।
4: सही है,
1: तो बच्चे को सुविधा के साथ हम भी आते तो हमें भी खुशी लगता, जो भी भामा से आते हैं तो कितने महसूस होता है अच्छा वेल मेंटेन कर रखे। तो कहना मतलब इस कार्यक्रम का माध्यम से जो सुन रहे, चाहे हमारा सरकार सुन रहे हो, चाहे चाहे भामाशाह सुन रहे हो, चाहे हमारा टीचर स्टाफ जो सुन रहे, तो जरूर आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए कुछ करने के लिए निस्वार्थ भाव से, तो जरूर सातपुर से भी बेटर आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, तो कर सकते, लेकिन होना चाहिए जैसे सर ने बताया, इच्छा शक्ति होना चाहिए कुछ करने के लिए, देश के लिए हो चाहे परिवार के लिए हो चाहे अपना स्कूल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जाते जाते ईश्वरीय परिवार की तरफ से, और इस कार्यक्रम का माध्यम से जो भी सुन रहे हैं तो जरूर इससे फायदा ले, ये हमारा भावना है। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सांतपुर का आवाज, और इसका श्रेय तो सभी स्टाफ को खासकर जो प्रभारी है प्रधान आचार्य को जाता है, और ऐसे रेडियो माध्यम जब भी आते हैं एक इशारा से हमें सहयोग मिलता है तो हमें भी आने के लिए इच्छा होता है, क्योंकि रेडियो प्रोग्राम आपका है, आपका टैलेंट को जन जन तक आप क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं चलता है, लेकिन इस माध्यम से जैसे जंगल में मोर ना चाहे तो ना तो कौन देखा है, तो अब जो बताना पड़ता तो ये मीडिया है, तो इसका माध्यम से सरकार जो दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नाम का साथ बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको धन्यवाद। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो।
4: धन्यवाद।
5: अभी बजे हैं शाम के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हू वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में ये अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है, ये समझ में आएगा। ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: रुके। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मीन्स नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: मैं हूँ वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अभी बजे हैं रात के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत। जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग योगियों के साथ बातचीत करते हैं, वो कैसे उस योगी जीवन के प्रति आकर्षित हुए और वो योगी जीवन क्या होता है और वो कैसे जी रहे हैं, या वो हम जैसे आम लोग जो होते हैं उससे अलग है, या हमारे जैसे जीवन जीते हुए भी क्या वो योगी कहलाते हैं, क्या है ये चीजें, आइए जानते हैं आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं विश्वनाथ भाई जी। आप ब्रह्म कुमारीज में पिछले 4 दशक से भी अधिक समय से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन परिसर में आपकी मुख्य सेवा है। स्वागत करते हैं विश्वनाथ भाई जी आपका आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है।
1: ओम शांति।
0: भाई जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इस ईश्वरीय मार्ग में या फिर ये जो राजयोग मेडिटेशन, इसके बारे में आपको परिचय कहाँ और कैसे मिला, और इससे पहले कि आपका जीवन कैसा था, कि आप धार्मिक परिवार से थे या फिर बचपन से ही आपको अध्यात्म में रुचि थी, क्या वो चीज़ थी जिससे आप आकर्षित हुए और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं।
1: हमें पहले से भी भक्ति मार्ग में था, सहज रीति से सभी भक्ति मार्ग में करते हैं दुनिया में, ऐसे ही हम भी भक्ति मार्ग में भक्ति करते थे। जहाँ भी भक्ति की सत्संग होता है, हम हमारा माता जी के साथ मेरा जाना होता है। हम सत्यनारायण की व्रता हो, जो भी महाभारत हो, गीता का हो, सभी सुनते थे, करते थे, भक्ति की पाठ पर करते थे। ऐसे ही एक बार मैं अय्यप्पा स्वामी माला डालने का, लोग मेरे को बहुत फोर्स किया, मैं अय्यप्पा स्वामी का माला डाल के अय्यप्पा स्वामी के दर्शन के लिए यात्रा में गया। मैं, मेरा मन ये था मेरे को हमेशा सुख शांति चाहिए और हर एक आत्मा को सुख देने का मन में उछल होता था। तो मैं फिर अय्यप्पा स्वामी के दर्शन के बाद फिर अपने गांव में आया। अचानक मेरा मन बुद्धि ऐसे वैराग्य गया, कुछ नहीं चाहिए। हम पहले से ही रिच फैमिली में थे, कोई कमी नहीं था, भरपूर था फैमिली में, सब अच्छा था, लेकिन मेरे मन में इतना वैराग्य गया, अरे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में क्या है, कुछ है नहीं। तो ऐसे संकल्प आया। संकल्प आते ही थोड़ा दिन के बाद ब्रह्मा कुमारी का मेरा कुछ परिचय नहीं था, नाम भी नहीं सुना था कभी भी। उस समय हमारा कनेक्शन में, हमारा 2-3 बहने ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में थी। उस समय मेरे को लेके गया ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। उस आश्रम में उसी समय चंद्रमणि दादी आई थी। फिर ये लोग मेरे को फोर्स करके लेके गया चंद्रमणि दादी के पास। तो दादी से दृष्टि दिलवाया, तो दादी की दृष्टि से मैं पूरा पिघल गया, इतना मेरे को शक्ति मिला। तो दादी को देखते ही नेक्स्ट डे मैं अमृत वेले जाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही फिर बाद में ब्रह्म कुमारी की कनेक्शन में आया। मैंने बोलती थी आप भक्ति मार्ग बहुत किया है, आप आश्रम में आओ, आपके जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसे करती थी। लेकिन मैं नेक्स्ट डे गया, बोला अंदर आओ, अंदर आओ बोला। बोला कि मैं अंदर नहीं आता हूँ, बाहर से ही बोलो जो भी बोलना है। तो फिर मैंने, नहीं नहीं अंदर आओ, प्रसाद लेके जाओ। फिर मैं अंदर गया, बहन जी ने मेरे को प्रसाद दिया, फिर बोला आप हर रोज आओ इधर। तो मैं हर रोज अमृत वेले जाना शुरू कर दिया। फिर मेरे को बोला आप योगी है, तपस्वी है, महान है, श्रेष्ठ है, ऐसे ऐसे बोल के मेरे को कुछ अच्छी अच्छी बात सुनाया। मैं हाजी हाजी करते आया। फिर दूसरा दिन 7 डेज कोर्स का बारे में बता दिया। 7 डेज कोर्स में मेरे को बहुत क्वेश्चंस आया, भक्ति मार्ग का ज्ञान मार्ग में पूरा डिफरेंस है, एंटायर डिफरेंस है। तो मैं अनेक प्रकार का क्वेश्चंस पूछा, फिर वो हमारा क्वेश्चंस को सॉल्वेशन किया। फिर मेरा बुद्धि में टच आया, ये सच्ची रास्ता है, ये रास्ता बहुत अच्छा है,
0: उस समय आपका क्या उम्र रहा होगा जब आप आए थे?
1: उस समय मेरा उम्र था 33-35 कुछ होगा, और उसी समय यह मेरे को ज्ञान मिला। ऐसे ज्ञान मार्ग में चलते चलते मेरे को एक बार, मैं पहले दुकान रखा था, डिपार्टमेंटल स्टोर था हमारा। हमारा दुकान में सब कुछ मिलता था। हमारा सिटी सेंटर बेंगलोर की जो भी है बहने हमारा दुकान में आती थी, उस दुकान में उनकी वो समझती थी ये दुकान हमारा है, ब्रह्मा कुमार्स की दुकान है। जो भी बहने आए जो चाहते वो लेके जाती थी सेंटर के लिए, जो भी फंक्शन के लिए हो, उसकी पर्सनली हो, जो भी लेके जाती थी। मैं भी खूब सबको देना शुरू कर दिया। उसमें हमारा कल्याण था, क्योंकि एक एग्जाम्पल बताना है तो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10,000 डाला था, 10,000, लेकिन एक दो तीन साल के अंदर हम 10 लाख हो गया। तो फिर मेरे को मालूम हो गया भाई ब्रह्म कुमारी आश्रम में जितना दिएगा उतना 100 गुण बढ़ते जाएगा। मैं खुश हो गया, सबको ले जाओ ले जाओ ले जाओ बोला। जो भी फंक्शन होता है हमारा पास आता है, और फंक्शन के लिए गुप्त रीति से मैं सेवा करता था। ऐसे हमारा सेवा चलते चलते,
0: तो जैसे आप 33-35 साल की उम्र में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, तो उस समय आपके परिवार भी ज्ञान लिया था या फिर?
1: परिवार में कोई डीके नहीं था, माना ब्रह्म कुमारी वाला नहीं था, कोई नहीं था ब्रह्म कुमारी, लेकिन एक ही हमारा एक बहन थी, वो बहन को थोड़ा टच था ब्रह्म कुमारी के बारे में। वो बहन हम सबको थोड़ा टचिंग करवाया, आप लोग ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओ, ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओ। इसी रीति से हम 4-5 हमारा बड़ी बहन है और हमारा दूसरा एक भाई है, एक 3-4 लोगों को ज्ञान दिए, वो गुप्त रीति से ध्यान दिए ओपनली। तो फिर किसी किसी को टच हो गया, ऐसे मेरे को भी टच हो गया।
0: फिर जैसे आप ज्ञान में आए, हाँ, फिर आपके परिवार वालों ने स्वीकार किया, क्योंकि आपके जीवन शैली में कुछ तो बदलाव आया होगा।
1: जब मैं ज्ञान में आया सभी मेरे को पूरा फुल अपोजिट हो गया, क्योंकि इस ज्ञान में सबको मालूम है, इसमें इधर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए तो सब खाना अलग करवाता है, भाई बहने करवाता है, अलग अलग प्रकार के लोग कमेंट करता है, बोलता है, लेकिन सच्चाई कैसे मालूम होता है? जो कहते हैं ना, जो गुड़ खाते
0: हैं गुड़ की
1: गोत्री जाने, ऐसे बोलते हैं ना, तो हमको ही मालूम होता है, तो उन लोगों को मालूम नहीं, दुनिया वालों को क्या मालूम है इसका टेस्ट। तो मेरे को पता चला, तो मैं पूरा इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो 1983 में मैं ज्ञान लिया, जब मनमोहिनी दीदी श्री छोड़ा था उसी समय मेरा यह ज्ञान मिला। ज्ञान मिलते ही मैं इस आश्रम में पुरुषार्थ करने में बहुत अच्छा लगन किया। पुरुषार्थ करते करते एक बार तपस्या की वर्ष का एक थीम रखा था मधुबन में, तपस्या वर्ष माना रखा था। उस समय हम अखंड तपस्या करते थे, बहुत अच्छी तपस्या करते थे, कंप्लीट इतने तपस्या किया बात मत पूछो। इस तपस्या के मुझ आत्मा को इतने अतीन्द्र सुख अनुभव किया, इतना अतीन्द्र सुख अनुभव हो गया। तो फिर मैं मन में आया मधुबन जाने का, क्लास में सभी ने बोला मधुबन जाओ आप, ऐसे ऐसे अच्छी आत्माएं चाहिए उधर। फिर कुछ लोग कमेंट किया मधुबन में जाना बहुत ये कठिन है, उधर बहुत बड़ा सागर है, उस सागर में आपको जीना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ये है। मेरे का कुछ भी होने दो, मधुबन मेरे को जाना ही है। तो मधुबन में फिर आज आने का संकल्प आया, उसी दिन मैं संकल्प किया और मेरा दुकान मकान जो भी है आश्रम में दे दिया, आश्रम को हवाला कर दिया। लेकिन मेरा मकान ऐसे था, ब्रह्म कुमारी आश्रम से भी अच्छा था, क्योंकि मेरा मकान में सब बड़े बड़े दादियाँ आती थी, जैसे चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी भी आई थी उद्घाटन किया, यशु दादी भी आई थी उद्घाटन के समय, मोहिनी दीदी, ऐसे भी हमारा मकान है ना उद्घाटन के समय वो लोग आया था। तो इसीलिए हमारा मकान बहुत अच्छा था, जो भी बड़े आते है हमारा मकान में रुकता था, सबको अच्छा लगता था। तो फिर ये ब्रह्म कुमारी के संबंध संपर्क में जब आया मेरे को कंप्लीट इसी फील्ड में आते आते मेरे को मधुबन में चलने के लिए अंदर से बहुत प्रेरणा आई। तो मैं मधुबन आया, फ्लाइट में आया। फ्लाइट में आने के पहले ये लोग आश्रम वाला सभी लिखवा दिया मेरे को, तो ये सभी आप लेके का जा रहे है, ये सभी हमको छोड़ के जा रहे है। तो लोगो एक बॉन्ड पेपर में मेरा सिग्नेचर करवा के कि हमारा इसमें सामान सभी वो लोग ले लिया। वो तो 3-4 ट्रक सामान था, सामान भी लेके गया। फिर मैं मधुबन में दीदी के साथ यहाँ आ गया, मधुबन में फ्लाइट में खाली 2-3-4 ड्रेस लेके आया, एक छोटा सा अटैच लेके आया और कुछ नहीं था। तो आते ही राम श्लोक भाई मिला मेरे को, बोला फ्लाइट में आया है, आप सेवा कर सकते हैं। फ्लाइट वाला उस समय फ्लाइट माना अलग होता है, ट्रेन माना अलग होता है। फ्लाइट के लोग आप लोग बड़े लोग है, फ्लाइट में आया माना इधर सेवा नहीं कर सकते है। ऐसे ऐसे राम श्लोक भाई मेरे को थोड़ा बता दिया भाई आपने। मैं फिर भी आज ही करके अंदर आश्रम में गया पांडवन के अंदर। फिर जाते ही मेरे को सेवा में लगा दिया चंद्रपाल भाई, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है इंद्रप्रस्थ है, वहाँ मेरे को पाला पाला सेवा दिया
0: पांडवन में
1: चंद्रपाल भाई का पास। वहाँ दादिया आती थी इंद्रप्रस्थ में, वहाँ मेरे को मकान में सब प्रकार ऑलराउंड करना होता है। शांति स्तंभ का पास झाड़ू पोछा करना और दरिया बिछाना, कुर्सी लगाना, ये सब हमको 2 बजे उठ के ये सभी अपना तपस्या करने के लिए आते हैं ना, उसके पहले से ही हम लोग को ये सब तैयार करना होता है। हम 2 बजे उठ के ये सब काम करते थे।
0: विश्वनाथ भाई जी, जैसे आप दक्षिण भारत से कर्नाटका से आए और राजस्थान माउंट आबू में माहौल अलग है, भोजन अलग है, वातावरण अलग है
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: जैसे आपने कहा कि आप पूरे संपत्ति और सभी तरीके से आपका जीवन परिपूर्ण था स्थूल रूप से, तो
1: जी,
0: सब चीजें जब छोड़ के आ गए और आपको जो सेवा मिली है
1: जी,
0: सेवा की भावना अच्छी है, लेकिन जब ऐसे हमें स्थूल सेवा मिलती है और वो भी खास करके भाइयों को
1: जी,
0: तो उस समय आपको लगा नहीं कि मैं कहाँ आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ?
1: अरे इसके बारे में आप बात मत पूछो, क्योंकि मैं इधर आया, मैं मेरा संकल्प आया भाई, इतना धन संपत्ति छोड़ के आ गया, कहा क्या था ये सब छोड़ के गया, इधर कैसे आ गया, उधर क्या कितना खुशी में था, इधर आ गए क्या, ऐसे लगा। लेकिन उसके लिए देखो ज्ञान कैसे करता है, लेकिन अंदर ये संकल्प आया, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, बाबा मिला सब कुछ मिला, बाबा ही हमारा संसार है। बाबा के ऊपर इतना लगन मगन था, मस्त था, कुछ भी होने तो बाबा को हम हाथ दिया है, बाबा ही हमको रक्षा करेगा, बाबा पालन करेगा। तो इसी संकल्प वो संकल्प आएगी, नेगेटिव संकल्प, पॉजिटिव संकल्प में बाबा का ज्ञान का आता है। तो उस समय मेरे को वो खत्म होता था, आराम से फ्री होता था।
0: बाबा मतलब परमात्मा की बात कर,
1: हाँ, परमात्मा इतना मेरे को मदद करता था, हर कदम कदम में मदद करता था। मैं 2:30 बजे पांडवन में बाबा के कमरे में जाके उठ के बाबा से झगड़ा करता था बाबा क्यों मेरे को इधर लेके आया, मेरे अंदर ना बुद्धि है, ना भाषा है, ना बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, ये कोई हमको हिंदी नहीं जानता हूँ, सेवा में हमको सब गड़बड़ हो जाता है, क्यों ऐसे लोगों को इधर लेके आया, अनलायक लोगों को लेके आया, अनफिट है, बुद्धि नहीं, ऐसे बाबा से झगड़ा करते, आप कुछ हमको सिखाओ, कुछ करो हमको। बाबा से रोज झगड़ा करता था और आंसू इतने आंखों से आता था, बाबा ये क्या करूँ कैसे करूँ। तो फिर ऐसे करते करते सेवा में लग गया। लेकिन एक बार क्या हो गया, चंद्रमणि दादी आने वाली थी इंद्रप्रस्थ में, चंद्रपाई भाई बोला कमरा सेट करना, दादी आ रहे हैं, आपका अच्छी तरफ साफ सफाई करो। मेरे को इतना हिंदी नहीं जानता था ना, इसलिए स्थूल सेवा देता था जास्ती, झाड़ू पोछा करना, खिड़की दरवाजा ये जो भी है ये सभी स्थूल सेवा, प्रेस कपड़ा प्रेस करना।
0: आपको ये निश्चय कैसे हुआ कि मुझे ये सब चीजें छोड़ करके समर्पित होना है? और जब आपको संकल्प आया समर्पित होना है, तो आपने क्या सोच के समर्पित हो गए थे?
1: हमको क्या है, ये तपस्या की वर्ष में हम भट्टी किया था ना, तो भट्टी में इतना क्लासेस सुन लिया, ये ज्ञान योग का क्लासेस सुन लिया, वो ज्ञान सुनते सुनते सुनते ही इतना हमको उसमें पूरा निछावर हो गया, इतना रस मिला, इतना ज्ञान रत्नों से हमको बहुत हमारा पूरा डीप में लेके गया, इसलिए हम सब छोड़ दिया। जब ज्ञान की रतन आए तो ये कौन सा रतन जो रखा है स्थूल रतन, इसको क्या करना है, वो इसी कारण से हमको छोड़ दिया, कुछ नहीं, इसीलिए हम लोग इसी कारण से लगन में मगन होके इसमें आ गया।
0: तो आपकी जीवन में रोल मॉडल कौन थे?
1: मेरे को इसे कोई रोल मॉडल के बारे में बुद्धि में नहीं आया था, लेकिन मैं सेवा करते करते आगे बढ़ा। कैसे आगे बढ़ा ये मैं शॉर्टली एक बताता हूँ। देखो अभी आपने मेरे को कहा था ना, मैं कहा था ना चंद्रमणि दादी आने वाले थे, तो दादी जब आई थी बोला बेडशीट बिछाओ और फोटो लगाना है, ऐसे भी चंद्र पर भी बोला कील लाओ, बोला फोटो लगाने का था इसलिए कील लाओ। कील माना मालूम नहीं था मेरे को कील, फिर मैं बहुत परेशानी हो गया कील माना क्या है, फिर मैं कील कील कील कील करके लिख के हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट शांताराम भाई था उस समय, वो हेड था शांताराम भाई, उसके पास जाके पूछ लिया भाई कील बोलता है क्या करना है, कील माना वो फिर बता दिया नाइल माना, नाइल इंग्लिश में बोला नाइल, वो बता दिया, फिर मैं लाके दिया। ऐसे मेरे को हर कदम कदम में प्रॉब्लम आया था। फिर एक बार हथौड़ी लेके आओ बोला, हथौड़ी माना मालूम नहीं, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हैमर, अभी वो लोग हिंदी में मालूम नहीं था मेरे को, फिर शांताराम भाई के पास गए। ऐसे बार बार उनके पास जाके मैं पूछ के फिर काम करता था, फिर मेरे को बहुत दुखी हो रहा था, अरे भाई हमको कुछ मालूम नहीं होता इधर क्या है। फिर थोड़ा दिन के बाद सभी ने बोला भाई आप सेवा तो अच्छा करता है 100% ठीक है, लेकिन आप जो भी कुछ बताए तो आपको मालूम नहीं होता है, तो आप घर जाना है, घर जाना ही है। फिर आत्म प्रकाश भाई आया उस समय सेवा देने को संभालने वाला टोली डिपार्टमेंट आता भाई, वो बोला घर जाना है, तो वो कहा भी मेरे को देखेगा ना कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा।
0: लेकिन आप तो घर पूरा सब कुछ समर्पित करके आ गए,
1: करके आ गए। तो मैं बाबा को बोलता था
0: जाएंगे तो कहाँ जाएंगे,
1: बाबा को बोलता था मैं, बाबा घर भी गया मकान भी गया दुकान गया, मैं कहाँ जाओ कैसे जाओ मेरे को कुछ पता नहीं। बाबा बाबा के पास जाके दूसरों को शेयर नहीं करता था, लेकिन बाबा से रूरोहन करता था, किसी को भी पर्सनली नहीं बोलता था हमारा कष्ट क्या है दुख क्या है, बाबा से ही शेयरिंग करता था, बाबा से ही झगड़ा करता था, बाबा से ही बात करता था, बाबा ही सब कुछ हमारा है तो बाबा ही कुछ करेगा। तो ऐसे करते करते सेवा में था। अभी जाने का समय हो गया, लास्ट अंत समय, तो पांडु वन में 10 प्रकार की रास्ता है। जब भी मैं प्रकाश भाई के सामने आएगा ना, ओ भाई इतना ही पूछता था भाई आप कब जाएगा कब जाएगा, तो मैं वो जब भी उसको देखता था दूसरे जगह में जाता था, क्योंकि किचन की तरफ है ना बहुत जगह है, किचन की तरफ को जहाँ बाबा का झोपड़ी है, बीच में बाबा का रास्ता है, पीछे की तरफ ओम शांति है, इस तरफ ट्रेनिंग सेंटर की उस तरफ है, जगह बहुत है, तो मैं एस्केप होता था, तो एस्केप होता था इसी कारण ने वो मैं बच जाता था। तो लेकिन दादी बड़ी दादी और यशु दादी के संबंध में मैं बहुत अच्छी लगन था। दादी मेरे को सेवा देखती थी हमेशा, 3 बजे 4 बजे तक भी मैं सेवा करता था। शांति स्तंभ के पास दादी जी भोजन करने के बाद वो वॉकिंग करती थी, तो मेरे को देखती थी ठीक है ऐसे ऐसे पूछती थी ठीक है ऐसे, यशु दादी और बड़ी दादी। फिर उस समय वो लोग मेरा सेवा देखता था बहुत, मैं अब तक सेवा करता था, वो एक ही हैंडल बहुत अच्छा करता था। तो फिर मेरे को जाने का समय हो गया था, तो जाने का समय होने के बाद दादी एक बार अमेरिका गई, तो मेरे को जाना ही है नेक्स्ट डे, तो सभी ने बोला आपको ट्रेन में जाना ही है, क्योंकि अभी सबका ये करना है, हम लोग समर्पित कौन है ट्रेल कौन है ऐसे भी हम लोग चार्ट बना रहे हैं, इसलिए आपका ना सेवादारी की लिस्ट में है आप, ना समर्पित लिस्ट में है, ना ट्रेल लिस्ट में, कोई आपका लिस्ट में नहीं, सेवादारी की लिस्ट में भी नहीं, आपको जाना है नेक्स्ट डे। लेकिन उस समय दादी अमेरिका गई थी, अमेरिका से फिर वापस आई। मधुबन में क्या होता है, दादी आने के बाद दादी क्लास करती है मधुबन निवासियों को, तो समाचार सुनाती थी सबको, मैं ऐसे सेवा करके आया सर्विस करके आया, तो

0: दरवाजे के साइड में जाओ, तो दरवाजे की बैक साइड बैठ कर मैं जैसे भक्ति में हनुमान बैठते है ना, जैसे चप्पल के साइड में, ऐसे मैं उधर कोने में बैठ गया था। फिर दादी समाचार सुनाया था, तो समाचार सुनाते सुनाते दादी ने कहा, मैं जब इधर गया था अमेरिका में, मेरा कमरा, मेरा बेडरूम, मेरा किचन, मेरा इतना बारिश के कारण बहुत फागी हो गया था, फागे कारण कमरा और ऑफिस मेरा पूरा गंदा गंदा हो गया था, तो लेकिन इतना अच्छा साफ हो गया, अच्छा साफ किया, कौन हो भाई किया होगा, ऐसे बोल रहा था, कौन वो भाई है, बहुत अच्छा साफ किया कमरा वो भाई, वो भाई इधर बैठा है क्या, बड़ी दादी प्रकाश मेरी दादी ने पूछा। तो मेरे को दादी क्या बोल रहे मालूम नहीं, कोई ना कोई एक भाई मेरे को पुश किया पीछे की तरफ, आप दादी ने बोला। फिर दादी, मैं उठ गया, देखो ये भाई है कर्नाटक से आया है, बहुत अच्छा सेवादारी, ये भाई आज से मधुबन निवासी है, ऐसे बोल दिया बड़ी दादी। तो मेरे को बहुत खुश हो गया, भाई आज से मधुबन निवासी बोल दिया दादी, से जाने वाला था तो मैं बच गया। फिर बाद में एक हफ्ते के अंदर मेरा कपड़ा के नंबर भी आ गया। फिर प्रकाश मणि दादी मेरे को इधर विशाल भवन के बगीचे में बिठा दिया, बिठा के आप ज्ञान सर में जाना है, राजऋषि भवन तैयार हो रहा है तो मकान संभालना है। फिर सात बिल्डिंग की राजऋषि भवन की मकान का इंचार्ज बना दिया। फिर वहाँ मैं गया, वहाँ गए तो मेरे को हिंदी इतना नहीं जानता था, फोन आया तो मैं डरता था, अरे भाई क्या फोन करो, गीता बेन पार्टी बेचती थी, ये पराने नंबर में पराने गांव वाला है, इसको इस कमरा दे, उस कमरा दे। गीता बेन का फोन आया तो मैं पूरा डरता था, अरे भाई क्या बात करो, फिर मैं डर डर के बात करता था। फिर बाद में बाबा ने थोड़ा हिंदी सिखाया, थोड़ा छोटा थोड़ा बात करना शुरू किया, ओम शांति किया। फिर मेरा बोल में भी लोग, मैं एक ये किया था, एक ओम शांति, जो भी बात करने के पहले मैं हेलो नहीं बोलता था, ओम शांति बोलता था। तो एक बार निर्वर भाई ने फोन किया, मैं ओम शांति भाई जी बोला, मैं सूरज भाई एक बार फोन किया, ओम शांति भाई जी बोला, कौन है भाई हमेशा ओम शांति बोलता है फोन में, ओम शांति भाई बोलते हो कौन है? फिर वो बोला अच्छा है, अच्छा ओम शांति तो बोलते है कम से कम ऐसे।
1: तो भाई जी ये तो आपकी पूरी यात्रा रही सेवाओं की, आप फिर फाइनली सेट भी हो गए मधुबन में, और दादी ने आपको
0: जी।
1: वर्तमान समय में आप क्या सेवाएं करते हैं, और संक्षिप्त में ये बताइए कि आपकी जर्नी से ये तो समझ में आता है कि आप एक अथक सेवादारी, ऑनेस्ट, और भाषा भी सीख लिया, और न घर है न कुछ है, और एक नई जगह पे आकर के अपने आप को, अपनी अस्तित्व बनाया। तो ऐसे सेल्फ प्रोग्रेस में आप क्या सोचते हैं कि आपने क्या प्रोग्रेस किया, क्या सीखा?
0: तो
1: ये चार दशकों का अगर आप समय देखते हैं,
0: प्रोग्रेस ये था जब मैं समझ लिया मेरा अंदर सच्चाई सफाई था, ऑनेस्टी था, ये देख के बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी बोला, ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदारी है, आज्ञाकारी है, वफादार है, तो ये भाई को सब प्रकार का दिए तभी चलता है। तो उसी समय बड़ी दादी बोला, यीशु ये भाई अच्छा है, तो यीशु दादी का जो भी कारोबार आता है, यज्ञ में पैसे आता है, वो मेरे को चांस दिया, और ज्ञान स्वरूप में हमको फल डिपार्टमेंट भी दिया, दादी ने बोला ये भाई बहुत अच्छा सेवा करता है, और बाद में सौगात देना सबको लोग आए तो सौगात का भी डिपार्टमेंट दिया। फिर छोटा दादी कहाँ भी जाएगी, टूर जाएगी, कहाँ भी जाएगी, दादी के साथ हम लोग जाते थे, दादी के साथ बैठते थे, दादी के साथ रहना बैठना खाना पीना ये सब करते थे। मेरा अंदर ये दादियों का विश्वास था, क्योंकि मेरा अंदर भी ये सच्चाई सफाई था, इसी कारण से मेरे को वो लोग लाइक करते थे, मैं भी उन लोगों को बहुत प्यार करते थे।
1: So, वर्तमान समय में आप क्या करते हैं?
0: अभी वर्तमान समय भी यही सेवा कर रहा हूँ, प्रकाश मणि कॉटेज में मुन्नि दीदी के पास सेवा करता हूँ, मना कोई गेस्ट आता है उनको सौगात देना, ये सब कुछ करता हूँ, और चारों जगह में जैसे मानसरोवर है, आनंद सरोवर है, चारों जगह में मना गिफ्ट होता है, सबको देना होता है सौगात, तो उस समय सबको जाके सौगात देने का सेवा भी बाबा ने दिया है, वो सौगात भी देख के मैं करता हूँ। और इसके अलावा ऑलराउंड सेवा है मेरा, जो भी हमारा कनेक्शन में यज्ञ में जो भी पैसे आता है, गोल्ड सिल्वर आता है, और इसको गोलक भाई के ऑफिस में देना होता है, ये सभी कारोबार चलता है। ओम शांति।
1: थैंक यू सो मच भाई जी। अंत में अगर आप अपनी

0: जीवन को देखे एक शब्द में बताना चाहते हैं तो वो क्या चीज है? आपके इस अलौकिक जीवन को अगर एक शब्द के साथ कहते हैं।
1: कहता हूँ, जहाँ निश्चय है उधर विजय होता है। भगवान के ऊपर हम लोग निश्चय रखेगा ना, जितना भी तकलीफ आवे, जितना भी परिस्थिति आए, जितना भी तूफान आवे, कारण हो अकारण हो, समस्या हो, दुख हो, रोगी हो, तो बाबा हमको बचाएगा, बाबा हमारा साथ है। इसलिए भगवान के ऊपर दृढ़ निश्चय रखो, सब कार्य अपने आप वो करेगा। ओम शांति।
0: थैंक यू सो मच। तो सुना दोस्तों, एक योगी जीवन माना परमात्मा के प्रति प्यार, परमात्मा से प्यार और परमात्मा के प्रति निश्चय। वो जो भी कहेगा करेगा मेरे जीवन में वो सबसे अच्छा होगा। और निश्चय की परीक्षा तो होती है, जो हमारी भाईजी के जीवन में हमने देखा कि अंत समय तक उनकी परीक्षा रही, लेकिन उनका निश्चय अटल था, परमात्मा से प्यार था, तो वो जीत गए हैं। तो जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, यही करना है हमें कि भगवान से हमें कभी कोसना नहीं है, लेकिन भगवान को हमारी दिल की हर बात सच्चाई सफाई के साथ सुनाना है और वो रास्ता अपने आप खुल जाता है। थैंक यू सो मच भाई जी, आज के इस आपकी जीवन की यात्रा को हमारी श्रोताओं के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, यहीं पे हम आपसे विराम लेते हैं। जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम से, और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाईसा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे है, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
2: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
6: शांति, सब ठीक कह रहे हैं, चलो हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
7: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
8: क्या?
2: क्या?
8: क्या?
7: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
9: हाँ जमाई सा तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
2: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
9: बहुत अच्छी बात है,
10: सब लोग मिलकर रहेंगे।
11: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर।
12: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
13: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
11: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
3: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपके ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
5: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
13: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
14: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
5: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है ये खुशी न दामाद की।
3: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
9: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
11: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
3: अरे माँ, खतरा है ना?
12: क्या?
3: राजकुमारी के हाथ का खाना।
6: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
14: क्या करेले के लड्डू
2: या मिर्ची का हलवा?
9: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊं, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
10: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
13: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
15: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
16: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
15: हाँ हाँ वही।
11: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
13: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या, अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है, मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या।
9: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
3: किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
10: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
15: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
10: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
15: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
3: भाई साहब जाने दीजिए ना।
6: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
15: जमाई साहब आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो, एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
3: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साहब के सामने ये सब शोभता नहीं।
10: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है और ये कहते हैं।
9: भाभी जी, भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी है दिल नहीं।
14: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
13: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
10: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
11: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
7: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
6: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
7: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है, रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
3: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार, कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है लेकिन दिल में नहीं।
11: चलिए जमाई साहब अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
9: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाईसा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाईसा रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
17: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाईसा का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए, उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां? वो प्यार कहां खो जाता है? खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई सा को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना? बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
9: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूँ। मैं हूँ आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

तो प्यारे श्रोता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपको फाल्गुन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जिस तरह हम श्रावण महीने के उमंग उत्साह से उसका स्वागत करते हैं और श्रावण महीने में जिस तरह त्यौहार आते हैं, उसी तरह फागुन महीना यानी कि फाल्गुन महीना भी इसी तरह त्योहारों से भरा हुआ होता है। जैसे कि होली आप सभी को पसंद है ना, तो अभी आने वाली है, तो इन सभी त्योहारों की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और आइए आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं उषा माहेश्वरी आज आप सभी के साथ फिर से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। आपकी अच्छी सी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज सुनने के लिए बहुत ही बेकरार हूँ, इसलिए आज आप फोन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि पहली तो मैं सुनाऊंगी लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी आपको बता रही हूँ। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, फिर घरेलू नुस्खों को कैसे भूल सकते हैं जरूर सुनाएंगे कि किस तरह तुलसी की चाय बनाई जाती है और तुलसी के क्या क्या फायदे हैं इस बारे में, और खुशनुमा जीवन की तो ढेर सारी बातें करेंगे ही, और नए नए व्यंजन पला कैसे भूल सकते हैं, तैयार रहिएगा सीखने के लिए, सामान्य जानकारी भी देंगे। और पहेली तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहेली आज पूछने वाली हूँ, तैयार रहिएगा। हमारे नंबर तो आप जानते हैं, 9414151415 पर कॉल कीजिएगा, और आज की पहेली का जो सबसे पहले जवाब देंगे और जिनका जवाब सही होगा वो आज के विनर रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। और अभी तो आपको एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और आज का विचार इस प्रकार है, अच्छाई और भाग्य पर कभी भी संदेह न करें। अच्छाई और भाग्य पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार है, अवसर न दिए जाने या फिर विघ्नों से मार्ग अवरुद्ध किए जाने पर भी जो विनम्र व शुभ चिंतक रहते हैं, ऐसे चरित्र वाला सदा संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह बड़ी बातें नहीं कर रहा बल्कि बड़े उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। बड़े बड़े कार्य यदि निजी मान महत्वाकांक्षाओं व लाभ की मिलावट के साथ किए भी जाए तो भी मैंपन के खाते में ही जाते हैं। तो ऐसे में स्वयं सोचिए कि सफलता के वास्तविक पैमाने क्या है। अतः अपनी अच्छाई और भाग्य पर कोई संदेह मत करिए। कर्म सिद्धांतों की घूय समझ को बुद्धि में बिठा करके निश्चिंत व निर्भय बनिए। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा और कभी भी अच्छाई और भाग्य पर संदेह मत करिएगा। तो ये हुआ आज का विचार। और मैं आप सभी से कह रही थी कि भाई बहुत दिनों से आप सभी से मिलना हो रहा है। देखिए, आवाज़ तो मेरी आप रोज़ सुनते हैं, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी की आवाज़ सुनने जाऊंगी, इसलिए इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरी भी इच्छा होती है कि आपके साथ बातें करूं, आपकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज़ सुनूं, है ना। तो ही मज़ा आएगा ना आपस में बात करने से। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ़ोन करेंगे। मैं आज की पहेली अगले कार्यक्रम में दोहराऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आइए आपको घरेलू नुस्खे देंगे। इस गीत की पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको तुलसी के बारे में घरेलू नुस्खे देने जा रही हूँ, लेकिन पहले आज की पहेली दोहराऊंगी, ठीक है ना? तो आप तैयार रहिएगा। आज की पहेली इस प्रकार है, कागज पर मैं सरपट भागूं चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, कागज पर मैं सरपट भागू चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली बहुत ही सरल है, इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन कॉल्स कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9414151415 पर फोन कीजिए और आज की पहेली का जवाब दीजिए। घरेलू नुस्खों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तुलसी के प्रयोग से सर्दी छाती में नहीं उतरने पाती, और छाती में जो उतर जाती है ना, तो सर्दी कफ के रूप में बाहर निकल जाती है। तुलसी के सेवन से छाती का दर्द भी कम हो जाता है, श्वास प्रणाली की झिल्ली पर स्वास्थ्यप्रद प्रभाव डालने में तुलसी अद्भुत क्षमता रखती है। तुलसी के सेवन से बुखार का भय जाता रहता है, बुखार जिसको हम ज्वर भी कहते हैं। निमोनिया और मलेरिया बुखार में तुलसी की पत्तियां 3 और काली मिर्च 3 दानों को 1 चम्मच पानी में घोट करके कुछ दिन तक खाली पेट सुबह सुबह लीजिए, इससे काफी लाभ मिलेगा। निमोनिया और मलेरिया बुखार, इन दोनों के अंदर तुलसी की पत्तियां 3 और काली मिर्च 3 दाने, ठीक है, इन दोनों को आप लीजिए 1 चम्मच पानी में, अच्छी तरह घोट लीजिए, ठीक है, और कुछ दिन तक रेगुलर आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है, इससे काफी लाभ मिलेगा। और तुलसी की चाय कैसे बनाई जाती है वो भी आपको सिखा रही हूँ। अदरक, चलिए तुलसी की चाय आपको सिखाएंगे, उसके पहले हमारे श्रोता बंधु से बात कर लेते हैं। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, उषा जी, सूरज भाई जल्दी बोलते जुटाना चाहिए, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो?
1: बस बिल्कुल बढ़िया है, अच्छे है। और क्या आपका जो शादी का जो बच्चे का था वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया?
0: जी जी जी, परमात्मा की कृपा से बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हुआ है कार्यक्रम।
1: जी जी, हम तो यही चाहते कि बस सबका काम अच्छा हो जाए, कोई मुसीबत ना आए और सबकी जो आशा है पूरी हो जाए, ऐसी तो हम बाबा से ही प्रार्थना करते है, क्योंकि किसका काम अच्छा हो जाए इसमें तो सबकी भलाई होती है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल, अच्छा आप जैसे सभी प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं की दुआएं मिलती है ना, तो सचमुच बहुत ही काम आती है ये दुआएं।
1: जी जी जी बिल्कुल, दुआ तो सबकी होती है, क्योंकि दुआ एक ऐसी है दवा की, दवा नहीं काम करती लेकिन दुआ जरूर काम करती है, और जी, सबको जी। अच्छा एक मौका मिलता है अच्छा काम करने का, तो दुआ है तो सब की दुआएं, कहते हैं कि दुआ सबकी लीजिए, तो दुआ लेना भी एक अच्छी हमारी जो आशा होती है और हमारा भाग्य भी होता है।
0: जी सुरेश भाई, और परिवार में सभी खुश है?
1: बिल्कुल, बड़ा सब आनंद में है, खुशी में है। हम भी अहमदाबाद जी थे 4 दिन से, कल परसों भी आए हैं, हमारे जो बेटी हमारे बहन की बेटी की शादी थी हमारी भांजी की, तो 4 दिन से अहमदाबाद ही थे।
0: अच्छा,
1: और परसों हम आए 4 दिन के बाद।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपके भी कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, इतनी मतलब कोई नहीं विघ्न, कोई ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी तरह से शादी हमारी भांजी की हो गई और बहुत खुशियां भी हमको मनाई सबने, और सब अच्छा ही काम हो गया सब अच्छी तरह से।
0: चलिए तो आपको भी मुबारकबाद, और आज की पहेली का आप जवाब देंगे?
1: जी बस पहेली तो अभी अभी हमारे जो बताई हमारे बहन जी ने, तो वही हो सकता है टेंशन।
0: ओके, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपका जवाब हम जरूर सुनाएंगे।
1: जी जी, नमस्कार
0: नमस्कार। तो आपको मैं तुलसी की चाय बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई तुलसी तो आप सभी जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है, और इसकी चाय अक्सर हम क्या करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, बाहर से खरीदते तो फिर थोड़ी महंगी भी होती है, इसलिए आपको बनाना सिखा रही हूँ अदरक काली मिर्च युक्त है ना तुलसी की चाय का। देखिए, इससे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं। बुखार मलेरिया ये तो दूर होता ही है, और एनर्जी भी रहती है। तो तुलसी की ताजा पत्तियां 7, ठीक है, काली मिर्च 7, सूखी हुई सूंठ, सूंठ का पाउडर होता है ना, भले तो आप सूखा करके इसका पाउडर कर लीजिए, क्योंकि सूखा करके जैसे अदरक अभी सर्दी की ऋतु में थोड़ा सस्ता होता है, उस समय इसको सूखा दीजिए तो ये सोट बन जाता है, फिर इसको पीस लीजिए तो सोट का पाउडर हो गया, ठीक है। तो ये ले लीजिए, फिर इन तीनों को एक कप उबलते हुए पानी में डाल करके आप 4-5 उबाले आने दीजिए, तीनों को मिक्स करके, फिर आप नीचे उतार दीजिए और 2 मिनट ढक करके रख दीजिए। 2 मिनट के बाद छान करके इसमें उबला हुआ दूध 100 ग्राम और 1-2 चम्मच शक्कर या चीनी डाल करके गरम गरम पी लीजिए और ओढ़ करके 5-10 मिनट सो जाइए। इससे

0: और हम ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि पहले से ही बचाव करें। हम क्या करते हैं, जब बीमारियां आती है उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो भी इससे फायदा मिलेगा इन सभी बीमारियों में। तो तुलसी की चाय बनाना आपने सीख ली ना, तो बहुत ही सरल तरीका है। पुनः दोहरा रही हूँ, तुलसी की पत्तियां लीजिएगा साथ, ठीक है, ताजा, और काली मिर्च भी साथ लीजिए। सूखे हुई सौंठ का पाउडर, वो आपको मैंने सिखा दिया है कैसे बनाना है, तो ले लीजिए 1/4 चम्मच, ठीक है। फिर इन तीनों वस्तुओं को 1 कप उबलते हुए पानी में डाल करके 4-5 उबाले फिर से आने दीजिए। इसके बाद नीचे उतार करके 2 मिनट तक ढककर रख दीजिए। फिर 2 मिनट बाद इसको छान लीजिए और इसके अंदर उबला हुआ दूध 100 ग्राम और 1-2 चम्मच शक्कर डाल करके गरम गरम पी लीजिए। पी करके आप थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए ओढ़ कर सो जाइए, ठीक है। इससे सर्दी का सिर दर्द, नाक में सर्दी, जुकाम, पीना, श्वास नली में सूजन, साधारण बुखार, मलेरिया, बदहजमी, ये सारे ही रोग दूर हो जाते हैं और छाती में जमा हुआ कफ ढीला होकर के बाहर निकल जाता है। सर्दी से हुई छाती की अकड़न और पसलियों का दर्द भी दूर हो जाता है। तो इस तरह तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। तो ये हुए घरेलू नुस्खे। आइए फिर से पहेली की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली बहुत ही सरल है, जवाब दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-1415 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं SMS भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से समय हो रहा है गीत सुनाने का, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार उषा जी।
0: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है रेडियो मधुबन में आपका। भाई कैसे है आप?
1: थैंक यू
0: आपको। और सुनाइए कैसे हो आप, सभी परिवार वाले?
1: प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा चल रहा है, हम सभी बहनों को बिल्कुल धन्यवाद देते हैं, रेडियो मधुबन परिवार खुले खाले।
0: आज की पहेली का जवाब
1: बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: सभी बहनों को नमस्कार।
0: जी जी जी, आपको भी। और आज की पहेली का जवाब देंगे,
1: सुनाते हो आप नुस्खे तो बिल्कुल बढ़िया से लगते हैं, हम तो इसका उपयोग करते हैं, तुलसी की चाय पीते है ना, सर्दी उड़ जाती है ना, सुबह सुबह ऐसे चाय में भी डाल के पी सकते हैं, सौंठ का पाउडर है, काली मरी है और तुलसी के पत्ते और पुदीना भी, तो बिल्कुल बढ़िया था, उसका टेस्ट भी आएगा
0: जी,
1: और सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल
1: बढ़िया से नुस्खे सुनाते हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आसमान जी।
0: जी आपको भी धन्यवाद कि आप इतने प्यार से सुनते हैं और इसका रिप्लाई भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज की पहेली का जवाब देंगे भाई साहब। श्रोताओं एक भजन सुनेंगे,

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: हेलो ताफिर भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु हाँ जी हेलो स्वागत है रेडियो मधुबन में
2: नमस्कार
1: हाँ जी नमस्कार ताफिर भाई कैसे हो आप
2: बहुत अच्छे आप सबकी दुआ से बहुत बढ़िया
1: बस हम भी यही चाहते हैं हमेशा खुश रहिए
2: आपकी आपका सुख प्रसंग बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया होगी ऐसी दुआ ही हमारी और ऐसा होगा भी
1: जी जी धन्यवाद आप सभी की दुआओं से बहुत ही अच्छा रहा कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक संपन्न हुआ
2: उनका जीवन उन जोड़े का जीवन बहुत अच्छी तरह से जाए और सारी खुशियाँ उसको जीवन में भरा ऐसी दुआ हमारी
1: थैंक यू भैया आपको और परिवार में खैरियत है
2: सभी खैरियत
1: और सुनाइए भैया आप तो रेडियो मधुबन के एनुअल फंक्शन में भी नहीं पधारे हमसे नाराज हो क्या
2: नहीं ना नहीं ऐसा कुछ नहीं तो हमारे सीजन है ना वो मटके बनाने की सीजन चलती है
1: अच्छा
2: तो एक रजा रखते है तो 3-4-5 रजा पड़ जाती है
1: ओके जी जी
2: हम में नहीं रुक सकते वो काम ऐसा है मटके बनाने का तो एक रजा रखने में 3-4 दिन काम बंद रखना पड़ता
1: जी
2: है।
1: जी जी ये भी सीजनेबल होता होगा है ना सीजन के अनुसार बनते
2: मटके बनाने का ऐसा ही प्रोग्राम होता है इसलिए
1: ओके कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर जरूर पधारिए और आज की पहली का जवाब देंगे भाई
2: जवाब तो पेंसिल ही है
1: ओके भैया तो आपको जी
2: पहले फोन किया वो हमारा फोन लगा नहीं
1: अच्छा अच्छा आपसे बात नहीं हो पाई जी जी जी चलिए
2: और सभी दोस्तों को हमारी प्यार
1: जी जी जी आपको भी सभी बहुत याद करते हैं धन्यवाद आपको मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आंखें मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आंखें क्योंकि हाथ को चोट लगने पर आंखों में पानी आता है हाथ पर चोट लगने पर आंखों में पानी आता है और आंखों में पानी आए तो उससे पोंछने को हाथ ही आगे आते हैं तो प्यारे श्रोता बंधु आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे सविता जी हमारी प्यारी सखी हमारे साथ बनी हुई है और सविता जी जो अभी अभी मित्रता के बारे में बात की है तो सबसे पहले तो मैं आपका फिर से बहुत दिनों से आपसे मिली हूँ आज और सभी से भी बातचीत कर रहे हैं इसके लिए आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में
3: धन्यवाद ऋषा जी आपको बहुत बहुत मुझे भी इतने दिनों बाद अपने प्यारी सहेली मिली है मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है मित्रता की बात जैसे आपने की तो बहुत दिनों से बिछड़े हुए मित्र मिल जाते तो बड़ी खुशी होती है और आप मेरे से 1 महीने लगभग दूर रही मुझे लगता
1: जी, जी, बिल्कुल।
3: पर मुझे ऐसे लग रहा है बहुत दिन से दूर चली गई थी और आपको बहुत लोग मिस कर रहे थे यहाँ पे भी लोग पूछ रहे थे
1: जी जी मैं भी सभी को मिस कर रही थी लेकिन इतनी व्यस्त हो गई कि मैं चाहते हुए भी समय नहीं निकाल पाई
3: कोई बात नहीं उषा जी देखिए हमारी घर गृहस्थ में हम रहते हैं ना तो परिवार में ही हमारी जिम्मेवारी है ना कि जो भी काम है मैं करने हैं उसे सही ढंग से सही तरीके से करें और इस समय जो शादी विवाह का माहौल होता है उसमें कई लोगों के संबंध संपर्क में हम आते हैं तो उनके साथ भी हमारा जो कर्तव्य है उसे भली भांति निभाना पड़ेगा नहीं तो फिर ये हो जाता है कि ये ध्यान नहीं देते हैं
1: जी
3: तो इसलिए वो कभी कभी मिलने वाले हमारे रिश्तेदार होते हैं कुछ नए रिश्तेदार भी दो परिवार जब जुड़ते हैं तो नए लोगों से भी हमारी मित्रता हो ही जाती है तो उनके साथ हमें थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है और हर हम मैं और आप तो पुराने सहेली थोड़ा दूरी भी हो गई कोई बात नहीं दिल तो पास है
1: कहते हैं कि पुराने का तो पुराने तो इशारे में ही समझ जाते हैं कि वह इनके साथ क्या चल रहा है किस तरह की सिचुएशन है लेकिन नयों को दिल में बिठाना उनके साथ किस तरह हमको व्यवहार करना वो पहले होना चाहिए क्योंकि नए के मन में ऐसा आता है ना कि जब हम उनको समय नहीं देते तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो अपने आप को जैसे बहुत ही टाटा बिरला समझते हो ऐसे व्यस्त समझ रखा
3: जी बहुत बिजी लाइफ हो गई
1: लेकिन इसलिए उनको प्यार भी देना पड़ता है उनको समय भी देना पड़ता है कहते हैं कि स्नेह प्यार से ही संबंध जुड़ते हैं
3: जी संबंधी का मतलब ही होता है समान बंधन दोनों को एक दूसरे के लिए समानता होनी चाहिए और उषा जी मित्रता में जो बात हुई तो अभी आपने कहा कि समय नहीं दुनिया में सबके पास सब कुछ है
1: जी
3: पर अच्छे मित्रों की कमी है और समय की कमी है। अगर हमें सौभाग्य से अच्छे मित्र मिल जाएं और उनके साथ समय व्यतीत करने का मौका मिल जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। इसे हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें एक अच्छा मित्र मिला है या सहेली मिली, जो भी कहिए, क्योंकि मित्रों से ही हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। कुछ बातें अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह सकते, होता है कई बार।
4: बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम अपने संबंधियों के साथ नहीं कर सकते,
3: नहीं कर सकते,
4: लेकिन एक मित्र, एक सखी, एक दोस्त के साथ हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, न करने जैसी बातें भी हम करते हैं।
3: हाँ, क्योंकि वो रास्ता दिखाते हैं। लेकिन कई बार आजकल जो जमाने में हम देख रहे हो, ऐसा माहौल है कि मित्रों के साथ ही लोग बिगड़ रहे हैं, दोस्तों में ही बच्चे खराब हो रहे हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी दोस्त नहीं कहलाते। जो बिगाड़ रहे हैं वो दोस्त नहीं होंगे, वो हमारे दुश्मन हो गए हैं। दोस्त तो वो होता है जो हमें कभी बिगड़ने ना दे। अगर मैं जाऊं भी बिगड़ने तो वो मुझे संभाल ले। आप समझ रहे हो? तो मित्रता और दोस्ती की परिभाषा यही है। तो मैं कहना चाहूंगी श्रोताओं को कि कभी भी उनको अपना दोस्त ना समझे जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत मार्गदर्शन देते हैं। आपका मित्र वही है जो भले कई बार हमें ऐसा लगता है कड़वा बोल रहा है, मेरा ये दुश्मन है, लेकिन दुश्मन नहीं, वास्तव में वही आपका सच्चा मित्र है।
4: क्योंकि जो सच्चे मित्र होते हैं वो मुंह के सामने ही आपकी गलती को कहते हैं कि भाई आपकी यहाँ पर गलती है या आप गलत काम कर रहे हैं, इसको सुधार लीजिए। और बाकी जो कहते हैं ना कि बहुत से लोग जीवन में आते हैं जो सिर्फ आपको चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले होते हैं, आपके शुभ चिंतक नहीं होते।
3: बिल्कुल कतई नहीं होते वो हमारे शुभ चिंतक।
4: वो पीछे यही चाहेंगे कि इसका बुरा और सामने से तारीफ करेंगे तो मीठे और तारीफ करने वाले नहीं, वो फिर सही मायने में मित्र नहीं होते हैं।
3: हाँ,
4: विशेषताओं की तारीफ करिए सविता जी, विशेषताओं की तारीफ करना भी अच्छी बात है ताकि इंसान को पता चले कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है। लेकिन अगर कोई बुराई है तो उसको भी जरूर बताना चाहिए कि आपके अंदर ये बुराई है, आप इसको निकालिए।
3: जी बिल्कुल,
4: तो ही पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, कैसे हमको बदलना है स्वयं को।
3: जी देखिए, कई बार मित्रता के मायने आजकल के लोग ये समझने लगे हैं कि हमें धन से, धन जिससे प्राप्त हो रहा है। खासतौर पे देखिए मित्र क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं, उसने उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए, होटल में खाना खिला रहे, गिफ्ट दे रहे, लोग समझते यही हमारी सच्ची मित्रता है। लेकिन मैं समझती हूँ इससे बढ़कर एक चीज होती है जो हमारा अपनापन होता है, अपना प्यार होता है, और हम दोनों तरफ से संबंध बहुत अच्छे से निभाए, ये भी निभाए और सामने वाला भी निभाए, तब अच्छा लगता। और कई बार आप देखिए मित्रता को लेके परिवार में टेंशन होती, बच्चे बहुत ज्यादा घुल जाते हैं ना बाहर में जाके, पेरेंट्स दोनों के परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे कि देखो मेरा बच्चा तो उसके साथ ही घूमता रहता, बिगड़ रहा है। तो मैं ये कहूँगी, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो बच्चों की दोस्ती हो, चाहे वो महिलाओं की दोस्ती हो, महिलाओं के लिए भी कई बार ऐसे मतलब कहा जाता है कि ये तो जो है कि बात करने में लग जाते हैं, या दिन भर घूम घूम के मोहल्ले में इनकी दोस्ती रहती है, घर के काम पड़े रहते हैं, पति आए टाइम से खाना नहीं मिला, बच्चों को नहीं मिला, तो ये भी एक मित्रता ही है। लोग कहते हैं हमारी दोस्ती भाई, हम अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में या कहीं कहीं जा रहे हैं। इसी तरह जो हमारे भाई लोग होते हैं वो भी ऐसी दोस्ती निभाते हैं। तो दोस्ती वो हो जो सुकून मिले, जिससे दोनों परिवार में सुख शांति बनी रहे। अब ऐसी दोस्ती हम ना करें कि उसके पीछे परिवार को भूल जाएं, या फिर परिवार का ध्यान ना दें, या दोनों तरफ के परिवार वाले उंगली उठाएं कि उसने मेरे बच्चे को खराब किया, या मेरे पति को खराब किया, या मेरी पत्नी को खराब किया, मेरी बेटी को। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। दोस्ती वो हो जो मिसाल बन जाए।
4: बिल्कुल, और हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम दोस्ती में अपने फ्रेंड्स को समय दे रहे हैं तो घर परिवार वालों को भी समय देना बहुत जरूरी है,
3: बेहद आवश्यक है। और पत्नी भी एक सच्ची मित्र होती है, मुझे तो उषा जी
4: बिल्कुल कहते हैं कि पत्नी जैसे तो मित्र मिल ही नहीं सकते।
3: हाँ, पति पत्नी बहुत सच्चे मित्र बन सकते हैं। आजकल देखिए बच्चों के साथ भी कहा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहें। तो जब हम बच्चों के साथ अपना जो एक कहते उम्र, जनरेशन गैप होती है ना, उम्र का जो वो होता है उसे हम घटाकर दोस्त बन जाते हैं, तो पत्नी तो हमारी हमजोली होती है।
4: बिल्कुल सविता जी,
3: अच्छे से दोस्ती उसके साथ हम कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं।
4: जी कहते हैं कि पत्नी हो चाहे माँ हो, हर संबंध में हम जैसे कि जहाँ जब जरूरत पड़ी माँ को एक अच्छा मित्र बना सकते हैं, और माँ जैसे भी मित्र बाहर नहीं मिलेंगे,
3: नहीं
4: और पत्नी जैसे कि आपने बताया है कि पत्नी जैसे मित्र भी बाहर नहीं मिल सकते हैं। इसलिए पहले तो घर में ही मित्रता बनाइए अच्छी तरह, संबंध तो है ही, जो माँ बेटे का होता है, माँ बेटी का होता है, या पति पत्नी का होता है, संबंध तो है ही, लेकिन उस संबंध में मित्रता का प्यार, मित्रता का एहसास भी हम कर सकते हैं। तो चलिए सविता जी, और भी बातचीत करेंगे मित्रता के बारे में, लेकिन अभी आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली इस प्रकार है, कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली का जवाब दीजिए। आप चाहे तो एसएमएस भी कर सकते हैं, हमारे नंबर है 9415141415 पर आप फोन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करिए, क्योंकि आपकी आवाज सुनने के लिए मुझे मतलब मैं बेकरार हो रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसी पर आपको एक प्यारा सा गीत सुना देते हैं, फिर तुरंत सविता जी के साथ आपसे बातें करेंगे। सुनते रहिए,
3: मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आग लगी थी मेरे घर में,
3: पूछने वाले आए। सविता जी, आग लगी थी मेरे घर में, सब पूछने वाले आए, हाल पूछा और चले गए। एक सच्चे मित्र ने पूछा,
4: जी
3: क्या क्या बचा है
4: जी?
3: मैंने कहा, कुछ नहीं, केवल मैं बच गई हूँ। उसने गले लगा कर कहा, सखी फिर जला ही क्या है।
4: जला ही क्या, वाह बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। सब चला गया पर मित्र बचा। अगर मित्र हमारे साथ हैं और मित्रता हमारी बरकरार है तो आप देखेंगे हम फिर से फलीभूत हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ये तो संसार की चीजें हैं, आना और जाना और जलना।
5: हेलो
3: जी सविता जी। हेलो, स्वागत है रेडियो मधुबन में। आप कौन बोल रही हैं?
5: ओम शांति उषा दीदी। ओम शांति।
3: अरे ओम शांति दुर्गा जी, क्या बात है, आपसे तो बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुन रही हूँ और आपसे बात होने जा रही है, मुझे बहुत खुशी है। कैसे हैं आप?
5: तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों से बात हो रही है आपकी मेरी।
3: जी जी जी। और आपके मदर इन लॉ, आपके सन वगैरह सभी अच्छे हैं?
5: हाँ सभी अच्छे हैं आपकी दुआ से।
3: चलिए बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले की मेहरबानी बनी रहे। और
5: हेलो।
3: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ। और दुर्गा जी, आज आपके किचन में क्या बनाए ये बता दीजिए।
5: मैं अभी पराठा बना रही हूँ, चालू है, हाथ में पराठा बन रहे हैं।
3: अच्छा अच्छा, तो परोठे कौन से, सिंपल वाले या फिर कोई चटपटे?
5: नहीं, मेथी और मसाला डाल के और गाजर का जूस दोनों बना रही हूँ।
3: क्या बात है, तब तो हम भाई आ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा बनाना ठीक है?
5: ज्यादा तो मैं बनाऊंगी, आप तो खाते भी
3: नहीं हो। नहीं नहीं, जरूर खाएंगे। और चलिए अभी तो आप बनाइए, परिवार वालों को खिलाइए। और भाई होली की तैयारी कैसी चल रही है दुर्गा जी?
5: ठीक ठीक चल रही है अभी तो।
3: चलिए अभी तो समय है। ओम शांति। अच्छा, आज की पहेली का जवाब तो दीजिए।
5: पहेली तो पता नहीं मेरे को।
3: कोशिश करिए, फिर से फोन कर सकते हैं आप।

0: ठीक है, सुनूंगी और सोचूंगी तो आएगी
1: तो पहेली पहेली मैं सुना रही हूँ, सुनिएगा। कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं।
0: तो मैं सोच कर दूंगी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप SMS भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो आप अच्छी तरह पढ़ना भी जान गई है, लिखना भी जान गई है, तो SMS भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सविता जी, दोस्ती की बात चल रही थी
2: जी उषा जी,
1: कि भाई कहते हैं कि सब कुछ चला जाए लेकिन हमारे मित्र जो हमारे चाहने वाले हैं वो सदा सलामत रहे।
2: जी उषा जी, क्योंकि उनकी सलामती से ही हमारी खुशी है। हम जिसको चाहते हैं, चाहे किसी भी संबंध से, आप देखिए अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो बहुत दुख होता है। जो करीबी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दिल के करीब कहा गया है, तो उनको बहुत तकलीफ होती कि उनका ये नुकसान हो गया। लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि सब कुछ जला पर मित्रता नहीं जली, और एक दूसरे को देख कर जलना भी नहीं चाहिए। अब जलने से बात याद आ गई, कई बार मित्र मित्रों में आपस में जलन हो जाती
1: होते।
2: आप देखिए एक साथ पढ़ने वाले कई बच्चे होते, बहुत प्यार होता है, मैंने देखा कई बार उनमें, लेकिन जहाँ मार्क्स कम आए एक दूसरे के अपडाउन, तो उसमें भी एक मतलब जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार कोई अच्छी जगह किसी का सिलेक्शन हो गया, वो अच्छी जगह चला गया, तो दूसरे मित्र का नहीं होता, तो वो बहुत प्यारा दोस्त होता है, उसके बावजूद उसकी ईर्ष्या होने लगती है, जलन शुरू हो जाती है।
1: कहते हैं दोस्ती में जलन नहीं होनी चाहिए, और चाहे एक आगे बढ़ गया और एक काफी पीछे रह गया, लेकिन उनकी दोस्ती बनी रहनी चाहिए।
2: हाँ, दोस्ती
1: ऐसे नहीं कि कितने लोग क्या है कि अच्छी पोस्ट मिल जाने के बाद जब उसको ऐसा लगता है कि अरे अब उसके पास है ही क्या।
2: हाँ।
1: और फिर वो ईगो भी आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि नहीं नहीं सोसाइटी मुझे क्या कहेगी, लोग मुझे क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ इनकी दोस्ती है, तो वो धीरे धीरे उनसे किनारा करने लगते हैं और दोस्ती धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो सविता जी ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
2: और उषा जी, अभी मैंने आपने मित्रता की बात की, यहाँ तो मित्रों के बाद कई बार देखिए लोग ऊंचाई पर चले जाते, अपने माता पिता को भी नहीं पहचानते।
1: जी
2: मैंने देखा उनका भी परिचय कराने में उन्हें ऐसा लगता जैसे शर्मिंदगी महसूस हो रही। मुझे कई बार कुछ बातें याद आ जाती हैं तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी क्या करेंगे, अपनी अपनी सोच है इस चीज को। तो मित्रता की बात पे याद है कि देखिए श्री कृष्ण कहाँ द्वारिकाधीश बन गए और कहाँ सुदामा जी कैसे रह गए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं भुलाया कि द्वारिकाधीश और सुदामा का मिलन कैसे होगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल गले लगाया, बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचा कि कहाँ ये और कहाँ मैं। और कहते हैं कि इतने नैनों से आंसू गिराए द्वारिकाधीश ने कि उनके चरण धुल गए, उनको अलग से पानी लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये है मित्रता, और जिसे कहा गया कि ये मित्रता संसार में आज एक मिसाल बन गई। और आप देखिए गोपिकाओं की और श्री कृष्ण की मित्रता का भी गायन है, द्रौपदी और श्री कृष्ण की भी मित्रता का गायन। देखिए दोनों श्री कृष्ण और द्रौपदी भी मित्र ही थे, सखी ही कह के उसको पुकारते थे श्री कृष्ण। और देखिए जब वक्त पड़ा तो द्रौपदी का उन्होंने कितना अच्छा मदद किया, आपने देखा
1: बहुत ही अच्छी मदद की।
2: जब दुर्योधन दुशासन
1: सभी के बीच में, कहते हैं एक सभा के बीच में द्रौपदी के किस तरह श्री कृष्ण जी ने लाज रखी
2: इज्जत बचाई जो कहा गया। और अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो फिर क्या हमारे सौभाग्य है। और कई बार ऐसे भी मित्र मिलते हैं कि जो एकदम उल्टे कर्म करने लग जाते हैं, मित्रता का गलत फायदा उठाते हैं। तो प्यारे श्रोता बंधु, हमें इन सब कहानियों को जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं या टीवी पर दिखाया जाता है सीरियलों के माध्यम से, वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि हम इनसे शिक्षा लें कि सच्ची मित्रता कैसे निभाई जाए या सच्चे संबंधों को कैसे निभाया जाए। और जिन्होंने इन सब का नाजायज फायदा उठाया, चाहे मित्रता का हो चाहे संबंधों का, आप देखिए उनका अंत भी बहुत बुरे तरीके से हुआ।
1: बुरा ही होता है, कहते हैं बुरे का अंत बुरा ही होता है।
2: इसलिए ये जो रेडियो के थ्रू हम लोग जो भी वैल्यूज की बातें करते हैं, जो भी बता रहे हो, सिर्फ इसीलिए कि हम भी इसको सीखें और समझें, जीवन में धारण करें, साथ में दूसरे भी। और जब हम इन चीजों को सुनकर समझकर अपने जीवन में उषा जी यूज करेंगे, तभी सच्चा
1: सुख मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी और
2: सच्ची सफलता। हम भी जो प्रयास कर रहे हैं और श्रोता भी, जो श्रोता बंधु भी जो सुन रहे हैं इसको ध्यान से, उनको भी सच्ची सफलता तभी मिलेगी जब इसका यूज करें। तो आप मित्रता किसी से भी कीजिए, बिना जाति का भेद रखे, धर्म का भेद रखे, लिंग भेद नहीं, कोई भेद नहीं, अमीरी नहीं, गरीबी नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, लेकिन सच्ची मित्रता कीजिए। चाहे वो परिवार में मित्रता आप कीजिए, चाहे परिवार से बाहर कीजिए, चाहे मेल की फीमेल की मित्रता हो, कोई भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए। उषा जी
1: तो कहते हैं कि संग ही तारे और संग ही बोरे, है ना। तो संग देखिए अच्छे और बुराई का भी एक जोड़ा होता है ना
0: जी। हेलो,
1: हाँ जी, हेलो, स्वागत है रेडियो मधुबन में, आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं राधा बोल रही हूँ, नए खेड़े से।
1: हाँ हाँ हाँ, राधिका जी कैसे हैं आप?
0: वो आपने अभी पहले पूछी थी ना
1: जी,
0: उसका पेंसिल होता है।
1: ओके, तो राधा जी आप क्या करते हैं?
0: मैं नौकरी करती हूँ आंगनवाड़ी में।
1: अच्छा, आंगनवाड़ी में सर्विस करते हैं। और कितने समय से आप रेडियो मधुबन सुन रहे हैं?
0: 20 साल से।
1: कितने साल से? हेलो,
0: 1 साल से।
1: अच्छा, 1 साल से। और 1 साल से जो आप रेडियो मधुबन सुन रहे हैं, तो सुन करके आपके जीवन में किसी तरह का परिवर्तन आया?
0: हाँ, उसमें अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें मिलती है, सीखने को कुछ मिलता है, महिलाओं के बारे में भी बताते हैं, खेती बाड़ी के बारे में भी बताते हैं।
1: तो चलिए राधा जी, कभी आप आइए रेडियो मधुबन के स्टूडियो में भी, है ना? आपसे हाँ, समय निकाल करके कभी आइए। और बहुत अच्छी बात है कि आप रेडियो मधुबन से जुड़े हैं और आज पहली बार आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है। ओके, धन्यवाद आपको।
0: मुझे भी अच्छा लग रहा है
1: जी। तो आप जुड़े रहिएगा, ठीक है?
0: मुझे एक गीत सुनना है।
1: हाँ जी, किस तरह का?
0: एक वो गीत है ना, एक अस्थी चली एक डोली उठी।
1: अच्छा अच्छा, देखिए हम है ना फरमाइशी गीत जो रात को खुशी के नगमे कार्यक्रम आते हैं ना 8:30 से 10 के बीच, उसमें आप सुन सकते हैं। हम क्या आशियाना में या तो राजस्थानी या गुजराती लोकगीत देते हैं, और जैसे कि भजन है, गजल है, इस तरह के अच्छे अच्छे मतलब देते हैं हम, फिल्मी गीत कम देते हैं, ठीक है ना? आप सोम से शुक्र तक जो चलते हैं खुशी के नगमे, उसमें आप फरमाइश कर सकते हैं, ठीक है? तो सविता जी, जैसे कि आप दोस्ती के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वास्तव में कहते हैं कि मैंने ये भी आपको बताया कि अच्छाई और बुराई इसके भी जुड़े हैं, कि मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अच्छे होते तो सामने वाले थोड़े गलत होते हैं, हमारे दोस्त हमारे सखी समझ लीजिए, या फिर वो अच्छी होती तो कुछ बुराइयां हमारे में होती है।
2: जी, बिल्कुल।
1: लेकिन कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि बुराई को देख करके किनारा कर ले, बुराई को बदल करके उसको अच्छाई के रूप में भी बता सकते हैं। जैसे कि कहा ना कि भाई मुसीबत के समय दोस्ती काम आते हैं, तो अगर हमारे अंदर कुछ बुराई है और हमारे दोस्त में हमारे सखी में ताकत होनी चाहिए कि हमारे बुराई को खत्म करे और अच्छाई हमारे अंदर लाए, है ना? ऐसे नहीं कि बुराई देख करके उससे किनारा कर दो तो फिर वो तो ज्यादा बुरा बन जाएगा।
2: देखिए, किनारा हम तब करेंगे जब उसे कई बार हमने समझाया और वो व्यक्ति नहीं समझ रहा और गलत विचार और साथ में हमें भी गलत ले जा रहा, तब आप किनारा कीजिए। लेकिन वो व्यक्ति यदि हमारी बात समझने को तैयार है, अच्छी बात है, हमने उसे बताई, समझ रहा, उसे आप को किनारा नहीं करना, ना उसे बार बार नीचा गिराना कि आप में ये कमी है, ये गलतियां हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, अभी आपने ऐसे कहा कि किनारा नहीं करना चाहिए बल्कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उषा जी, उसी बात में मुझे एक अच्छे दोस्त की याद आ गई, जो संसार में सभी का दोस्त है, खुदा दोस्त है।
1: बिल्कुल,
2: हम कितने खराब होते हैं, देखिए हमारे अंदर कितनी गंदगी है। मानव जाति में कहा गया कि बहुत ही मतलब तमो प्रधानता आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा अपना दोस्त हमको बनाता है और हमें भी खुदा को अपना दोस्त बनाना चाहिए। कहा है ना, खुदा दोस्त की कहानी भी मशहूर है उषा जी।
1: बिल्कुल।
2: तो देखिए, जब हम खुदा के साथ दोस्ती करेंगे, परमात्मा का साथ उसका संग करेंगे, परमात्मा संग जिसे कहा गया, या सत्संग जिसे कहिए, सत्य का संग करना, ईश्वर ही सत्य है। तो जब हम ईश्वर का सत्य का साथ करेंगे तो आप देखिए आपकी बुद्धि बहुत अच्छी बनती जाएगी, एकदम दिव्य बुद्धि हो जाएगी, कि आप एक हंस की भांति दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखेंगे, आपको निर्णय करने की शक्ति भी आपकी बढ़ेगी और आप बहुत आराम से समझ सकेंगे कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। और हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार भी हमारे मित्र हैं, हम चाहे उन्हें अपना मित्र बना लें, चाहे उन्हें अपना शत्रु बना लें। अगर हम मन, बुद्धि और संस्कार से कुछ गलत करते हैं तो वो हमारे दुश्मन भी हो जाएंगे, और उषा जी अगर हम अच्छा काम करते हैं तो आप देखेंगे वो हमारे सच्चे मित्र बन जाएंगे। उसी तरह खुदा को भी दोस्त बनाया हमने, अपने मन बुद्धि संस्कार को भी अपना मित्र बनाया, अपने कर्मों को भी अपना मित्र बनाएंगे तो इस संसार से हम हंसते हंसते आराम से निकल जाएंगे। और बाकी दुनिया में तो है ही दुनियादारी, दोस्ती है, पारिवारिक है, संबंधी है, सभी है ना। तो
1: कहते हैं सभी के साथ तोड़ निभाते हुए भी जो संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ते हैं और अपने मन बुद्धि को बदल करके उनको ही अपने मित्र बनाते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी मिलती है।
2: देखिए, मीरा जी के दोस्त भी श्री कृष्ण थे, गोपिकाओं के दोस्त भी श्री कृष्ण रहे हैं, है ना उषा जी?
1: जी,
2: तो ये सब चीजें जो हमने देखा संसार में, पढ़ा, सुना, जाना, तो उनसे हमें कुछ सीखना भी चाहिए और अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो सविता जी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई आपके साथ, आप भी मेरी बहुत ही अच्छी सखी है,
2: आप भी हैं।
1: समय पर आप पहुंच ही जाते हैं हेल्प
2: करने के लिए।
1: रेडियो
2: मधुबन हमारा अच्छा दोस्त है।
1: रेडियो मधुबन तो है ही, कहते हैं कि रेडियो मधुबन तो हमारा एक एहसास है, हमारा
2: धड़कन है, दिल की धड़कन
1: है। सही है, तो रेडियो मधुबन है तो हम सभी भी
2: आबू की धड़कन
1: जी। तो सविता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे रेडियो मधुबन के माध्यम से हमारे जो सभी श्रोता जुड़े हैं वो भी बहुत ही अच्छे दोस्त है, बहुत ही अच्छे मित्र है हमारे।
2: और हमेशा सुनते हैं, देखिए हमें फोन कॉल्स आते हैं, हमारे सभी प्रोग्राम में फोन कॉल्स में देखती हूं, सारे प्रोग्राम्स में आते हैं, तो इसका मतलब है वो रेडियो मधुबन के सच्चे दोस्त हैं और रेडियो मधुबन भी उनका सच्चा दोस्त है, दोनों एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते हैं।
1: जी जी,
2: ये सच्ची दोस्ती का प्रतीक है
1: जी, और बहुत ही अच्छा भी लगता है, भले कितनों को हमने देखा है, मिले हैं, कितनों को नहीं देखा है, नहीं मिले हैं, फिर भी उनकी शुभ भावनाएं हमारे तक पहुंचती है और हम भी उन्हें दिल से दुआएं देते हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: तो चलिए सविता जी आज की पहेली की तरफ बढ़े।
2: बिल्कुल, एक बार फिर से रिपीट कीजिए।
1: तो आज की पहेली इस तरह है, कागज पर मैं सरपट भागू, चल कर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली का जरूर जवाब दीजिएगा, हमारे नंबर तो जानते ही हैं 94-14-15-14-15 पर, आप चाहे तो SMS भी कर सकते हैं, फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, और सविता जी आप भी समय पर पधारे और अपनी प्यारी सी आवाज भी सुनाई और अच्छी सी बातें भी की हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ, इसके लिए आपको धन्यवाद। और एक सुना देते हैं गीत।
2: बिल्कुल,
1: सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए,
1: रेडियो मधुबन

0: हेलो, मेरा नाम दीपक है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो यह है आज की पहेली। आप SMS भी कर सकते हैं, फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9414151415 पर। और आइए अब आशियाना के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में, देखिए मैं आपको दो तरह के कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ। तो अभी बनाएंगे पपीते के कोफ्ते। बहुत ही कम सामग्री है और बहुत ही सरल तरीका है, फिर भी पेन और डायरी तो आप ले ही लीजिए। और सामग्री इस प्रकार है, बेसन 125 ग्राम, फिर आप दही लीजिए 125 ग्राम, और पपीता ले लीजिए 1 किलो, गरम मसाला, नमक, मीठा सोडा, हरा धनिया, घी, ये सब ले लीजिए आप 125 ग्राम। तो ये हो गई पपीते के कोफ्ते की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। बेसन 125 ग्राम, दही भी 125 ग्राम, 1 किलो लीजिए पपीता, और फिर आप लीजिए गरम मसाला, नमक, मीठा सोडा, हरा धनिया, घी, ये सब भी ले लीजिए 125 ग्राम, ठीक है। और बनाने का तरीका भी बहुत सरल है, साथ ही साथ आपको सिखा रही हूँ। पपीते की धुलाई करके इसको अच्छे से पोंछ लीजिए, फिर छील करके इसके टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। और इसको फिर उबालिए, उबाल करके इसको पीस लेना है। फिर पीसे पपीते में सारे मसाले, थोड़ा सा बेसन, ये सब मिला करके अच्छी तरह मिक्स करना है, और फिर लंबे और गोल आकार के बना करके आप तल लीजिए। तो ये हो गए पपीते के कोफ्ते, बहुत ही सरल तरीका है। और देखिए, हमारे घर पर जब गेस्ट आते हैं तो हमारी इच्छा होती है ना कि कुछ ऐसी चीज़ बना करके खिलाए कि गेस्ट भी खुश और हम भी खुश। तो चटपटी चीज़ें सभी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी आप बना करके पिरस सकते हैं, क्योंकि सामग्री भी ज़्यादा नहीं है, समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, और खाने वाले को भी अच्छा लगता है, एक नया टेस्ट आता है। जल्दी जल्दी में बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाना अच्छा है। तो मैं पुनः विधि को दोहरा रही हूँ। पपीते की पहले तो धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर इसके छिलके निकाल दीजिए, छिलके निकाल करके इसके टुकड़े कर लीजिए, और फिर उबालिए, उबाल करके इसकी पेस्ट बना लीजिए, ठीक है, पीस लीजिए। फिर पीसे हुए पपीते में ये सारे ही मसाले जो आपको बताया है ना, कि भाई नमक, मीठा सोडा, हरा धनिया, जो भी, सभी आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, और फिर थोड़ा सा बेसन भी मिला लीजिए। बेसन मिला करके अच्छा गोल तैयार करके फिर लंबे और गोल आकार के बना करके तल लीजिए। आंच को न तो स्लो रखना है ज्यादा और ना ही फास्ट, मीडियम रखिए, ठीक है। मध्यम आंच पर जो भी चीज हम बनाते हैं अच्छी बनती है, अंदर से कच्ची नहीं रहती है, अंदर से सिक जाती है। तो इस तरह पपीते के कोफ्ते बनाए जाते हैं। अब मैं आपको एक तरह के कोफ्ते और भी सिखाऊंगी, अभी किसके सिखाने वाली हूँ वो मैं आपको गीत सुनाने के बाद ही बताऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर से आज की पहली दोहरा रही हूँ। कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। आज की पहेली का जवाब दीजिएगा। आप चाहे तो SMS भी कर सकते हैं, हमारे नंबर है 9414151415 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू, मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो ये हुई आज की पहेली, आप जवाब दीजिएगा। नंबर है हमारे 94 14 15 14 15। और आइए, आप सभी आशियाने के किचन में हो, और आशियाने के किचन में हम गीत सुनने से पहले बना रहे थे पपीते के कोफ्ते, और आइए अब बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। लौकी जिसको गुजराती में दूधी भी कहते हैं और राजस्थान में आल भी कहते हैं, ठीक है, और घिया भी कहते हैं।

है। तो आइए, लौकी के कोफ्ते की सामग्री भी आप लिखेंगे। सामग्री इसमें भी बहुत कम है, लेकिन लिख लेना अच्छी बात है। तो आप लिखिएगा आधा किलो लौकी, फिर आप लीजिए 100 ग्राम बेसन, एक चम्मच पीसी हुई काली मिर्च ले लीजिए, और एक चुटकी जीरा लेना है आपको, नमक घी आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए। सामग्री पुनः दोहरा रही हूँ, आधा किलो ले लीजिए आप लौकी, फिर आप लीजिए बेसन 100 ग्राम, एक चम्मच पीसी हुई मिर्च लेनी है, ठीक है, लाल मिर्च, और चुटकी भर काली मिर्च पाउडर भी लेना है आपको। फिर आप लीजिए एक चुटकी जीरा, नमक स्वाद के अनुसार लीजिए, और घी आवश्यकता के अनुसार लीजिए। घी पसंद करते हैं तो घी, तेल पसंद करते हैं तो तेल। तो ये हो गए लौकी के कोफ्ते की सामग्री। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, लौकी की धुलाई करिए और स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर इसके छिलके उतार दीजिए और इसको कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करके उसे उबाल लीजिए, उबालने के बाद पानी निचोड़ दीजिए, और अब बेसन का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें मिर्च, जीरा, काली मिर्च और नमक डाल दीजिए, और बेसन को घोलने के बाद लौकी के छोटे छोटे गोले, लौकी जो हमने कद्दूकस किया है ना पानी निचोड़ के, इसके छोटे छोटे गोले बनाइए, और इन्हें बेसन के गोल में डुबो करके आप कढ़ाई में तल लीजिए। हल्के हल्के गुलाबी होने तक तलिए, बाद में आप जाले से पलटी भी दीजिए, और अच्छी तरह सिक जाने पर आप निकाल दीजिए। तो ये बन गए लौकी के कोफ्ते। बहुत सरल तरीका है, विधि मैं पुनः दोहरा रही हूँ। लौकी की धुलाई करिए, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके फिर इसके छिलके हटा लीजिए, और फिर इसको कद्दूकस करके उबाल लीजिए। उबालने के बाद पानी से निचोड़ दीजिए, अच्छी तरह दबाइए ताकि पानी निकल जाए, ठीक है। अब आप बेसन का गाढ़ा घोल तैयार करिए और इसमें मिर्च, जीरा, काली मिर्च और नमक डाल दीजिए। फिर बेसन को घोलने के बाद लौकी के छोटे छोटे गोले बना लीजिए, और इन्हें घोल में डुबोकर, अगर आप लौकी जो कद्दूकस की हुई है इसमें भी मसाला पसंद करते हैं डालना, तो थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दीजिए। फिर इसके घोले तैयार करिए, और अगर आपको नहीं पसंद है मसाला डालना तो बेसन में तो मसाले डाले ही है, तो डायरेक्ट भी आप तल सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा करिए। अगर टेस्ट को बढ़ाना है, थोड़ा तीखा पसंद है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, दोनों में ही मसाले डाल दीजिए, और नहीं तो फिर आप इस तरह सिंपल बना लीजिए। इनके घोले बनाइए छोटे छोटे, और इन्हें फिर आप बेसन में, जैसे आलू बड़े कैसे बनाते हैं इसी तरह बेसन का घोल करके इसमें डुबाना है। डुबो करके आपको तेल गरम करके तेल में छोड़ देना है। आंच तो आपको पता ही है मध्यम रखनी है, पहले आप तेज रखिए ताकि तेल या घी जिसमें भी आप तल रहे हैं अच्छी तरह गर्म हो जाए, उसके बाद आंच को मध्यम कर दीजिए, और इस तरह कोफ्ते तल लीजिए बस। तो ये बन गए लौकी के कोफ्ते। पपीते के कोफ्ते भी तैयार है। अब इसके साथ आप इमली की चटनी भी बना सकते हैं, टमाटर सॉस के साथ भी आप इस तरह के कोफ्ते खा सकते हैं। तो चलिए, चटनी तो आपको सिखाई मैंने पहले भी, और टमाटर सॉस भी आपको सिखाया है, तो जो भी बनाया हो ले लीजिए एक कटोरे में, और एक प्लेट में कोफ्ते रखिए। कटोरे को प्लेट में रख करके तुलसी पत्र भी रखिए, जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कपड़ा ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित, मेहमानों सहित आनंद लीजिएगा पपीते के कोफ्ते का और लौकी के कोफ्ते का, और साथ ही साथ लेंगे आनंद एक प्यारे से गीत का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए आपको सामान्य जानकारी जरूर देंगे, लेकिन आज की पहले दोहरा रही हूँ। कागज पर मैं सरपट भागू, चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली का जवाब दीजिए, हमारे नंबर है 9414151415 पर। और आइए, आज जो मैं आपको सामान्य जानकारी देने जा रही हूँ वो इस प्रकार है, बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत जो होती है ना, उसको आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। छोटी उम्र के बच्चे अक्सर पेट दर्द की शिकायत करते रहते हैं, है ना, इसे बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिए। हो सकता है उनके पेट में कीड़े हो जो उन्हें पीड़ा दे रहे हो। बच्चों के पेट में तीन तरह के कीड़े पाए जाते हैं, हुक वर्म, विप वर्म और राउंड वर्म। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इसका दुष्प्रभाव भी इस प्रकार होता है, देखिए, पेट में कीड़े होने पर बच्चों के अंदर खून की कमी, कुपोषण और मानसिक समस्याओं के बच्चे शिकार हो जाते हैं या हो सकते हैं। आंत में मौजूद ये कीड़े पोषक तत्वों को खा जाते हैं और बच्चों के तन को भोजन का फायदा नहीं मिल पाता है। शरीर चुस्त दुरुस्त न रहने से बच्चे का मानसिक विकास भी बाधित होता है और मानसिक एकाग्रता भी नहीं रह पाती, जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए

बच्चे को साफ सुथरी जगह पर ही बिठाए या फिर सुलाए। जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनको चप्पल या जूते पहनाए बिना बाहर नहीं जाने देना है। हुकवर्म नामक कीड़े का लार्वा पांव की त्वचा से शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए जूते चप्पल पहनाना जरूरी होता है। इसका इलाज भी इस तरह हो सकता है, पेट में कीड़े होने पर आप चिकित्सक को बताएं, 1-2 साल के बच्चे को एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की आधी टेबलेट पानी में घोलकर पिलाते हैं और 2 साल से ज्यादा के बच्चों को यही दवा पूरी टेबलेट चूसकर या फिर चबाकर खाने को देते हैं। फिर भी डॉक्टर को बता देना अच्छी बात है, अक्सर डॉक्टर इस तरह की दवाएं देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों के पेट में तकलीफ हो तो उनको जरूर आप डॉक्टर को बताएं और हल्के में बिल्कुल ना लेवे। ठीक है, तो ये हुई सामान्य जानकारी। अब सुना देते हैं आपको फिर से एक गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी।
1: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर के पुलिस को, डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं, तुलसी की चाय कैसे बनाई जाती है, तुलसी के किस किस तरह के फायदे होते हैं इस बारे में आपको बताया है, तो ध्यान दीजिएगा और तुलसी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिएगा अगर इस तरह की समस्या हो तो जो आपको बताई गई। और खुशनुमा जीवन की भी ढेर सारी बातें की सविता जी के साथ की मित्रता किस तरह की होनी चाहिए, और अच्छे अच्छे से रेसिपीज भी सिखाई है कोफ्ते जो आप जरूर बना करके खाइएगा। सामान्य जानकारी भी अच्छी तरह दी है कि किस तरह बच्चों के पेट में तकलीफ होती है तो उनको हल्के में नहीं लेना है, तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। और किचन टिप्स भी आज की इस प्रकार की है, आलू की टिक्की बनाते समय यदि आलू उबाल करके मसलने के बाद 2 चम्मच सूजी मिला दी जाए ना तो टिक्कियां फटती नहीं है और कुरकुरी भी बनती है। अब आज की पहेली इस प्रकार थी, कागज पर मैं सरपट भागू चलकर थोड़ा सा गिर जाऊं, गर्दन जरा काट दो मेरी तो उठकर फिर दौड़ लगाऊं। तो आज की पहेली बहुत ही सरल थी, हमारे जिन श्रोता बंधुओं ने फोन किया SMS किए हैं उनके नाम आपको सुना रही हूँ। सुरेश भाई दर्जी जिनका जवाब सही है, देखिए पेंसिल जवाब जिन्होंने दिया है सही है, फिर ताफिर हुसैन जी जोटाना से, ताफिर हुसैन जी सिंहपुर से इनका भी जवाब सही रहा, दुर्गा जी पंथवाड़ा से, राधा जी सातपुर से, भरत भाई खुशी आबू रोड से, दामोदर जी यादव इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सुभाष भाई माउंट आबू पीस पार्क से इनका जवाब भी सही है, थावरचंद जी करासिया केमल रोग से इनका जवाब पेन है वो गलत है, संजय भाई शिवकरण जी रिंकू तनिषा कृष्णा आप सभी का जवाब सही है, लेकिन आज के विनर रहे हैं ज्योति जी माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल से, सबसे पहले और जवाब आपने सही दिया है और उसको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी तालियां। तो ज्योति जी आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खमा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है, जीना इसी का नाम है। दोस्तों कहते हैं कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए अगर आप हर वक्त हर मोड़ पर सकारात्मक रहते हैं तो उसे कहेंगे वाह क्या जीवन जिया है इन्होंने। ऐसे ही कुछ अनुभवों के साथ आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आप है सुरेश कुमार जी। आप पिछले 3 दशकों से एक योगी जीवन जी रहे हैं, यानी कि ये नहीं है कि उन्होंने संसार को संन्यास कर दिया है, लेकिन अपनी भौतिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने जीवन को ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में शांतिवन में समर्पित करके अपनी योगी जीवन जी रहे हैं। इस योग की साधना से उन्होंने क्या प्राप्त किया है और उस उतार चढ़ाव में ये साधना उनके जीवन में कैसे मदद किया है, आइए आज हम जानते हैं। दोस्तों सुरेश कुमार जी, आप 1990 में ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आए हैं, मूलतः आप कर्नाटका कूर्ग डिस्ट्रिक्ट से हैं। आगे की कहानी उनके जुबानी हम सुनते हैं। स्वागत करते हैं सुरेश जी को। नमस्कार भाई जी।
5: नमस्कार
4: भाई जी। हम सबसे पहले आपकी जर्नी की ये कहानी जानना चाहेंगे कि आपकी जीवन की शुरुआत जो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में हुई है और आपका बचपन कैसा रहा, आपने क्या पढ़ाई किया और आपकी लौकिक परिवार, इसके बारे में आप संक्षिप्त में हमें बताएं।
5: देखिए हमारा लौकिक जन्म कर्नाटक से हुआ है। कूर्ग डिस्ट्रिक्ट पूरे दुनिया में फेमस है क्योंकि हमारा जो फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा उनका भी जन्मस्थल वही है, मेरा भी वही जन्मस्थल है। तो बचपन में मुझे थोड़ा सा जीवन में खेल कूद में इंटरेस्ट ज्यादा थे, तो एक अंदर से यही संकल्प था मुझे बड़े होने के बाद एक अच्छा काम करना है, थोड़ा एक सोशल सर्विस करना है। तो इसलिए मेरा प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल वगैरह कुर्ग में हुआ है। उसके बाद कुर्ग में पढ़ाई करते करते मुझे अंदर से यही हो रहा था, मुझे फौजी में भर्ती होकर के भारत का सेवा करना है, ऐसे अंदर से मुझे एक तड़पन थी।
4: तो बचपन से
5: ही
4: जी,
5: मेरा जो बैकग्राउंड परिवार है किसान परिवार में थे, तो इसलिए मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रोसेस नहीं करते थे, तो हर एक को जो भी बोलते थे मुझे फौजी में जाने के लिए प्रोसेस करते थे, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ जाता था। इसलिए मैंने सोचा पढ़ाई करना तो फौजी में जाने के बाद आगे पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद मैंने 10वीं पढ़ाई करने के बाद घर में नहीं रहा, घर से बाहर गए, बेंगलोर गए। बेंगलोर में 2 साल प्राइवेट जॉब करते रहा, उसमें बीच में 2 बार भी मैंने इंटरव्यू के लिए गए था, CRPF में गए थे, फिर BSF में गए थे, उसमें भी छोटे छोटे मिस्टेक कारण नहीं हुआ, फिजिकल मेडिकल सब हो जाता था, बाद में रिटर्न टेस्ट में फेल हो जाते थे। प्राइवेट जॉब में जब करने के गए वहाँ एक भाई मुझे संपर्क में आया, वो केरल का भाई था, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संपर्क में 2 महीने से आया हुआ था।
4: ये कौन सी साल की बात है जब
5: ये 1990 की बात है। फिर मुझे उन्होंने ये कहा आपको मैं एक जगह में लेके जाऊंगा, वहाँ जाएंगे तो आप हमेशा जीवन में खुशी में रहेंगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और कभी टेंशन नहीं रहेगा जीवन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बात सुन करके, जीवन में और क्या चाहिए, पहले भी वही संकल्प था। तो मैंने सोचा कहाँ जाने मैं आऊँगा, ऐसे बोला। तो मैं कभी जाने से पहले ब्रह्म कुमारी का नाम भी नहीं सुना था, जब ये भाई ने मुझे लेके गया ब्रह्म कुमारी सेंटर पे, तो वहाँ जाते ही मैंने दीदी को देखा, सफ़ेद वस्त्रधर दीदी को देखा, देखते मुझे ऐसा लगा ये अपना ही है, अपनापन महसूस हुई। मैंने सोचा पहले जब बचपन में थे मैंने क्रिश्चियंस को नंस को अगर देखते थे, तो मैंने सोचा क्रिश्चियंस में ऐसे नंस हो सकते हैं, हमारा हिंदू धर्म में क्यों नहीं हो सकते हैं, मेरे अंदर से ऐसे संकल्प चल रहा था। फिर वही मैंने सफ़ेद वस्त्रधारी को ब्रह्म कुमारी सेंटर में आके देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनापन महसूस हुई। उसके बाद मुझे पहले लेसन ज्ञान के बारे में हमें बताया है।
4: जब आपको ये राजयोग मेडिटेशन परमात्मा का ज्ञान जो ब्रह्म कुमारी से मिला है, उसमें कौन सी बात ऐसी थी जिससे आपको ये निश्चय हुआ कि यही सत्य ज्ञान है, यही चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा था?
5: तो जब बचपन में मुझे भक्ति में कोई इतना रस नहीं थी, मैंने अंदर से सोच रहा था कोई शक्ति है दुनिया में, क्योंकि इसलिए तो दुनिया में लोग भक्ति मार्ग में मंदिर भटकते रहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो कुछ मन्नत मानते हैं, तो कुछ कईयों को सिद्ध हो जाता है, तो कुछ शक्ति होगा। और भगवान का नाम तो हमने भक्ति में तो सुना ही है, भगवान एक ही है, ये तो ना पता था, अनेक भगवान तो नहीं है, भगवान तो एक ही होंगे। भगवान का नाम बोलते हम ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन एक तरफ तो दुनिया में मंदिर भी भटकते रहते हैं, लेकिन कौन सी भगवान है, सच्चा है, किसको हम पूजा करना है, अंदर से वो एक तड़फना थी, एक खोज थी, कोई सच कोई होंगे, ऐसा सोच करके। फिर मैंने जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो मुझे कोर्स के लिए जो बेटा आया था, पहले खुद को परिचय मिले, उसमें मुझे संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, आत्मा ये ब्रकुटी के बीच में बैठ करके अंकों द्वारा देखेगा, मुख द्वारा बात करेगा, कानों द्वारा सुनेगा, हाथों द्वारा काम करेगा, पैरों द्वारा चलेगा, ये एक चैतन्य शक्ति है, वो आप है। मैंने सोचा ये तो बहुत इतना अच्छा ईजी ज्ञान है, हमें स्कूल कॉलेज में कोई बताया नहीं, टीचर्स लोग ने तो हम शरीर के बारे में तो सारा ज्ञान बता देते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बता देते, लेकिन शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है इसके बारे में मुझे पहले बार मैंने सुना था। मुझे पहले सुनते ही मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी।
4: तो ये आपने कोर्स भी किया है और उस ज्ञान का अभ्यास करने लगे हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे अभी मेरा जीवन समर्पित करना है, और वो क्या मोड़ था, आप अपनी लाइफ को क्यों इस परमात्मा के कार्य के लिए समर्पित किए हैं?
5: जैसे बचपन मेरे को जो आर्मी में जाने का जो अंदर से दो तड़पन थी नहीं, तो उसका मुझे जैसे वो हम सोच रहे थे भारत देश का सेवा करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, मुझे लोग के घर में नहीं रहना है, घर से बाहर जा करके सोशल सर्विस करना है, देश का सेवा करना है, ऐसे अंदर से दो संकल्प है ना, उसके अनुसार मुझे एक समर्पण भाव अंदर से थी। तो मैंने सोचा आर्मी में जाएंगे तो भी एक समर्पण हो जाएंगे, देश के लिए समर्पित हो जाएंगे, ऐसे मुझे अंदर संकल्प था। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मेरे को अंदर से ऐसा लगा अभी तो हम तो देश का सेवा कर रहे थे, तो मुझे ये पता चला वो ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरा दुनिया में है, केवल भारत देश में नहीं है, क्यों दुनिया में 140 कंट्री में है। तो इसलिए हम लोग केवल भारत का सेवा नहीं करना है, पूरे विश्व का सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जिस्मानी मिलिट्री वाले नहीं है अभी, हम लोग अभी रूहानी मिलिट्री वाले। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा अभी इसमें समर्पित होकर के इस ज्ञान में आगे बढ़ करके विश्व का सेवा करेंगे, ऐसे अंदर से मुझे दृढ़ संकल्प किया था मैंने।
4: जी, ये जो आप 1995 से ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं, तो अभी आप क्या सेवाएं करते हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं?
5: 90 से 95 तक हमने जो 5 साल के अंदर माउंट आबू में 3 बार विजिट दिया थे। एक बार क्या हुआ, 1994 में हमारा मैंगलोर सेंटर विजिट देने के लिए आए थे, तो मृत्युंजय भाई वरिष्ठ भाई, उन्होंने मुझे देख करके ये कहा आपको कोई बंधन नहीं है ना, आप कुमार है ना, आप माउंट आबू आ सकते हैं, तो हमारे साथ तो आओ जाओ, आपको मैं सेवा दूंगा, ऐसे मुझे कहा था। उस समय तुरंत मेरे को अंदर से फ्लैश हुआ, जो मेरे को संकल्प था मैंने जो समर्पित होने के लिए, इसलिए भगवान ने इनको भेजा होगा, अभी मुझे माउंट आबू जा करके सेवा में उपस्थित होना है। अंदर से मेरे को एक प्रेरणा आ गई, तो इसलिए मैंने तुरंत 94 में वहां से माउंट आबू आ गया। माउंट आबू आने के बाद मुझे मृत्युंजय भाई साहब ने एजुकेशन विंग में उनके साथ मुझे सेवा दिया। मैंने सोचा माउंट आबू जाए तो कुछ भी सेवा मैं कर सकता हूँ, मेरे को ऐसे कोई सिलेक्टेड सेवा नहीं है, भगवान की सेवा है, कुछ भी करो अमरली उसमें भागिया बन जाता है। आते मुझे उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए सेवा दिया उसी समय 1994 में। उसके बाद में उस समय तो माउंट आबू में तो हमारा जो आश्रम है बहुत गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम थे, तो उस समय भाई साहब के पास एक फिएट कार था। उस समय जो माउंट आबू जो हमारा ज्ञान सरोवर कैंपस है उसमें वैरायटी विंग्स का हमारा कॉन्फ्रेंस बहुत होता था, हर हफ्ते में दो कॉन्फ्रेंस होता था। उस समय MLA MPs गवर्नर्स मिनिस्टर को इन्विटेशन देने के लिए मृत्युंजय भाई निमित्त बनते थे, उनको मिलने के लिए उनको इन्विटेशन देने के लिए जयपुर जाना होता था, दिल्ली जाना होता था। उस समय फ्लाइट का व्यवस्था बहुत कम थी और ट्रेन भी मीटर गेज थी, ट्रेन की फैसिलिटी नहीं था, दिल्ली जयपुर जाना हो तो हम क्या करते थे बाई रोड चले जाते थे। उस समय अच्छा गाड़ी भी नहीं होते थे, फिएट कार थे, एम्बेसडर होते थे, उसी कार लेकर के हम लोग दिल्ली जयपुर जा करके मिनिस्टर्स को MLA MPs को गवर्नर को निमंत्रण देके आते थे। तो मैंने पहला बार माउंट आबू आके यहाँ गाड़ी चलाना शुरू किया।
4: जी, तो इस यात्रा में आपने क्या क्या सीखा है? जैसे एक आध्यात्मिक जीवन के लिए आप आए हैं, स्थूल कार्य तो हर कोई करना ही है, करते ही है, लेकिन आपकी स्व उन्नति में आपने ऐसे क्या चीजें सीखी है, क्या बदलाव आप देखते हैं इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के कारण?
5: जैसे मेरा यही लक्ष्य था, जब इस मार्ग में चलो तो मैं इस मार्ग के जो लक्ष्य है उसको पकड़ के चलना है। कार्य तो हर कोई व्यक्ति को जब तक जीना है तो तब तक कुछ न कुछ शरीर के अंदर काम करना ही है, इसलिए वो कर्म से हम रह नहीं सकते बिना कर्म से। तो इसलिए वो अंदर से सोच रहे तो कुछ भी कर्म करे लेकिन हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाए, उस कर्म के अंदर हमारा योग रहे, तो ऐसे अंदर से एक संकल्प थी। इसलिए मैंने क्या किया, जैसे ईश्वर विश्वविद्यालय का नियम है जो कर्म योग करने का, हर कोई कर्म करते समय भगवान को याद में करना है, मुझे ये पहले कोर्स में बताया हुआ था, वो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। इसलिए मैंने परमात्मा के साथ याद में रह करके कर्म करने के लिए मैंने अंदर से स्टार्टिंग से कोशिश किया था। इसलिए हमें इस ईश्वर विश्वविद्यालय में मुझे ये पता चला सुबह से भी अमृत वेला होता है, तो अमृत वेला भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए बहुत सहज समय होता है, ईजिली कनेक्शन मिल जाती है। इसलिए मैंने जब से ये 7 डेज कोर्स हुआ तब से मैंने सुबह सुबह 4 बजे से 5 बजे तक जो अमृत वेला का मेडिटेशन होता है ना, उस मेडिटेशन को मैंने पक्का करा दिया था स्टार्टिंग से। तो वो मुझे बहुत अंदर से बल मिल गई, और जो भगवान की जो महावाक्य है जो उसको मुरली कहते हैं उसमें भी मैंने पक्का कर लिया था, कुछ भी हो जाए सुबह अमृत वेला उठना है और मुरली क्लास सुनना है और सारे दिन में जो भी सेवा मिले वो भगवान के याद में करना है। ये अंदर से मैंने दृढ़ संकल्प किया था, कहीं भी रहे, भले माउंट आबू में रहे, बाहर जाए, तो गाड़ी लेके जावे, तो भी मुझे भगवान को याद में सेवा करना है। अंदर से एक संकल्प करके मैंने सेवा कर रहा था, ये अंदर से मुझे बहुत बल मिल गई और एकाग्रता भी हमारा अंदर बढ़ते गया। इसलिए कोई भी दिन में जो भी हमारा विघ्न रूप बनते हैं वो भी विघ्न से मुक्त होते थे। इसलिए मुझे ये रहस्यदार राजयोग जो है ना, ये अंदर से बहुत एक अच्छा लगा मेरे को। इसमें एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, तो इसके कारण से मैंने कोई भी कर्म करे भगवान की याद में करने के लिए शुरू करते थे स्टार्टिंग से। जब से माउंट आबू आया तब से मैंने इसको चालू रखा था, जैसे सुबह अमृत वेले उठना और मुरली क्लास सुनना है और सारे दिन जो भी हमें सेवा मिले उसको हम एक्यूरेट हो करके भगवान की याद में करना। इसमें अंदर हमें दिन में भले आप 500-600 किलोमीटर भी गाड़ी चलाए उसमें हमें थकान महसूस नहीं होता है, उसमें एनर्जी मिला हुआ रहता है, क्योंकि हम हर कर्म को भगवान को अर्पण करके हम कार्य शुरू करते हैं, तो हमें वो जर्नी पता नहीं चलता है, बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ऐसे लगता है हम घर में बैठे बैठे हैं, बैठे हुए ऐसे फीलिंग होता है।
4: अगर आप अपनी पूरी जीवन को समराइज करते हुए अगर एक शब्द में आप कहना चाहते हैं, आप अपने जीवन को क्या कहेंगे?
5: क्योंकि जो समर्पित जीवन है ना, ये हमारा जीवन एक अच्छा जीवन जीने का कला हमें यहाँ मिल गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस आध्यात्मिक ज्ञान को पकड़ के चलने से जीवन एक ऊंची स्थिति में जा सकते हैं। जीवन में कोई भी प्रकार का टेंशन में आने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमें एक दिशा मिल गया है ना, एक लक्ष्य मिलेगा, जीवन का लक्ष्य मिल गए, तो वो लक्ष्य के आधार से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान को पकड़ के आगे चलने से हमारा जीवन सफल होगा। इसमें कोई भी प्रकार का हमारे लिए नुकसान नहीं है, हमारा जीवन एकदम सुंदर जीवन होगा, एक दैवी गुण अंदर से बढ़ते जाएंगे, हमारा इस जो जन्म है वो हमारा जन्म सफल हो जाएगा।
4: बहुत सुंदर भाई जी, आपने इतनी सुंदर जर्नी को संक्षिप्त में बताया। भाई जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी सेवा मिले तो आप करने के लिए तैयार थे, और आपको यहाँ पे ड्राइविंग करने की जो सेवा मिली है, और जैसे आपने कहा कि कितना भी थकावट होता है, योग मतलब परमात्मा की याद में आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप कितना भी लंबा सफ़र है आपको कोई मुश्किल नहीं लगता। लेकिन 3 दशकों की आपकी इस यात्रा में कभी कुछ तो ऐसी बातें हुई होगी जो, क्योंकि सड़क पे जब चलते हैं हमेशा हम गलत है जरूरी नहीं है, हम जब सही भी जा रहे होते सामने से कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते हैं, तो कभी आपको ऐसी कोई परिस्थिति आई सामने और आपने इस आध्यात्मिक पढ़ाई या फिर इससे जो आपने सीखा है उससे आपने इस चीज को पार किया है?
5: तो एक अच्छी घटना है मेरे से हुई थी
4: जी,
5: तो आपको मैं सामने करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, अहमदाबाद से मैं अबरोड आ रहे थे, तो वहाँ से 3 घंटा लगता है अहमदाबाद से अबरोड आने के लिए। बीच में क्या हुआ, रात को हम ड्राइविंग कर रहे थे, तो भाई साहब भी हमारे बाजू में बैठे थे, तो रात को करीब 11:30 बजे थी, तो उसी दिन कोई ज़रूरी काम थी तो हमें वहाँ रुकना ना पड़ा, इसलिए रात को हम जर्नी करके आ रहे थे। तो क्या हुआ, 1.5-1.5 घंटा जर्नी हो चुका था, उसके बाद क्या हुआ, हमारा हाईवे पे गाड़ी में बहुत कम गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या हुआ हम आगे चल रहे थे तो पीछे से एक कार वाले बहुत देर से हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, तो हमने सोचा इनको आगे जाने दो बोल करके उनको मैंने साइड दिया था, फिर भी वो थोड़ा देर आगे जा करके फिर वापस गाड़ी स्लो करके कभी राइट में कभी लेफ्ट में आ रहे थे, कम से कम 5 किलोमीटर तक ऐसे आ रहा था। तो उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर आया रोड पे, तो सिद्धपुर के पास में ही, तो मैंने गाड़ी को एकदम धीमे किया, तब तक ये गाड़ी पीछे जो आ रहे थे तो अचानक मेरा बाजू में आया, बाजू में आया तो मेरे को गाड़ी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे, तो मैंने सोचा ये कोई पहचाने वाला तो है नहीं, कोई अनजान व्यक्ति है, अंदर तो 4 लोग बैठे हुए थे, मैंने ज़बरदस्ती गाड़ी को रोक, मैं सोचा उनका कुछ रास्ता भूल गया होगा, कुछ रास्ता पूछने के लिए आ रहा होगा, ऐसे सोच करके मैंने गाड़ी को थोड़ा साइड में स्टॉप किया। तो उस समय भाई साहब बाजू में बैठे हुए थे, लेकिन भाई साहब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, 5 मीटर दूर में वो कार स्टॉप किया था। फिर ड्राइवर उतर के मेरे पास आकर के पूछता है, आपके वजह से पीछे एक कार नीचे खड्डे में गया, अब गाड़ी के क्यों नहीं रोका, हम कब से आपको रोकने के लिए बोल रहे हैं, उसने मुझे कहा। ऐसे बोलते समय मुझे लगा ये तो ऐसे कुछ घटना हुआ ही नहीं है, हमारा गाड़ी को ऐसे नीचे खड्डे में गाड़ी कैसे जाएगा, हमारी गाड़ी टच भी नहीं हुआ, ऐसे इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, कुछ उनको हमारे से कुछ चोरी करना होगा, इसलिए उन्होंने ऐसे हमको बहानाबाजी कर रहे, सोच करके मैं अंदर से संकल्प आया। फिर मैंने ग्लास आधा नीचे उतरा हुआ था, फिर ऐसे उन्होंने कहने के बाद उन्होंने मुझे क्या किया, अब गाड़ी से उतरो, अब ज़्यादा बात नहीं करो, अब मैं शूट करूँगा बोल करके उनके जोब में पिस्तौल थे, वो पिस्तौल रख करके मेरा कान के पास ऐसे टिका दिया था। उस समय मैंने जो ड्राइविंग करते थे तो मैं मेडिटेशन अवस्था में थे, अंदर से कोई कन्फ्यूज नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं थी, मेरा अंदर से एकाग्रता भी बहुत अच्छा था, समय मेडिटेशन करके हम अहमदाबाद से निकले हुए थे, तो दिन में रेस्ट भी मैं अच्छा किया हुआ था, कोई थकान भी नहीं थी, मैं एक्टिव होके गाड़ी चला रहे थे। उसी समय फिर इन्होंने ऐसा मेरा गाड़ी को रोका था, मेरे को पिस्तौल निकाल के मेरे कान के पास रखा। उसके बाद फिर मैंने भी डरा नहीं थी, मैं मेडिटेशन अवस्था में था, तो ये तो हमारा जैसे भाई है, ये क्या कर सकता है, हमारे पास ऐसा कुछ हुआ नहीं है घटना, या ऐसे डराने के लिए ऐसे दिखाएगा सोच करके मैंने अंदर से कॉन्फिडेंस हो करके बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर उसमें अंदर चार लोग थे, तो एक एक करके मेरे को गाड़ी से बाहर उतरने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो मैंने अंदर से संकल्प आया गाड़ी से उतरेंगे कुछ कर डालेंगे, इसलिए मुझे गाड़ी से कुछ भी हो जाए गाड़ी से हमें उतरना नहीं है, क्योंकि बाजू में भाई साहब बैठे थे, ये कुछ करके मुझे कुछ करके फिर गाड़ी में बैठ के गाड़ी ले चले जाएंगे, भाई साहब भी कुछ कर सकते हैं तो बड़ा दुर्घटना हो जाएगी, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे गाड़ी से उतरना नहीं है। अंदर से मेरे को भगवान का टचिंग हो रहा था, लेकिन मेरा लाइन क्लियर थी, कोई डर नहीं था, अंदर से मैंने उनको देख डरा भी नहीं था, मैं साक्षी होकर अपना भाई का समझ करके उनको देखा हुआ था। उस समय बाद में तीसरा व्यक्ति आकर के बोलते है अब गाड़ी से उतरो नहीं तो गाड़ी बंद करो, बोल करके गाड़ी बंद करके गाड़ी की चाबी अपने पास ले लिया। गाड़ी के अंदर हम दोनों बैठे हुए थे, गाड़ी बंद हो गई, फिर भाई साहब की नींद खुल गई, तब तक भाई नींद खुल गया तो जब इंजन बंद हो गए, तो इंजन बंद होने के बाद फिर बाद में वो लोगों ने भाई साहब को देख लिया, गाड़ी की चाबी तो ऑलरेडी ले चुके थे, हम गाड़ी मूव नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या किया, वो लोगों ने हमारा गाड़ी के पीछे जा करके आसमानी को और फायरिंग किया, तो उस समय भाई साहब उनको देखा तो भाई साहब पता चला ये लोग ऑलरेडी चोर लोग है, ये कुछ लूटने के लिए आए हैं, हमें किसी की हेल्प लेना पड़ेगा, बोल करके भाई साहब ने क्या किया रोड पे उतर डोर ओपन करके रोड पे आया। रोड पे आते समय पीछे से एक ट्रक वाला आए, उसको देख के भाई साहब उसको हेल्प लेने के लिए उनको रोकने के लिए बोला था। उस समय ट्रक वाला नजदीक आया, आकर के हमें भी देखा, और वो लोग पीछे गाड़ी के पीछे तीन लोग थे, तो ट्रक वाले को समझ में नहीं आया ये कोई आरटीओ वाले चेक करने के लिए आया होगा सोच करके ये लोग सीधा चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद फिर बाद में भाई साहब क्या किया पीछे मोड़ के देखा तो एक जीप वाले आए थे, वो हमारे गाड़ी के सामने खड़ा किया था। उस समय फिर भाई साहब इधर से उनके पास जाके बता रहे थे ऐसे ऐसे हम लोग अहमदाबाद से आ रहे थे, हमारे सामने ये लोग गाड़ी रोक करके आसमानी का और फायरिंग किया, शायद कुछ लूटने के लिए आ रहे होगा सोच करके समाचार बता रहे थे। मैंने अंदर से गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, सीट बेल्ट पहना हुआ था। उसके बाद ये लोगों ने क्या किया इधर से मेरे को फायरिंग करके अपना गाड़ी बैठ कर चले गया। जैसे फायरिंग हुआ तो मेरा कान के पास ऐसे लगता था कोई इधर से कोई पत्थर फेंका, ऐसे फीलिंग हुआ, तो फायरिंग आवाज भी सुनाई दिया था, तो यहाँ लगा तो मेरे को लगा तो उन्होंने फायरिंग किया ऐसा लग रहा था। बाद में जैसे हाथ पकड़ के ऐसे देखा कान के पास धीरे धीरे कोन आना शुरू हो गई थी। फिर बाद में जब जीप के साथ जो भाई साहब बात कर रहे थे वो फिर बाद में भाई साहब में जो मोड़ के देखा तो मैंने हाथ पकड़ के मेरा सिर नीचे ऐसे होकर के मैं बैठा हुआ था। उसी समय फिर जीप वाला भी पूछा ये लोग जब गए थे ये लोग फायरिंग किया ना, बोलकर मैं ढूंढ करके पूछ करके आता हूँ, बोलकर गए वापिस नहीं आया जीप वाला। उसके बाद मुझे लगा तो इंजर हो गया, अभी भाई साहब को लगा अभी खून निकल रहा है, अभी ऑफिस हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना हो तो कहाँ जाना है क्या है कुछ पता नहीं है भाई साहब को। मेरे को जैसे खून आ रहा था कान के पास, जैसे मुंह में जैसे पानी भर हुआ था फीलिंग हो रहा था। जैसे भाई साहब नजदीक आया, भाई साहब को मैंने चलो अभी हॉस्पिटल जाना तो एम्बुलेंस नंबर बताना पड़ेगा, पुलिस का नंबर बताना पड़ेगा, बोल करके मैंने भाई साहब को पुलिस को नंबर बताया, 100 नंबर में करो पुलिस आ जाएंगे, और 108 नंबर करो तो एम्बुलेंस आ जाएंगे। ऐसे मैंने भाई साहब बोलने के लिए जैसे मुंह ओपन किया तो मुंह के अंदर जो पानी समझा था वो खून भरा हुआ था मुंह के अंदर, वो क्या हुआ जैसे स्प्रे हो गया पूरा ऐसे सामने से। फिर भाई साहब उसको देखते बहुत घबराहट हो गया, भाई साहब को ये क्या हो गया अभी तो। फिर मैंने अंदर से संकल्प किया अभी कुछ ही वजह मुझे फायरिंग तो हुआ है, तो आत्मा तो विनाश नहीं होगा, शरीर तो फायरिंग किया तो शरीर को लगा है ना, लेकिन आत्मा जरा हमारा अविनाशी है, मेरे शरीर के अंदर पार्ट बजाने वाले आत्मा है, तो आत्मा इस शरीर छोड़ेंगे तो अगले जन्म में अच्छा पार्ट बजाएंगे। अंदर से मेरे को ये संकल्प तोड़ करके अंदर से कोई घबराहट नहीं थी, मैं आराम से शांति से बैठा हुआ था। फिर बाद में भाई साहब ने एम्बुलेंस को और को हॉस्पिटल को फोन करने के लिए बोला, पुलिस को फोन किया तो 20 मिनट में एम्बुलेंस भी आ गया और पुलिस भी आ गई। तब तक मैंने अंदर से मेरा पूरा बेहोश नहीं हुआ था लेकिन खून नाक से और मुख से निकल रही थी, तो उसको फिर मैंने स्टेबल करके माइंड स्टेबल करके अंदर से कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं आया और एकग्रत होकर के मैं यौगिक तो होकर के भगवान के याद में भगवान के साथ मैं बिंदु बन करके भगवान के साथ में बैठने के लिए अभ्यास किया। उतना अनुभव करते 20 मिनट हुआ, तब तक एम्बुलेंस भी आ गए पुलिस भी आ गए। तो उसके बाद फिर मुझे एम्बुलेंस में बिठा करके फिर नजदीक वाला हॉस्पिटल में लेके गए, फिर वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने बोला आपको ये ज्यादा इंजर हो गया होगा, इसलिए हमारे पास स्कैन सिस्टम नहीं है, आपको वापिस मेहसाणा में जाना है, वहाँ जाएंगे तो आपका इलाज हो सकता है, ऐसे बोला। तब तक पुलिस भी आए थे, एम्बुलेंस भी साथ में, एम्बुलेंस में बिठा करके मुझे लेके गए थे। गाड़ी तो रोड पे खड़ी थी, गाड़ी खोलना पड़ा था, चाबी नहीं था हमारे पास। फिर मैंने भाई साहब को ये भी बोला था गाड़ी हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, चाबी हमारे पास नहीं है, वो लोग वापिस आ करके गाड़ी भी ले जा सकता है, इसलिए पुलिस को बोलना गाड़ी के पास रुकने के लिए। मैंने उतना भी कॉन्शियस मेरा अच्छे थी, क्योंकि मैं यौगिक तो कह रहा है ना, अंदर से कन्विंस नहीं थी, कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और बेहोशी भी नहीं हुआ था। मैं साक्षी होकर के मेरा खून निकलते हुए बॉडी को देख रहा था साक्षी होकर के। उसी समय फिर बाद में भाई साहब पुलिस को गाड़ी के पास रोकने के लिए बोला, फिर एक पुलिस गाड़ी के पास रुके थे। तब तक भाई साहब अहमदाबाद में हमारे हेडक्वार्टर में फोन करके वहाँ नजदीक वाला सेंटर वाले को फोन करने के लिए बोला, वहाँ से दो भाई लोग भी टूर लेके आए थे, और एक भाई और एक पुलिस गाड़ी के पास रुके थे, और एक भाई हमारा साथ एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में आए थे। तो फिर बाद में उस हॉस्पिटल में वहाँ से कुछ ने एक्शन नहीं लिया डॉक्टर ने, बाद में डॉक्टर बोला अभी वापस मेहसाणा में जाना है, वहाँ आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर पीछे से पुलिस वैन भी आए थे, हम भी एम्बुलेंस में बैठ करके मेहसाणा में गए, पेशेंट में जाते वो रोटरी हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ जाने के बाद में पुलिस बोला ये तो रोटरी हॉस्पिटल है, यहाँ कोई आपका इलाज हो नहीं सकता, यहाँ स्कैनिंग सिस्टम नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करो, यह इमरजेंसी केस है, इसलिए आप अहमदाबाद ले चलो। फिर वहाँ से फिर अहमदाबाद एक घंटा जर्नी है मेहसाणा से अहमदाबाद जाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल में, फिर वहाँ हम गए थे। वहाँ जाते समय फिर बाद में लग रहा था मुझे अब एक घंटा जर्नी में कुछ भी हो सकता है, शरीर भी छूट सकता है, इसलिए मुझे भगवान के याद में रहना है, अंतमति स्वगति ऐसा सोच करके भगवान के याद में एक हाथ तो मेरा कान के पास ही, मेरा अंदर ऐसा लगता है कान के अंदर खून जा रहा है, उसको बंद करके मैं रोकूं बोल करके एक हाथ में ऐसे बंद करके मैं बैठा हुआ था। फिर बाद में भाई साहब एम्बुलेंस में साथ में बैठे हुए थे, सब जगह में फोन करके मैसेज वगैरह बता दिया था ऐसे ऐसे हुआ है बोल करके। फिर बाद में अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हुआ, इमरजेंसी इलाज हुआ, अच्छा हुआ, मेरा को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ, और लास्ट तक भी बेहोश नहीं हुआ था, मैं फुल कॉन्शियस में हूँ, लेकिन सारा हिस्ट्री मुझे पता है क्या क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, कितना बजे हुआ, मेरा अंदर साथ में कितना लोग थे, सब मुझे सब याद रहता, साथ में याद रहा। फिर बाद में 8 दिन का हॉस्पिटल का सफर हुआ, एक ऑपरेशन अच्छी हुई। वो जी ड्रामा सर क्या हुआ, जो कान के पास जो बुलेट जो घुसी थी वो मुँह के अंदर आकर के लेफ्ट साइड में गले में फंसा हुआ था, तो मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद स्कैन करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया आपको यहाँ देखो गोली फंसा हुआ है, क्योंकि मुझे तब तक कुछ पता नहीं था, एम्बुलेंस में मैं सोते ही जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था, बाद में हल्का सा दर्द जैसा फीलिंग हो रही थी। फिर बाद में डॉक्टर बताने के बाद फिर बाद में स्कैन पता चला आपको गोली यहाँ फंसी हुई है, अभी उसको निकालना है। फिर बाद में स्कैनिंग पूरा होने के बाद फिर बाद में डॉक्टर ने बताया अभी आपका ब्लड खून बहुत लॉस हो चुके हैं, कम से कम इतना 3 घंटा जर्नी में कम से कम 3 लीटर खून निकल गया मेरा बॉडी से, तो मेरे को बॉडी से गाड़ी से एम्बुलेंस नीचे उतरने के लिए एनर्जी नहीं थी, तो मेरे को हाथ पकड़ के फिर एम्बुलेंस में इसमें स्ट्रेचर में बिठा करके ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। तो पहले स्कैनिंग वगैरह किया था, उसके बाद मेरे को स्टेबल करके ICU में भर्ती करके, फिर उस समय डॉक्टर भी आए थे, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी आए थे, फिर नेक्स्ट डे तक के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि खून वगैरह चढ़ाना है, इसलिए आपको कल ऑपरेशन होगा बोल करके। फिर बाद में ब्लड अगर कोनों को चढ़ा दिया था, नेक्स्ट डे 11 बजे से 1 बजे तक ऑपरेशन हुआ, उसमें टेबल आ गई। फिर बाद में वापस 4 दिन ICU में थे और 4 दिन वार्ड में आ गया, 8 दिन में डिस्चार्ज हो गई, और धीरे धीरे रिकवरी होते गए। लेकिन मेरा जैसे गोली कान के पास जो घुसी थी ना, यहाँ भी ऑपरेशन कर मतलब जो हड्डियाँ है वो थोड़ा डैमेज हो गई थी, उसको भी ज्वाइंट करके ये स्टिच किया था। अब लेफ्ट साइड में जो गले के पास थी जो बुलेट थी उसको निकालने के लिए ओपन करना पड़ा, उसको ओपन करके वहाँ भी स्टिच करके रखा था, इसके कारण इसको हीलिंग के लिए मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने तक मुंह बंद करके रखा था। 1.5 महीने ओनली जूस पे मैं रहा और जूस पीते रहा और मेरा हीलिंग अच्छा हो गया। फिर बाद में जूस पीने के साथ साथ में टैबलेट भी देते थे, वो टैबलेट को खाना पड़ता था, लेकिन मुझे मुँह तो ओपन नहीं करना है तो जूस के साथ टैबलेट को क्रश करके देते थे, मैं वो भी भगवान के याद में पीता था तो मेरे को इजीली अंदर चले जाती थी, तो इसलिए मेरा हीलिंग जल्दी हो गया। सब कुछ जो भी हो इसका सार यही है, एक तो प्लस पॉइंट है मैं गाड़ी से उतरा नहीं है, वो दुर्घटना बड़ा दुर्घटना से बच गई, और दूसरा मेरा हीलिंग के कारण यही है, मैं भगवान के याद से ये टैबलेट को मैं पीता था इसलिए मेरे को हीलिंग जल्दी हो गई, मेरे को इसके अंदर का कोई तकलीफ ही मेरे को महसूस नहीं हुई, कोई दर्द का महसूस नहीं हुआ। हॉस्पिटल में मैं ऐसे 8 दिन रहा, मैं ऐसा लगता है मैं इस शरीर से नहीं रहा हूँ, मैं वतन में उड़ रहा हूँ, ऐसे जैसे फरिश्ते जैसे उड़ रहा हूँ। जो भी हमारा सेवा करने के लिए नर्सेस लोग आते थे, ऐसा लगता था मेरे को ये फरिश्ते लोग मेरा सेवा करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे भगवान ने मुझे भेजा है, ऐसे अंदर से मेरा संकल्प होता था। बाकी सबको भगवान का संदेश सबको मैंने बांटा था हॉस्पिटल में, सब लोग ऑर्डर कर रहे थे ये तो पेशेंट है, ये तो गिफ्ट बांट रहे हैं, ऐसे उनको अंदर से ये होता था। मैंने सबको ये कहता था भगवान ने देखो, मैं भगवान में याद में था इसलिए भगवान ने मुझे बचाया है, मेडिटेशन अवस्था में थे इसलिए आप लोग भी इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, आपका जीवन भी ऐसे निडर होकर के जीवन में जो भी विघ्न आएगा वो विघ्न से पार हो सकते हैं, ऐसे मैंने सबको संदेश देता था।
4: सच ए वंडरफुल स्टोरी, कितनी बड़ी परिस्थिति है लेकिन एक परमात्मा की याद और उनके प्रति जो विश्वास है और वो जो शक्ति उससे जो मिलती है, कैसे हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को पार करते हैं। कई बार हम जीवन में जब विकट परिस्थिति आते हैं भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरे को ही ये क्यों परिस्थिति दिया है, लेकिन वही जगह पे भगवान तू था इसलिए मैं बहुत कुछ होने से थोड़े समय में बच गया। कितना अंतर है इस आलोचना में। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, कैसे विषम परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ हम अपने जीवन को फिर से एक नॉर्मल लाइफ में लेके आ सकते हैं। अब अपने जीवन के उदाहरण उनसे हम सबके सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
5: थैंक यू।
4: जब परमात्मा को हम अपने जीवन समर्पित करते हैं, हमारा जीवन कितना सुखमय और कितना सुंदर, कितना सरल सहज बन जाता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है और संतुष्टता से ही भरपूर है हमारा जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आज आपकी जीवन से हमें ये जो बातें सीखने को मिली हैं, शुक्रिया आपको। दोस्तों यहीं पे आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।
3: अभी बचे हैं रात के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही जो प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर ईश्वर विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों मिल सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट को जन जन तक परिवार तक दोस्त तक अपना बड़ों तक पहुंचाने के लिए का मंच आज दे रहे हैं। तो राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय सातपुर में पहुंचे जो कि आबू रोड में ही ये कहने से अतिरिक्त हो गए नहीं और हम जानते हैं सातपुर कितना सुंदर स्कूल है और जब भी आते हैं एक इशारे से सभी स्टाफ हमें कोऑपरेशन करते हैं। इसलिए पहले सभी स्टाफ को धन्यवाद देते हैं और खासकर प्रिंसिपल साहब को भी। तो बच्चों का आवाज आज बारी बारी सुनने को मिलेगा और इसको देखभाल करने के लिए हमारा साथ हेमलता मैम भी है तो उनको भी देते हैं। वो आप बच्चों का कोऑर्डिनेट करेंगे कौन कौन बच्चे आए हैं और मैम तो स्टेज कोऑर्डिनेट में नंबर वन मैं कभी भी जहां भी देखते हैं इतना सुंदर रूप में करते मैं भी आज रेडियो में आरजे बना देंगे आज हम तो आज मुझे रेडियो जोकी बन जाएगी। तो मैम आपको स्वागत आपका इंट्रोडक्शन प्लीज।
1: सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम हेमलता पंजाबी है। मैं पिछले 18 वर्षों से इसी विद्यालय यानी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हूं और यह जो प्रोग्राम है रेडियो मधुबन इनका हमें सहयोग निरंतर मिलता रहा है। ये दूरस्थ जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको भी उजागर करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कार्य करते हैं। पवित्र भाई जी मलिक जो हमारे बीच में आते हैं उनका सहयोग भी संस्था को मिलता रहता है। तो मैं संस्था की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रेषित करती हूँ क्योंकि आप ही हमारे बच्चे जो कल का भविष्य है उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब मैं अधिक आपका समय न लेते हुए कार्यक्रम को दिशा देती हूँ। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी ईश वंदना से क्योंकि कोई भी कार्य हो उसमें पहले हमारे इष्ट का विराजमान होना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना सफलता की पहली शर्त है। तो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ बड़ी सुमधुर आवाज में हमारी बच्चियों के द्वारा एक मनमोहक सी सरस्वती वंदना।

0: सभी को सरस्वती माता की ब्लेसिंग्स मिल गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने प्रस्तुत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। शुरुआत जब अच्छा होता है तो अंतिम तक अच्छा होगा। इतना सुंदर भाव में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी अपना अपना नाम और क्लास का नाम बताए, क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन बच्चा अभी गा रहा है। और जब उनका मम्मी पापा सुनेंगे, ये तो हमारा गुड़िया का आवाज, ये हमारा सुदिष्टा का आवाज है, तो कैसे पता चलेगा आप कहाँ से बोल रहे हैं, पता नहीं चलेगा। इसलिए अपना परिचय देंगे पहले।
2: मेरा नाम ज्योति कुमारी बुम्बरिया है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
1: और कहाँ से?
2: मैं कोटड़ा से हूँ।
1: वाह, कोटड़ा, आज तो अपना नाम रोशन कर दिया हमारा।
3: मेरा नाम सना है, मैं गांधीनगर से इस विद्यालय में आई हूँ पढ़ने के लिए। मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स में पढ़ती हूँ।
1: गांधीनगर नाम सुनते हैं हमको गुजरात याद आता है, और गांधीनगर अपरोड में भी एक गांधीनगर है और सातपुर नजदीक है।
4: मेरा नाम सुमित्रा कुमारी है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और मैं सातपुर में रहती हूँ।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छा।
5: मेरा नाम जीवन राव है और मैं गांधीनगर में रहती हूँ।
1: बहुत अच्छा, वेरी गुड।
6: मेरा नाम जानवी कुमार है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ, मैं भी सातपुर में रहती हूँ।
1: अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर प्रभाव में अपना परिचय दिए। और परिचय जो होता है तो हमें नजदीकपन आता है। हाँ, ये हमारा आसपास के, ये हमारा गांव के, हमारा मोहल्ला के, हमारा दोस्त है हमारा, इसे पता चलता है। इसलिए परिचय बिना कोई भी आदान प्रदान नहीं होता, तो परिचय पहले जरूरी था। जैसे मैम अपना परिचय दिए, मैं भी अपना परिचय दिया, और साथ साथ हमारा बच्चे जो होबनहार बच्चे जो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में स्वर लय और ताल का साथ पूरा सभी श्रोता मित्र को एक परमात्मा तक, माँ सरस्वती तक अपना दिल का तार जोड़ दिए, ये कम बात नहीं, ये ही बच्चों का हुनर है। चले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे। एकल में हमारा साथ ज्योति भी इस कार्यक्रम को सजेंगे। लेकिन लेकिन हमारा श्रोता मित्र कहीं मत जाइए, अपना वॉल्यूम को तेज रखिए और बच्चों का आवाज बारी बारी सुनते जाइए, क्योंकि हर स्कूल का आवाज आपके पास हम पहुंचाते हैं। लेकिन आज पूरा सातपुर का आवाज शांत स्वरूप है, जो सातपुर जिसे नाम से बच्चे भी इसे पढ़ते, बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे देंगे। कोई भी बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए तो हमारा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, सरकारी राज के विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय, ये दोनों का जो शक्ति डोज मिल रहा है बोस्ट, तो जरूर आगे कामयाब करेंगे। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमें इंतजार कर रहे हैं और हमारा बच्चे एक के बाद एक रेडी है। सब बड़ों को देखकर छोटे भी सीख जाते हैं और अपना आवाज को भी रोक नहीं पाते। आज सब बच्चे अपना आवाज को नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि बड़ों को देखकर छोटे भी सीख जाते हैं। हमारा छोटी सी परी तो कहेंगे क्योंकि बारी क्लास है, फिर भी वो परी जैसे लग रहा है और हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं इस कार्यक्रम को। और हमारा मैम साहब भी कम नहीं, मैम साहब अपना कौन बच्चे अभी सेकेंड पार्टिसिपेंट आएंगे और क्या विषय में वो आलोकपात करेंगे, आप थोड़ा बताइए। आपका स्वागत है।
2: कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बालिकाएं और बालक दोनों ही जोश से भरे हुए हैं। अब जो अगली प्रस्तुति एकल गायन के रूप में ला रही हैं, वो है हमारी कक्षा 12वीं की छात्रा ज्योति बुमरिया। मैं उनका परिचय दूं, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बालिका बहुत जगह अपनी प्रस्तुति देकर हमारे विद्यालय के नाम को ऊंचा कर चुकी है और आज भी वे अपने जोश के साथ हमारे सामने देशभक्ति गीत को प्रस्तुत करने जा रही है। कुमारी ज्योति बुमरिया, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जी ज्योति, आप अपनी आवाज दर्शकों तक पहुंच

0: ज्योति नाम कितना सुंदर, और ज्योति जैसे नाम उस तरह अपना काम करती, और इस तरह प्रेरणा बा कैसे सीखती, तुम कहाँ से सीखती, इंटरनेट से ना किससे, प्रेरणा का स्रोत कौन है तुम्हारा? तुमको इतना आगे जो स्वर लय का साथ इतना सुंदर रूप में लय और ताल का साथ गाई, तो कैसे सीखती तुम, कितना प्रैक्टिस करते रियाज?
1: मम्मी से।
0: ओ मम्मी क्या है, करती है?
1: मम्मी भी सिंगिंग करते हैं।
0: ओ ये राज है बा, अभी समझ में, कोई तो हम जींस तो होना चाहिए, तब तो एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। और मम्मी पूरा गीत गाती है, उनसे सीख।
1: मम्मी घर पे और भजन गाते हैं।
0: भजन भी गाते
1: हैं।
0: वंस मोर, और वो चांस मिलेगा तो और एक गीत गाएगी तुम? जैसे ऐसे गीत गाए हमें बहुत खुशी लगा, और एक गीत हमारा श्रोता मित्र की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई गीत हो।
1: हाँ है वो थे।
0: अरे कर, अरे बाबा सबका एक चांद जैसे पूरा रात को उजला कर देते हैं। बहुत सारा तारे होते हैं लेकिन चांद का तो आप स्कूल का चांद जैसे पूरा। और एक वंस मोर गीत सुनाओ।

0: good, both actually.
1: मैम बच्ची के लिए क्या कहेंगे, मैं तो कह लिया बहुत कुछ, आप क्या कहेंगे इतने सुंदर रूप में।
2: जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में कई परिस्थितियां विकट है और हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो ज्योति उनके लिए एक मिसाल है।
1: जी जी।
2: ये एक ऐसे गांव से है कोटड़ा से,
1: क्या बात,
2: जहां पर की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था नहीं है।
1: जनजाति,
2: ये बालिका जनजाति छात्रावास में रहती है, उसके बाद भी इसके सुरों में वह तालमेल है, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। और हम सभी सभा आपको ये आशीर्वचन देते हैं कि भविष्य में भी आप इस शौक को जिंदा रखें, हम सभी की यही अभिलाषा है। अब
1: अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारा श्रोता मित्र भी थोड़ा पानी पानी फ्रेश होंगे और हवा भी खाएंगे, क्योंकि हमारा बच्चे भी थोड़ा गर्मी में भी बैठे हैं, थोड़ा हवा भी उनको भी चाहिए। लेकिन फिर गए फिर आए फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंच, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, और खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सातपुर आबू रोड का ये आवाज है। और बच्चों का आवाज को जब भी मैंने लेते हैं तो हमें जाने को इच्छा नहीं होता, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैंने ब्रेक देना पड़ रहा है। तो आए फिर आपसे मिलने के लिए, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी फिर से आ गए अपना एक अच्छा गीत सुनने के पश्चात फिर हमारा साथ जुड़े हुए, अपना वॉल्यूम को तेज रखते हुए आप सब सुन पा रहे 107.8 FM पर। ये कि सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। रेडियो सरकार का दिया हुआ स्टेशन है। जैसे तीन प्रकार का रेडियो होता है, ऑल इंडिया रेडियो, कमर्शियल रेडियो और कम्युनिटी रेडियो, मीन्स योर रेडियो, आपका रेडियो, आपका आवाज और आप लोग सुनते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए गीत का बाद एक प्रस्तुत स्पीच भाषण के तहत हम लेंगे और हमारा साथ होबनहार एक पूरा टैलेंट जो कि सिलेक्टेड मैम और सर का दिशा निर्देश से पहुंचे तो वो अपना परिचय देंगे तो अच्छा होगा और मैम भी जानते होंगे बच्चे को।
2: अगली प्रस्तुति आपके सामने सूरज कक्षा 12th से लेकर आ रहा है। ये वर्तमान में चल रही समस्या नशा जो हमारे युवा पीढ़ी को पूरा निगल रहा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, इसी संदर्भ में छात्र आपके समक्ष अपने विस्तार प्रस्तुत करने जा रहा है। छात्र बड़ा ही होनहार है और इस तरह के कार्यक्रमों में वह भाग लेता रहता है। अगली आवाज आप सुनेंगे सूरज की।
3: नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह चौहान है, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने नशा मुक्ति के बारे में आपके समक्ष कुछ शब्दों का वर्णन करूंगा, अगर इसमें कोई भूल हो जाए तो माफ करिएगा। वैसे रेडियो पर सब कुछ समझाना तो नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं कुछ शब्दों को अपने समक्ष व्यक्त करूंगा। नशा, लोग जो शौक शौक में नशा करते हैं, आज की युवा पीढ़ी इस नशे के अंदर पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई है और इस प्रकार नशे में लिप्त होना गलत है। फिर भी हमारे भारत की ओर लोगों ने, कई लोगों ने देखा है, कई लोगों ने नशा मुक्ति की ओर देखा है और अपने आप को सुधारने की कोशिश की है और कई लोग हैं जो अभी भी नहीं सुधर रहे, पर कुछ संस्थाएं हैं जो कोशिश कर रही है कि इन्हें नशा मुक्ति दी जाए। धन्यवाद।

0: बात। कौन भूल पाएगा सूरज को? सूरज का बिना अंधेरा का जाएगा नहीं। कितना धक्का लगा है किंतु अंधेरा नहीं जाता है। जब सूरज आती है तो पूरा अंधेरा ऑटोमेटिक चला जाता है। इतना डर है सूरज को, सूरज से बहुत डर अंधेरा है, है कि नहीं? तो हमारा सूरज नाम रोशन करते, जैसे सूरज का किरण सब तरह पड़ता है, जैसे ज्ञान का सूरज, और ये तो सूरज ही है। और सूरज आप कौन सा क्लास में बोल रहा था?
1: 12th आर्ट्स।
0: और बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
1: बड़े होकर मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहूंगा।
0: क्या बात, वाह, अभी से ही उनका उच्च एम्बिशन लक्ष्य रखें तो जरूर लक्षण दिखाई देगा। इसके लिए तो इन एडवांस, क्योंकि एक जो एम रखेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। एक सोच उनका जो उच्च विचार है, कोई MBBS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एक सब इंस्पेक्टर, कोई कलेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर उसके लिए तो मेहनत कितने घंटा करते हैं? स्कूल तो स्कूल में तो 5 घंटा पढ़ाई होता है, और बाकी समय?
1: बाकी घर पे।
0: कितने समय?
1: 4 घंटे।
0: 4 घंटा पढ़ाई करते?
1: हाँ।
0: क्या बात है, लगन से,
1: हाँ,
0: ध्यान से 4 घंटा करेंगे। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। भले 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी मिलेगा तो जरूर काम आएगा। और सुबह कितने बजे उठते हैं सूरज?
1: 4:30।
0: 4:30, वाह, ताली बजा भाई, हमारा बराबर कर दिए। हम भी 4 बजे उठते, स्टूडेंट जीवन विद्यार्थी, हम भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट है, इस पर विश्वविद्यालय भी, हम भी स्टूडेंट, हम तो 4 बजे जरूर हमको उठना। अरे भाई उठते हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुबह में जो भी उठेगा ना, वो समय बहुत वरदान का समय, अमृत वेला कहते हैं। और सूरज उस समय उठ, वो सूरज तो 6 बजे दिखाई देता है, लेकिन ये सूरज वो उठ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कार्यक्रम में आपने भाग लिया। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट?
1: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भूगोल है, ज्योग्राफी।
0: ज्योग्राफी, वेरी गुड। और फेवरेट टीचर क्लास में, स्कूल में?
1: टीचर सब फेवरेट है।
0: वाह, जीत लिया भाई, कोई भी एक का नाम ले लिया, चाहे हमारा प्रिंसिपल का साहब का नाम लेके, हेमलता मैम का, भरत साहब का, भाई साहब का, साहब मैंने प्रिंसिपल का नाम लिया, लेकिन सभी टीचर्स उनके लिए अच्छे हैं, प्रेरणा का स्रोत है, नहीं? बहुत अच्छा। और एक जोर से ताली बजाओ, उसका विचार ऐसे होना चाहिए, सभी टीचर हमारा अच्छे, क्योंकि अच्छा टीचर का लक्षण हमें बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और क्या कहना चाहेंगे? पहला बार आपको आकाशवाणी में आपका आवाज को दे रहे हैं, आकाशवाणी में सब सुनेंगे, आपका परिवार वाले, घर वाले, और आपका दोस्त लोग जो सुनेंगे आपका आवाज को, ये तो सूरज का आवाज जैसे लग रहा है, ऐसे लगेगा उनको। तो पहला बार आपको कैसे महसूस हो रहा, व्हाट डू यू फील नाउ?
1: अच्छा लग रहा है।
0: क्या अच्छा, एक अच्छा बताओ,
1: फर्स्ट टाइम सबके सामने।
0: और आपका प्रिंसिपल साहब है, आपका टीचर में बहुत दोस्त लोग, सहपाठी भी है,
1: फर्स्ट टाइम सबके सामने माइक पर प्रस्तुति दी है अपनी, तो मुझे अंदर से सुकून मिल रहा है।
0: सुकून मिला, जब इंस्पेक्ट होंगे उस समय भी आपको ऐसे मीडिया वाला आकर पूछेंगे, भाई भाई में पूछेंगे, सभी लोग बैठे रहेंगे, तो उस समय आपको डरना नहीं, याद करना। उस समय स्कूल में मैंने 12th क्लास में हमारा प्रिंसिपल, हमारा मैम और हमारा सहपाठी के साथ हमें इंटर, मैंने भाई भाई में जो भी प्रश्न पूछा था करेक्ट दिया था, उस समय याद रखना, अब जरूर कामयाब होंगे और हम सबका ब्लेसिंग है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एक सामूहिक गीत में हमारा प्रस्तुति सभी इंतजार कर रहे, वो भी अपना आवाज को बुलंद करके बैठे, तो एक सामूहिक गीत सुनेंगे अल्प विराम का।

0: चलिए आप सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, खासकर विद्यार्थी विकास में बच्चों का भाव और भावना को, दिल का बात, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और उसका प्रेरणा का स्रोत कौन है और किसको धन्यवाद देते हैं, सब चीज अपना पास दे रहे हैं और सिर्फ सीमित क्यों रहे आबरोड ब्लॉक में, जहां जहां हमारा इस कार्यक्रम पहुंच रहा है इंटरनेट का माध्यम से, लिंक का माध्यम से, आपका माध्यम से, जो जो सुन रहे पूरा ऑल इंडिया में, क्योंकि आजकल डिजिटल का समय है, कहीं पर भी हम सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रेडियो एफएम का माध्यम से तो और इंटरनेट का माध्यम से। तो हमारा अगला प्रस्तुति के लिए मैम किसको बुलाएंगे? मैम
1: अब आप सुन पाएंगे हमारी 12th आर्ट्स और कॉमर्स की छात्राएं, आपके सामने एक प्रेरणा गीत जो आपको प्रेरणा से भर देंगी। प्रस्तुत है समूह गान जो आपको कुछ कर करने के लिए ऐसा प्रेरित करेगा कि हम सभी के दिलों में कुछ कर गुजरने का जज्बा आ जाएगा। बालिकाएं प्रस्तुत।

0: है।
1: तालियों का स्वागत स्वागत कर रहे हैं और बच्चों का जो प्रतिभा है आज जन जन तक पहुंच आ रहे हैं और मैम को कौन भूल पाएंगे। मैम तो पूरा कोऑर्डिनेट में पूरा एक्यूरेट है। मैम क्या कहना चाहेंगे इस गीत के ऊपर में हमारा श्रोता मित्र?
2: मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि हम सब सिद्धांतों की तो बहुत बात करते हैं पर व्यवहारिक जगत में न तो हम कोई मूल्य अपनाते हैं। तो बच्चियों ने मानो अपने गीत के माध्यम से हमें ये संदेश दिया कि मानव की पूजा नहीं होती, मानवता पूजी जाती है। इस संदर्भ में मैं दो पंक्तियां यह कहना चाहूंगी कि यूं तो सब कुछ बन रहा है तरक्की के जमाने में,
1: क्या बात,
2: यूं तो सब कुछ बन रहा है तरक्की के जमाने में, पर क्या करे आदमी इंसान नहीं होता, क्या करे आदमी इंसान नहीं होता। इंसानियत वही इंसान इंसान है जिसमें इंसानियत है। तो बालिकाएं भी मानो ये संदेश दे रही हैं कि मानवता पूजी जाती है, मधुमेहता पूजी जाती है, यानी कैरेक्टर, कैरेक्टर का ज्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में। हम अपनी बाहरी सुंदरता से किसी भी व्यक्ति को दो चार दिन तक ही अपने आकर्षण में बांध कर रख सकते हैं, परंतु यदि गुण हो और हमारा व्यक्तित्व उज्ज्वल हो, उसमें आध्यात्मिकता का पुट हो, तो वह व्यक्तित्व कभी भी असफल नहीं हो सकता।
1: जी जी, बहुत अच्छा सुंदर रूप में आपने बताया। और जैसे फूल में खुशबू न हो तो फूल किस काम के हैं, विद्यार्थी जीवन में जो स्टूडेंट जीवन में उसका जो अंतर्मुखी व एकाग्रता न हो, अनुशासन न हो, वो विद्यार्थी किस काम के हैं? और हमारा बच्चे तो पूरा अनुशासित है और टैलेंटेड है और दिव्य गुण में भरपूर है। सहनशीलता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, पवित्रता, स्वच्छता जिसमें ता आता है, और परोपकारिता, निर्मलता और पवित्रता, स्वच्छता, कठोरता, गुणग्राहकता, गुण सबका गुण को उठाना, ऐसे बहुत दिव्य गुण। दिव्य गुण रहेंगे तो हमारे पास अंतर्निहित जो शक्ति उजागर होगी। और मैम ने बताया भाई वैल्यू होना चाहिए, गुण बान होना चाहिए, जो गुण का सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा जानते हैं? भगवान पूछते हैं, माँ सरस्वती पूछते हैं आपको भाई विद्यार्थी जीवन में कौन सा सर्वश्रेष्ठ गुण होना चाहिए, जैसे नम्रता है, कठोरता है, दृढ़ता है, बहुत सारे गुण है, लेकिन माँ सरस्वती बा भगवान परमात्मा कहते हैं विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी में आना है। क्या बोला? नियमितता, रेगुलर आना है। इसके बाद मैम अपना काम करा देंगे अच्छे से, क्योंकि कच्चा मिट्टी का डे लाएंगे तो वो मूर्ति है ना मैम
2: जी। एक कुम्हार जिस प्रकार घड़ा बनाते समय अंदर से अपने हाथ की थाप रखकर उसे ऊपर से प्रहार करता है, गुरु भी उसे जो रॉ मटेरियल मिलता है उसे एक यथोचित आकार देकर उसे सुंदर प्रतिमा के रूप में गढ़ देता है। परंतु जैसा कि पवित्र भाई जी ने बताया कि नियमितता और निरंतरता विद्यार्थी जीवन की प्रथम आवश्यकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं, है ना मैम? अंतिम प्रस्तुति की ओर हमारा श्रोता मित्र थोड़ा सा अपना समय को देकर सुन रहे हैं और बच्चों का आवाज जब सुनेंगे, ये आपका बच्चे है, ये होबनहार बच्चे, उनको थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए, क्योंकि आप सुनेंगे तो उसको भी कभी भी समय मिलेगा स्कूल में आकर उनके भामाशाह के रूप में हो, चाहे सरकार सुन रहे तो वो बच्चों के लिए हो, चाहे यहाँ का स्कूल के लिए जो आवश्यकता है वो भी अपना दे सकते हैं, तो हमारा ये भावना है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रा।
1: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गाँव रेवन वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहा और मुस्कुराता रहा।
2: चलिए मैम को देता हूँ माइक। मैम क्या कहना चाहेंगे अंतिम प्रस्तुति का और चल रहा है और हम तो कंपटीशन जैसे आज एक के आरजी ने दो दो दो आरजी बन गए और दो दो आरजी के साथ साथ हमारे छोटे आरजी भी बन गए और एंकरिंग में हमारा सहयोग दे रहे हेमलता मैम, उनको कौन नहीं जानते। मैंने 12 साल से उनको जानते हैं। जब भी रेडियो में कोई भी प्रोग्राम करना है तो हेमलता बहन को याद करते हैं और जो भी प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल उनको सहयोग देने के लिए पूरा प्रभारी हिसाब से दे देते, तो हमें बहुत खुशी है। तो रेडियो मधुबन परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते। तो अगला प्रस्तुति के लिए क्या कहना चाहेंगे।
3: रेडियो मधुबन और पवित्र भाई जी का सहयोग निरंतर मुझे मिलता रहा है। मैं बचपन में अगर इस प्रकार के प्रोग्राम होते तो मैं अपनी और भी अधिक प्रतिभा को निखार पाती। अब अंतिम प्रस्तुति बहुत ही ऐसी प्रतिभावान छात्रा के द्वारा दी जा रही है जिसका नाम दिया त्रिवेदी है। यह हमारे विद्यालय में 10वीं की होनहार छात्र है। मैं बालिका के विषय में एक पंक्ति अवश्य कहूंगी कि कुछ लोग आर्थिक अभाव और कुछ कतिपय परिस्थितियों को बहाना बनाकर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, पर हमारी यह बालिका हर कठिनाई को पार करते हुए हर कक्षा में प्रथम स्थान तो प्राप्त करती ही है। इसके साथ ही हम कहेंगे कि इसका नाम जैसा है तथा ही इसके काम है दिया। यह ज्योति के समान जलती रहती है। अभी कुछ समय पूर्व ही हमारी सरकार की ओर से जो निम्स की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई जिसमें की बालिका को 48,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी मिली। बालिका ने 8वीं में भी पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं इस मंच के माध्यम से भी बालिका के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं और सभी श्रोताओं को बताना चाहती हूं कि जिनको भी यह लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लीड नहीं कर सकते तो यह बालिका उन सभी का एक करारा जवाब है। अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है तो कोई भी बेड़ी आपको पीछे नहीं घसीट सकती। अब मैं अधिक समय नहीं लेते हुए को ये देना चाहूंगी माइक जो नारी सशक्तिकरण पर ही अपने विचार प्रस्तुत कर रही।
2: जी जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका जो महिमा सुना है अभी तो सभी इंतजार कर, उनका जितना जो टैलेंट है और सरकार भी उनका जो ध्यान दिए है ये कम बात नहीं। ऐसे सरकार प्रोत्साहन देते हैं चाहे लैपटॉप हो चाहे साइकिल हो चाहे स्कूटी हो चाहे राशि पैसा नगद भी देते हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत प्रेरणा का। सरकार का जो उन्नति करने के लिए बच्चों को एक प्रोत्साहन देते राशि ये भी कम नहीं है। सभी बच्चे जो सुन रहे चाहे माता पिता सुन रहे उनका बच्चों को इस तरह मार्गदर्शन करेंगे तो वो आपका बच्चे भी लेकर आएंगे। सिर्फ सातपुर क्यों और वो बच्ची क्यों, दिया क्यों, दिया मींस दिया जैसे मैम बताया, दिया मैंने ज्योति आलोक, दिया मैंने देना है, हमेशा देते रहेंगे। जो देते वो देवता है, देवी बनते, दिया लेता नहीं देते है, तो दिया मतलब दे रहे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, उसका आवाज सुनेंगे कितना सुंदर से आवाज है उनका, क्योंकि सुनेंगे तो पता चलेगा क्योंकि इतना टैलेंट मैम और हम बता दिया अभी सुनेंगे।

0: उनका आवाज तो सुने, जो इंतजार कर रहे बच्ची का दिया का, तो सुनते उनका आवाज।
1: नमस्कार, मेरा नाम दिया त्रिवेदी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। इस रेडियो के माध्यम से मैं अपने विचारों का आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज अभी सत्र 2024 चल रहा है, दुनिया काफी आगे पहुंच चुकी है, पर फिर भी आज के इस जमाने में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मानसिकता बहुत ही संकीर्ण है। वो आज भी यही सोचते कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को सिर्फ घर का काम करवाना चाहिए, वो इसी के लिए बनी है। पर मेरे विचार से उनको कल्पना चावला, मैरी कॉम जैसे उदाहरण को देकर मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है आगे। अगर आप लड़कियों को पढ़ाओ तो देश का इतना अच्छा नाम रोशन करेगी, लड़कों से भी आगे निकलेगी। और एक बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज की इस दुनिया में बेटी पढ़ाओ पर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और बहुत सारे शहरों, कस्बों, गांवों में हर जगह बेटियां पढ़ रही है, पर मैं ध्यान देना चाहती हूँ बेटी बचाओ पर। आज आप देखते हैं हर साल हर दिन न्यूज आ रही है कि कहीं पर लड़की के साथ ये हो गया ये हो गया। तो मेरे हिसाब से आज के जमाने में बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटी बचाओ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, और ये सब करवाना बहुत ही जरूरी है। पढ़ाने के साथ साथ अगर आप उसको सेल्फ डिफेंस भी सिखाएंगे तो अगर वो कहीं बाहर जाए तो वो बहुत अच्छे से रह सकती है, उसके पास फ्रीडम होगी, वो कहीं भी घूम सकती है, वो जो करना चाहे वो कर सकती है। तो ये मेरा कहना था, धन्यवाद।
0: दिया, कितना सुंदर रूप में अपना दे दिए बात को, सबको एक प्रेरणा का, माने एक सचेतन हो, चाहे जो आवश्यकता है वो चीज आप रखें। जैसे बेटी तो दे देते, लेकिन बचाने के लिए हमें कितना मदद करना चाहिए, कितना सोचना चाहिए। जैसे पेट तो लगा देते, उसको बचाना बहुत जरूरी होता है। एक बेटी तो हमारे पास है, लेकिन बेटी को जैसे बाहर का जो माहौल है तो उससे भी बचाना हमारा कर्तव्य, हमारा बहन और माँ जैसे। तो खास कर आपको एक दिन के लिए सभी बेटी और बहन का एक लीडर बना जाए, प्राइम मिनिस्टर बना जाए, आपका पास पूरा पावर दिया जाए बेटी बचाओ के लिए, जो बेटी अभी तक नहीं बच पा रहे। तो आप इतना कम उम्र में क्या सोच रखते हैं, आपका सोच, व्हाट यू थिंक अबाउट गर्ल्स फॉर सेफ्टी?
1: सेल्फ डिफेंस सबको आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
0: वेरी गुड।
1: और जो इंडिया का लॉ है मेरे हिसाब से उसको में भी थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए,
0: वेरी गुड। दो पॉइंट में बता दिए, एक कानून हम हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून का साथ लेकर हमारा विचार को कानून का साथ रख के बचाव करेंगे, तब जाकर हमारा जहां नारियों का सम्मान होगा वहां देवी देवता वास करते, नारियों का सम्मान होगा, इसलिए तो श्री सीता राम कहते हैं, है ना, सीता राम कहते हैं, और श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं। जो जमाना आ रहा है, क्योंकि भारत जब स्वर्ग बनेगा आप लोग का राज्य आएगा, हम तो बाद में आएंगे भाई लोग नारायण तो बाद में आता है, पहले श्री लक्ष्मी। तो देवी देवता का नाम भी अभी भी इतना शक्ति का सेना, जो देखते ना काली दुर्गा अम्बा पार्वती सभी शिव का शक्तियां, और आप लोग का पास जो बेटियों का जो सम्मान आप धीरे धीरे होते जा रहा है, और जरूर एक दिन आएगा और भारत का प्रतिनिधित्व विश्व गुरु जो बनेगा, भारत का प्रतिनिधित्व आप बहने दुर्गा काली अम्बा के रूप में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और हमारा इस कार्यक्रम को अंतिम प्रस्तुति के लिए देना है, तो हमारा सर को भी कौन भूल पाएंगे, भरत राम पुरे जी को, जो कि अच्छा से संभालते हैं स्कूल को। 5 साल 6 साल पहले जब आए थे, स्कूल का अस्तित्व इतना सुंदर नहीं था, मैंने जो आवश्यकता जो बच्चों के लिए आवश्यकता, चाहे टॉयलेट हो, चाहे सभागृह हो, चाहे प्रार्थना जो करते हैं वहां पर, ये सातपुर में पब्लिक प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम करते, जब अगस्त 15 हो चाहे जनवरी 26 में बहुत सुंदर में पार्टिसिपेट करते, पूरा नाटक का माध्यम से। कभी मैं दोबारा आपका स्कूल में आकर उसको कवरेज किया था, तो बहुत हुनर है, क्योंकि ये मिक्सिंग है एक आदिवासी बच्चों का टैलेंट, क्योंकि जनजाति आवासीय स्कूल पास में ही है, और अबरोड का जो टैलेंट बच्चे मिलकर जो आते हैं, तो कोई भी कल्चरल प्रोग्राम कोई भी रेडियो प्रोग्राम एक चुटकी में हो जाता है, ये स्कूल का ये विशेषता। और आप महान सब जब रहते तो हमें बहुत खुशी होता है। तो दिया, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, आज रेडियो मधुबन आपका पास, आपका आवाज को पूरा सब तक पहुंचा रहे, तो क्या कहना, हम बार बार इसको प्रसारण करेंगे, तो आपको कैसे लग रहा है, क्या महसूस कर रही तुम अभी रेडियो में पहला बार आए?
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अपने विचार प्रस्तुत करके रेडियो पे पहली बार, और मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि बेटी को पढ़ाने के साथ साथ बेटी बचाओ पर भी ध्यान दिया जाए।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, सभी का आवाज हम तो सुने, और हमारा जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सातपुर का जो प्रभारी है, प्रिंसिपल साहब है, और हर्ताकर्ता है, पूरा कर्णधार भीष्म पितामह जैसे कप्तान है, सभी को लेकर अच्छा कराते हैं। और मैंने देखा 5 साल पहले और आज का जो स्थिति, बहुत सुंदर में बहुत प्रोग्रेसिव है स्कूल का, चाहे पेंटिंग हो चाहे सब वेल व्यवस्थित है, इसका सभी लोग नहीं कर पाते, कोई जिसको इच्छा होता है तो अच्छा बन जाते हैं। इच्छा रखना जरूरी है अच्छा बनाने के लिए। सर आपका स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। एक बार हमें याद है मुझे दलदर में मिले थे सर, आज प्रमोशन हो गया तो हमें खुशी है रेडियो मधुबन परिवार से आपको धन्यवाद देते हैं। तो आप विचार दीजिए जो कि आपका विचार सबका विचार हो।
2: सबसे पहले तो रेडियो मधुबन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं
0: जी सर
2: कि ये अपने इस जनजाति अंचल वनवासी अंचल में सभी जगह पे जाकर के पूरे अंचल की जो भी जनता की विद्यार्थियों की समाज की जो भी भावना है वो रेडियो मधुबन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा पहला चैनल है जिसके माध्यम से हमारे इस एरिया की आवाज को आगे तक जनता तक या सक्षम स्तर तक पहुंचाते हैं। ये एक पहला माध्यम हमने देखा, ऐसा हमारे एरिया में कोई माध्यम नहीं है जो जनता की आवाज बने। मधुबन रेडियो ऐसा एक है माध्यम जो जनता की आवाज बन करके संबंधित तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। इसके लिए इनका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और आज ये सातपुर विद्यालय में पवित्र भाई बता रहे हैं, हमारा इनसे पूर्व परिचय भी है, दिलदर विद्यालय में था उसमें भी एक दो बार हमारे से साक्षात्कार हुआ है इनका। आज ये यहाँ आए हैं और बच्चों के जो प्रतिभाएं थी हमारे विद्यालय में जो छिपी हुई प्रतिभाएं थी जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इनकी प्रतिभाओं के अंदर जो भी अच्छी बातें हैं वो समाज तक पहुंचा रहे और इनके माध्यम से जो भी बच्चे या समाज के नागरिक सुनेंगे तो शायद प्रेरणा लेंगे और इन बच्चों को भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि इन्होंने हमने अच्छा किया तो हमें कोई देखने वाला भी है ताकि हम और अच्छा करें ताकि आने वाले समय में हमारा नाम और समाज तक पहुंचे। तो ऐसा एक मोटिवेशन का काम भी आज आपने किया, इसके लिए हम भी वापस इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब रही बात शिक्षा की बात, जैसा सर ने बताया कि 5 साल पहले भी मैं सातपुर आया था, आज वापस आया हूं। देखिए एक जन धारणा बनी हुई है लोगों में कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। संस्था को चलाने के लिए संस्था प्रधान की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो संस्था को कैसे चलाना चाहते हैं। मैं भी आज से ठीक लगभग 2 वर्ष पहले इस विद्यालय में कार्यक्रम किया था
0: जी।
2: मैंने नहीं कहना चाहिए हमारे विभाग की बात है, लेकिन एक जिस स्थिति में विद्यालय को मैंने पाया था मुझे काफी यूं पीड़ा हुई, दुख हुई कि इतना बड़ा विद्यालय होकर के साधन सुविधाओं की कितनी कमी है यहाँ पे। तो उसी दिन मैंने स्टाफ मीटिंग ली और स्टाफ से पूछा, साहब बताइए विद्यालय के लिए हमें क्या करना है। तो स्टाफ में से एक मैम आई, उन्होंने कहा सर बाकी बात है विकास तो छोड़ो आप, लेकिन हमारे स्टाफ के बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि हम सब स्टाफ वाले और मिल करके स्कूल के लिए बहुत अच्छा करेंगे, मिलकर हम प्रयास करेंगे और स्कूल को एक आदर्श स्कूल बनाएंगे। तब से लेकर के अब तक आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि इस विद्यालय में भौतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है
0: जी।
2: मैं IDBI बैंक के हमारे मित्र है, मैनेजर है मनवाई जी प्रजापत, उनसे मिला कि सर हमारे स्कूल के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत कहा सर आप आदेश को क्या करना है, सबसे पहले तो हमें स्टाफ के लिए कुर्सियां चाहिए, दूसरा हमारे बच्चे नीचे बैठते हैं पहले से 5 वाले उनके लिए फर्नीचर चाहिए डालू मेज
0: जी,
2: और तीसरा कुछ कमरों में पंखे की व्यवस्था भी नहीं है, गर्मी में बच्चे बैठते तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उन्होंने तुरंत ही कहा भरत जी आप डिमांड लेटर मुझे दीजिए, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। और उन्होंने उसी समय लगभग 1.5 लाख रुपए हमारा स्वीकृत किया और 50 तो कुर्सियां, कक्षा 1 से 5 के बच्चों के बैठने के ढालू मेज और पंखे बैठ किए हमारे को, जिससे हमारा काम थोड़ा गति पकड़ा। उसके बाद में मैंने विभागीय जो बजट है उधर उधर से प्रयास किया, पंचायत से संपर्क किया तो ग्राम पंचायत सातपुर का भी अच्छा सहयोग मुझे मिला, 24 लाख रुपए उन्होंने स्वीकृत किए हमारे सातपुर स्कूल के लिए। सबसे पहला काम तो हमने किया खेल मैदान और विद्यालय के बीच में जो दीवार थी वो नीचे थी, तो लोग बार बार विद्यालय में आना जाना होता था, डिस्टर्बेंस रहता था खेल मैदान का भी, तो उस दीवार को 8 फीट ऊंचा करवाया, 6 लाख रुपए उसके सैंक्शन किए। मैदान में धूल मिट्टी थी, बच्चे प्रार्थना में नीचे बैठते थे गंदे होते थे, हम भी भागते थे, मेरे भी शाम को जाता था तो ये जूते और कपड़े सारे गंदे हो जाते थे। तो पंचायत से 12 लाख रुपए सैंक्शन करवा करके ये पूरे मंच से सामने का पूरा उसको सीमेंटेड फर्श बनवाया। फिर बालिकाओं के लिए शौचालय की कमी थी तो बालिका शौचालय स्वीकृत करवाया 6 लाख रुपए में। फिर हमारे एक विभाग की एक योजना चलती है समसा समग्र शिक्षा अभियान चलता है कार्यक्रम, वहां से हमने संपर्क करके इस भवन में जुलाई और अगस्त महीने में तो 2 महीने पढ़ाई नहीं होती थी, इतना पानी टपकता गया कि हमारे बैठने की एक भी जगह सुरक्षित नहीं रहती बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए भी। तो वहां से 20 लाख रुपए सैंक्शन करवा करके पूरे 18 कमरों पर जो पुरानी बिल्डिंग है उस पर चाइना मोजिक करवाया।
0: सर जैसे आपने बताया तो कितना लिस्ट बन जितना और चलेगा ही, लेकिन सिर्फ आप सातपुर एक ग्राम पंचायत है, अबरोड ब्लॉक में सातपुर ग्राम पंचायत से आपने सैंक्शन कराई, 32 ग्राम पंचायत है
2: जी।
0: तो जैसे सातपुर कर पा रहे हैं सभी स्टाफ का आपका सहयोग से, ये सब प्रेरणा, तो दूसरे क्यों नहीं लेते, दूसरे स्कूल के जो प्रभारी हो चाहे स्टाफ क्यों नहीं।
2: मैंने सर आपको पूर्व में निवेदन किया कि संस्था प्रधान की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।
0: ओके,
2: संस्था प्रधान चाहे तो संस्था को बढ़िया बना सकता है, और संस्था प्रधान नहीं चाहे तो फिर संस्था जैसे चल रही है वो चलती रहेगी। मेरा एक स्वभाव है, मैं जिस भी संस्था में रहा मैं ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी मान के काम करता हूँ, मैं विभागीय अधिकारी
0: में करते हैं बच्चों के लिए, और हम भी बैठेंगे, हमारे बच्चे भी बैठे, हमारा घर में इतना आलिशान लगाते हैं कुर्सी पंखा पर, हमारा बच्चा हम रहेंगे 8-5 घंटा 6 घंटा बच्चों के साथ रहेंगे ना
2: जी,
0: हम भी गर्म रहेंगे तो बच्चे भी गर्म, तो हमको भी तो दुख होगा ना।
2: सही है,
0: आप आ रहे तो पैदल कीचड़ होगा तो आप कैसे स्कूल में पढ़ाएंगे।
2: सही है,
0: तो बच्चे को सुविधा के साथ हम भी आते तो हमें भी खुशी लगता, जो भी हमारे साथ आते हैं तो कितना महसूस होता, अच्छा वेल मेंटेन कर रखे। तो कहना मतलब इस कार्यक्रम का माध्यम से जो सुन रहे, चाहे हमारा सरकार सुन रहे हो, चाहे हमारे साथ सुन रहे हो, चाहे हमारा टीचर स्टाफ जो सुन रहे, तो जरूर आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए कुछ करने के लिए निस्वार्थ भाव से, तो जरूर सातपुर से भी बेटर आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, तो कर सकते, लेकिन होना चाहिए जैसे सर ने बताया, इच्छा शक्ति होना चाहिए कुछ करने के लिए, देश के लिए हो चाहे परिवार के लिए हो चाहे अपना स्कूल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जाते जाते ईश्वरीय परिवार की तरफ से, और इस कार्यक्रम का माध्यम से जो भी सुन रहे हैं तो जरूर इससे फायदा ले, ये हमारा भावना है। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सातपुर का आवाज, और इसका श्रेय तो सभी स्टाफ को और खासकर जो प्रभारी है प्रधान आचार्य को जाता है, और ऐसे रेडियो माध्यम जब भी आते हैं कि इशारा से हमें सहयोग मिलता है तो हमें भी आने के लिए इच्छा होता है, क्योंकि रेडियो प्रोग्राम आपका है, आपका टैलेंट को जन जन तक आप क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं चलता है, लेकिन इस माध्यम से जैसे जंगल में मोर नाचा तो कौन देखा है, तो अब जब बताना पड़ता तो ये मीडिया है, तो इसका माध्यम से सरकार जो दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नाम का साथ बच्चों को भी और बड़ों को भी, सबको धन्यवाद, सुनते रहिए मुस्कुराने रेडियो।
2: धन्यवाद।
3: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को, मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

0: तो सभी सुनने वालों को नमस्कार, सुप्रभात। और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। मन की आंखों से में हमने बहुत सारे हमारे साथियों, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों को आज तक रिकॉर्ड किया है, उनकी बातें सुनी है, उनको समझने की कोशिश की है कि वो आंखें नहीं होते हुए, या कहें कि वर्चुअली नजर ना होते हुए भी जीवन जीने का इतना नजरिया कहाँ से लाते हैं। और उसी की तलाश में हम निकल पड़े थे आज से 3 से 4 साल पहले। और मन की आंखों से के इस शो से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए हैं, और हमने यही जानने की कोशिश की कि ये आंखें ना होते हुए भी जीवन को कैसे आंखें मिलती हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मन की आंखें रखते हैं हमारे वो साथी जिनको हम नेत्रहीन कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, दृष्टि बाधित कहते हैं। और हमारे साथ ही हमारी एक सीनियर साथी जिन्होंने एक समय पे न केवल बैंकिंग के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद किया, और इसके साथ साथ अब स्पिरिचुअलिज्म से भी जुड़ी हुई हैं, और हमारे शहर लखनऊ से, कहें कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लखनऊ के शहर से, खूबसूरत शहर से आती है हमारी साथी, हमारी सीनियर बहन, जिनका नाम है ममता कपूर। और ममता कपूर जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, और एक शानदार रेगुलर सेवाओं के बाद अब समाज में कैसे अपनी सेवाएं दे रही हैं, या कहें कि दूसरी पारी जीवन की कैसे खेल रही है, आइए हम जानेंगे। तो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और पर हम कहते हैं ना, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो ममता जी, आपका स्वागत है हमारे रेडियो शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए।
0: जी, ऑक्टावो की वादियों से आप सुन रहे हैं हमारा रेडियो शो, और आप इसे सुन सकते हैं हमारे रेडियो मधुबन ऐप पे भी, और कुछ दिनों बाद हम इसको लेकर आएंगे स्पॉटिफाई पे भी, तो आप उसको सुन पाएंगे हमारे रेडियो शो को रेगुलर, नियमित, और रखिए अपने दिल के पास इस शो को। तो मन की आंखों से ममता जी हमारे साथ हैं, और ममता जी से हमको ढेर सारी बातें करनी है। और अब आप थाम के बैठ जाइए, आपका दिल अगले 1 घंटे के लिए देखिए ना कहाँ से इस पिटारे में कौन कौन सी बातें निकलती हैं, कौन कौन से जीवन के वो महत्वपूर्ण अनुभव निकलते हैं जो शायद आपको रोशनी देंगे और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, तो माउंट आबू की वादियों से हम आपके लिए लेकर आए हैं इस बार के रेडियो शो में एक और साथी जो हमारे डिसेबल साथी है, हमारे ही कम्युनिटी से है, लेकिन उनकी चुनौती जो है वो थोड़ी सी अलग है। और आपको तो पता है हम मन की आंखों में से ऐसे साथियों को भी रिकॉर्ड करते रहे हैं जो नेत्रहीनता से अलग डिसेबिलिटीज के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन उनको उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा एहसास नहीं की कराया कि वो परेशान है या हैरान। तो हम इस बार हमारी जो साथी हैं, जो ममता कपूर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, वे शारीरिक रूप से अक्षम हैं और व्हीलचेयर बाउंड हम उन्हें कह सकते हैं, आप व्हीलचेयर का उपयोग करती हैं। तो ममता जी, हम आपकी यात्रा को शुरू करेंगे, तो यात्रा की शुरुआत होती है बचपन से, अब आप बहुत तुले हैं बचपन से ऊपर, तो आपने डिसेबिलिटी कैसे एक्वायर की, और आपके बचपन की जो शुरुआत है, जो हम कहते हैं ना 55 साल पहले आपका जो बचपन था वो कैसा था, वो हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: मैं अपने माता पिता की पहली संतान थी, और उनके पास शादी के 5 साल बाद मेरा जन्म हुआ। घर में बहुत खुशियां मनाई गई, बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। जैसे गांव में मेरा बिलग्राम नाम के गांव में जन्म हुआ था, गोले छुड़ाए गए, आतिशबाजी की गई, लेकिन 2 साल की जब मैं हुई और चली नहीं, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट जो है कराने के लिए दर दर भटके, वो एलोपैथ डॉक्टर, होम्योपैथ, उन्होंने मतलब यहाँ से लेके अमेरिका तक, और आयुर्वेद से लेके कोई भी पैथी किसी तरह की, कोई कहता कि अंग्रेज महिला आई हुई है वो कुछ पानी देके वो करती है, कोई जादू टोना भी कर रहा है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे पिता बहुत सीनियर ऑफिसर रिजर्व बैंक पे हुआ करते थे, लेकिन वो हर जगह ले लेके मुझे दौड़े, लेकिन 13 साल तक जब सफलता प्राप्त नहीं हुई और मैं पूरी तरह व्हीलचेयर पे आ गई, फिर उन्होंने पढ़ाई पे मेरे ध्यान देना शुरू किया। अक्षमता पे कोई उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, फिर मुझे उन्होंने पढ़ाई पे जोर दिया, और तब तक मुझे वो स्कूल के पेपर्स लाके देते थे, ट्यूटर आता था, मेरे एग्जाम लेते थे, और मैं एक के बाद एक क्लास ऊपर चढ़ती गई। हर साल मेरे एग्जाम लिए जाते थे घर पे, लेकिन मेरी तकदीर कहे या मेरी लगन कहे, क्योंकि मुझे कुछ बन कर दिखाने की तमन्ना मैं जब 5 साल की थी तब से ही मुझे लगता है था कि इस शारीरिक अक्षमता को मुझे बहुत पीछे छोड़ देना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर मैं जो थी, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो मैं मेरे घर के सामने ही एक स्कूल खुल गया। तो मेरे पिता ने बात की, तब तक मैं 9th पास कर चुकी थी, तो फिर मैंने 10th क्लास में डायरेक्टली एडमिशन लिया। और फिर उसके बाद तो एक के बाद एक सफलताएं पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे प्राप्त हुई। मैंने वहाँ पे SSC बोर्ड होता था, वहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्क से पास किया। फिर ग्रेजुएशन की, फिर ये लगा कि अब कॉलेज कैसे जाऊंगी, तो मेरी सिस्टर जो जस्ट मेरे से छोटी थी उसने मुझे कहा कि आप दीदी चिंता क्यों करती हैं, मैं तो हुई ना आपके साथ। तो वो और मैं, मेरे से वो 2.5 साल छोटी है, तो हम दोनों ने ही एक साथ ही SSC बोर्ड पास किया था। तो फिर मैं, हम दोनों ने गुजरात कॉलेज, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने पढ़ाई की है, उस प्रेस्टिजियस कॉलेज में, मैंने अहमदाबाद में, मेरे पापा तब उस समय अहमदाबाद में पोस्टेड थे, तो मैंने वहाँ पर अपना एडमिशन लिया। और वहाँ भी मुझे दिया इतना कोऑपरेशन मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं सुनती थी कभी, हम जैसे बच्चों के स्कूल अलग होते हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, कॉलेज में भी हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है, पर मुझे आज तक किसी भी जंक्शन में इस बात का एहसास किसी ने भी नहीं कराया मुझे भाई किसी तरह की कमी है। मेरी पढ़ाई की बुलंदियों को देखकर, मेरे मार्क्स को देख के सब लोग मुझसे जुड़ते चले जाते थे, और हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तो मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया कि आप सोचिए कि 4 साल जो कॉलेज के थे, रूम नंबर 16 में ट्यूटोरियल्स, सारे लेक्चर्स, आउटसाइड लेक्चर्स सब उसी क्लास में करवाए, मुझे कहीं भी मतलब किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और साथियों का भी मुझे पूरा पूरा सहयोग मिला। ये जरूर था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए शायद उससे लोग जुड़ना भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये एबिलिटी जो है उससे लोग इम्प्रेस होके भी और प्यार से, पर दया से कभी नहीं, मेरे कोई भी मुझ पे दया कभी नहीं दिखाई। और मैं सच बताऊं भाई, कभी भी मुझे मुझे हमेशा इस बात से चिढ़ रही कि मुझे कोई फिजिकली हैंडीकैप कह दे या बेचारी बेचारी शब्द का यूज कर ले मेरे लिए। मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया, उसके बाद उसमें भी मेरिट स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई, और लेकिन मैं मेरिट स्कॉलरशिप को मैंने उन गरीब बच्चों को दान दे दी जो अपनी पढ़ाई करके नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद मैंने साहित्य रत्न किया वर्धा यूनिवर्सिटी से। मेरी पढ़ाई की चाहत कभी खत्म ही नहीं हुई, मुझे ये था कि मुझे दुनिया से कुछ अलग करना है, मुझे कोई ये ना समझे कि ये फिजिकली अक्षम है इसलिए ये काम नहीं कर पाए, ये बात मुझे कभी भी स्वीकार्य नहीं थी। उसके पश्चात फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना शुरू किया, उसमें भी तरह तरह की परेशानियां आई, लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे शायद, मैंने हर एक एग्जाम को क्लियर किया, यहाँ तक कि ESI एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फिर इनकम टैक्स, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टेलीफोन्स, इनकम टैक्स, हर एक के एग्जाम मैंने पास किए, लेकिन फाइनली मैंने रिजर्व बैंक को चूज किया और वहाँ फिर मैंने फिर जीवन के 37 साल अबाध गति से करे, और वहाँ भी मतलब राइट फ्रॉम प्यून टू टॉप ऑफिशियल्स सबने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया, और मैंने भी अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपने आड़े आने नहीं दिया। मुझे मेरा चूंकि ग्रेजुअली ये तकलीफ होती गई इसलिए बढ़ती गई, तो पहले मैं लिख के सारे स्टेटमेंट्स बनाती थी, सब करती थी, फिर धीरे धीरे भगवान भी मेरे साथ हमेशा मददगार रहा। जब हाथ में अक्षमता आनी शुरू हुई तो कंप्यूटर युग आ गया, मेरी एक साथी ने कहा कि दीदी आपने इतना अचीव किया, कंप्यूटर कौन सी बड़ी चीज है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मेरे सब साथी इतने अच्छे थे, लेडीज हो या जेंट्स, हर एक ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। और मैं आप विश्वास करें, मतलब आई वॉज द फर्स्ट टू कंप्यूटराइज माई सीट फुल्ली, मैं अपने पूरे काम को फुल्ली कंप्यूटराइज कर पाई। हाँ, और मतलब तो मेरी क्षमता और भी बढ़ गई। और फिर मैंने अपने प्रमोशंस के लिए भी एग्जाम दिए, आई रिटायर्ड एज मैनेजर। मेरे सब बॉसेस, मेरे सब साथी, सब साथ तो देते ही थे और मुझे इंस्पायर भी करते थे। बस ये था कि मुझे कभी भी किसी चीज से कभी हार नहीं माना। और मैंने आपको एक बात और बताऊं, मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी का फायदा कभी नहीं लिया सरकार से। मैंने हमेशा जनरल कैंडिडेट की तरह हर एग्जाम में मैं अपीयर हुई, क्योंकि मुझे पसंद था ही नहीं कि मैं फिजिकली हैंडीकैप कहलाऊं। मैं अक्षम होते हुए भी हमेशा सक्षम बनी रही और लोगों ने अपने साथ से मुझे बनाया भी। मेरा आत्मविश्वास हमेशा हाई पे रहा और कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रही।
0: तो आपने अपने बचपन से लेकर और अपने यंग एज तक की सारी चीजें हमसे लगभग साझा कर ली हैं, लेकिन हम उस बातें और ढूंढना चाहेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, हमारे श्रोता जान रहे होंगे कि दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है रिहैबिलिटेशन। और जिस हमारे दिव्यांग साथी का रिहैबिलिटेशन हो जाए, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, मेन स्ट्रीम में आ जाता है, मुख्य धारा में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों को ये अवसर नहीं मिल पाता और उनके माँ बाप बहुत सालों तक डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं और बच्चे की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोताओं से यही कहते हैं या हम उनको यही बताना चाहते हैं, और आप जैसे हमारे साथियों के माध्यम से भी हम ये बात का प्रचार प्रसार लोगों तक करना चाहते हैं जागरूकता, कि आप बेशक इलाज के लिए यहाँ वहाँ जहाँ आपको ट्राई करना है वो आप बिल्कुल बेशक आप ट्राई करिए, लेकिन अगर आपको एक देश के एक प्रतिष्ठित अस्पताल के चिकित्सक ने कह दिया कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर हमें बाबाओं और नीम हकीमों के चक्कर में हमारे बच्चे का जीवन खराब नहीं करना चाहिए और उसके रिहैबिलिटेशन के बारे में विचार करना चाहिए कि वो कैसे मुख्य धारा में आ सकता है, वो कैसे आगे पढ़ाई कर सकता है, कैसे उसका स्कूल में एडमिशन हो सकता है और वो कैसे अपने साथियों का सहयोग ले सकता है। तो हम इसी परिकल्पना को लेकर लोगों के बीच जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोगों तक जैसे आपका रिहैबिलिटेशन हो पाया। बेशक आपके माता पिता ने आपका इलाज कराने का भी भरपूर प्रयास किया और वो अमेरिका तक पहुंच गए, परंतु उन्होंने आपकी शिक्षा में कोई कोताही नहीं बरती, आपको एक अच्छे विद्यालय में जाने का अवसर मिला और आपने वहां पर अपने प्रेम से, अपने जज्बे से लोगों को प्रभावित किया और उनका प्रेम और सहयोग भी पाया। और आपका जो बात आपने रखी है कि दिव्यांग कहलाना मुझे पसंद नहीं है, निश्चित रूप से वो हम भी इस बारे में जानते हैं कि हम एक आदमी की जो गरिमा है जो देश के संविधान ने उसको दी है, तो यह वो गरिमा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसके साथ में भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है और वो दोनों ही आपने उसको मिसाल बनाते हुए आपने जीवन को दिया है और इसलिए हम लखनऊ से आपसे जुड़ पाए। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन मन की आंखों से 107.8 FM और मैं हूं आपका होस्ट शरद। तो आज के इस शो में ममता जी से फिर हम आगे बढ़ते हैं और उनकी जो उन्होंने बात कही है, देखिए 2016 का जो कानून देश में लागू है और आज भी हम देखते हैं कि बिल्डिंगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कहीं रैंप नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है और बहुत सारी समस्याएं एक व्हीलचेयर पे चलने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं। लेकिन जैसा ममता जी ने बताया कि हम उनके बचपन से लेकर उनके यंग एज तक का जो स्ट्रगल है, उन्होंने बताया कि वो कैसे अपना लोगों का सहयोग ले पाई, एक ही कमरे में उनको सारी चीजें उपलब्ध रहे, कमरा नंबर 16 उनके लिए एक माइलस्टोन बन गया है तो जिसको उन्होंने जिक्र भी किया, तो ये कमरा नंबर 16 की कहानी क्या है वो हम इनसे जानना चाहेंगे और कैसे वो सहयोग मिल पाया। और बिल्डिंगों की जो हम हालात आज भी देखते हैं कि बिल्डिंगें एक्सेसिबल नहीं है और पोस्टिंग और ट्रांसफर के दौरान भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को कई तरह की चुनौतियां आती है, वहां उसको रियलाइज होता है कि मैं डिसेबल्ड हूं, लोग कहे बिना ही कह देते। ममता जी के इंसिडेंस आपको मैं बताऊं कि एक बहुत प्रतिष्ठित मॉल के मालिक से मेरी एक दिन डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपका मॉल तो बहुत सुंदर है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, हमारे दिव्यांग व्यक्ति नहीं आ सकते, आपने इसको एक्सेसिबल नहीं बनाया। तो वो कहते हैं कि वो आते ही नहीं है, हमें रैंप बनाने की जरूरत ही क्या है, आप पहले रैंप बनाइए फिर देखिए कि वो कैसे इस जगह इस मॉल को कैसे घेर लेंगे, तो आप एक बार मौका तो देखिए दीजिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये वही बात है जो बाबा साहब अंबेडकर ने सरदार पटेल को कही थी कि आप, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे एक मौका तो दीजिए संविधान लिखने के लिए, हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो वही बात जो बात आपने अभी कही, तो ममता जी इन सारी बातों पर हम आपको सुनना चाहेंगे।
1: देखिए जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो पहले स्टार्टिंग में 4 स्टेप्स थे, तो मैं जैसे ही पहुंची तो मैं और मेरी सिस्टर, तो उन्होंने 4 लड़के आए और जैसे गॉडसेंट होते हैं उस तरह उन्होंने मेरी व्हीलचेयर सहित मुझे उठा के ऊपर चढ़ा दिया, जैसे भगवान के 8 हाथ आए और उन्होंने मुझे उठाया और ऊपर रख दिया। उसके बाद हमारे क्लास नीचे थे, कुछ क्लासेस नीचे भी थे और कुछ ऊपर भी थे, लेकिन मेरे साथियों ने जो मैंने को एजुकेशन में ही हमेशा थ्रू आउट पढ़ा है, तो मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि मैम आपके कोई ब्रदर है क्या, तो मैंने कहा अरे आप एक ब्रदर की बात करते हैं, मेरे तो इतने सारे भाई हैं, आप लोग मेरे क्या हैं, भाई तो हैं बस। उस दिन का दिन, उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से अप्रोच किया और मेरी प्रॉब्लम को बताया, मुझसे मिलवाया, और उसके बाद तो प्रिंसिपल मुझसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक क्लास क्या मतलब हर क्लास, हर ट्यूटोरियल, हर लाउड साइड लेक्चर, सब रूम नंबर 16 फॉर ऑल द 4 इयर्स वहीं पे ऑर्गेनाइज हुए। इतना ज्यादा सहयोग मुझे मिला, मेरी सिस्टर जो थी वो मुझे रिक्शे से लेके जाती थी, ईश्वर की दया ही, मैं तो हर अपने मैंने जो किया सो किया, लेकिन ईश्वर का पूरा हाथ मेरे पर रहा, वरद हस्त जिसको कहते हैं, मेरे परिवार ने जो मदद की उसके अलावा साथियों ने, और ईश्वर का वरद हस्त हमेशा मेरे पर रहा। मुझे कॉलेज ले जाने के लिए भैया जी मिल गए रिक्शे वाले, तब हम लोगों के पास कार तो हुआ नहीं करती थी, तो हम दोनों रिक्शे से जाते थे, वो हम लोगों को बहुत उससे ले जाते थे, मुझे मैनुअली उठा के व्हीलचेयर पे बैठाते थे, और फिर वहाँ रैंप बनवा दिया गया था, तो वो जो स्टार्टिंग के 4 जीने थे वो भी मेरे लिए बाधा नहीं बन सके। और उसके बाद तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर वही वर्धा यूनिवर्सिटी से साहित्य की डिग्री प्राप्त की, फिर ये रिजर्व बैंक ज्वाइन किया, लेकिन पढ़ाई की वो तो भूख मेरी कभी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आके LLB की शिक्षा प्राप्त की, मैंने LLB भी की भी डिग्री पाई, और वहाँ ज्वाइन करा नहीं लेकिन मैं एग्जाम देने गई, और वहाँ के जो डीन थे वो स्वयं मुझे अपने घर बुलाते थे और मुझे कहते थे कि ममता अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे तुम डिस्कस कर लो आके मेरे घर पे, और मैं उनके घर में जाती थी और वो मुझे गाइड करते थे, और इस तरह मैंने अपना LLB भी कंप्लीट किया। मुझे शरद जी हमेशा से डॉक्टर बनने की बड़ी अभिलाषा थी, पर चूंकि मैं शारीरिक रूप से अक्षम थी तो ये तमन्ना कैसे मेरी पूरी होती, लेकिन देखिए भगवान, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो इस तमन्ना को ये समझिए कि मैंने पत्राचार द्वारा मावेली होमियो मिशन से करस्पॉन्डेंस का होम्योपैथ के डॉक्टर का कोर्स किया, और उसके बाद मैंने वहां से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में बन गई, और मैं होम्योपैथ की सेवाएं भी अपने ऑफिस में पहले तो कुछ लोगों तक ही सीमित रहा, लेकिन फिर मुझे मेरे ऑफिसर इंचार्ज को जब पता चला कि इस फील्ड में भी मुझे ज्ञान है, तो उन्होंने मेरे लिए एक अलग से चैम्बर दे दिया, और मैं उस पे बैठ के 9:30 से शाम को 5 बजे तक तो ऑफिशियल अपना कार्य का निर्वहन करती थी, और उसके बाद एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मैं अपने चैम्बर में बैठती थी 3 से 5, और वहाँ दवा की डिस्पेंसिंग के लिए मेरे पास कोई ना कोई आ जाता था और मैं दवा प्रिस्क्राइब किया करती थी। तो होम्योपैथ की डॉक्टरी भी मैंने इस तरह प्राप्त की, और मेरी ये तमन्ना भी पूरी हो गई कि मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लिख गया, मैं डॉक्टर ममता कपूर हो गई। फिर उसके पश्चात मैंने एक फील्ड और भी, मुझे पता चला कि भारतवर्ष में रेकी का बहुत प्रचार हो रहा था उस तकरीबन 1992 में, तो मेरी सिस्टर वहाँ रहती थी, तो उसने कहा कि जमशेदपुर में आजकल दीदी का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और इससे लोगों को फायदे हो रहे हैं, तो उसने तो इस लालच में मुझे बुलाया था कि शायद मेरी अक्षमता कुछ कम हो जाए और मैं एक सामान्य जीवन बिता पाऊँ। तो मैं वहाँ गई, मैंने अट्यूनमेंट लिए। मुझे तो खैर मेरा आत्मविश्वास तो पहले भी कम नहीं था लेकिन उससे और बढ़ा। लेकिन मुझे उसके बाद मैंने देखा कि उसके द्वारा जब मैं होम्योपैथ का ट्रीटमेंट करती थी या मैं लोगों को रेकी करती थी तो उससे लोगों को बहुत फायदा होना शुरू हो गया। तो फिर हमारे जो ग्रेट ग्रैंड बाटर मास्टर थे उन्होंने मुझे मास्टरशिप दे दी। तो अब मैं रेकी मास्टर भी हूँ और अपना रेकी द्वारा भी ट्रीटमेंट देती हूँ, होम्योपैथ का भी ट्रीटमेंट करती हूँ। और इस तरह मेरा सही पूछे तो मेरे को अपना दिन थोड़ा 24 घंटे से कुछ ज्यादा हो जाए ऐसा महसूस होता है।
0: जी, तो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना यही इंसान की कुवत है और यही इंसान का जज्बा है। और जब हमारे साथ कोई समस्या हो जाए या कहें कि हमें कोई चुनौती आ जाए तो फिर उस चुनौती को पार पा जाना ही इंसान होना है। तो आपने सिर्फ अपने कॉलेज में रैंप, अपने स्कूल में रैंप ही नहीं बनवाया और बल्कि आप अभी आज बहुत सारे लोगों को इलाज भी दे पा रही हैं या कहें कि उन्हें जीवन दान भी दे कर पा रही हैं अपने मेडिकल की शिक्षा के माध्यम से। तो मैं उन प्रिंसिपल, उन आचार्य का नाम इस शो में जरूर चाहूंगा जिन्होंने इतना मेहरबान होके या आपसे मुतमईन होके उन्होंने वो रैंप जो है वहां पर बनवा दिया और जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी कहानी बताऊं कि मुझे रैंप की ऐसी आवश्यकता नहीं है नेत्रहीन व्यक्ति होने के नाते, परंतु मेरे शहर में ही एक पास में ही एक शौचालय बन रहा था, साबित कॉलेज से कहते हैं, और उस पर रैंप नहीं बनवाए बिना ही उसका उद्घाटन किया जा रहा था। तो मैंने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसके लिए चेताया कि आप रैंप आवश्यक रूप से बनाएं, देश का कानून भी है और आवश्यकता भी। तो फिर वो काम बड़ा देर सवेर हुआ और उसके लिए भी हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे शहर के शौचालय बन पाए उसके लिए भी बड़ा प्रयास किया गया, मैरिज गार्डन्स को एक्सेसिबल किया जा सके उसके लिए मैंने एक कंप्लेन कोर्ट में लगाई और बहुत सारा एडवोकेसी करते करते करते ये जो बात है ये प्रोटेस्ट तक पहुंच गई। और वो प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे मुकदमे मेरे ऊपर भी कायम हुए और बहुत सारे अन्य दिव्यांगों पर भी कायम हुए राजस्थान में, और फिर मेरी नौकरी भी चली गई इस वजह से। लेकिन वो सारी चीजें हुई, हालांकि फिर वापस से नौकरी कायम हुई, फिर मैंने वापस से चीजों को किया। लेकिन वो जो जज्बा है, तो एक देखिए ना, एक वो सज्जन है जिन्होंने रैंप बड़े प्रेम से स्वीकार किया और बनाया। और ऐसे भी हमारे जीवन में ऐसे भी लोग भी हैं हमारे आसपास जो जनप्रतिनिधि होते हुए भी इस पर बात नहीं कर पा रहे और बहुत के द्वारा कई बार बर्बरता भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे भी अनुभव हमारे कई साथियों के हमारे सामने हैं। लेकिन आपने जो बताया कि वो सज्जन कौन है, पहले तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे और बाकी साथियों पे क्या प्रभाव पड़ा आपके वो मैं जानना चाहूंगा।
1: कॉलेज में जो गुजरात कॉलेज में तो डॉक्टर सांडिल्य थे
0: जी,
1: उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं मेरे लिए की और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आजीवन रहूंगी। और रिजर्व बैंक में तो सभी सीनियर ऑफिसर्स जो हमारा सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे में है वो क्योंकि मेरा कार्यकाल 36 साल का, मैंने 1975 में ज्वाइन किया रिजर्व बैंक और 2011 में वो किया। तो बहुत सारे मेरे साथ जो यहाँ पे रह चुके वो मेरी कार्य और मेरी मेरे जज्बे को देख के कहिए वो इम्प्रेस होके या मतलब सहयोग के उससे, क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल जॉब है। ये जो चीफ होते हैं बैंकों के उनको तो हर 3-5 साल में ट्रांसफर होके जाना, पर जो आया उसने ही मदद की। किसी एक के नाम को नहीं कह सकती हूँ। हाँ, इसमें एक हमारे बहुत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होके रिटायर हुए मिस्टर दीपक सिंघल, उन्होंने जब हमारा ऑफिस विजिट किया तो वहाँ पे जो जब मेरा पुराने ऑफिस में तो लिफ्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ लकड़ी का रैंप रख दिया जाता था, रोज मेरा रिक्शे वाला और फिर मैंने कार ले ली थी तो खैर मेरा ब्रदर मुझे लेके जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी दो बहनें हैं, मेरे से दो छोटी और मेरा ब्रदर है, उनका भी बहुत सहयोग मिला माता पिता के साथ ही, और उन्होंने भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं की, होने दी और मेरा पूरा सहयोग किया। मेरा ब्रदर मुझे कार से लेके जाता था और वो रैंप जो लकड़ी का बैंक ने बनवा के दिया था उसके थ्रू मैं चली जाती थी, लेकिन जब मेरा नया ऑफिस बना तो वहाँ पे रैंप की सुविधा नहीं थी, और इत्तेफाक से वो डॉक्टर मिस्टर सिंघल वहाँ आ गए, तो मैं बैंक में शरद जी दीदी के नाम से ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब मुझे ममता दीदी के नाम से ही, आई वॉज पॉपुलरली नोन एज ममता दीदी। तो
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: शायद ममता कपूर के नाम से लोग कम जानते थे, ममता दीदी के नाम से बहुत जानते थे और सम्मान और प्यार भी देते थे। और बल्कि लोग कहा करते थे कि अगर किसी को कभी कोई डिप्रेशन हो तो जाके ममता के पास बैठ जाओ, तो
0: जी
1: तुम्हारा डिप्रेशन तुरंत दूर हो जाएगा। दीपक सिंघल जी वहाँ आए और उन्होंने मुझे पैर लगा के व्हीलचेयर से चढ़ाते हुए देखा, और उन्होंने हमारे जो लोकल इंचार्ज थे उनसे कहा, अरे दीदी को इतनी परेशानी हो रही है आपने देखा नहीं उस दिन? मतलब आप ये सोचिए कि सुबह मैं जब आई हूँ तब मुझे पीछे से रेस्ट करके उठाना पड़ा था, और शाम को जब मैं गई हूँ तो रैंप से गई,
0: जी बहुत बढ़िया
1: रैंप से वापस गई। इतना कोऑपरेशन मतलब मुझे मिला।
0: जी। और आपको मैं बताऊं कि श्रोता तो आपको सुन ही रहे हैं और श्रोताओं को आपको महसूस भी हो रहा होगा कि एक रूहानी रोशनी हमारे साथ है ममता दीदी के रूप में, और ममता दीदी से बात हो पा रही है। ममता जी, आप जिस संस्था में काम कर रहे थे उस संस्था में एक विशाल नाम, बहुत बड़ा नाम उस समय के डिप्टी गवर्नर के रूप में रहा, जिन्हें हम हमारा कई लोग दिव्यांग लोग हमारा अपना भगवान भी कहते हैं, और भारत रत्न के भी वो दावेदार हैं, परंतु वो कब मिलेगा, कब भारत सरकार समझेगी जानेगी वो हमें नहीं पता। उनका नाम है डीआर मेहता, जो महावीर विकलांग समिति के अध्यक्ष हैं, और महावीर विकलांग समिति आप जानते हैं कि देश में दुनिया भर में काम कर रही है, खासतौर पर उस क्षेत्र में वाना जैसे कहते हैं वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, आज जो जल रहा है कुछ नेताओं की क्या कहें कि भूख या हवस के चलते, और उस उन देशों में आग लगी हुई है, बहुत सारे लोग बमबारी की वजह से विकलांग हो गए हैं,
1: बहुत
0: तो
1: परेशान हो
0: उनको
1: गए हैं।
0: लगातार वो पैर लगाने का काम वो कर रहे हैं, जिसे हम जयपुर फुट कहते हैं। तो डीआर मेहता जी भी आपकी संस्था में आए, तो कभी आपका उनसे कोई परिचय या कोई संपर्क कभी हुआ या कैसा?
1: नहीं, उनसे तो मेरा परिचय नहीं हो पाया क्योंकि
0: जी
1: मेरे मेरे उसके दौरान वो आए नहीं कभी, लेकिन मुझे नाम से अवश्य जानते होंगे। यहाँ लखनऊ से लेके पूरे इंडिया में एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मेरा काफी नाम रहा। ये बात को मुझे अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कहना चूंकि जरूरी था तो मैंने
0: जी
1: बताया। तो मतलब मैं मेरे अपने काम के लिए तो मैं जानी गई, लेकिन एज ए होम्योपैथ डॉक्टर और रेकी स्पेशलिस्ट की तरह मुझे बहुत वो मिली है।
0: बिल्कुल, कुछ चीजें मैं भी आपसे साझा करना चाहता हूँ, और श्रोता भी जान रहे हैं कि समाज में कई बार कुछ इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, गांवों में, ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस जहां पर कम है, वहां पर तो लोग ये भी समझते हैं कि सुबह सुबह अगर दिव्यांग व्यक्ति को देख लिया तो उनको लगता है कि आज हमें भोजन भी नहीं नसीब नहीं है, तो ये भी धारणा कई बार लोग हमारे बारे में कई इलाकों में रखते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, मन की आंखों के माध्यम से, हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके बहन हैं, और जहां तक आदमी की जो पहचान है उसकी काबिलियत तो उससे काम से होनी चाहिए, ना कि वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, किस जाति से आता है, या उसका लिंग क्या है, या वो दिव्यांग है कि नहीं, ये हमारे जीवन के मूल्यांकन, किसी व्यक्तित्व के मूल्यांकन के मानक नहीं हो सकते। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक यही बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हम आप जैसे शख्सियत के साथ बात करते हुए इन बातों पर फोकस करते हैं कि समाज में जितनी भी ये कुरीतियां और खास तौर पे अंधविश्वास फैला हुआ है दिव्यांगता को लेकर, ये दूर हो सके, कि दिव्यांग व्यक्ति भी अपना जीवन सामान्य रूप से जी सकता है, वो भी विवाह कर सकता है यदि चाहे तो, और वो भी एक सामान्य जीवन जीते हुए अपनी टेबल पे, अपनी डेस्क में, अपने हुनर से, अपने कौशल से समाज को में योगदान करने की स्थिति में है। तो डीआर मेहता जी ने भी कुछ ऐसे ही दिव्यांगों से शायद वो प्रभावित हुए होंगे, और उनको फिर महावीर विकलांग समिति उन्होंने बनाने का निर्णय लिया, और आज वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको तो कोई याददाश्त में रहा ही होगा कि वो कुछ 1990 से लेकर शायद 1991 से लेकर कुछ समय के लिए आपके यहाँ डिप्टी गवर्नर के पद पर रहे, और उस दौरान उन्होंने बहुत सारा काम देश भर में वो कर पाए। जी
1: मेरा नाम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फिजिकली चैलेंज बच्चों को देती है उसके लिए भी हुआ था, नाम
0: नॉमिनेट हुआ था
1: मेरा
0: आपका नाम?
1: प्रस्ताव नॉमिनेट हुआ था। हाँ,
0: जी
1: और यहाँ पर भी इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो,
0: जी
1: उसने लखनऊ में यूपी से 7 ज्वेल्स को चुना था, उसमें भी मेरा 2009 में चयन हुआ था और मुझे बहुत सम्मान उन्होंने दिया था।
0: बहुत सारी बातें आज देखिए ना, हमने मन की आंखों से के शो में आपके डॉक्टर चांडिल्य को भी याद कर लिया, आपके रिक्शे वाले भैया को भी याद कर लिया, उन भैया को भी याद कर लिया, वो आठ हाथ, वो हेवनली आठ हाथ जो आपके साथ आते हैं उनको भी हमने याद किया, हमने डीआर मेहता जी को भी याद किया और हमने आपके वो सारे साथी सहयोगी उन सबको भी याद किया जो आपके जीवन में आपके साथ रहे,
1: बहुत अमूल्य योगदान जिनका रहा है।
0: जी जी, और इस हरफन मौला शख्सियत को बता दूं श्रोताओं कि देखिए ना कि चिकित्सा विज्ञान से लेकर और बैंकिंग तक की रेंज मैंने तो किसी व्यक्ति के आज तक नहीं देखी, और खैर आप पहली शख्सियत है जो इतनी बड़ी रेंज में इतने विशाल डायस्पोरा के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आपने इधर से लेके उधर तक, ए से लेके जेड तक की आपके साथ एक हुनर आपके पास है, तो ये सब जो करने की इनका जज्बा क्या माता पिता का रहा या कैसे सिर्फ आपसे ऑटोमेटिकली होता रहा, कोई बाबा जैसी शक्ति आपके अंदर आई और वो चलता रहा, कैसे हुआ?
1: मुझे तो लगता है कि मेरा आत्मविश्वास, मेरा ईश्वर में पूरा विश्वास और मतलब आगे बढ़ने के मेरी जो जज्बा था
0: जी,
1: और आत्मविश्वास से और सबके सहयोग से और भगवान के वरद हस्त के कारण ये सब संभव हो पाया। नहीं तो मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ सबके बदौलत हूँ।
0: और मैं आपको बताऊँ, हमारी दो बेटियाँ होती हैं, एक का नाम भावना होता है ना, और तो जो भावना नाम की जो बेटी है ना, वो बहुत जल्दी आहत हो जाती है, उसको हम खिलाते पिलाते नहीं है, उसका पोषण नहीं करते, तो उसमें लोगों की बहुत जल्दी से आहत होती है, तो हम तो लोगों को यही कहते हैं कि भैया अपनी थोड़ी भावना नाम की जो बेटी है उसको आप थोड़ा खिलाए पिलाए, उसका पोषण करें जिससे जल्दी से आहत ना हो तो इस पर भी लोगों से हमें बात करने की आवश्यकता है। आप तो लखनऊ में रहते हैं, अदब के शहर में रहते हैं, और वहां पर तो भाईचारा बहुत सालों से अमन बना हुआ है समाज में, और मैं एक जमाने में एक दौर में कुछ बीच बीच में कुछ रुकावटें भी आती रही हैं, दोनों तरफ की जो शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां हैं दोनों ही समुदाय से, या कहीं समुदाय से और भी समुदाय उसमें घी डालने का काम करते रहते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में समाज में, कि आप एक लीडर हैं और एक दिव्यांग लीडर भी हम कहेंगे आपको, तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
1: नहीं, ये जो मुझे तो कभी भी ये जाति और धर्म और इस सब में, भाई इंसान को बस इंसान होना चाहिए, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। इंसान में अगर इंसानियत है तो वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे कोई वो नहीं है। बस केवल इंसानियत अगर उसमें है और प्यार सबके दिल में हो, इज्जत सबके सम्मान हो, बस इसी की समाज को आवश्यकता है, और बहुत दुखद है कि वो कम होती जा रही है
0: जी।
1: ये तकलीफ दे बात है।
0: जी जी बिल्कुल, समाज में जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हैं, और हम सबको, हम जैसे लीडरान को इस पर काम करने की जरूरत है, जो समाज में लगातार इन मुद्दों पर भी बोल सकें, बात कर सकें, और जब भी ये भावना नाम की बेटी आहत हो तो उनसे बात करें कि भैया अपनी भावना को संभाल के रखो, ये बहुत जल्दी आहत हो जाती है, इसको बाहर ना आने दिया। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं, हम भी आपसे यही बात करना चाहते थे कि देखिए आपकी जो बात है, श्रोताओं आप जान लें कि खासतौर पर कोई भी भगवान हो, कोई भी ईश्वर हो, कोई भी अल्लाह हो, कोई यीशु मसीह हो, वो तालीम को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, वो शिक्षा को बड़ी, वो बाबा साहब तो कहते हैं कि ये वो दूध है जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा और लड़ेगा, तो वही आप देखिए, आप दिव्यांग होते हुए या कहें कि आप स्त्री होते हुए भी, आपकी शिक्षा पे आपके वालिद ने, आपके फादर ने, आपके पिताजी ने ध्यान दिया और आपने जीवन में अपना एक मुकाम पाया, और उसका कारण है शिक्षा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और अभी बहुत सारे देश के बच्चों के जो हालात है आप देखते हैं
1: कि मैं कुछ हाँ। बातें और भी बताना चाहूंगी, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, तो मैं जो है स्कूल के, यहाँ के टॉप फोर स्कूल के बच्चों का मैंने लगातार 15-16 साल ये सब स्कूल्स के बच्चों को मैं इनवाइट करती थी अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में, अपने ओआईसी से परमिशन लेके, और उनके कॉम्पिटिशन्स मैंने लगातार 15 साल करवाए हैं, और उससे भी मेरा बहुत नाम हुआ। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरा आर्ट कंपटीशन का रिजल्ट, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, वो जब वाजपेयी जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो वो लखनऊ आए हुए थे और हमारा नेक्स्ट डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो हमने उन्हें इनवाइट किया, और वो इतने जनरस और इतने अच्छे इंसान थे कि मेरी एक छोटी सी संस्था यंग फ्रेंड्स एसोसिएशन, जिसको कि मैंने रजिस्टर करवाया था, जिसके तत्वाधान में ये सब प्रोग्राम मैं कराती थी, तो उसमें आने के लिए वो तैयार हो गए और वो 1.5 घंटे तक लगातार हमारे साथ रहे। सर जी, मैं 5 साल पहले मधुबन से एक हमारे पहले के जाने वाले अनिल भट्टागर, जो कि ब्रह्म कुमार और उनकी वाइफ भी ब्रह्म कुमारी में पूरी तरह लीन हो चुके हैं, वो हमारे वहाँ आए। वो मुझे पहले से जानते, मेरी सिस्टर के साथ वो पढ़ा करते थे, तो वो आए, उन्होंने ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया और आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने मुझे 7 दिन का घर पे ही बैठे बैठे, इस पे भी मैं ईश्वर की दया ही कहूँगी कि सामने से चल के ईश्वर मेरे घर आ गए, निमित्त बन के, किसी को निमित्त बनाया उन्होंने अपना। और मिस्टर भटनागर ने मुझे 7 दिन तक ये राजयोग और ये ब्रह्म कुमारी इसके बारे में बताया, और पिछले 5 सालों से मैं पूरी तरह बाबा की हो चुकी हूँ। बाबा मेरे हैं, मैं बाबा की हो चुकी हूँ, और मुझे पूरा पूरा बाबा पे विश्वास है। मैं बाबा की होने के बाद पूरी तरह से निश्चिंत हो गई हूँ, और अब तक मुझे ये नहीं पता था कि ईश्वर कहाँ रहता है, मैं कौन हूँ, ये सारी बातें अब ब्रह्म कुमारी में आने के बाद मुझे पता चली कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और सभी जो हमारे ब्राह्मण भाई बहन हैं, वो सब आत्माएं हैं, और उनका हमारे साथ अटूट और भाई भाई का नाता है, और ईश्वर से हमारा अटूट नाता है, जो कि मुक्ति धाम शांति धाम में रहते हैं। और मैं रोज अमृत वेला में उनसे मिलन मनाती हूँ। मेरी डिसेबिलिटी है, इसलिए मैं किसी और को डिस्टर्ब ना करते हुए लेटे लेटे ही बाबा को शुक्रिया अदा करती हूँ, और बाबा से रू रूहान करती हूँ, उनसे उनका आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करती हूँ। और मेरी यही तमन्ना है कि मेरा जो अब बाकी जीवन जो बचा है, वो बाबा की याद और साथ में गुजरे, और बाबा के दिए हुए ज्ञान को मैं आत्मसात करूँ, और धारण करके मैं बाबा के श्रीमत पे चलूँ, और उनके डायरेक्शन अनुसार जितना मैं मनसा वाचा कर्मणा से लोगों की सेवा कर सकूं और अपने जीवन को धन्य बना सकूं।
0: बहुत बढ़िया श्रोताओं, आज मजा आ गया बात करके, और आज हम इस बात का, इस कार्यक्रम का समापन जो है मनसा वाचा कर्मणा से ही करेंगे। मन वचन और कर्म से जब समानता आ जाती है तो जीवन के सारे रोग और सारे दुख मिट जाते हैं। ये संदेश हमको ममता जी ने अपनी बात में कहा, और यही हम आज का हमारा टेक अवे है इस कार्यक्रम के लिए। मन की आंखों से केशव को जमाने और सजाने और आपकी आवाज की बुलंदी से हमें जोड़ने के लिए हम ममता जी की जो आत्मा है, हम उसका धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, हमसे जुड़े रहें, और श्रोताओं फिर से ऐसी ही एक सत्य से मुलाकात होगी 107.8 FM पर आपके फेवरेट रेडियो शो मन की आंखों से। और मैं आपका होस्ट आपको सलाम कहता हूँ, अलविदा कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ।
1: शरद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, और आपके इतने बड़े सम्मान के लिए मैं काबिल हूँ भी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस शो के काबिल मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपकी जब ज्ञान की गंगा बह रही थी तो धैर्य तो आना जरूरी था। बहुत सारे अनुभव आपने बहुत अच्छे अनुभव साझा किए, मजा आ गया। आशा है कि हमारे भाई बहन इसका लाभ लेंगे।

0: रिक्शा रिक्शा
1: कहाँ जाना है माँ जी?
0: रेलवे स्टेशन। कितना लोगे?
1: 200 रुपया।
0: क्या बात कर रहे हो भैया, मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ यहाँ से।
1: इतना कम नहीं होता, अब बोहनी का टाइम है माँ जी, चलना है तो चलिए वरना जाने दो मुझे। सुबह सुबह बुढ़िया दिमाग खा रही।
0: क्या बोला, जोर से बोलो।
1: 150 लूंगा, उससे कम नहीं होगा।
0: मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ। और रिक्शा आते रहते कितने?
2: माता जी आलू गैस पर रखे है, एक सीटी हो गई है, एक दो और होने दो।
0: दीदी इस रिक्शा में मत जाना, ये रेलवे स्टेशन तक का ही 150 मांग रहा है, दूसरी रिक्शा मिलेगी ना।
1: अरे दीदी आप हो, आइए आइए, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा, आइए ना, 120 में ही चलेंगे।
2: चलो चलती हूँ मैं, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना।

0: भैया माताजी से तो 150 मांग रहे थे और मुझसे 120 क्यों?
1: दीदी आपको क्या झूठ बोले, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है हृदय में।
0: भैया आप रिक्शा चालकों की एक कम्युनिटी है, आपका किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स होता है, आपका मीटर क्यों नहीं चलता?
1: कौन मीटर चलाता है अब, सच कहूँ तो आज के जमाने में सच बोलकर कोई अमीर नहीं बना, जो चल रहा है वही करना पड़ता है, नहीं तो भूखे मर जाएं।
0: अगर दुनिया झूठ बोलती है तो क्या आप भी वही करें?
1: क्या बताऊं दीदी, आजकल सच्चाई से काम नहीं चलता, अगर मैं सही रेट बोलूं फिर भी कहेंगे भैया थोड़ा तो कम करो।
0: तो आप पहले से ज्यादा रेट बोलते हो?
1: हाँ हाँ, पहले ज्यादा बोल देता हूँ, फिर जो बार्गेनिंग करता है उसे सही रेट बता देता हूँ, ग्राहक खुश हो जाता है और मुझे भी नुकसान नहीं होता।
0: लेकिन भैया यही तो शुरुआत है उस आदत की जो पूरे समाज को बिगाड़ती है।
1: अब हम जैसे लोग अगर सच भी बोलें तो लोग हमारी मेहनत की कद्र नहीं करते, इतनी धूप में इतने खराब रास्तों पर दिन भर सवारी ढोते रहते हैं, हालत खराब हो जाती है पूरी।
0: भैया सोचिए, जब आप ज्यादा रेट बताते हो तो आप ही ग्राहक को बार्गेनिंग करने की छूट दे रहे हो, क्यों ना शुरू से ही फिक्स रेट बताएं?
1: बोलना आसान है दीदी, पर जीना बड़ा मुश्किल है। लोग बड़े बड़े दुकानों में मॉल में कोई मोल भाव नहीं करते, पर हम गरीबों से हर बार मोल भाव करते हैं।
0: आप दिन भर इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हो, लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा कमाई के चक्कर में जो 30-40 रुपए ज्यादा लोगे, वही पैसा शायद अगले हफ्ते आपकी गाड़ी पंक्चर करवा देगा या घर में कोई ऐसी जरूरत खड़ी कर देगा कि वो 30 की जगह 300 चले जाएंगे। क्योंकि छोटा मोटा झूठ बोलकर पैसा तो आ सकता है, लेकिन पुण्य नहीं आता, और जो धन दुआओं के बिना आता है वो चैन और सुख कभी नहीं लाता।
1: आपने तो सोचने पे मजबूर कर दिया।
0: हर ग्राहक के साथ एक कर्म जुड़ता है, आप चाहो तो रोज 2 रुपए कम ले जाओ, लेकिन 2 सच्ची दुआएं साथ ले जाओ, वही दुआएं आपके बच्चों की रक्षा करेगी और घर में शांति लाएगी।
1: ये आदत तो बहुत पुरानी है, अचानक कैसे बदले?
0: जब आपकी नीयत साफ, भाषा विनम्र और आत्मविश्वास पक्का होगा तो लोग आपको विश्वास से देखेंगे। फिक्स रेट बोलिए, प्रेम से बोलिए और डटे रहिए। हर बड़ी आदत एक छोटे से संकल्प से बदलती है।
1: आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, काश हर कोई ऐसा सोच पाता। कभी कभी तो कोई सवारी गुस्से से बात करती है, बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है, एकदम चिढ़ जाता हूँ।
0: हाँ तो आप भी सेंटर आ जाया करो, आप जैसे कई लोग सेंटर पर आते हैं, आप सेंटर के सामने से ही कई बार आते जाते होंगे।
1: हाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करता रहता हूँ, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतने सारे खर्चे बढ़ गए हैं।
0: जी भैया, लेकिन धन तो टिकता ही नहीं, ये सोच और खर्च बढ़ा देता है। इससे अच्छा कहो मैं धनवान हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं।
1: कर्म अच्छे हों वह तो समझ में आ गया, लेकिन आप बुरा नहीं मानना, मैं धनवान हूँ बोलने से धन अगर आ जाता तो लोग काम धंधा छोड़कर बस यही जाप करते।
0: कई लोग हमेशा यही गलती करते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं टिकता, और यही गलत सोच उन्हें और गरीब बना देती है। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे।
1: ओ, अब मैं समझा, आपकी बात बिल्कुल सच है। मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले ही छोटा सा ही धंधा चालू किया था, लेकिन उसे जब भी पूछो कैसा चल रहा है तो बोलता था भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और देखते ही देखते उसने बहुत तरक्की कर ली। सोच का असर तो होता है।
0: देखा, लाइफ प्रूफ। भैया एक मिनट, कॉल आ रहा है।
2: हेलो दीदी, अब
0: अरे भैया क्या हुआ, आप ठीक तो है? आप तो पिछले दिनों तबीयत खराब बता रहे थे, अब कैसे हो? जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, रोहन के पापा बोले थे आपके ठीक होते ही वो भी आपके साथ सेंटर आएंगे कोर्स करने।
2: दीदी दरअसल मैं उन्हीं की बात करने के लिए कॉल कर रहा था।
0: क्या हुआ भैया, क्या बात है?
3: रोहन के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे।
0: क्या?
1: हे भगवान।
0: शायद इसलिए भगवान कहता है कभी भी कुछ भी हो सकता है।
2: हाँ दीदी, सच में मुझे आज

0: करना चाहती हूँ।
1: हाँ दीदी, जरूर मैं रोहन से बात करवाऊंगा।
0: देखा भैया, सुना आपने?
2: हाँ सुना मैंने, जानता हूँ मैं उनको, बड़ा भला आदमी था, लेकिन देखो ना, धन शोहरत सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता।
0: साथ जाते हैं सिर्फ हमारे कर्म, इसलिए बस अच्छे कर्म करो और सिर्फ धन के लिए नहीं जियो, कुछ दुआएं भी कमा लो, यही आत्मा के साथ जाता है।
2: हाँ दीदी, सच कहा आपने, आज से मैं सच के रास्ते पर चलूंगा और सिर्फ धन के लिए नहीं दुआएं भी कमाऊंगा।
3: आज जमाना बदलने का समय है, बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। मोल भाव की मानसिकता तब तक रहेगी जब तक हम खुद को सच्चाई पर नहीं टिकाते, इसलिए आज से संकल्प लें, ना तो बेईमानी करेंगे, ना झूठा रेट बोलेंगे और ना किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे। सच्चाई से कमाएं, सच्चाई से जिएं, यही है असली रिचनेस, यही है असली जीत। झूठ से कमाया धन मन का सुख खा जाता है, लेकिन सच्चाई से कमाया हुआ धन दुआओं और आत्मसम्मान के साथ आता है।

the tiny point of consciousness. I am light.

ओम शांति। आज 10 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, भक्त आत्माएं शिव बाबा के मंदिर में आकर के गाते हैं, भर दो झोली भोलेनाथ, शिव बाबा भर दो झोली। परंतु शिव भोलेनाथ कैसे झोली भरता है, किस चीज से भरता है और कब भरता है, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन जरूर कभी तो भरा है, तभी तो ये गायन भी करते हैं। तो बाबा इसका वास्तविक अर्थ बताते हैं कि संगम के समय पर शिव बाबा बहुत गुप्त रीति से आते हैं और गुप्त रीति से हम बच्चों की बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान धन से भरते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते, ये गुप्त ज्ञान धन का दान जो बच्चों को दिया, फिर बच्चे जाकर के अनेक आत्माओं को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान बहुत गुप्त रीति से करते हैं, जिससे ही शिव बाबा हम बच्चों को गुप्त रीति से विश्व की राजाई दान में देते हैं और हमें विश्व का मालिक बड़े गुप्त रीति से बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते, ये गायन याद जब आता है तो मनुष्य करते हैं, जाने अनजाने पन में भी जैसे ही स्मृति जागृत होती है, एक शिव बाबा ही भोलेनाथ है जो हमें ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसीलिए कहते, बम बम भोलेनाथ भर दो झोली। दूसरी बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सूक्ष्म रीति से हम बच्चों को समझाई है और वह है कि बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय तुम खुदाई स्कूल में हो, अर्थात इस खुदाई स्कूल में तुम बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा आते हैं तो आकर के नए सृष्टि की रचना करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता कहते हैं तो प्रजापिता शिव बाबा को नहीं कहा जाता है, शिव बाबा है परम पिता परमात्मा, प्रजापिता है ब्रह्मा। बाबा कहते, प्रजा तो जरूर जन्म मरण के चक्र में आती है और आत्मा अपने संस्कार अनुसार ही जन्म मरण के चक्र में आती है, तो परमात्मा जन्म मरण के चक्र से परे हैं, लेकिन आते हैं नई सृष्टि की रचना के लिए। तो इसीलिए आज बाबा ने ये गुप्त दान का महत्व बच्चों को समझाया है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। ये एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। आज की मुरली से प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती है। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हैं, यह भी गुप्त है। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। कितना गुप्त रीति से ये कार्य चल रहा है। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी है, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। बाबा कहते, डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं, दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले आए हो, कहां साकारी देश में पाठ बजाने। क्यों आए हैं? क्योंकि यह ड्रामा है ना,
बच्चों को ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे, इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो कहां पर? खुदाई स्कूल में। बाबा कहते तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवान वाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, गाया हुआ है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है, किस नाम से बुलाएंगे? परमात्मा को, हे पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक बार है और कब आते ही नहीं। सिर्फ एक बार कल्प में आते हैं और कब नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट, हद का ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है हद का ड्रामा, छोटा सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। बाबा कहे जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। जो भी दुनिया में राजाएं बनते हैं, एक जन्म कुछ अच्छा दान पुण्य किया तो राजाएं बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर के बाद भी तुम भक्ति में भी बहुत जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में जाते हैं। परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो, फिर भी सुख तो रहता है। बाबा कहते फिर भी सुख तो रहता है, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। यह तो बाद में होता है, जब लाखों के अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। बाबा कहते लड़ाई झगड़े जब लाखों में हो जाते हैं प्रजा, तब लड़ाई झगड़ा आदि सब शुरू होता है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है, तीन हिस्सा सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमो प्रधान, रजो प्रधानता तक तो सुख था,
लेकिन जैसे ही तमो प्रधान बनना शुरू होते हैं, तमो, तमो प्रधान और तमो प्रधानता, तब जाकर के दुख की भोगना होती है। बाप समझाते हैं, यह है ही तमो प्रधान दुनिया, तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। जब इतना दुख हो जाता है, तंग हो जाते, तो कहते भगवान ने ऐसा खेल ही क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, बाकी थोड़े रोज है। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। बाबा कहे सब कुछ पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे, प्रैक्टिकल में तुम सब देखेंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वह अभी थोड़ी दिखा देंगे, जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा, इसीलिए भक्ति में भी कहा जाता, होने को कोई टाल नहीं सकता है। तो जो होनी होती है वो कल्प पहले मुआफिक ही होगी, यह तो देखते ही हो, तैयारियां हो रही है। तो बाबा कहे भले वो ड्रामा शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन होनी कह देते हैं, है तो एक ही बात। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारियां हो रही है, वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। यहाँ ही हमें सतो प्रधान स्वयं को बनाना है, यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता कैसे परमात्मा गुप्त रीति से आकर के गुप्त ज्ञान दे रहे हैं। गुप्त रीति से तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है कोई नहीं जानते, बाबा को कोई जानते ही नहीं। ये सब कहां जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है, तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा, यहां तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं, कहते हैं भर दो झोली, शिव बोला भंडारी भर दो झोली। तुम जानते हो, क्या जानते हैं, शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रत्न लाखों रुपए का है, इतनी वैल्यू का है, ये भी कोई नहीं जानते हैं। तुम कितने रत्न देते हो, कितने रत्न बांटते हैं, दान में देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दी है, वास्तव में कुछ भी नहीं, देवताएं तो हथियार चलाते ही नहीं है। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं, कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स है तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए, वास्तव में ये ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं। कितने स्थूलता में एक ग्रॉस लेवल पर बुद्धि चली जाती है ना, जबकि भगवान आकर के
सूक्ष्म स्तर की हर बात समझाते हैं, लेकिन मनुष्य जब उस सूक्ष्म स्तर को समझ नहीं पाते हैं तो स्थूल के हथियार आदि दिखा दिए हैं। है कुछ भी नहीं, बाबा कहे ना ज्ञान ज्ञान खड़ग है, बाकी बाण आदि स्थूल में कुछ भी नहीं है। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने, उनको सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं। बाबा कहते दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, एकदम पतली लकीर बच जाती है। सारा गुम नहीं होता है, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी ये बेहद की बात, तुम सोने कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं, यह है साक्षात्कार की बात। चंद्रमा नहीं देखते लेकिन सोने कला संपूर्ण चंद्रमा जैसी सूर्यवंशी दुनिया देखती है, तो यह है साक्षात्कार की बात। जिसकी समझाने बाप बैठ देते हैं, अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, इस पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था, ये कहां तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा। जैसे ही बेगरी पार्ट शुरू हुआ कई लोग चले गए कि पता नहीं अब क्या होगा, न यहाँ के न वहां के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं, इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वो सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूं, सिर्फ कहता हूं मुझे याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा। बाबा कहते यहाँ ज्ञान मार्ग में जो बाबा के बच्चे बनते हैं तो बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, मेरा बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो, बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसीलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। शाहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है। अभी देखो कितने सेंटर्स पर कितने अच्छे अच्छे भाई बहने भी आते हैं, तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, भीलनी का भी तो गायन है। कहते हैं राम ने भीलनी के बैर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े, बिल्ली के बैर ब्रह्मा को खाना पड़े,
बिल्ली आदि आएगी। समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भिलनी गणिकाएं ले आएगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूं। शिव बाबा कैसे खाएंगे, इसलिए वो तो अभोक्ता है। तो बाबा कहे भिलनी जो बैर ले आती है, यानी कुछ भी अगर ले आती है, फ्रूट्स आदि ले आती है, तो तुम बच्चे खाएंगे, ब्रह्मा खाएंगे, तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी, इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं। बिल्लियों से भी निकलेंगे, इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बाप कहते जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ, तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे, एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है, शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए, शिव पर बलि चढ़े तो उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए, भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते, तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुक कर देते हैं, फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है, बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर वन में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो, सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, इस समय सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ क्या हो गया, जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं है, अनेक है, मिसाल हमेशा एक का दिया जाता है। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है, जिनका पाठ है वो पुरुषार्थ करते हैं और वही मात पिता के दिल पर चढ़ते हैं, तत्व नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती है बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है, बाप कहते इसका इतना कुछ नहीं है, अगर डांटना पड़ता है उसके कल्याण के लिए तो उसका कोई इतना कोई पाप कर्म नहीं बन जाता है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ, बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, ऐसे नहीं कहा जाता, क्रोध शत्रु है, माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम, नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति

हम सुन रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है, शिव बाबा का ये टेम्पररी रथ है, इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है, बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है, इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना, बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी वह 6-8 रुपया भेज देती है तो बाबा क्या कहते, वाह बच्ची वाह, बाप तो गरीब निवास है ना। ये सब ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा, बांधे लिया है। बाबा कहते भाग्यशाली हो, शिव बाबा का रथ तो मिला ना। एक दिन आएगा, भविष्यवाणी देखो बाबा की, एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहां, मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात, यह है शिव साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी, वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। बाबा कहते तुम्हारे सिवाय कोई नहीं देख सकेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है, सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, एक तरफ भोलापन एक तरफ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भवा। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भवा। विस्तार है, कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है, सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, सरलता का स्वभाव भोला रूप धारण कर लेती है। लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको, सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए, सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। आज का स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी।